मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई 2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी रेडियो मित्र स्मिता। आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। अब से कुछ ही देर में हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सांणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव

0: मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना का शुभारंभ करते हैं समूह स्वर में गाए इस देशगान से।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देश गान। वंदना में आइए अब सुनते हैं पिनास मसानी की आवाज़ में ये भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे पिनाज मसानी की आवाज़ में ये भक्ति रचना। वंदना में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये शब्द।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में ये शब्द। वंदना में आइए अब सुनते हैं अनूप जलोटा और साधना सरगम की आवाज़ों में ये भक्ति रचना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा और साधना सरगम के युगल स्वरों में ये भजन। वंदना का समापन अब हम कर रहे हैं हरिओम शरण के मधुर स्वर में गाए इस भक्ति रचना के साथ।

0: इस वंदना के साथ ही आज की वंदना यही संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है चिंतन। चिंतन के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं पहला सुख निरोगी काया, इस विषय पर किशोर अरोरा के विचार। वाचक स्वर आभा गुप्ता का है।
1: मनुष्य जन्म किसी न किसी उद्देश्य से प्राप्त होता है। इस जीवन में जन्म के पश्चात अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु हम सब लग जाते हैं। जीवन के हर काल में कोई न कोई उद्देश्य अवश्य रहता है। शैशव काल, बाल्यकाल, यौवन, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के अपने अपने उद्देश्य रहते हैं। अपने इन उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए मनुष्य जीवन पथ पर उन्नति की ओर अग्रसर होता है। इन सब के बीच प्रत्येक मनुष्य का एक उद्देश्य समान रहता है, वह है सुख की प्राप्ति। हर कार्य के पूर्ण होने पर हमें सुख मिलता है, या यूं कहिए कि कार्य का परिणाम मिलने पर हमें सुख की प्राप्ति होती है। इन छोटे छोटे सुखों, इन छोटी छोटी खुशियों को संजोते हुए हमारा जीवन चलता है। ये मानव स्वभाव है कि जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं को भूलते हुए हम निरंतर आगे बढ़ते हैं एक नए सुख की प्राप्ति की ओर। इन सभी सुखों में से एक परम सुख है और वो है निरोगी काया। यदि हम रोगग्रस्त होंगे तो सांसारिक सुख हमारे किसी भी काम के न होंगे। हम इन सुखों की भली भांति अनुभूति न कर पाएंगे। निरोगी काया में शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना दोनों ही शामिल हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही प्रत्येक कार्य के परिणाम में प्राप्त भौतिक सुख की अनुभूति कर सकता है, अपने आनंद को बढ़ा सकता है। शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही अपने जीवन काल में प्राप्त होने वाले सुख को अनुभव करने के साथ साथ उसमें वृद्धि भी कर सकता है, उससे प्राप्त अनुभव को संजो सकता है, आत्मिक संतुष्टि का अनुभव कर सकता है, अपने लिए नए नए लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो सकता है और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के पश्चात और सुख प्राप्त कर सकता है। रोग से ग्रसित व्यक्ति, चाहे वह शारीरिक हो अथवा मानसिक रोग, ऐसा व्यक्ति अपने रोग और अपने रोग से मुक्ति के बारे में ही सोचता रहता है और व्यथित होता रहता है। उसे अपने रोग के सामने कुछ नजर नहीं आता। छोटे से छोटा सुख या खुशी को वह महसूस भी नहीं कर पाता और बड़े बड़े सुख से तो वह वंचित रहता ही है। उसे अपने रोग के सामने सब कुछ गौण लगता है। वह नित्य प्रति ईश्वर से अपने रोग से मुक्ति की प्रार्थना करता रहता है। ऐसे व्यक्ति का रोगावस्था में बीता जीवन काल निरर्थक चला जाता है। निरोगी काया रहे इसके लिए जरूरी है संयमित दिनचर्या और उचित खानपान। खानपान में जरूरी है पौष्टिक भोजन और साथ साथ नियमित व्यायाम। फास्ट फूड और नशीले पदार्थों से दूरी बनाएं। जल्दी सोना और जल्दी जागना भी निरोगी काया के लिए जरूरी है। जीवन काल का अंत होना तय है, ये सर्वमान्य सत्य है, पर जितना जीवन इस धरती पर हम जीते हैं, जितना काल यहाँ पर हम व्यतीत करते हैं, उस काल में निरंतर लक्ष्यों की प्राप्ति करते हुए, प्रगति करते हुए, छोटी छोटी खुशियों को अनुभव करते हुए, उन्हें संजोते हुए यदि हम आगे बढ़ें तो हमें आत्मिक सुख और आत्मिक तृप्ति भी प्राप्त होगी। इसकी प्राप्ति में हमारे समाज का भी योगदान है। जीवन काल में समाज के लिए अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए, सामाजिक कल्याण के कार्य करते हुए यदि हम जीवन पथ पर अग्रसर होंगे तो ये आनंद परमानंद में बदल सकता है। हमें शायद उस अवस्था की प्राप्ति हो सकती है जिसे मोक्ष कहते हैं। यह तभी संभव है जब निरोगी काया के साथ हम जीवन पथ पर अग्रसर हों। इसलिए कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। इसे हम सुख की अनुभूति का प्रथम पायदान भी मान सकते हैं।

0: सकते हैं। अंत में यही कहना पर्याप्त होगा कि पहला सुख निरोगी काया, बाकी सब सुख छलावा मिथ्या माया।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत पहला सुख निरोगी काया विषय पर श्री किशोर अरोरा के विचार। वाचक स्वर आभा गुप्ता का था। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

देवाधिदेव महादेव तथा पार्वती का धाम, पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, जिस पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो सभी ऋतुओं में समान रूप से हरा भरा रहता है, शीतल स्निग्ध छाया देता है, जहां मंद सुगंधित वायु बहती रहती है। ये स्थान शिवजी का विश्राम स्थल है। इसी वृक्ष की शीतल छाया में शिव इस मुद्रा में बैठे हैं, जैसे स्वयं शांत रस मूर्तिमान हो उठा हो। सुअवसर पाकर पार्वती वहां आती हैं। आदर सत्कार की भंगिमा के साथ शिवजी ने उन्हें अपनी बाई ओर आसीन किया। पार्वती को अनायास अपने पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी की प्रशस्ति करते हुए उन्होंने श्री रघुनाथ की कथा सुनाने का अनुरोध किया।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा। आज की सामयिक चर्चा का विषय है कृषि वानिकी क्यों और कैसे। जानकारी दे रहे हैं SS चौधरी।
1: किसान भाइयों, ये देखा जा रहा है कि अब वन क्षेत्र पहले की तुलना में काफ़ी कम है, जबकि प्रकृति में पर्यावरण संतुलन की अच्छी स्थिति बनाए रखने के लिए 33% भूभाग पर वनों पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। हमें बंजर समस्याग्रस्त भूमि को उपजाऊ बनाकर खेती के लिए उपयोग में लाना है, तो इसके लिए एक ही समाधान है, कृषि वानिकी पद्धति। इसके द्वारा खाद्यान्न, हरा चारा, ईंधन व इमारती लकड़ी की पूर्ति भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाकर और भूमि कटाव को रोक करके की जा सकती है। कृषि वानिकी भूमि प्रबंध की ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत एक ही भूखंड पर कृषि फसलें और बहुउद्देशीय वृक्षों, झाड़ियों के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय को भी लगातार या क्रमबद्ध तरीके से किया जा सकता है। इस पद्धति को अपनाने से प्रति इकाई भूमि की अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। उन स्थानों पर जहाँ भूमि का कटाव अधिक होता है या भूमि समस्याग्रस्त है, जैसे अम्लीय, लवणीय या क्षारीय है, या जलवायु मौसम की अनिश्चितता से कृषि फसलें प्रभावित होती हैं, ये पद्धति बहुत ही उपयोगी है। किसान भाइयों, कृषि वानिकी अपनाने से बहुत से लाभ हैं। एक ही भूखंड पर कई प्रकार की उपयोगी वस्तुओं का एक साथ उत्पादन किया जा सकता है, जैसे खाद्यान्न, फल, ईंधन, रेशा या खाद। अनुपजाऊ या समस्याग्रस्त भूमि को कम समय में उपजाऊ या खेती के योग्य भी बनाया जा सकता है। ये पद्धति भूमि संरक्षक का एक सर्वोत्तम उपाय है। इसी तरह नमी का संरक्षण भी किया जा सकता है और बेमौसम बरसात का बहुउद्देशीय फसलों व पेड़ों के माध्यम से अधिक सदुपयोग किया जा सकता है। कृषि वानिकी को अपनाकर ग्रामीण भाई अपने और बाजार की ईंधन की मांग, इमारती लकड़ी, औजारों के काम आने वाली लकड़ी और हरे चारे की आवश्यकता की पूर्ति बड़े आराम से कर सकते हैं। इससे पर्यावरण को सुधारने में भी काफ़ी मदद मिलती है। अब कृषि वानिकी के विभिन्न तरीके भी हैं, उनको भी किसान भाई जान लें। कृषि वन पद्धति, वन चरागाह पद्धति, कृषि उद्यान की पद्धति। इसी तरह कृषि वन चरागाह पद्धति, उद्यान की चरागाह पद्धति, कृषि उद्यान की चरागाह पद्धति, कृषि वन उद्यान की और बाउंड्री वृक्षारोपण। कृषि वन पद्धति में कृषि योग्य भूमि में बहुउद्देशीय पेड़ों को लाइनों के बीच खाद्यान्न फसलों को उगाते हैं। ये पद्धति सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार के क्षेत्रों में अपनाई जाती है। इसमें कृषि उपज के साथ साथ जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी, रेशा और चारा प्राप्त होता है। वन चरागाह पद्धति में ईंधन व चारा प्राप्त होने वाले वृक्षों की लाइनों के बीच में घास और दलहनी फसलों को लगाते हैं। ये पद्धति बंजर, पथरीली या अनुपजाऊ भूमि से ईंधन व चारा प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। कृषि उद्यान की पद्धति के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि में फलदार वृक्षों को लगाते हैं। इस पद्धति में खाद्यान्न के साथ साथ विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, जिससे आमदनी बढ़ती है। कृषि वन चरागाह पद्धति, इस पद्धति में बहुउद्देशीय वृक्षों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की घासें उगाई जाती हैं, जिससे जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी और पशु चारा मिलता है। ये प्रणाली पशुपालन व दुग्ध विकास क्षेत्र के लिए अत्यंत उपयोगी है। कुछ और कृषि वानिकी पद्धतियों में उद्यान की चरागाह पद्धति, इस प्रणाली में फलदार वृक्षों के साथ साथ विभिन्न चारा प्रदान करने वाली फसलों को हम उगाते हैं। ये विधि सिंचित क्षेत्रों में अधिक उपयोगी होती है। कृषि उद्यान की चरागाह पद्धति में कृषि योग्य भूमि में फलदार वृक्षों के बीच विभिन्न चारे वाली फसलें उगाते हैं। इससे चारा, फल, जलाऊ लकड़ी के अलावा पर्यावरण में सुधार और भूमि की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होती है। तो ये कुछ बातें हैं किसान भाइयों, यदि हम कृषि वानिकी अपनाएं तो चारा के साथ साथ जलाऊ लकड़ी भी मिलेगी और पर्यावरण भी संतुलित रहेगा।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। आज की सामयिक चर्चा का विषय था कृषि वानिकी क्यों और कैसे। जानकारी दे रहे थे SS चौधरी।

0: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: मन की बात है जन जन की बात, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर, माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात।
4: सड़क पर गाड़ी चलाते समय पैदल चलने वालों का ध्यान रखें, ट्रैफिक सिग्नल पर निर्देशों का कड़ाई से पालन करें, गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें, यदि सिग्नल पर टाइमर 90 सेकंड रुकने का निर्देश दे तो इंजन बंद कर दें, बेवजह ईंधन की खपत ना करें, प्रदूषण भी ना बढ़ाएं, हरी बत्ती मिलने पर हॉर्न बजाते हुए आगे जाने की जल्दबाजी ना करें, ये दुर्घटना को बढ़ावा तो देगा ही, ध्वनि प्रदूषण से चालकों का तनाव भी बढ़ाएगा। सड़क पर चलने का हक सबको है, इसलिए सबका ध्यान रखें।
5: ए मन्नु भाई मोटर चली पम पम पम, ए मन्नु भाई मोटर चली पम पम पम।
6: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
7: अरे क्या बात है, आज तो तुम बड़ो ही नोनो गीत गा रही हो, और जो तो वही गीत है जाके हम फरमाइश की चिट्ठी लिख कर भेजाता थे और हमारी पसंद को लोक गीत हमारी जिज्जी हमें लोक माधुरी में भी सुनवा देती।
8: हाँ खूब ही सही चीज ना तुमने, जो वही लोक गीत है और आज हम जी को जैसे गा रहे कि आज हमारा मन बहुत ही उल्लास में है।
7: काय ऐसो का होगा जिज्जी?
8: अपना जो पसंदीदा कार्यक्रम लोक माधुरी को हम सभी सुन सकते हैं हर सोमवार शाम 7:21 से 8 बजे के बीच।
7: जिज्जी जाके लाने अपने को चिट्ठी कैसे भेजनी होगी?
8: अरे चिट्ठी बिट्टी छोड़ो, अब हम हो गए डिजिटल, सो अब हम लिख के भेजेंगे अपनी फरमाइश व्हाट्सएप पे।
7: तो जीजी जाको व्हाट्सएप नंबर का है?
8: डायरी तनक खोलो और जल्दी से लिख लो 9425702768। तो याद भाओ कि नहीं, तनक बताओ तो जल्दी से
7: 9425702768।
8: तो आप अपनी पसंद को लोकगीत के बोल और कलाकार को नाम हमें जा नंबर पे व्हाट्सएप करो, को आपकी पसंद को लोकगीत लोक माधुरी कार्यक्रम में जरूर ही सुनवाएं।
7: तो सुनना न भूलें हर सोमवार शाम को 7:21 से 8 बजे के बीच लोक माधुरी।

0: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमी संस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट सेमीकंडक्टर संयंत्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रान्तेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाष निर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकंडक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर पावर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीयमन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 26,000+ यावत् भारते 5 सेमीकंडक्टर संयंत्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रांतरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21वीं शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्ति पत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सानन्दक्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयंत्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक संजालीय तन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकास यात्रायामेषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य 10 दिनांकं यावत् कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्षनेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीय सम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीन सत्रमस्य मासस्य 20 दिनांकात् अगस्त मासस्य 23 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजू सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलाई मासस्य 20 दिनांकात् संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला 20 प्रतिविंशतिः विश्वचषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड

0: दलम अद्य अन्त्यद्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया दलम सम्मुखीकरिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय समयानुसारं रात्रौ अष्टवादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि जोधपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन मारवाड़ क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर से संशोधित उड़ान योजना शुरू होने से छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों तक हवाई संपर्क बेहतर होगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण से काम कर रही है और हर क्षेत्र तथा हर नागरिक के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले श्री मोदी ने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। बाद में गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र की में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों में 5% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका। सरकार ने मूल स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से

से प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 7:20 पर आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। 8:30 पर आप सुन सकेंगे लोक संगीत। आज लोक संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भंवर सिंह अहिरवार के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। आपके साथ ढोलक पर संगत करेंगे श्रवण कुमार शर्मा और सारंगी पर साथ होंगे अब्दुल मजीद खान। 9:00 आप सुन सकेंगे सूचनाओं और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। 9:30 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक सिंधी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 10:05 पर आप आनंद ले सकेंगे अपने ही पसंद की फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का। 11:00 से 3:00 तक हमारी पहली सभा में बाकी के कार्यक्रम हमारे मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। हमारे शाम की सभा आरंभ होगी युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी से। ये कार्यक्रम शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति होगी और हमारे मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी। फिल्म संगीत का आनंद आप हमारे संध्याकालीन सभा में ले सकेंगे 5:33 पर और शाम 6:30 पर। भजन संध्या का आनंद आप ले सकेंगे शाम 6:00। 5:55 पर आप सुन सकेंगे कुछ लोकल विज्ञापन। 7:20 पर आप पुनः सुन सकेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भंवर सिंह अहिरवार के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। शाम 7:30 से आप सुन सकेंगे ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम लंदन में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल। श्रोताओं, ये थे हमारे आज की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों का विवरण। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
2: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सानंद में सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया, कहा यह भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का अगला कदम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और प्रदेश में मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के सानंद में अत्याधुनिक सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विशाल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को पहले ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने इसे विकसित भारत की रूपरेखा और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम बताया।
1: मुझे बताया गया है यहाँ से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सानंद संयंत्र में निर्मित चिप्स का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में निर्मित चिप्स जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में अडानी समूह द्वारा स्थापित किए जा रहे लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान के औद्योगिक विकास के विजन को नई गति मिलने की आशा है। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि रक्षा क्षेत्र के संयंत्र से इस इलाके में विकास को गति मिलेगी।
2: पुरी में डिफेंस रक्षा क्षेत्र का संयंत्र प्रोपेलेंट गैस और अनेक उपकरणों का 3,000 करोड़ का भूमि पूजन किया जा रहा है। ये एक अपने आप में एक इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की डिफेंस कॉरिडोर के साथ शिवपुरी को जोड़ा जा रहा है। एक नया इतिहास औद्योगिकरण की सूर्य की किरण के रूप में अब स्थापित होने जा रहा है। इस रक्षा के संयंत्र से हमारे देश के रक्षा करने वाले वीर जवानों को नई टेक्नोलॉजी के अस्त्र शस्त्र मिलेंगे।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में ये 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जो कि 2014-15 की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है।
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल इंदौर में कहा कि बूथ लेवल अधिकारी चुनाव आयोग के आधार स्तंभ होते हैं। उन्होंने इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधे संवाद में कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव कर्मियों और बीएलओ ने मिलकर एसआईआर का काम बहुत अच्छा किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आज ओंकारेश्वर और महेश्वर के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।

0: हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने के लिए केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, संबंधित मंत्रालयों, नागरिक समाज और जनता से सामूहिक तथा समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। स्कूल शिक्षा विभाग ने 5017 नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें माध्यमिक शिक्षकों के 4067 एवं प्राथमिक शिक्षकों के 950 पदों को नियुक्ति प्रदान की गई है। विभाग द्वारा ये नियुक्ति आदेश 3 और 4 जुलाई को जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी नवनियुक्त शिक्षकों से अपेक्षा की है कि वे अपने दायित्वों का निष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक न्याय दिव्यांगजन मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को शिक्षा, तकनीकी और गतिशीलता से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग को सरल और सुलभ बनाएगी। उन्होंने पात्र विद्यार्थियों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने तथा जिलाधिकारियों को योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदियां और नाले उफान पर हैं जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बड़वानी और खरगोन जिले सबसे अधिक प्रभावित रह सकते हैं जहाँ पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने इंदौर और जबलपुर संभाग के जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं देवास, सीहोर सहित 13 जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मैहर जिले के रामनगर ब्लॉक में रीवा बाणसागर और सीधी बाणसागर मल्टीविलेज जल प्रदाय योजना के कार्यों का जमीनी निरीक्षण किया। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इंदौर के सांवेर में 27 करोड़ की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कॉलेज भवन के निर्माण का निरीक्षण किया। वहीं इंदौर में कल युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी के बरगांव में आज सुबह 10 बजे से विद्यार्थियों के लिए एक विशेष कैरियर गाइडेंस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा के ओंकारेश्वर के प्रसिद्ध ममलेश्वर मंदिर में विकास कार्यों की तैयारी तेज हो गई है। मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। आगरमालवा के सुसनेर में सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को साइबर अपराधों से बचने के तौर तरीके सिखाए। और झाबुआ कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में आयुष्मान भारत, सिकल सेल और टीबी उन्मूलन के लक्ष्य तय समय में पूरे करने के निर्देश दिए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांणंद में सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया। कहा, यह भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शिवपुरी में 2500 करोड़ की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और प्रदेश में मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त स्मिता। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने। आवाज़ कुमार सानू की है।

1942 अ लव स्टोरी। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज़ में। अब लीजिए सुनते हैं फिल्म संगीत का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन से। गीत के बोल लिखे हैं देव कोहली ने और संगीत रचना जतिन ललित की है। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की। आइए सुनते हैं फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन का ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। आकाशवाणी ग्वालियर आपकी सेवा में है।
1: पापा, लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ,
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
6: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
5: मतलब?
6: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV/AIDS और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
5: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
4: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के युगल स्वरों में फिल्म दिल है कि मानता नहीं से। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। आइए सुनते हैं फिल्म दिल है कि मानता नहीं का ये प्यारा सा गीत।

अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में अभी आपने सुना दिल है कि मानता नहीं फिल्म का ये गीत। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म खिलाड़ी से। गीत के बोल लिखे हैं अनवर सागर ने और संगीत जतिन ललित का है। आवाज़ें अभिजीत और अलका याग्निक की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म खिलाड़ी का गीत, अभिजीत और अलका याग्निक के युगल स्वरों में। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म दहक अ बर्निंग पैशन से। मजरूह के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आदेश श्रीवास्तव ने। आवाज़ें हैं हरिहरन और साधना सरगम की। आइए सुनते हैं इन्हीं के युगल स्वरों में ये प्यारा सा गीत।

हरिहरन और साधना सरगम की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म दहक का गीत। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म पत्थर के फूल से। देव कोहली के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है राम लक्ष्मण ने। आवाज़ें हैं SP बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म पत्थर के फूल का ये गीत। सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म संघर्ष से। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है जतिन ललित ने, आवाज़ सोनू निगम की है।

0: सोनू निगम के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ा

0: हवा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
3: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
4: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा

किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए

0: राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
2: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये परिचर्चा आकाशवाणी एफएम गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी

0: तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार दो भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस नेक्स्ट फेज ऑफ रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम विकसित उड़ान टू गिव फिलिप टू एयर ट्रैवल इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to 2,125 rupees per quintal to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं भंवर सिंह अहिरवार के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। आपके साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं श्रवण कुमार शर्मा और सारंगी पर साथ हैं उस्ताद अब्दुल मजीद खां। आइए सुनते हैं भंवर सिंह अहिरवार और साथियों के स्वरों में ये देवी गीत।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं लोक संगीत के कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं भंवर सिंह अहिरवार के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में ये कजरी।

0: श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं लोक संगीत के कार्यक्रम का, और ये कार्यक्रम हमारे ग्वालियर केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
0: लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनते हैं अगला लोकगीत, भंवर सिंह अहिरवार की आवाज में, ये झूला।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत का। सुनते हैं कार्यक्रम में अगला लोकगीत, भंवर सिंह अहिरवार की आवाज़ में ये चेतावनी।

श्रोताओं, अभी आपने सुना चेतावनी भंवर सिंह अहिरवार की आवाज़ में। आपके साथ ढोलक पर संगत कर रहे थे श्रवण कुमार शर्मा और सारंगी पर साथ थे उस्ताद अब्दुल मजीद खां। इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के सांणंद में अत्याधुनिक सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इसे विकसित भारत की रूपरेखा और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम बताया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में निर्मित चिप्स जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना शुरू की है। यह एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग को सरल और सुलभ बनाएगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल मैहर जिले के रामनगर ब्लॉक में रीवा बाणसागर और सीधी बाणसागर मल्टी विलेज जल प्रदाय योजना के कार्यों का जमीनी निरीक्षण किया। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों में जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। और भोपाल के मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय में जनजाति चित्रकार सुनीता परमार की चित्रों की प्रदर्शनी का संयोजन किया गया है। यह प्रदर्शनी 30 जुलाई तक जारी रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 9 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

सूचनाओं, समाचारों और नगमों के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो मित्र स्मिता। श्रोताओं, आज का ये जो कार्यक्रम है इसकी पहली चर्चा हम समर्पित करते हैं पंडवानी गायन की विश्वविख्यात लोक गायिका, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित तीजन बाई की पावन स्मृति को। भारतीय लोक कला जगत के लिए यह अत्यंत दुख भरा यह समाचार है कि तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उन्होंने रायपुर एम्स में अंतिम सांस ली। उनके निधन से भारतीय लोक संगीत और लोक नाट्य की एक अमूल्य धरोहर का अवसान हुआ है। छत्तीसगढ़ के भिलाई के समीप स्थित गनियारी गांव में जन्मी तीजन बाई ने अत्यंत साधारण परिवेश से अपनी कला यात्रा प्रारंभ की। कहा जाता है कि मात्र 13 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली बार केवल 10 रुपए के पारिश्रमिक पर प्रस्तुति दी थी। दोस्तों, उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा, ओजस्वी वाणी और सशक्त मंचीय प्रस्तुति के बल पर पंडवानी को गांव की चौपाल से निकालकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। पंडवानी छत्तीसगढ़ की एक विशिष्ट लोक गायन शैली है जिसमें महाभारत की कथाओं, विशेषकर भीम के पराक्रम, साहस और धर्म युद्ध का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन किया जाता है। तीजन बाई ने कापालिक शैली में पांडवानी प्रस्तुत कर इस कला को नई पहचान और नई ऊंचाइयां प्रदान की। उनकी आवाज में ऐसा ओज, ऐसा भाव, ऐसी जीवंतता थी कि श्रोता स्वयं को महाभारत के उस कालखंड में अनुभव करने लगते थे। उनकी असाधारण कला और भारतीय लोक संस्कृति में अप्रतिम योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें क्रमशः पद्मश्री, पद्म भूषण और वर्ष 2019 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत किया। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा में भी पंडवानी शैली की एक झलक देखने को मिलती है। फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग का प्रसिद्ध गीत मंगल मंगल पंडवानी गायन शैली से प्रेरित माना जाता है, जिसने एक लोक परंपरा की ऊर्जा और प्रभाव को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया। आज के दिन आइए हम तीजन बाई के स्वर को नमन करते हुए उनकी अमर पंडवानी प्रस्तुति सुने। उनके स्वर में महाभारत केवल एक कथा नहीं बल्कि साहस, सत्य, संघर्ष और संस्कृति का जीवंत दस्तावेज बनकर हमारे सामने उपस्थित होता है।

0: काल की हिस्सा
1: हाँ?
0: कीर्ति कुमार वो समय सुन के चंचल चार घोड़ा ले सजा के
1: अच्छा?
0: और पकड़ के बागडोला रथ में बैठे हवे
1: हाँ?
0: ये मनु लाल ललकार की थे तैटा देखत हसरे भैया
1: हाँ?
0: जल्दी रथ में बैठ आज को रोके ना से करावोगा
1: हाँ?
0: ये मनु रथ में बैठते सार शंख के धुन करके काका
1: हाँ?
0: मोरे तना

0: मनु के रथ लाए आगे बढ़ावा समय
1: क्या
0: कीर्ति कुमार है।
1: अच्छा,
0: और लेके रथ तैयारी कर दे मैं सिंह राज जदुरथ के सामने।
1: अच्छा
0: काका, ललकार के अब मनु कथे ये जदुरथ दरवाजा छोड़ दे, तोर प्राण बचाना है ता।
1: अच्छा
0: हंस के जदुरथ कथे बड़ा यल करहा लेके आस्ते है का।
1: हाँ
0: काबर, अरे अतेक जर राजा।
1: अच्छा
0: ते नानक लेकर राजा से का भये मोरले छोटे है, कहां है तोर अर्जुन।
1: हाँ
0: अरे बेटा के पास में ताकत हवे कहे जदुरथ।
1: हाँ।

श्रोताओं, स्वर थम जाते हैं लेकिन सच्चे कलाकार कभी विदा नहीं होते। वे अपनी कला, अपनी साधना और अपनी विरासत के माध्यम से सदैव हमारे बीच जीवित रहते हैं। तीजन बाई ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि लोक कला केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि हमारे सांस्कृतिक पहचान और आत्मा का स्वर है। आइए हम सभी इस महान लोक गायिका को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। उनकी पंडवानी की गूंज आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी और भारतीय लोक संस्कृति को सदैव समृद्ध बनाती रहेगी। इसी भावपूर्ण शब्दों के साथ पद्म विभूषण सम्मानित तीजन बाई को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। श्रोताओं, जैसा कि इस कार्यक्रम का दस्तूर है कि हम आपसे कुछ सूचनाएं, कुछ समाचार और कुछ ज्ञान भरी बातें और साथ ही मधुर नगमों की भी प्रस्तुति देते हैं, तो फिलहाल कार्यक्रम में सुन लेते हैं ये महत्वपूर्ण सूचना।

0: ये वो भी ऐप से, वाह।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे एक ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यदि मन में ज्ञान के प्रति सच्ची लगन हो तो एक साधारण व्यक्ति भी समाज में असाधारण परिवर्तन ला सकता है। दोस्तों, अक्सर हम बात करते हैं कि किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई, अपनी सारी संपत्ति, यहाँ तक कि अपना घर भी केवल इसलिए समर्पित कर दे ताकि दूसरे लोग मुफ्त में किताबें पढ़ सकें? ऐसी मिसाल बहुत कम देखने को मिलती है। आज की हमारी प्रेरणादायक चर्चा का एक विषय यह है

जिसके बारे में हम आपसे ये साझा करने जा रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व बस कंडक्टर अनके गौड़ा के बारे में। कर्नाटक के मांड्या जिले के पांडवपुरा क्षेत्र के रहने वाले अनके गौड़ा बचपन से ही पढ़ने के शौकीन थे, लेकिन उनके गांव में पुस्तकालय नहीं था। दोस्तों, एक किताब पढ़ने के लिए उन्होंने कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, और इसी अनुभव ने उनके मन में एक सपना जगाया, ऐसी लाइब्रेरी बनाने का सपना जहां हर व्यक्ति बिना किसी शुल्क के अपनी पसंद की किताबें पढ़ सके। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए अनके गौड़ा जी ने बस कंडक्टर के रूप में नौकरी की। इसके साथ साथ दूध विक्रेता और बीमा एजेंट के रूप में भी उन्होंने काम किया। वर्षों की मेहनत से जो भी धन अर्जित किया, उसे उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं पर खर्च नहीं किया, बल्कि दोस्तों उन्होंने खर्च किया किताबें खरीदने में। किताबों का संग्रह इतना बढ़ गया कि उन्हें रखने के लिए जगह कम पड़ने लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना घर तक बेच दिया ताकि किताबों के लिए एक स्थायी स्थान बनाया जा सके। आज उनका यह पुस्तकालय और यह पुस्तकालय बनाने का सपना पुस्तका मने अर्थात किताबों का घर के रूप में साकार हो चुका है। यह विशाल पुस्तकालय में लगभग 20 लाख पुस्तकें, दुर्लभ पांडुलिपियां और 20 से अधिक भाषाओं की अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। यहाँ देश विदेश से विद्यार्थी, शोधकर्ता और पुस्तक प्रेमी ज्ञान प्राप्त करने आते हैं। अनके गौड़ा जी का जीवन हमें यह सिखाता है दोस्तों कि सच्ची संपत्ति धन नहीं बल्कि ज्ञान है। जो व्यक्ति समाज को ज्ञान देता है, वह वास्तव में आने वाली पीढ़ियों को भी भविष्य और सुंदर दिखाने का सपना प्रदान करता है। उनके इसी अद्भुत योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। यह सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि शिक्षा, साहित्य और ज्ञान के प्रति समर्पण का भी एक सम्मान है। तो दोस्तों, आज की डिजिटल युग में जहां मोबाइल और सोशल मीडिया हमारे समय का बड़ा हिस्सा ले लेते हैं, वहीं अनके गौड़ा हमें याद दिलाते हैं कि किताबों से बढ़कर कोई शिक्षक नहीं होता। तो आइए हम भी प्रतिदिन कुछ समय पुस्तकें पढ़ने की आदत विकसित करें और ज्ञान के इस अमूल्य खजाने से अपने जीवन को भी समृद्ध बनाएं।

0: आकाशवाणी ग्वालियर से प्रसारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त स्मिता। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि एक बेटी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, लेकिन आज भी देश के कई दूरदराज क्षेत्रों में बेटियों की शिक्षा एक बड़ी चुनौती का हिस्सा बनी हुई है। ऐसे ही कठिन हालात में एक महिला ने अपने जीवन के 40 वर्ष केवल एक संकल्प को समर्पित कर दिए, हर बेटी तक शिक्षा की रोशनी पहुंचनी है। यह एक संकल्प लिया था हमारी बस्तर की बड़ी दीदी बुधरी ताती ने। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में जहां कभी सड़कें नहीं थी, यातायात के साधन बेहद सीमित थे और हर कदम पर नक्सल हिंसा का खतरा बना रहता था, वहां बुधरी ताती ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगभग 570 से अधिक गांव तक पैदल पहुंचकर लोगों को शिक्षा का महत्व समझाया। कल्पना कीजिए, घने जंगल, कठिन रास्ते, लंबी पैदल यात्राएं और हर दिन नई चुनौतियां, लेकिन उनके कदम कभी नहीं रुके। दोस्तों, वे गांव गांव जाकर माता पिता को समझाती थी कि बेटियां भी बेटों की तरह पढ़ लिख कर अपने परिवार और समाज का भविष्य बदल सकती हैं। कई बार उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा, कई बार परिस्थितियां उनके लिए बहुत कठिन थी और वापस लौटना आसान लगता था, लेकिन बुधरी ताती ने अपने संकल्प से कभी समझौता नहीं किया। उनका विश्वास था कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो गरीबी, अज्ञानता और भय को किसी बेड़ियों से बंधी इस कुरूतियों को तोड़ सकती है। उनके अथक प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि अनेक बेटियां पहली बार स्कूल पहुंची, जिन गांवों में कभी शिक्षा का सपना भी दूर लगता था, वहां आज पढ़ाई की नई उम्मीद दिखाई देने लगी है। श्रोताओं, बुधरी ताती का जीवन हमें ये संदेश देता है कि समाज में वास्तविक परिवर्तन बड़े भाषणों से नहीं बल्कि निरंतर सेवा, समर्पण और कर्म से आता है। यदि एक व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो यह हजारों जीवन में नई रोशनी जगा सकता है। हम भी कोशिश करें कि आसपास किसी भी बच्चे, विशेषकर बेटियों की शिक्षा में जहां तक संभव हो सहयोग करें, क्योंकि शिक्षा ही वह दीपक है जो आने वाले कल को उज्ज्वल बनाता है। दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं समाज में ऐसे कुछ लोगों की जिन्होंने जीवन में अपने इस तरह के काम किए हैं कि समाज को एक नई दिशा मिली है, तो इसी क्रम में हम बात करते हैं एक ऐसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की, जो हमारे, अगर हम बात करें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, तो पुलिस अधिकारी की कल्पना करते ही हमारे मन में बहुत सी इमेजिनेशंस आने लगती हैं, जैसे वर्दी, अनुशासन, कानून व्यवस्था। लेकिन आज की कहानी, आज की ये चर्चा का विषय एक ऐसे पूर्व आईपीएस अधिकारी की है जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद झाड़ू को अपना बड़ा हथियार बना लिया और स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने का बीड़ा उठाया। हम बात कर रहे हैं सरदार इंद्रजीत सिंह सिद्धू की, जिन्होंने देश भर में ब्रूम वॉरियर यानी झाड़ू योद्धा के नाम से उन्हें पहचाना जाता है। ये ब्रूम वॉरियर पूर्व आईपीएस अधिकारी होने के बावजूद अपने आरामदायक जीवन को न चुनते हुए एक संघर्ष भरा जीवन को चुनना ज़रूरी समझा। उन्होंने स्वयं हाथ में झाड़ू उठाई और सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और धार्मिक स्थलों की सफाई शुरू कर दी। धीरे धीरे उनका ये प्रयास जो है ये जन आंदोलन में भी बढ़ गया और लोगों ने उन्हें देखकर प्रेरित होकर इस अभियान से जुड़ने का एक मन बना लिया और ये संदेश दूर दूर तक फैल गया कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है। श्रोताओं, उनका जीवन हमें ये दिशा देता है, ये सिखाता है कि नेतृत्व किसी पद पर बैठकर आदेश देने का काम नहीं है। सच्चा नेतृत्व वह है जो स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करे और अपने कार्यों से समाज को प्रेरित करे। देश के प्रति उनकी इसी निस्वार्थ सेवा, सामाजिक जागरूकता और स्वच्छता अभियान में उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2026 के पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया है। भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं दोस्तों, बल्कि उस सोच का सम्मान है जो यदि हर नागरिक अपने आसपास की स्वच्छता की जिम्मेदारी लेने के लिए स्वयं अपनी एक इच्छा जाहिर करे तो हमारा देश और भी सुंदर, स्वस्थ और जागरूक बन सकता है। तो श्रोताओं, आइए हम भी आज एक छोटा सा संकल्प लें कि अपने घर, मोहल्ले, अपने विद्यालय, अपने कार्यालय और अपने शहर को स्वच्छ रखने में अपना सक्रिय योगदान देंगे, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आइए अब सुन लेते हैं एक मधुर सा गीत जो हमें कर्म, सेवा और सकारात्मक सोच का संदेश देता है।
1: श्याम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
2: क्या कहती हो शामू की माँ?
1: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
2: माँ, जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से।

0: तो दोस्तों इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त स्मिता को, फिर हम कल मिलेंगे इसी समय नई सोच, नए विचार और नई चर्चाओं के साथ। आप सभी को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर, आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है।
1: जी सुरहाण।

साथियों जय झूलेलाल। सिंधियत जी सुरहाण में तवा सबनी के मां मनोज सोनी पंजवाणी पारा सिक भरी नमस्ते। साथियों मीहन जी मुंद हली रही आहे ऐं मौको आहे गुरु पूर्णिमा जो। असां सब कोशिश कयूं त हिकु हिकु वण पंहिंजे गुरुनि जे नाले ते ज़रूरु लॻायूं, छो जे वृक्षारोपण अॼु जे समय जी ख़ासि ज़रूरत आहे। पर्यावरण संतुलित रखणु, हवा खे शुद्ध करणु, जल संरक्षण ऐं जलवायु जे परिवर्तन खे घटाइण लाइ वण तमामु ज़रूरी आहिनि। वृक्षारोपण सां मिटीअ जो कटाव घटिजंदो आहे, जंहिंसां जैव विविधता खे वाधारो मिलंदो आहे। वण लॻाइणु हिकु ज़रूरी कमु आहे। इहो पर्यावरण ऐं मानव जीवन ॿिन्ही जे लाइ महत्वपूर्ण आहे। असांखे वधीक में वधीक वण लॻाइणु घुरिजनि ऐं उन्हनि जी देखभाल बि करणु घुरिजे, जीअं असां हिकु स्वस्थ ऐं खु़शहाल भविष्य सुनिश्चित करे सघूं। साथियूं असां ॾिसूं था त अॼुकल्ह घणेई संस्थाऊं इन बारे में कम बि करे रहियूं आहिनि, जीअं त घणेई आयोजन हलाईंदा आहिनि। हिकु वण माउ जे नाले ते, हिकु वण देश जे नाले ते, हिकु वण समाज जे नाले ते। इहा तमामु सुहिणी ॻाल्हि आहे त अॼु जी पीढ़ी वण लॻाइण जे प्रति जागरूक।

आहे ऐं इहो निश्चित रूप सां असांजे सुठे भविष्य जी पहल आहे। इन सां असांखे भविष्य में बि सुठी जलवायु, सुठो पाणी ऐं सुठो पर्यावरण मिली सघंदो। इहा हिकु सुठी पहल आहे अॼु जे युवा पीढ़ीअ जे पारां। असां बि इन आयोजन जो हिकु हिसो ठहूं। रुगो इन्हनि कार्यक्रमनि खे ॾिसी करे ख़ुशि न थियूं, बल्कि कोशिशि कयूं त असां बि इन में पूरी पूरी भागीदारी वठी सघूं ऐं वण लॻाइण में पंहिंजो सहयोग ॾेई सघूं।

साथियों, ही गीत गायो हो महेश चंदर ऐं सरोज रामचंदानी। हाणे अॻियां वधंदासीं अॼु जी ॿी ॼाण पासे। विश्व जनसंख्या दिवस इहो हिकु अहिड़ो ॾींहुं या कार्यक्रम आहे जेको हर साल 11 जुलाई ते मल्हायो वेंदो आहे। इन जो मूल उद्देश्य जनसंख्या सां जुड़ियल समस्याऊं ऐं पूरे विश्व में इन जे प्रति जागरूकता आणणु आहे। इहो आयोजन 1999 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जी गवर्निंग काउंसिलिंग पारां शुरू कयो वियो हो। जनसंख्या वृद्धि अॼु जे समय जी हिकु वॾी चुनौती आहे।

0: जी, वार्ता जो विषय बि इन सां ई जुड़ियल आहे, जनसंख्या वृद्धिअ जे करे चुनौतियूं ऐं उन्हनि जो समाधान। अॼु असां सां गॾु वार्ताकार आहिनि भेण किरण वाधवानी जी। अचो त ॿुधूं था इन्हनि खां अॼु जी वार्ता ते ॼाण।
1: साथियूं, सभ खां पहिरीं मां किरण वाधवानी तव्हांखे सिक ऐं प्यार भरियो जय झूलेलाल थी चवां। अॼु जो असांजो विषय आहे जनसंख्या वृद्धि चुनौतियूं ऐं समाधान। त अचो त असीं हिन वार्ता खे ॿुधूं। जनसंख्या हर देश जी प्रगतिअ जो संकेत ॾींदी आहे, पर जेकॾहिं इहा ई जनसंख्या नियंत्रण खां ॿाहिरि थी वेंदी आहे त देश जे विकास जे लाइ हिकु गंभीर समस्या थी वेंदी आहे। भारत जहिड़े विकासशील देश लाइ जनसंख्या वृद्धि हिकु जटिल ऐं बहुआयामी चुनौती ठही वई आहे। भारत जे विश्व जो ॿियों सभिनि खां वधीक जनसंख्या वारो देश आहे ऐं इहो अनुमान आहे त ईंदड़नि सालनि में भारत चीन खे बि पुठियां छॾींदो। त इन्हीअ करे इहो ॾाढो ज़रूरी आहे त असां जनसंख्या वृद्धिअ खां थींदड़ समस्याउनि खां बचण असांजे लाइ उत्तम आहे। जनसंख्या वृद्धिअ खे पूरीअ तरह रोकणु सवलो त संभव आहे ई कोन, पर जनसंख्या खे नियंत्रण ऐं संतुलित करणु ज़रूरु संभव आहे। इन जे लाइ ज़रूरी आहे त सरकार, समाज ऐं समाज जो रहंदड़ हर माण्हू पंहिंजी भूमिका ज़िमेदारीअ सां निभाए। इहो हर माण्हूअ जो फ़र्ज़ु आहे जेसी ताईं शिक्षा, स्वास्थ्य ऐं जागरूकता खे बढ़ावो न ॾिनो वेंदो तेसी ताईं जनसंख्या वृद्धिअ खे रोकणु मुश्किल ई न पर नामुमकिन बि आहे। असांखे इहो सम्झणु घुर्जे नंढो परिवार सुखी परिवार नारो जेको आहे सिर्फ़ हिकु स्लोगन ई कोन्हे, बल्कि हिकु विकसित समाज जी आधारशिला पिणु आहे। जेकॾहिं असीं हाणे इहो निर्णय न वठंदासीं त सुभाणे हिकु सुरक्षित, संतुलित ऐं विकसित भारत जी कल्पना साकार न थी सघंदी आहे। चुनौतियूं ऐं समाधान। जनसंख्या वृद्धि हिकु ॾाढी वॾी जटिल समस्या आहे जंहिंजा घणेई कारण बि आहिनि ऐं परिणाम बि आहिनि। उन्हीअ जे समाधाननि जे लाइ शिक्षा ऐं स्वास्थ्य सेवाउनि में सुधार ऐं लैंगिक समानता जहिड़ा कम ज़रूरी आहिनि। जीअं त स्वास्थ्य सेवाउनि में वाधारो करणु, वधंदड़ जनसंख्या जे करे ग़रीबी बि वधंदी आहे ऐं ग़रीबी वधण सां बेरोज़गारी पिणु वधंदी आहे। इहा ग़रीबी ख़ासि करे विकसित देशनि ते ई पंहिंजो असर छॾींदी आहे। स्वास्थ्य सेवाउनि जी गुणवत्ता में कमी ऐं गिरावट बि अची सघे थी ऐं इन जा स्वास्थ्य जी सेवाउनि ते दॿाउ बि पवंदा आहिनि। शिक्षा जी गुणवत्ता में कमी। जीअं जीअं जनसंख्या वधे थी तीअं तीअं शिक्षा जी प्रणाली ते बि उनजो घणेई असर पवे थो। जनसंख्या अगरि वधंदी त सभिनि खे सुठी शिक्षा ॾियणु ॾुखियो थींदो ऐं शिक्षा जी गुणवत्ता बि घटिबी। जागरूकता जी बि कमी। जनसंख्या वृद्धिअ जे ख़तरनि ऐं उन्हनि जे समाधाननि जे बारे में जागरूकता जो प्रचार ऐं प्रसार पिणु सुठे रूप में असांखे करणु घुर्जे ऐं उन्हनि उपायनि खे लागू करे जनसंख्या वृद्धिअ जी चुनौतियुनि जो समाधान करणु पिणु सरल थी वेंदो ऐं हिकु बहितर ऐं उज्जवल भविष्य पिणु ठाहे सघिजे थो। हाणे असां समाधाननि जे बारे में चर्चा कंदासीं। परिवार नियोजन। समाज में परिवार नियोजन जो कार्यक्रम जेको आहे उन खे बढ़ावो ॾियणु घुर्जे। नंढनि परिवारनि में रहण जी हिदायत पिणु सभिनि खे ॾियणु घुर्जे। गांवनि ऐं शहरनि में परिवार नियोजन जा कैंप पिणु लॻाया वञनि। इहो ॾाढो सुठो तरीक़ो आहे। कैंपनि जे ज़रिए सभु लाभ वठंदा ऐं जनसंख्या वृद्धिअ खे पिणु कंट्रोल में कयो वेंदो। महिला शिक्षा ते ज़ोर, ख़ासि करे युवा महिलाउनि ऐं महिलाउनि जी शिक्षा ते ज़ोर ॾिनो वञे, मतिलबु छोकिरियुनि जी शिक्षा ते इहो पाठ पढ़ाइणु घुरिजे। ऐं महिलाऊं अगरि वधीक मां वधीक शिक्षित हूंदियूं त प्रजनन जी दर में बि कमी थी सघे थी ऐं जनसंख्या जे वाधारे ते कंट्रोल बि करे सघिजे थो। महिला शिक्षा जो ॾाढो रोल जनसंख्या वृद्धिअ में अदा थींदो आहे। आर्थिक अवसर, महिलाउनि खे जीवन यापन लाइ आर्थिक अवसर पिणु प्रदान करणु घुरिजनि ऐं हुननि खे पंहिंजे जीवन ते नियंत्रण रखण जी मदद बि करणु घुरिजे। इन सां बि जनसंख्या वृद्धिअ ते कमी थी सघे थी। स्वास्थ्य सेवाउनि खे बहितर करणु, अगरि स्वास्थ्य जी सेवाउनि में बहितर कबो त परिवार नियोजन सां गॾोगॾु मात्र एवं शिशु दर बि घटिबी। अगरि उन्हनि खे सुठियूं सेवाऊं ॾिनियूं वेंदियूं ऐं उन्हनि खे प्रेरित कयो वञिबो त उन जो लाभ बि असांखे मिली सघिबो। लैंगिक समानता, महिलाउनि खे सशक्त ठाहिणु घुरिजे ऐं महिलाउनि खे सामाजिक ऐं आर्थिक मसलनि में फ़ैसिला वठण जी छूट बि ॾिनी वञे। हू वधीक सम्झी सघंदी इन सां, अगरि हू पंहिंजा फ़ैसिला सामाजिक ऐं आर्थिक स्तर ते पाण खणंदियूं त लैंगिक समानता ते ज़ोर पवंदो ऐं जनसंख्या जी दर पिणु घटिबी। पर्यावरण अनुकूल शहरी नियोजन, साफ़ पाणी ऐं किफ़ायती दर ते आवास मुहैया करणु घुरिजे। हुननि खे सभु सुविधाऊं हुजनि त इन जनसंख्या ते वृद्धिअ खे असां रोके सघजूं था। दीर्घकालिक विकास लाइ टिकाऊ योजनाऊं ऐं समाधान में निवेश करणु घुरिजे। टिकाऊ ऐं बुनियादी ढांचे में अगरि असां निवेश कंदासीं त ॾाढो ज़रूरी थींदो ऐं जनसंख्या वृद्धिअ खे रोकण में असांखे पिणु सवलाई थींदी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वठणु घुरिजे। संयुक्त राष्ट्र संघ जहिड़नि वैश्विक मंचनि जे माध्यमनि सां सतत विकास ॾे ध्यानु ॾियणु घुरिजे ऐं उन्हनि जे लक्षणनि ते पहुचण जी कोशिश बि असांखे पिणु करणु घुरिजे। आर्थिक विकास ॾे बि ध्यानु ॾियणु घुरिजे। शिक्षा ऐं कौशल विकास ते सभिनीनि जो ध्यानु केंद्रित करणु घुरिजे ऐं आर्थिक रूप सां सभिनि खे सशक्त ठाहिणु घुरिजे, तब असांजी इहा समस्या हल थी वेंदी। शिक्षा खे प्राथमिकता ॾिजे। अगरि शिक्षा खे प्राथमिकता ॾिनी वेंदी त बि असांखे इन्हनि समस्याउनि खां मुक्ति मिली सघंदी। जो शिक्षित माण्हू आहे उहो सही निर्णय वठी सघंदो आहे। जनसंख्या वृद्धिअ जूं चुनौतियूं, हाणे असीं चुनौतियुनि खे ॿुधूं था। वधंदड़ जनसंख्या जे करे रोटी पाणी ऐं ऊर्जा सां गॾो गॾु अटे अझे ऐं लटे जी समस्या पिणु खड़ी थी वेंदी आहे, जंहिं करे जीवन यापन करण में जे संसाधन खे उन्हनि कमियुनि जो सामनो पिणु करणो पवंदो आहे। पर्यावरण जो प्रदूषण, असीं सभु ॼाणूं था जनसंख्या जे वाधारे करे पर्यावरण बि प्रदूषित थींदो आहे। जेतिरा वधीक माण्हू ऐं जेतिरी वधीक जनसंख्या हूंदी, ओतिरो ई वधीक कचिरो ऐं गंदगी बि हूंदी, पर्यावरण बि प्रदूषित थींदो ऐं ॾाढी गंदगी बि थींदी। ऐं इन्हीअ चुनौतीअ जो बि असांखे ई सामनो करणो पवंदो। हाणे असीं पहुचूं था इन जे निष्कर्ष ते, त निष्कर्ष छा थो निकिरे। जनसंख्या वृद्धि हिकु ॾाढी वॾी जटिल सामाजिक ऐं आर्थिक समस्या आहे, जंहिंजो समाधान सिर्फ़ कानूननि सां ई न थींदो, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य ऐं जागरूकता जे सामूहिक प्रयासनि सां ई संभव थी सघे थो। यदि संभव हूंदे प्रभावी कम न कया वया ता

0: प्राकृतिक संसाधनन जी कमी ऐं जीवन स्तर में गिरावट जहिड़ियूं गंभीर स्थितियूं पैदा थियण में देर न लॻंदी, जंहिंजो सिधो असर असांजे मथां थींदो आहे। जय झूलेलाल।
1: जनसंख्या वृद्धि चुनौतियूं ऐं समाधान, अॼु जी इहा वार्ता हुई। वार्ता पेश करे रहिया हुया भेण किरन वाधवानी जी। तमामु सुहिणी ऐं सवले अखरनि में ॼाण जनसंख्या वृद्धि जे प्रति। हाणे अचो साथियूं, ॿुधूं था ही गीत।

0: ही गीत गायो हो कमला केसवाणी ए संगीत हो सी अर्जुन जो।
1: साथियों हिन गीत का पो जेका जाना है सा है अल्पसंख्यकन जे लाए सरकारी योजनाओं जे बारे में। अल्पसंख्यकन जे लाए भारत सरकार घणई योजनाओं हलाए रही आहे, जीअं त पीएम विकास योजना जेका जुड़ियल आहे कौशल ऐं उद्यमता सां, प्री व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पढ़ण वारे ॿारनि जे लाइ मैट्रिक करण जे लाइ छात्रवृत्ति सां जुड़ियल आहे हीअ सरकारी योजना, ऐं ऋण योजनाऊं याने जेके लोन तो मिले कर्जो थी ॾिए सरकार उन्हनि सां जेका जुड़ियल योजना आहे सा आहे NMDFC। इन तरीक़े सां घणेई योजनाऊं सरकार पारां अल्पसंख्यकनि जे उद्धार जे लाइ, जीवन में सुधार जे लाइ, शिक्षा ऐं रोज़गार खे वधाइण जे लाइ हली रहियूं आहिनि। अल्पसंख्यक वर्ग पंहिंजा ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करे संबंधित कार्यालय मां इन्हनि योजनाउनि जो फ़ाइदो खणी रहिया आहिनि ऐं अॻिते बि खणी सघनि था। साथियों सरकारी योजनाउनि सां ही हिकु जुड़ियल ॿी नंढड़ी ॼाण आहे जंहिंजो नालो आहे विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG RAM। दरअसल दोस्तों जेका मनरेगा नाले सां सरकारी योजना आहे उन जी ही जॻहि ते 1 जुलाई 2026 खां वठी इन VBG RAM योजना स्थान वरितो आहे। इन में मज़दूरनि जे लाइ साल में 125 ॾींहनि जी मज़दूरीअ जी गारंटी ॾिनी वेंदी आहे। साथियों इन सरकारी योजनाउनि जी ॼाण खां पोइ अचो त ॿुधूं था हिकिड़ो ई मज़ाकिया ॿारनि जो गीत।

साथियों ही गीत गायो भगवंती नावाणी ए साथियों ए इन गीत सा गड ही अज जे कार्यक्रम जो समय भी पूरो थी रहयो आहे। इजाजत दियो पेंजे रेडियो साथी मनोज सोनी पंजवाणी के वरी मिलंदा से सब जो भलो।

0: अभी आप सुन रहे थे सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है बुरहानपुर जिले की चिट्ठी। आलेख है गणेश कुमार बाविस्कर का। वाचन स्वर है अभिषेक कटियार के।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुरहानपुर जिले की चिट्ठी। आलेख गणेश कुमार बाविस्कर का है। वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बुरहानपुर में ताप्ती नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार मूसलाधार बारिश से नदी उफान पर है और राजघाट के 3 शिव मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। SDRF की टीमें घाटों पर तैनात हैं, जबकि नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। ताप्ती के तेज बहाव को देखते हुए गुजरात के सूरत प्रशासन को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। बुरहानपुर में साइबर ठगों की चाल नाकाम करने के लिए पुलिस का सेफ क्लिक 2.0 अभियान तेज हो गया है। बीते दिनों शाही जामा मस्जिद परिसर में मुस्लिम समाज के बीच पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट, फर्जी कॉल, OTP, UPI और KYC फ्रॉड के नए हथकंडों के प्रति सावधान किया। पैम्फलेट बांटे गए और साइबर शपथ दिलाई गई और चेतावनी दी गई कि अनजान लिंक पर एक क्लिक से बैंक खाता खाली हो सकता है। किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 पर शिकायत करने की अपील की गई। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन शुक्रवार को पूरी तरह से भक्तिमय रंग में रंगा दिखाई दिया, जब 191 वरिष्ठ श्रद्धालुओं का जत्था जय माता दी के गगनभेदी जयघोष के बीच वैष्णो देवी धाम के लिए रवाना हुआ। विधायक अर्चना चिटनिस और महापौर माधुरी पटेल ने श्रद्धालुओं को पुष्पमाला पहनाकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 3 से 8 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा में भोजन, आवास, चिकित्सा और सुरक्षा की सभी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन ने सुनिश्चित की हैं। बुरहानपुर पहुंचे निमाड़ रेंज के DIG सिद्धार्थ बहुगुणा ने बीते दिनों समीक्षा बैठक में लंबित मामलों, महिला अपराध, साइबर फ्रॉड, संपत्ति अपराध और कानून व्यवस्था पर सख्त निर्देश दिए। त्योहारों के दौरान बेहतर पुलिसिंग पर बुरहानपुर पुलिस की सराहना की। बैठक में थाना प्रभारियों को ई विवेचना के लिए टैबलेट वितरित किए गए, जिससे जाँच प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत बुरहानपुर जिले के 163 हितग्राही परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की। सिंगल क्लिक के जरिए बीते दिनों 3,46,00,000 रुपए की अनुग्रह सहायता राशि सीधे DBT से बैंक खातों में भेजी गई, जिसमें सामान्य मृत्यु के 153 और दुर्घटना मृत्यु के 10 प्रकरण शामिल हैं। जिला मुख्यालय के NIC कक्ष में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया, जहाँ जनप्रतिनिधि, अधिकारी और हितग्राही मौजूद रहे। बुरहानपुर के ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जरूरतमंद परिवारों को सपनों के पंख दे रही है। पात्र हितग्राहियों को 1.20 लाख रुपए की सहायता और मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी मिल रही है, जिससे पक्के मकानों का निर्माण तेजी से हो रहा है। जिले की समीक्षा बैठक में बीते दिनों स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत पर अधिकारियों से जवाब तलब किया गया। PM किसान सम्मान निधि, EKYC, आधार अपडेट और फार्मर रजिस्ट्री की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। वहीं PWD के सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा गया कि तय समय सीमा में सभी निर्माण कार्य हर हाल में पूरे किए जाएं। बुरहानपुर जिले में वट सावित्री पूर्णिमा के अवसर पर बीते दिनों सुहागिन महिलाओं ने पूरी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ व्रत रखा। शाहपुर में महिलाएं पारंपरिक श्रृंगार कर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची और विधि विधान से वट पूजन कर पति की बरगद जैसी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। पूजा के बाद महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। इस दौरान भक्ति परंपरा और सुहाग का अनुपम संगम देखने को मिला। बुरहानपुर में भाजपा के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्मरण पखवाड़े के तहत स्वामी परमानंद गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्रवादी विचारों, शिक्षा, योगदान और राष्ट्रहित में उनके संघर्ष पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटनिस, विधायक मंजू दादू, जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने सहित जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीते दिनों कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इस मौके पर सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए जागरूक किया जाए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिले में कृषि चौपालों का आयोजन कर खेती की आधुनिक व प्राकृतिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही उन्नत बीजों की थैलियों की आकर्षक ब्रांडिंग और व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया। बैठक में DAP, बीज, उर्वरक उपलब्धता और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की गई। बुरहानपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
0: अभी आप सुन रहे थे बुरहानपुर जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण।
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आपके अपनी पसंद की फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म इम्तिहान से। फैज़ अनवर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाए हैं अनु मलिक ने, आवाज़ कुमार सानू की। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता साथी अनिल कुमार घोटके, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोटके, वैष्णवी घोटके, गायत्री घोटके, यज्ञेश घोटके, एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अम्भई तहसील सिल्लोड़ जिला छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से हमें ये लिखते हैं मैसेज। वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्विनी चौहान, माई इंदुरकर, बेबी शौर्य, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान, किवले गांव पुणे से अंकिता कांबले सौदापुरकर, विजय कांबले सौदापुरकर, बेबी शौर्य, श्रेयस कांबले, सहावर रोड गुंज डुंडवारा से मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी, शामसुन कमर राही और गंगोला दातागंज जिला बदायूं से इसरत खान, सायरा बेगम, रहूब खान, सावरीन बेगम, शाहबाज खान, शैफ खान, ईशान खान, आज़म खान और अरहान खान। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म इम्तिहान से।

श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत। सुनने की फरमाइश की है हमारे राजकोट गुजरात से श्रोता साथी रश्मि झरना भरत कुमार। महाराष्ट्र से जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभाणी से लिखते हैं हमें रुपेश संघई महेश संघई प्रगेश संघई प्रीतेश संघई और पूरा संघई परिवार। शमशूल कमर राही शाहीन फातिमा अदनान खान फैजान खान अनु खान उस्मान अंसारी कलीम अंसारी गुंजंडवारा से। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल कमला रानी गीतिका खोरवाल भानु प्रकाश। बहादुरगंज गांजीपुर से आज़ाद अली अनवर रिजवान परवीन

अब्दुल्ला आज़ाद। अस्तुपुरा ज़िला मऊ से मज़हर अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म बाजीगर से। गौहर कानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है अनु मलिक ने। आवाज़ें हैं विनोद राठौर और अलका याग्निक की।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं अपने ही पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का। आपके व्हाट्सएप मैसेज हम सब पढ़ रहे हैं और आपके फरमाइशी गीत आपको सुनवा रहे हैं। इसी क्रम में सुन लेते हैं सुरई वाड़ी छत्रपति संभाजी नगर से हमारे श्रोता मित्र प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद, विराज, स्वीट, अंशुमन, बेबी, ओवी, आप सबकी पसंद का ये गीत। गुलाम रोड, हरगोविंद नगर, नवा शहर, सुरिंदर संधू, अनीता, रोहित, रितेश, शिखा, प्रतीशा और मैक्स और समस्त संधू परिवार। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। और आपका बहुत ही प्यारा संदेश हम तक पहुंच गया है। आपने लिखा है, खुश रहो, खुशियां बांटो। आपको भी यही शुभकामनाएं कि आप सभी खुश रहें। और फिलहाल सुनते रहें हमारे कार्यक्रम से ये गीत जो हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर। सुनते हैं फिल्म साजन का गीत।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं अपनी पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का। कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त स्मिता। सुनते हैं अगला गीत फिल्म दुश्मन से। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है उत्तम सिंह ने, आवाज़ें लता मंगेशकर और उदित नारायण की। गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता साथी सारिमपुर बक्सर से राज SD अंसारी और आसमा खातून अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य, डुमराव बिहार से डॉक्टर W अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरित रमेश साहू, दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु खुराना। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आशिकी से। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाए हैं नदीम श्रवण ने, आवाज़ कुमार सानू की। इस गीत को सुनना चाहते हैं गगनदीप थांदी, चित्रा कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी। ये हमें मैसेज लिखते हैं टोरोवाल जिला नवा शहर पंजाब से। मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहम अहद, मिफ्रा नवाज़, बेबी चाहत और सादिया। दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से। सीता समस्तीपुर बिहार से। मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से। सोनम सिंह, अनामिका सिंह। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म आशिकी से।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म दिल का क्या कसूर से। आवाज़ें हैं कुमार सानू और आशा भोसले की, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता साथी लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन, PR जैन, नांदेड़ से प्रकाश जैन, कोयते वस्ती पुनावले से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, साईशा सोनवने, श्री गणेश अविका आर्ट श्रीरामपुर से डी अशोक कुंभार, अविका जीविका सानू कुंभार, अर्चना कुंभार। आइए सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ में।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं अपने ही पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे सुनने की फरमाइश की है प्रबल्या तोमर, राधा तोमर, शशि चौहान और सपना घाटे। इन्होंने फरमाइश की है अपने ही जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर।

श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म सैनिक से। आवाज़ें साधना सरगम और कुमार सानू की, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता साथी पटेल नगर मलोट पंजाब से, डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषभ वर्मा, मालवा रेडियो श्रोता संघ, प्रमीला गंज, अलोटा जिला रतलाम मध्य प्रदेश से, ग्राम संदलपुर आंत्री से कालीचरण यादव, दीपक कुमार यादव, चांदनी देवी और उर्मिला देवी, मुरार ग्वालियर से गुड्डू मिश्रा और निशा मिश्रा। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म सैनिक से।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शिवपुरी में अदानी समूह द्वारा स्थापित किए जा रहे लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस रक्षा संयंत्र से विकास को गति मिलेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राजस्थान में कल इथेनॉल मामले में कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है और सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रख्यात लोक कलाकार और पंडवानी गायिका तीजनबाई का आज तड़के रायपुर में निधन हो गया। महान लोक गायिका ने पंडवानी को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। उन्हें 1987 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण और 2019 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भोपाल के भारत भवन में गायन पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस पर्व में आज शाम 7 बजे से मंजरी असनारे और ऋषि मिश्र की जुगलबंदी देखने को मिलेगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: दिल से निकली है जो बात वो गानों में ढल जाती है, और जब जुड़ते हैं आप और हम तो महफिल खुद ब खुद बन जाती है। श्रोताओं नमस्कार, इस सुरीले सफर की हम सफर हूँ मैं आकांक्षा आपके साथ। स्वागत है आप सभी का अपने मनपसंद कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। श्रोताओं संगीत वो जादुई डोर है जो सीधे दिल को छूती है। कभी कोई धुन हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आती है तो कभी कोई पुराना नगमा पुरानी यादों के गलियारों में ले जाता है। लेकिन ये सफर तब तक अधूरा है जब तक इसमें आपकी पसंद और आपकी आवाज शामिल ना हो। सुर हमारे, आवाज आपकी और बातें दिल की। जी हाँ, तो फोन उठाइए। हमारा फोन नंबर है 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। तो अपने कॉल्स का सिलसिला शुरू कीजिए, हम हैं आपके साथ आपसे बात करने के लिए। आइए मिलते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो
2: जी दीदी, नमस्कार।
1: नमस्ते, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। हमारी बात किन से हो रही है?
2: सेवड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश से लोकेंद्र गुर्जर से।
1: लोकेंद्र जी कैसे हैं आप?
2: जी दीदी बढ़िया है।
1: मौसम कैसा है वहाँ?
2: मौसम दीदी कल बारिश हुई थी सुबह के टाइम 10 बजे पे, तो अच्छी बारिश हुई थी
1: जी।
2: और अभी उमस थी तो बारिश से जो कि उमस थी तो गर्मियों से राहत मिली है, और थोड़ी बारिश हुई थी, बादल छाए हैं, हो सकती है कई बारिश हो सकती है, माने ज्यादा उमस भी है, तो बस हम तो यही आशा करेंगे मैम के पानी बरस जाए, खेती बाड़ी का एक कार्यक्रम है वो चालू हो जाए।
1: जी बहुत जरूरी है खेती के लिए, हम सभी के लिए पानी का होना। आपका दिन कैसा चल रहा है अभी?
2: बिल्कुल बढ़िया चल रहा है दीदी, अपन कृषक हूँ तो खेती बाड़ी से जुड़ा हूँ, तो खेती बाड़ी का काम चल रहा है, धान की खेती की तैयारी चल रही है।

0: दी थी और बस धान लगने वाली है दीदी, 8-10 दिन बाद श्री धान लगेगी।
1: आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
0: आज दीदी फिल्म का नाम है सिंदूर, उसका एक गीत है, नाम सारे भूल जाने लगे, वक्त बे वक्त तुम याद आने लगे।
1: इस गीत से जुड़ी कोई याद है, कोई बात है?
0: नहीं दीदी, क्या है दीदी, 19 के जो गीत है
1: जी
0: मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे शब्बीर कुमार हुए, मोहम्मद अजीज हुई
1: जी,
0: तो इनके गीत बहुत अच्छे लगते
1: हैं। बहुत आपकी पसंद बहुत अच्छी है। वैसे ये गीत मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर जी ने गाया है। लीजिए सुनिए तो अपनी पसंद का ये गीत। नमस्ते,
0: धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन जुड़े हैं, क्या हम जान सकते हैं?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बात कर रहा हूँ राजस्थान, गांव का नाम अंतरल बुगला।
0: पूरन जी, वहाँ मौसम कैसा है राजस्थान में?
1: बस मैडम बढ़िया है, यहाँ मौसम बादल छा रहे और रात को बारिश हुई थी मैडम थोड़ी बहुत, खेतों में भी बिजाई चालू हो गई है।
0: क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम हम खेती बाड़ी करते हैं, कल खेतों में भी बिजाई हो गई, खेतों में बुआया, खेतों में वो करा दिया, खेतों में नाच पड़ गया मैडम बाजरा।
0: अच्छा, अन्नदाता हैं आप हमारे, अपना ध्यान रखिएगा, फसलों का ध्यान रखिएगा। और आज बताइए आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है घरवाली और बारवाली और उसमें एक गाना गाने के बोले तारा रा रा रा रा ऐसा कुछ गाना है।
0: तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: संगीत से जुड़े आपके मनपसंद फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किन से हमारी बात हो रही है?
1: बात कर रही हूँ काव्या।
0: काव्या कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: मैं सतना जिले से बात कर
0: सतना से। काव्या क्या करती हैं आप?
1: मैं स्टडी करती हूँ।
0: आवाज लग रही है आपकी कि आप स्टूडेंट हैं। क्या पढ़ती हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं या कॉलेज में पढ़ती हैं?
1: मेरा इस साल 12th है।
0: अरे बोर्ड एग्जाम जी, तो कैसी तैयारी चल रही है आपकी?
1: मैम तैयारी तो सही है, बस मैंने आज फर्स्ट बारी कॉल किया है।
0: कॉल किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कॉल भी लग गया तो आपको तो खुशी बहुत हो रही होगी।
1: बहुत खुशी हो रही है। आप कौन बात कर रही हैं?
0: मैं आकांक्षा बोल रही हूँ। आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: मूवी का नाम है गब्बर इज बैक।
0: गब्बर इज बैक जी, इस फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: तेरी मेरी कहानी बारिशों का पानी।
0: तो बारिश के मौसम के लिए ये गीत सुनना चाहती हैं या इस गीत से जुड़ी कोई आपकी याद है?
1: बरसात का मौसम आ गया इसलिए।
0: ये गीत आपको पसंद है? ठीक है। काव्या जी, किस सब्जेक्ट से आप 12th कर रही हैं? क्या लिया है आपने?
1: मैं बायो।
0: बायोलॉजी साइंस लिया है आपने। डॉक्टर बनेंगी?
1: जी।
0: ठीक है, तो आपके आगे भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से मेहनत कीजिएगा और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, ये हमारा विश्वास है।
1: आपने Thank you, ma'am.
0: आपने फोन किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है, अपना परिचय दीजिए।
1: ओम प्रकाश प्रजापति बोल रहा हूँ मैडम।
0: ओम प्रकाश प्रजापति जी, कहाँ से बात हो रही है आपसे हमारी?
1: जिला खरगोन, तहसील भगवानपुरा, ग्राम पंचायत दुलकोट से बात कर रहा हूँ।
0: खरगोन मध्य प्रदेश।
1: जी मैडम।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैडम। पानी बारिश हो रही है, आज रात भर भी हो गई और अभी भी बारिश चल रही है हमारे यहाँ पे।
0: बारिश का आनंद ले रहे हैं?
1: जी मैडम, घर पे ही।
0: अच्छा, आज क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: गाना सुना दिए जी, ब्लैक मेल फिल्म का, पल पल दिल के पास।
0: ठीक है, लीजिए तो अपनी पसंद पर सुनिए फिल्म ब्लैक मेल का ये गीत। नमस्ते
1: जी मैडम।

0: हेलो नमस्कार,
1: कालीचरण यादव ग्राम संदलपुरात्री से।
0: कालीचरण यादव जी,
1: जी
0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: आप कौन बोल रही हैं?
0: मैं आकांक्षा बोल रही हूँ।
1: मेरे को गाना सुनना है।
0: गाना सुनने के लिए तो आपने फोन किया है, गाना तो
1: जी
0: हम
1: जी
0: आपको सुनवाएंगे ही क्योंकि आज कार्यक्रम यही है। पहले आपसे बात तो कर लें हम।
1: हाँ बात कर लो आप।
0: जी कैसे हैं आप?
1: अच्छे मैडम,
0: अच्छे हैं। कैसा समय बीत रहा है इस समय आपका?
1: समय बीत रहा, गर्मी बहुत पड़ रही है मैडम,
0: बारिश का मौसम है? बारिश नहीं हो रही है आपके यहाँ?
1: बारिश बहुत हो रही है, ग्वालियर में बहुत बारिश हो रही है।
0: अच्छा, तो मौसम तो सुहावना होगा ना कालीचरण जी।
1: गर्मी जाना पड़ रही है, मौसम मौसम ठंडक है पर गर्मी जाना है।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: मैं घर पे पान की खेती करता हूँ, गाँव में रहता हूँ संदलपुर पास गाँव मैडम मेरा, ग्वालियर पास में
0: अच्छा,
1: पान की खेती करता हूँ, देसी पान होता हमारे गाँव में। जी,
0: तो पान के शौकीन लोगों को, लोगों तक अच्छे अच्छे पान भिजवाते हैं आप?
1: हाँ खिला दे पान उनको।
0: हाँ जी। अच्छा, आज पसंद बताएं अपनी क्या सुनना चाहते हैं?
1: जीवन मृत्यु पिक्चर का गाना सुनवाना, दिल में सितारों का आंगन हो।
0: आपने हमें फोन किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो नमस्ते, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। किन से हमारी बात हो रही है?
1: हाँ जी, नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
0: लोकेंद्र जी?
1: जी मैडम।
0: उज्जैन से, कैसे हैं आप?
1: बस बिल्कुल मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और आकाशवाणी भोपाल से जुड़े हुए रहते हैं। और हम तो भोपाल आकाशवाणी को आज से नहीं करीब 25-30 सालों से सुन रहे हैं मैडम।
0: तो बस हम चाहते हैं ये आपका साथ ऐसे ही बना रहे, आप यूं ही हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहें।
1: जी मैडम जी, अब तो अच्छा लगता है, अब तो आकाशवाणी भोपाल DTH के माध्यम से भी सुन सकते हैं, मोबाइल ऐप के माध्यम से सुन सकते हैं। पहले हम रेडियो पर सुनते थे पुराने दौर में
0: जी,
1: अब रेडियो का धीरे धीरे जैसे खैर चलन तो बहुत है, पर अब रेडियो पे कम सुनाई देते हैं। अब डिजिटल जो प्लेटफॉर्म आ गए हैं, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी आपके प्रोग्राम की मतलब जो अपडेट मिलती रहती है फेसबुक पर हमें
0: जी,
1: प्रोग्राम की।
0: डिजिटलाइजेशन होने के कारण देखिए कितना फायदा है कि दूर दूर के श्रोता हमसे जुड़ जाते हैं।
1: जी जी मैडम जी, और अच्छा लगता है, कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपके, फोन करे गीत सुने वह भी अच्छा लगता है, और ये फोन वाले प्रोग्राम हैं और जो भी परिचर्चा आती है सभी प्रोग्राम सुनते हैं, अच्छे लगते हैं मैडम।
0: आपका पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है लोकेंद्र जी?
1: मैडम जी अधिकतर तो मैं फोन वाले प्रोग्राम सुनता हूँ, और एक बात, आपकी गीत हमारे वो अच्छा लगता है क्योंकि उसमें विषय अलग अलग विषय आते हैं ना
0: जी,
1: उस पर परिचर्चा होती है, सभी श्रोता मित्रों की विचार सुनने
0: जानने को मिल
1: मिलते हैं,
0: जाते हैं जी।
1: इसमें बात तो श्रोता मित्रों की रहती है और गीत आपके रहते हैं।
0: हाँ जी, तो मतलब आपको फोन इन प्रोग्राम ही ज्यादा पसंद है।
1: जी जी मैडम जी बिल्कुल
0: जी, तो आज आप क्या सुनना चाहते हैं बताइए।
1: ये गाना है मैडम जी, फिल्म का नाम है नसीब, ये नसीब गोविंदा वाली है।
0: अच्छा,
1: हाँ इसमें गाना है शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं।
0: तो ये सैड सॉन्ग क्यों सुनना चाहते हैं, इसके पीछे की कोई वजह है?
1: मैडम जी बहुत जगह मैंने ये गीत की चॉइस की है पर मुझे कहीं गीत मिला नहीं, पर मैंने आज सोचा कि भोपाल आकाशवाणी पर फोन लगेगा तो ये गीत की चॉइस करूंगा।
0: अच्छा,
1: और ये तो कुछ दोस्त भी है मेरे।
0: हाँ जी, नाम लीजिए उनका बताइए।
1: राम बाबू मालवी जी है भोपाल से, प्रेम सिंह जी है और भगवान सिंह जी है और शारदा प्रसाद जी।
0: ठीक है, तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, और साथ ही आपके सभी दोस्त भी इस गीत का आनंद लेंगे
1: जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्ते।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: हाँ नमस्ते मैम।
0: नमस्ते,
1: हम बोल रहे हैं पंडित शिवनारायण तिवारी सागर से।
0: शिव नारायण तिवारी जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है, मौसम बढ़िया है।
0: हाँ जी, मौसम तो बहुत बढ़िया है, तो मौसम का आनंद कैसे ले रहे हैं आप?
1: अरे बहुत बूंदाबांदी होती है, कभी अच्छी हवा चलने लगती है, बादल गरजता है, बिजली चमकती है।
0: जी, ऐसे में कभी आपको काम पे तो निकलना ही पड़ता है, फिर आप क्या करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल जाना पड़ता है।
0: जी, आज आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: आज सुनवाना आप बेताब फिल्म का बादल क्यों गरजता है।
0: मौसम से रिलेटेड गाना ही आज आप सुनना चाहते हैं?
1: जी
0: तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का फिल्म बेताब का ये गीत।
1: जी
0: नमस्ते।

0: नमस्ते, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फोन के उस पार कौन है, हमारी किन से बात हो रही है, अपने बारे में बताइए।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग,
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: रानू गुप्ता जी, आप नियमित श्रोता हैं हमारी, कैसी हैं आप?
1: कैसे हैं आप?
0: हम ठीक हैं, आप कैसी हैं?
1: हम भी अच्छे हैं, और आपसे बात हो रही है तो और ज्यादा अच्छे, क्योंकि आप ना हमारी पसंदीदा अनाउंसर में से एक है।
0: ओ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ सभी अनाउंसर्स आपकी पसंदीदा हैं, क्योंकि आपकी सभी से बात होती है और बहुत अच्छी बात होती है। रानू जी, मौसम कैसा है वहाँ?

0: देवास में?
1: आज सुबह से यहाँ बारिश हो रही है।
0: अच्छा, तो बारिश के इस मौसम में कुछ खास कर रही हैं आप?
1: कुछ खास तो बस शाम को एक शादी में जाना है इंदौर
0: जी,
1: तो बस उसी की तैयारियों में लगी हुई हूँ।
0: शाम की शादी की तैयारी अभी सवेरे से?
1: आज मतलब जो मेरी भांजी है उनकी शादी तो हो चुकी है बट रिसेप्शन है तो जाना है शाम को, बस उसी में लगी हुई हूँ।
0: ठीक है, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं बताइए?
1: मूवी का नाम है खट्टा मीठा और गाने के बोले आइला रे आइला, क्योंकि ये जून का महीना मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, मतलब एकदम हरियाली हरियाली छाती है।
0: हाँ, मौसम तो बहुत अच्छा है। ये गीत आपको क्यों पसंद है रानू जी?
1: थोड़ा डांस करने का मन कर रहा।
0: आहा, शाम को है भांजी का रिसेप्शन, उसकी तैयारी में डांस का मन कर रहा है आपका, हमें तो यही लग रहा है।
1: थैंक यू मैम।
0: रानू गुप्ता जी, आपने हमें फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्ते।
1: मैं तेजस्वी चंदवा मध्य प्रदेश से देवीदास वाली बोल रहा हूँ। फोन करे जी सुने?
0: कैसे हैं आप
1: हाँ बहुत बढ़िया हूँ मैडम जी। और यहाँ बहुत बारी मस्त बारिश हुई है, बढ़िया
0: जी?
1: खतरनाक।
0: खतरनाक?
1: हाँ बहुत मजा आ गया।
0: चलिए, ऐसे ही आनंद आप लीजिए इस मौसम का। आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: चलो सजना जहाँ तक घटा चले।
0: जी, ये गीत है मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का।
1: हाँ मैडम जी बड़ो मेरे हमदम मेरे दोस्त।
0: जी बिल्कुल, ये गीत आप तक पहुंच रहा है बस कुछ ही देर में। नमस्ते। श्रोताओं, वक्त का पहिया चलता रहता है और खूबसूरत लम्हे यादों में बदलते रहते हैं। बातें तो दिल की खत्म नहीं हुई, पर घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब हम आपसे अनुमति लें। जी हाँ, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आज का ये सुरीला सफ़र और आपकी प्यारी प्यारी बातें और लाजवाब गानों की फरमाइशें, सच मानिए आज का दिन आप सबने बेहद ख़ास बना दिया है। ऐसे ही बने रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति थी आकांक्षा की। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब से कुछ देर बाद शिवपुरी में अडानी समूह द्वारा स्थापित किए जा रहे लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत के रक्षा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 211 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का आज सुबह रायपुर के एम्स में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थीं और रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सरकार ने मूल्यों में स्थिरता के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित खरीद मूल्य से प्याज उत्पादक किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज ओंकारेश्वर और महेश्वर के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के दौरे पर हैं और प्रदेश में सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान के अंतर्गत जीआरपी भोपाल द्वारा कल 5 किलोमीटर साइबर जागरूकता मैराथन का आयोजन कर नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में व्यापक रूप से जागरूक किया गया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं इन श्रोताओं के पसंद का फिल्मी नगमा, जिसे हमने लिया आपकी कसम फिल्म से। आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं। आनंद बख्शी के बोलों को संगीतबद्ध किया राहुल देव बर्मन ने। सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा। बेमेतरा से ये पत्र आया सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी। मैंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामिनी वर्मा का। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है बिलहरी बड़खेड़ा कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, रामाधार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारीलाल बढ़ई, फेरन यादव, शेख मुनीर मंसूरी और ग्राम पहरूरा से ये पत्र आया राम कुमार लोधी और संजय पुरी का। इन श्रोताओं ने सुना चाहा है मनहर का गाया, निदा फाजली का लिखा, उषा खन्ना का संगीतबद्ध किया ये गाना, जिसे हमने लिया आप तो ऐसे ना थे फिल्म से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया प्रियंका पंचोलिया गुनगुन संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने इसी गीत की फरमाइश भेजी है।

सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा और साहिल ने। इनकी पसंद है सागर फिल्म का गीत, जिसे आवाज़ें दी किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

अभिनेत्री। लीजिए इस फिल्म का गीत सुनिए, लता मंगेशकर का गाया हुआ। मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना है, संगीत तैयार किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुना चाहा गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद परमानंद पंकज प्रमोद रोहित और मोहित ने। नेपाल पैलेस सागर से ये पत्र आया है, तिलक राणा मीना राणा मोनिका नूपुर ऋषिका और रॉबिन का।

लता मंगेशकर के आवाज़ में गाए मजरू सुल्तानपुरी के इस गीत को लिखे हुए संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म थी अभिनेत्री। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त करने की छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी भोपाल।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
2: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
3: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से HIV एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे HIV एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
2: हाँ भाई समझा।
3: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाए। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: कभी हंसा कर, कभी रुला कर, कभी कहानी बनकर, तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

0: रेनी सीजन को हम जरूर एंजॉय करें,
1: गर्मा गर्म पकौड़े खाएं,
0: लॉन्ग ड्राइव पर जाएं,
1: भीगते झूमते नाचें गाएं,
0: लेकिन बारिश के पानी को यूं ही बर्बाद न होने दें,
1: पानी की एक एक बूंद बचाएं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: बरसात के सुहाने मौसम में जगह जगह गड्ढों में भरने लगता है गंदा पानी, कीचड़ गंदगी का फैल जाता है साम्राज्य, भिन भिन आती है मक्खियाँ, पनपने लगते हैं मच्छर, मौसमी बीमारियाँ देने लगती हैं दस्तक,
5: दिल करे हाए, हाए। कोई ये बताए क्या होगा।
6: हमें कुछ नहीं होगा अगर हम सभी अपने घर और आसपास सफाई रखें, गड्ढों में पानी न जमा होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की शुद्धता का ध्यान रखें, ताज़ा हल्का भोजन करें, खुले में रखें, कटे फल और खाद्य पदार्थ न खाएं,
4: और
6: फिर लें आनंद इस मौसम का।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: नमस्कार, मैं राजीव।

0: मैं स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: पानी की हर बूंद है अनमोल,
2: बहने ना दें इसे बेमोल।
1: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
2: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दें हरियाली का गहना।
3: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से, जिसमें आज आप सुनेंगे धारावाहिक हंसना मना है, इसका भाग 4।

लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी। एक ट्रेन की कहानी है जिसमें मैं सफर कर रहा था। वो किस स्पीड में चल रही है इसका अंदाज आपको आगे हो जाएगा। वो 20 की स्पीड में थी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में थी कि 50 की थी कि 100 की थी, इसका अंदाज़ ज़रा देखिए। चली जा रही है ट्रेन, गर्मी का मौसम है, पसीना पसीना हो रहे हैं हम। जो पंखे लगे थे वो सिर्फ दिखने भर के थे, वो चल नहीं रहा था, एक दो ज़रूर चल रहे थे। चली जा रही थी ट्रेन, अचानक वो ट्रेन रुक गई। थोड़ा सा जंगली एरिया आया, जब वो ट्रेन रुक गई तो मैंने पूछा कि यार अचानक क्या हो गया, ये ट्रेन रुक क्यों गई है, लगता कोई स्टेशन आया। तो एक दो लोगों ने कहा, नहीं नहीं नहीं साहब, स्टेशन नहीं आया है, क्या हुआ है, एक भैंस वो इंजन के आगे आगे आ गई है। तो हमने कहा, वो भैंस कट गई है क्या? कहा, नहीं साहब कट नहीं गई है, वो खड़ी हो गई है। तो फिर क्या किया जाए? वो कहे साहब, रेलवे के जो गार्ड हैं और दूसरे कर्मचारी हैं वो जा रहे हैं उस भैंस को आगे, इससे भगा देंगे, फिर अपनी ट्रेन चलेगी। हमने कहा बहुत बढ़िया। दो चार मिनट ट्रेन रुकी रही, फिर गाड़ी चालू हो गई, चलती रही ट्रेन, चलती रही ट्रेन, चलती रही ट्रेन, चलती रही ट्रेन, अचानक फिर ट्रेन रुक गई। मैंने कहा, भैया अब क्या हुआ, कोई स्टेशन आया क्या, कोई स्टेशन आया क्या? तो लोगों ने कहा, नहीं साहब स्टेशन तो नहीं आया। तो हमने, फिर ये ट्रेन क्यों रुक गई? तो एक सज्जन बोलते हैं कि वो वाली भैंस जो पीछे आ गई थी ना, वही वाली फिर से आगे आ गई है। अब साहब हुआ क्या, हम लोग तो चले जा रहे थे, साम दाम दंड भेद, भाई सफर तो तय करना ही करना था, बहुत लंबा सफर था हमारा। चली जा रही ट्रेन, बड़ा मजा आया, गर्मी बहुत हो रही थी, अचानक वो ट्रेन एक स्टेशन पे रुक गई। हमने कहा चलो स्टेशन तो आया है, चाय वाय लेने लगा मैं, तो अचानक क्या देखता हूँ कि एक लड़का पंखे बेच रहा था, हाथ वाले पंखे, जो हाथ से चलते हैं, वो वाले पंखे लेके आवाज लगा रहा था। चार

चला पंखा। तो मैंने कहा भाई गर्मी तो मेरे को भी लग रही है, घंटे चार घंटे का सफर है, पंखा ले लिया जाए। मैंने पंखे वाले को बुलाया, हमने भाई पंखे कितने कितने के, एक है चार आने का, दूसरा है आठ आने का। हमने कहा भाई एक काम कर, दो चार घंटे के लिए कौन पैसे ज़्यादा खर्च करे, तू एक काम कर चार आने वाला दे दे। तो उसने मुझे चार आने वाला पंखा दे दिया। हम बड़े खुश कि चलो कुछ ठंडी ठंडी हवा आएगी। ट्रेन जब चलने को थी, बस उसके दो मिनट पहले ही मैंने वो पंखा लिया और उसको हिलाने लगा। मैं हिलाता हूँ तो क्या देखता हूँ, आधा मिनट भी वो पंखा नहीं चला, उसके अंदर जितने भी मटेरियल लगा था पंखे का पूरा जमीन में आ गया। हमने कहा अरे यार ये क्या हुआ, 25 पैसे खर्च किए और इसमें तो हवा ही नहीं निकल रही, ये तो टूट गया, दो मिनट एक मिनट में भी टूट गया। मैंने फौरन पंखे वाले को बुलाया, हमने पंखे वाले इधर आना भाई, इधर आइए, ये क्या दिया आपने, ये कैसा पंखा दिया आपने, मैंने जैसे ही इसको हिलाया है तो ये तो टूट गया। तो पंखे वाला बोलता है आपने कितने वाला पंखा लिया था। मैंने कहा भाई चार आने वाला पंखा लिया था। आपने गलती की साहब, ये जो चार आने वाला पंखा और आठ आने वाला पंखा है इसमें जरा सा फर्क है। ये जो आठ आने वाला पंखा

0: मैं देता हूँ ना, वो उसको उसे हाथ में पकड़ना पड़ता है और हाथ को ऐसे हिलाना पड़ता है तो हवा लगती है ना। हमने कहा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा और ये चाराने वाले की क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है साहब, इसको हाथ में ऐसा पकड़ना पड़ता है और अपना सिर को हिलाना पड़ता है बड़ी जोर जोर से। हमने ट्रेन आगे बढ़ी, बड़ा मजा आ रहा था साहब, सफर का अलग आनंद आ रहा था। अचानक जहां मैं बैठा था उसके ऊपर की तरफ एक दो लोग बैठे हुए थे, कुछ इस तरफ बैठे थे कुछ उस तरफ बैठे थे। एक बुजुर्ग जैसे एक नौजवान साथी से कुछ पूछते हैं, वो बुजुर्ग ने नौजवान से पूछा, क्यों भाई कहाँ जा रहे हो? तो लड़का बोलता है बुजुर्ग से, कहले मैं तो साहब जबलपुर जा रहा हूँ। कहले अच्छा अच्छा जबलपुर तो भाई मैं भी जा रहा हूँ। कहले अच्छा बाबू जी जबलपुर तो हम भी जा रहे हैं। कहले वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, जबलपुर में आप कहाँ रहते हैं? कहले जबलपुर में मैं तो वहाँ मतलब जो बड़ा फुहारा है, कमानिया गेट है, बड़ा फुहारा है, व्यापारी क्षेत्र है, बड़े अच्छे अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पर, वहाँ रहता हूँ। तो बुजुर्ग नौजवान से बोलते, कहले बहुत खूब बात है भाई, वाह वाह वहाँ तो हम भी रहते हैं। तो लड़का बोलता, अच्छा बाबू जी कितनी अच्छी बात है, आप वहाँ पर कहाँ रहते हैं साहब? कहले वहाँ एक कृष्ण भगवान का मंदिर है, उसके पास मैं रहता हूँ। तो लड़का बोलता, कहले क्या बात है बाबू जी वहाँ तो हम भी रहते हैं, अच्छा कृष्ण भगवान के मंदिर के पास। बुजुर्ग बोलते हैं, बहुत खूब बात है, वहाँ आप कहाँ रहते हैं? कि साहब कृष्ण भगवान के मंदिर के बिल्कुल बाजू से जो गली जाती है ना, जहाँ वकील साहब रहते हैं और एक कपड़े वाले भैया रहते हैं, एक किराने वाले भैया रहते हैं। हमने हाँ हाँ हाँ हाँ मैं वहीं रहता हूँ। फौरन बुजुर्ग बोलते, कहले कितनी अच्छी बात है बेटा, देखो है जहाँ तुम रहते वहाँ हम रहते, जिस शहर में तुम रहते उसी शहर में हम रहते। तो बुजुर्ग ने बोला, बेटा एक बात और बताओ, तुम्हारे मकान का नंबर क्या है? तो लड़का बोलता, हमारे मकान का नंबर तो 115 है। तो बुजुर्ग बोलता, कहले कितना इत्तेफाक, क्या बढ़िया बात है बेटा, है कहले मेरे मकान का भी नंबर 115 है। मेरा हो गया दिमाग खराब। हमने यार ये दोनों बुजुर्ग और ये नौजवान एक ही शहर में रहते हैं, एक ही महल्ले में रहते हैं, पूरा एरिया एक ही गली मकान, वो नंबर वही, सब कुछ वही, लेकिन ये आपस में पहचानते नहीं कि ये कौन है और वो कौन है। मैंने अचानक सवाल किया, किससे? बुजुर्ग से। हमने क्यों बुजुर्गवार, आप एक बात बताइए, आप दोनों एक ही शहर में रहते हैं, एक ही इलाके में रहते हैं, एक ही गली में रहते हैं, अरे एक ये तो छोड़िए आप एक ही मकान में रहते हैं और उसके बाद आप लोग आपस में पहचानते नहीं कि ये कौन है वो कौन है। तो बुजुर्ग को कुछ बोले, वो लड़का ऊपर से कूदा मेरे सामने और मुझसे बोलता है, आप चुप रहिए, हम लोग बाप बेटे हैं, हम लोग बोर हो रहे थे इसलिए मनोरंजन कर रहे हैं। और अब एक और हंसोड़, विनय जैन, जब देखो तब दांत निपोरी इनकी आदत है, फिक्र नहीं करते किसी को पसंद आए या ना आए। देखिए तो क्या कहते हैं ये।
1: हंसी की एक फुलझड़ी प्रस्तुत कर रहा हूँ कि साहब कॉलेज की एक लड़की अपने प्रिंसिपल साहब के पास पहुंची और बोली,
2: सर।
1: क्या बात है?
2: सर कॉलेज के सभी लड़के मेरे को ना बुआजी कह के चिढ़ाते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सर।
1: रुक जाओ बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, रमेश आप खड़े हो जाइए, आप इनको बुआ जी बोलते हैं।
3: नो सर, मैं इनको बुआ जी नहीं बोलता।
1: बैठ जाइए। सुरेश आप खड़े हो जाइए, आप जरूर इनको बुआ जी बोलते होंगे। बोले माफा भगवान की कसम खा के कह रहा है, हम तो बोल ही नहीं सकते। बोले भैया भगवान ने तुम्हारा मुंह दिया है, कैसे नहीं बोल सकते, कैसे नहीं बोल सकते? बोले माँ साहब ऐसे नहीं बोल सकते, काहे कि सारा कॉलेज तो हमें फूफा जी कहता है।
3: एक ऐसे साहब जिन्हें बोलने में बहुत परेशानी महसूस हुआ करती थी, बहुत सारी बातें अटक अटक कर बोला करते थे। तो जैसे ही साहब प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए अखबार पढ़ रहे थे और एक सज्जन अपना बहुत सारा सामान लेके प्लेटफॉर्म में एंट्री हुए, अब उनको क्या मालूम कि सामने वाले साहब अटक अटक के बोला करते हैं। बड़ा हाथ में सामान वगैरह लिए हुए थे, एक हाथ में छाता था, एक हॉलडाल कंधे में था, एक संदूक दूसरे हाथ में था, एक बंदूक उस कंधे में थी और पोजीशन वजन से बिल्कुल डाउन हुई जा रही थी। जैसे ही प्लेटफॉर्म में एंट्री हुए, उनने आना देखा ताओ अटक के बोलने वाले साहब के पास पहुँच के फ़ौरन सवाल किया, क्यों भाई साहब वो भोपाल जाने वाली राजकोट एक्सप्रेस कहाँ है, जल्दी बता दो, बहुत भजन है भाई। तो अटके लाल साहब, जिनका पूरा नाम अटक लाल झपट सिंह था, उन्होंने फौरन जवाब दिया,
4: किसी और से पूछा होता तो बता दिया होता, अब तक भोपाल जाने वाली राजकोट एक्सप्रेस

0: वो जा रही। साहब भी बड़े गुस्से में आ गए अटकलाल झपट सिंह जी और बस स्टैंड पहुंच गए। बोले साहब मैं बस से जाऊंगा। सारे लोग बस स्टैंड पहुंच गए। बस जैसे ही चली, सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, एक सज्जन बस में और चढ़े और वो भी बोलने में अटकते थे और बैठे कहाँ वो अटकने वाले सज्जन के बाजू ही में। जैसे ही बस चली, जो नए सज्जन थे उन्होंने पुराने सज्जन से सवाल किया,
1: क्यों भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सीता। और तुम्हारा नाम क्या है?
2: मेरा नाम भी घसीटा है मगर उतना नहीं जितना तुमने घसीटा।
0: अपनी श्रीमती जी को लेकर साड़ी की दुकान में पहुंचे, काउंटर मैन से जाके क्या बोलते हैं?
1: क्यों भाई साहब साड़ी है?
0: तो काउंटर मैन जवाब देता है, हाँ भाई साहब साड़ी है मगर इतनी लंबी नहीं है। अपने चाचा जी की किताबों की दुकान में पहुंचते हैं। किताबों की दुकान चाचा जी की बुक्स एंड स्टेशनर्स के नाम से एक बाजार में खुली हुई थी और चाचा जी की ऐसी दुकान में जाते हैं तो चाचा जी से पहुंचते ही से चाचा जी भोजन करने के लिए जाने वाले रहते हैं तो फौरन वो अपने भतीजे को बुलाते हैं और बोलते कि अच्छा हुआ आप आ गए, हमारी दुकान में बैठो और हम खाना खाने जा रहे हैं, और भतीजे को बिठा देते हैं। तो साहब जैसे ही चाचा जी ने उनसे बोला कि देखो तुम अटक बेटा, तुम यहीं दुकान में बैठो और मैं खाना खा के आता हूँ, समझे, और ध्यान रखना ग्राहकी का जरा। ठीक है चाचा जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे ही चाचा जी गए, फौरन एक ग्राहक आया और इनसे पूछा, भैया वो संस्कृत की कुंजी देना। साहब ने फौरन कुंजी निकाल के सामने काउंटर पर रख दी। कितने की?
1: 7 रुपये। 75 पैसे।
0: क्या भाई साहब आप मजाक कर रहे हैं, इतनी बड़ी दुकान चलाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमारा छोटा भाई 7 रुपये में लेके गया है, 2 घंटे बाद ऐसा बिल्कुल 75 पैसे रेट बढ़ गया, बिल्कुल गलत है ये तो।
1: तुम चुप रहो, वो लड़का 75 पैसे बोलने के पहले ही ले गया।
0: एक साहब बहुत ज़्यादा गप हाँकने के शौकीन थे, शिकार के तो शौकीन थे ही, अपने किसी ज़माने की बात लेकर बैठ गए, चार लोगों के बीच में अपना शिकार का वाक्या सुनाने लगे।
3: बोलो साहब, हुआ यूं कि मैं गया जंगल और मैंने देखा कि एक शेर चला जा रहा है। अब मुझे आया गुस्सा तो मैंने निकाली अपनी बंदूक। जैसे ही निकाली बंदूक तो शेर ने बंदूक देखी तो एक छलांग लगाई, और शेर ने जैसी छलांग लगाई तो मैं घबरा गया, और जैसे मैं घबराया तो शेर ने मेरे को दिया पटक।
0: बोले फिर तो अचानक किसी ने उनको बताया, बोले साहब आपका टेलीफोन आया, कोई आपको फ़ोन पे याद कर रहा है। तो भाई साहब यहाँ गप सुनाते सुनाते वहाँ टेलीफोन पे किसी के साथ बात करने चले गए, आधा पौन घंटा कोई से टेलीफोन पे बात करते रहे, लौट के जैसे ही आए लोगों ने बोला, हाँ साहब फिर आगे क्या हुआ? तो साहब तो वैसे ही गप्पी भूल चुके थे कि क्या सुना रहे थे। बोले साहब वो आप शेर का वाक्य सुना रहे थे कि गुस्से में। बोले हाँ, फिर हम लोग तो साथ में घूमने गए और बहुत देर बगीचे में बैठे रहे, फिर एक साथ फिल्म देखी और नाश्ता वगैरह किया, वापस आके सो गए।
4: भाई वाह, लतीफे सुनाने में मकरंद बड़नेर कर का जवाब नहीं, यकीन नहीं आता ना, तो चले सुने इनको।
5: एक ट्रैफिक हवलदार सड़क पर खड़े ट्रैफिक का संचालन कर रहे थे, अचानक उन्होंने एक साइकिल वाले को आते हुए देखा और डंडा फटकारते हुए बोले, अरे रुक रुक, बिना हेडलाइट और बिना घंटे की साइकिल चलाता है। साइकिल वाला बोला, हवलदार जी हट जाइए, इसमें ब्रेक भी नहीं है। एक क्लास के दौरान मास्टर जी पढ़ा रहे थे कि पढ़ाते पढ़ाते उनका ध्यान अचानक एक छात्र पर गया। सभी छात्र तो उनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उस छात्र का ध्यान किसी और जगह लगा हुआ था। उस छात्र का नाम गया प्रसाद था, और छात्र जो था वो कमरे के एक कोने में बिल में एक चूहे को अंदर और बाहर आते हुए जाते हुए देख रहा था। बार बार चूहा अंदर आ रहा था, बाहर जा रहा था, और छात्र का ध्यान बिल्कुल उसी चूहे की ओर था। मास्टर जी परेशान हो गए, क्या बात है, कहीं और ध्यान दे रहा?

0: मास्टर जी ने लगभग चीखते हुए कहा, अबे गया? लड़के ने कहा, नहीं मास्टर जी, अभी पूंछ बाकी है।
1: ध्यान रहे, आप सुन रहे हैं एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है हंसना।

0: जन्मदिन आपने बहुत मनाए होंगे, खूब मनाए होंगे, बड़े प्यारे प्यारे मनाए होंगे, मगर हमारे दोस्त गोपाल तिवारी शामिल हुए एक खास जन्मदिन पर। सुनिए,
1: घटना गांव की है, और गांव की इसलिए क्योंकि भारत गांव का देश है, गांव में बसता है, और ये पटेल साहब हैं सरपंच बन गए, पटेल उनकी उपाधि है। उन्होंने अपने बच्चे का जन्मदिन कैसे मनाया वो एक घटना मैं आपको सुना रहा हूं। के पटेल साहब ने पटेलन से पूछा,
2: अरे काय पटेलन?
1: हाँ बोलो।
2: वो अपने गुड्डा को जन्मदिन कब है?
3: गुड्डा को जन्मदिन समझ लो आप, बड़ी जीजी को लड़का छठ में भाव, और जी छोटी को भाव तेरहवीं के बाद चौथ को, और जी समझ लो पंचमी को है, तो जो समझ लो कि हर छठ के दूसरे दिन की बात है। अरे तुम यार हर छठ टीजा ना बताओ, तुम मतलब डेट बताओ ना। हाँ समझ लो, हम तुम्हारा बोला हुआ रहो जब वो से नौकरी को, और तुम गए, तुमने फिर कैंसिल करवा दई, उसके बाद पानी का बरसो रहो खूब कड़क के बिजली, फिर ओरा गिरे थे वो दिन। अरे तुम यार खगलो नहीं यार, तो मतलब बताओगे ये हुआ कब है? डायरी देखो। अच्छा एक मिनट, देख रहे ला करम धारी डायरी वायरी उन्होंने देखी, और डायरी देख के बाद उन्होंने बताया कि ये कब हुआ। ये समझ लो कि तीज के दूज की बात, 22 तारीख को भाव, और आज है समझ लो 20 तारीख, कल छोड़ पा रहा हूँ जन्मदिन।
2: हाँ तो कहने लगे ठीक है, अब वो पहले जैसा जन्मदिन नहीं हो।
3: कैसा मतलब पहले जैसा नहीं होगा?
2: अरे पहले अपन वो चौक और वो सब नहीं कर लेते रहे, मतलब बुला के आरती पूजा टीके चंदन, वो मतलब नहीं होगा।
3: काय अब काय ना हुआ भाई, गुड्डा को तीसरा जन्मदिन वो काय ना हुआ?
2: तो बोले अरे नहीं समझो तुम, अब हम बन गए सरपंच।
3: हाँ बात वो तो बन गए, खूब वोट मिले।
2: अब जी जो है गुड्डा जो है, इसका जन्मदिन अपन शहर की स्टाइल में मनाएंगे, लोगों को लगे तो कि नहीं मतलब अपन सरपंच बन गए ना, मतलब थोड़ा कादर खड़ी हो जाए जरा, समझा करो बात को।
1: अब साहब ये हुआ कि उसने कहा कि कैसे करेंगे?
3: करना कुछ नहीं है, अब जैसा आप बोले वैसा करेंगे।
2: एक काम करेंगे, हम शहर से वो कैंडल वेंडल और केक वेक वो सब पूरा ले आएंगे, और तुम पूरे गांव में चर्चा बिल्कुल भजवा देना, समझ गए ना, और फिर उसके बाद जो है अपन बढ़िया सेलिब्रेट करेंगे।
1: बात डिसाइड हो गई, कंप्लीट हो गई कि ऐसा मनाना है। पटेल साहब शहर चले, और शहर से जैसे ही लौट के आए, और उन्होंने दरवाजा खटखटाया, जिस दिन गुड्डा का बर्थडे है उस दिन दरवाजा उन्होंने खटखटाया।
2: पटेलन, पटेलन
3: एक मिनट आ रहा है।
2: अरे क्या कर रहे हैं, जल्दी खोलो यार दरवाजा।
3: एक मिनट आ रही है, तुम मतलब ऐसी जल्दी मचा।
2: अरे जल्दी खोलो, मतलब डेढ़ घंटा हो गया मतलब खड़े हो, तुम कहाँ जा रहे हो अंदर?
3: अरे भाई मतलब अब रार की दाल चढ़ी है, उधर खिचड़ी चढ़ी, एक तरफ भी माता रानी की रानी भी बना रहे, अब एक आदमी के तो काम करे मतलब आ तुम खा लिया चलिए।
1: अरे हाँ यार, वो काफ़ो के मतलब गाड़ी जो है हमारी ख़राब हो गई, तो ओके मतलब पीछे इंजन में काम निकलाओ, अब इंजन बनवाओ दो चका पंचर, चका बनवाओ दो फिर पीछे चका पंचर, जे माने पूरी नपोर चौदस में मतलब पूरी दिक्कत हो गई, और धर माने लो करो सामान जो है तय छूट गो।
3: हाँ मैं मान लिया, मैं तुम्हारे भरोसे कच्छू नहीं हो सके।
2: अरे नहीं मतलब ऐसी बात नहीं, हम कोशिश हमने पूरी की थी, सब सामान ले लिया था, वो वहीं वो गैरेज में छूट गया।
3: तुम्हारे भरोसे रहते जो चार चार ठैया लड़का बच्चा नहीं, तुम आ जाओ तुम तो अंदर, अब हमने सब व्यवस्था कर ली है। अब साहब ये अंदर आए, और उन्होंने कहा अब ये बताओ कि अब वो कैसे मतलब करेंगे, अब फिर चौक बधाव वाला होगा?
4: नहीं ऐसा नहीं कहा, आप हमें कहें से समझ रहे भाई, जब आप सरपंच तो हम भी तो कछु भाई, और ऐसा नहीं हम भी खूब पढ़े लिखे हैं।
1: अच्छा कहाँ पढ़ गई?
4: नहीं भी प्रौढ़ शिक्षक चल रहा हो आजकल, रेडियो में बता रहे पढ़े पढ़ाए जीवन बनाए, और एक नहीं एक दूनी दो चौके पाँच छक्के आठ, मतलब खूब बढ़िया पढ़े हमने, कोचिंग क्लास पढ़ी हमने।
2: कौन से पढ़ लाई?
4: पंडित जी की लड़का से पढ़ी, पंडित जी की बहुत बढ़िया पढ़ा, तुमने पढ़ा दो हमें।
2: अ तो ठीक है, तुमने व्यवस्था क्या करी जो दिखाओ हमें?
4: केक बना लो।
2: केक बना लो? केक कहाँ से बना लो तुमने?
4: नहीं टीवी पे हमने बाकी रैप सीट देखी थी।
2: क्या देखी रही?
4: रैप
2: अरे रैप सीट नहीं यार, वो तो तेल होता रैप सीट, रेसिपी रेसिपी बोलते हैं, दो क्लास और पढ़ लेती बाबू की यहाँ, फालतू बात ना कर तुम बाबू की यहाँ, इतो दहेज दो सब अंदर कर लो बाबू खुद हो जाए तुम बिल्कुल एकदम। ठीक है भाई ठीक है, गुस्सा नहीं हो तुम, मतलब जो बताओ कहाँ केक कहाँ?
4: जी जी धरवा देखो टीवी में धरो टीवी।
2: अरे बहुत गजब।

0: बहुत बढ़िया। यार एक बात बताओ तुम।
1: हाँ वो पूछो
0: जी। इतना बढ़िया केक तुमने बनाया कैसे? इतना बड़ा, इतना सुंदर, मतलब बनाया है ऐसा लग रहा कम से कम 10 किलो से कम का नहीं होगा ये केक। कितना बढ़िया बना, कैसे बनाया गया, तुम्हें आइडिया कैसे आया?
1: नहीं कछु नहीं, टीवी में हमने रेसिपी देखी, हमने दिमाग लगाओ कि अब जो केक तो हमें बनाने न वो बन है ना कछु कैसे बनाए, तो हमने जुगाड़ करो। हम गए कहाँ, बाजू में भी जो दुकान है ना किराना की, वो कहाँ गए हम कहीं। फिर हमने उसे कही, हमने भैया 6-8 ठैया फैमिलीस ब्रेडें दे दूँ।
0: कौन सी ब्रेड है?
1: फैमिलीस ब्रेड। अरे फैमिली ब्रेड बोलते यार बड़ी वाली को। हाँ फिर तो बोले फिर हम ब्रेड लाए और ला के ब्रेडों की किनार हमने काट के माहें करी।
0: अच्छा मतलब फेंक दी?
1: हाँ मतलब फेंक दी, अलग कर दी। फिर हमने ऐसी 4-6 ठैया ब्रेड धरी और गुड़ की बनाई चाशनी, तो गुड़ की चाशनी फिर ब्रेड, फिर चाशनी, फिर ब्रेड, फिर चाशनी।
0: बहुत बढ़िया। फिर क्या करो?
1: फिर कछु नहीं, गुड़ की चाशनी माहौ डार के अपनो हरी रंग होली को बचो तो वो रंग 2-4 प्रकार के कलर और टेसू को रंग बना लो अच्छे रंग रोगन कर दो झगा झग के। फिर और क्या करो? नहीं दूध की मलाई बची तो आइसिंग कर दाई होगी बन गए धरो का। और सुनो ऐसी पन्नी की पंगड़िया बनाई हमने, और पंगड़िया बना के उसके अंदर भरी चाशनी में अपन थोड़ी सी मलाई मिला के और रंग मिला के अच्छे भरो, ऊपर से बांध के बढ़िया डिजाइनदार को नाम लिख दो हैप्पी बर्थडे टू यू गड्डा, और 3 नग दो 30 रो जरा 3 लिख दो और अपने सिग्नेचर मार दे बढ़िया कैसा यार। अच्छा एक बात बताओ पटेल।
0: हाँ पूछो।
1: अपने से मतलब कोई को जन्मदिन हो, शादी ब्याह हो, चाहे कोई आदमी दुनिया में नहीं रहे।
0: हाँ तो तुम कहे को मतलब का कौन नहीं रहो?
1: नहीं वैसे नहीं पूछ रहे हम, दो आदमी को अपन जरूर बुलाते।
0: कौन?
1: एक तो वे पंडित जी।
0: हाँ तो वो तो ठीक है, और दूसरा कौन?
1: वो खवाजा।
0: अरे तुम यार, तुमको पता नहीं कब अकल आएगी।
1: क्यों कब ऐसे अकल आए?
0: भाई देखो ऐसा है कि ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं ये विदेश का है, वहां कहां पंडित जी और वहां कहां मतलब खवासन।
1: भाई ऐसा है कि देखो अब एक दिन का काम तो है नहीं, आज तुमने जो करवा लाओ कल भी आने पर फिर दूसरे तुम फंक्शन करवाओ। उन्हें बोला तो वे कहें काए जन्मदिन में नहीं पूछो, अब कह रहे हैं कि आ जाओ हैं जज की भाई से फिर पूछो, मतलब पूरे काम है मतलब हमें मतलब है खोटे काम हम करवाएं हैं, और मतलब जो अच्छो काम मिलवे दिलवे को तो दूसरो ऐसा नहीं हो सके भाई।
0: ठीक है तुम देखो एडजस्ट करना, पंडित जी को बुलाओ। पंडित साहब नमस्कार। पंडित जी प्रणाम, चरण छूते हैं। पंडित जी ये जो कार्यक्रम है आपको निमंत्रण दिया आप आए बड़े हर्ष की बात है, लेकिन इस कार्यक्रम में कोई पूजन नहीं होना है। असल में ये हम लोग इस बार पाश्चात्य संस्कृति से अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं, आजकल शहरों में जैसा मनाया जाता है, तो आपसे क्षमा चाहेंगे। आप आए बड़ा अच्छा हुआ। आप एक काम करिए, नाश्ता करिए और ये छोटी सी दक्षिणा है आप रखिए और क्षमा करेंगे आप। अरे नहीं नहीं वो तो कोई बात नहीं, हम तो आपके घर के आदमी हैं, मतलब जब भी आप याद करें ऐसी कोई बात नहीं। पंडित जी ने साहब नाश्ता किया, दक्षिणा ली और चले।
1: लेकिन जो खवासन होती है वो कुछ कुछ जगह पंडित जी से ज़्यादा प्रैक्टिकल दिमाग रखती है, और उसका प्रैक्टिकल दिमाग कैसे चला देखिए आपकी नज़र कि उसने पटेलन को हैंडल किया कैसे। देखो भाई ऐसो कि हमने खूब शहर में देखे हैंगे करवाए हैं और हमें ऐसी न बताओ, हमें सब समझ में आते कैसे करवाने हैं। एक काम करो बलगुआ, हमने सबको दे दो और बलगुआ दही के बाद हमने जो जमा दे थी बिल सब कर दो। अच्छा फोटोग्राफर को बोलो कि नहीं बोलो?
0: फोटोग्राफर को बुला के लाओ।
1: एक लचर पचर फोटोग्राफर उनको ही बुलाया, वो भी बेचारे मतलब ऐसे समय के मारे थे, लचर पचर टाइप की मतलब काम उनका बड़ा ढीला ढाला सुस्त अपने चले आ रहे हैं। अपना साइकिल भी उनकी ऐसी है खट्ट पट्ट घैटर वाली साइकिल। वो साहब आए कैमरा वैमरा लेके और फिर उसका गुड्डा का बर्थडे बनाना शुरू। केक रखा सेंटर में। हाँ अच्छा जय बताओ कि गुड्डा कौन सा जन्मदिन है? मतलब अब जी समझ लो कि पहलो जन्मदिन भाओ तो जो दूसरे तीसरो है जे। भाई देखो यहाँ से पहले जन्मदिन में दद्दा ने काम करो,
0: करो नहीं करो,
1: दूसरे जन्मदिन में फिर आपने करो, और जो तीसरे फुआ को नेंग लगा फुआ को बुलाओ।
0: अरे तुम
1: यार उसमें कहाँ फुआ हुआ, हमारे हिसाब चले हम पूरे डायरेक्शन हमारे यहाँ थोड़े हैं, मतलब शहर में करवाए हम। फुआ को बुलाओ। अब फुआ को बुलाया गया, भाई केक रखा गया। हाँ चलो जल्दी से। अच्छा एक काम तो करो का बेक गुड्डा को तीसरे जन्मदिन है, 3 ठैया कैंडल तो धर।
0: तुम समझो का नहीं
1: अभी लफड़ा करवा का होगा तुम तो कान में बताओ ना।
0: अरे पटेल साहब भूल गया सामान, हमने जुगाड़ करके केक बनाओ और तुम अब मतलब कैंडल फैंडल के बीच।
1: कछु नहीं जहाँ हम हैं तो गम नहीं,
0: अब भाई हम व्यवस्था करवाए थे तुम्हें का, जब तुमने जुगाड़ से केक बना हम कछु नहीं कर सके तुम्हारे लाने, तुमने तो कर। अब भाई देखो ए बेटा छुट्टू होते आओ।
1: हाँ आओ तुम एक काम करो 3 ठैया भपका ले आओ।

अब साहब तीन भपके मंगवाए गए, वो मिट्टी के तेल के होते हैं, और उनको जलवाया गया कैंडल पे धर के, पटे जो खवासन है उनने पटेलन के यहाँ जलवाया। लेस वन है, लेस दो। अच्छा लड़का बच्चा जितने सब पीछे आ जाए। हाँ, और अब ये तो बताओ कि जैसा ही सब जन केक कटे और सबको चिल्लाने हैप्पी बर्थडे टू यू गुड, अरे एक काम तो हम रह गई, पहले जैसा ही समझ लो कि हम तुमसे कहें गुड्डा, तुम पहले केक फूकियो का बेभप कनखो। हाओ पहले एक काम और करो, अब कहा तुम ये काम करके काम बढ़ा जा रहे हैं, जल्दी कर रहे तुम बिल्कुल, नहीं तो डेढ़ घंटा हो गया। भाई पहले फूआ ऐसे आ, तुम ऐसे बाजू में खड़े हो जा, पहले केक की निछाओ। ऐसी गजा बता रहे, केक की निछाओ रहा तब, देखो जो गांव काम है केक की निछाओ करो, जल्दी करो। उन्होंने केक की निछाओ, हमने आज तक सुनी नहीं, खुटिया के पैसे 2 रुपये दे जरा, अब दो में काम न चले, 10 कोने का अरे लूट है, केक की निछावर है ऐसे कम ना ले, वहाँ केक की निछावर करो। केक की निछावर साफ हो गई, और केक की निछावर के बाद 10 रुपये ने, हाँ एक माहौर कटोरी ला, माहौर लगाया गुड्डा को, बाकायदा माहौर टिपकीप की लगाई, और उसके बाद में केक का कटने का आइटम शुरू हो रहा है। उसके पहले उन्होंने कहा, अच्छा एक बात और, आप कहे गो एक बात और देखो ये मैं नेंग के तुमने 10 रुपये निछावर के दे, निशानी भी तो दो। काहे की निशानी? भाई देखो अब गुड्डा को जन्मदिन हम याद रखें हैं, तो एक थैया जो सूट गुड्डा को सलवार हो तुमने छोटो होगा हमारे टुकड़ा को दे दो। कहने लगे फिर का, चलो दे और 5 कुरे गेहूँ दे, हमने 5 कुरे गेहूँ दे। और बोलो अब गुड्डा तुम एक काम करो, पहले जो भपकन को फूको। तो गुड्डा ने जैसे ही भपकों को फूका, बेटा गुड्डा ऐसे नहीं अच्छे से, अरे फूंक बे कह रहा है, थूको नहीं है बस, सब खाच ला हम बुझा दे रहे। उन्हें लाए खवासन ने और भपका बुझाए अलग करे, देखो बुझ गए। आप गुड्डा एक काम करो, चक्कू से चक्कू तो लाओ, ए बेटा ऐसे तुम्हारा को नाम लपका, अरे लपका तो लपक के जरा चक्कू लिया, बाबू नहीं मिल रहा, अरे तो बाजू में देख बाबू उनका भी नहीं है, पड़ोस में देख ले जे जी लो तुम्हारे थे चक्कू नहीं, उनका भी नहीं मिलो, एक काम करो तुम तो हंसिया ले आओ। गांव का परिवेश हंसिया मंगवा लिया गया साहब, और हंसिए से केक कट रहा है, एक नई बात है। और जैसे ही केक कटे तो उन्होंने कह दिया खवासन की, सबको चिल्लाने हैप्पी बर्थडे टू यू गुड्डा, और न चिल्लाओ तो फिर केक न मिले, जो समझ लो हाँ टाफियाँ बांटे भी न मिले। तो साहब जैसे ही केक के लिए उसने गुड्डा ने हंसिया उठाया, और बुआ ने पकड़ा, साथ में उनके मम्मी पापा पटेल साहब पटेलन पकड़े हैं, और उनने बोले हाँ चिल्लाओ,

0: अचार पचार अचार पचार पूरा केक को कीमा बना दो उन्हें। तुम चटनी निकाल डालो, अलग करो, अलग करो। बस हंसिया खो। अरे राम, पूरा केक
1: बाबू हमें हंसिया
0: का करो। तुम हंसिया
1: नहीं, हमें केक लागो है।
0: का करो केक को, हम वो चाट जी कट जाए। हंसिया चाट हो तुम, अलग करो।
1: नहीं गुड़ तो दे,
0: गुड़ की हंसिया बात अलग है, जो केक को हंसिया है गारे में फंस गया है।
1: खैर साहब, अब वो हंसिया अलग किया गया। अच्छा एक काम करो, केक डिस्ट्रीब्यूट करो।
0: क्या करो डिस्ट्रीब्यूट? अरे यार डिस्ट्रीब्यूट अंग्रेजी मत बोलो, अंग्रेज चले गए। तुम केक बांटो सबको।
1: एक परात में केक धरा गया और परात में केक धर के सबको बांटा जा रहा है और छिवला के पत्ता में धर धर के दिया जा रहा है।
2: संग्रहालय से इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हंसना मना है, इसका भाग 4। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि खनिज संपदा की प्रचुरता और निवेश अनुकूल नीतियों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी बल मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस साल अल्प वर्षा की आशंका को देखते हुए प्रदेश के किसानों से कृषि कार्यों की वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक योजना बनाने तथा कम अवधि और कम पानी में बेहतर उत्पादन देने वाली फसलों को विशेष प्राथमिकता देने की अपील की है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। यात्रा के पहले दो दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। सरकार ने मूल्यों में स्थिरता के लिए प्याज की खरीदी में 13% की वृद्धि की है। प्याज का खरीद मूल्य अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। भोपाल के भारत भवन में एक गायन पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस पर्व में आज शाम 7 बजे से मंजरी, असनारे और ऋषि मिश्र की जुगलबंदी देखने को मिलेगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

महिला सभा सुन रही सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर, सुनेंगे गीत संगीत और खाना खजाना में बनाएंगे बरसात स्पेशल पकौड़े। तो कार्यक्रम की शुरुआत में बात करते हैं उनकी जो हमारी धरती को हरा भरा बनाते हैं, वो हैं हमारे वृक्ष। पेड़ है तो जीवन है, पेड़ है तो भविष्य है, यह केवल एक नारा नहीं बल्कि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जंगलों के अंधाधुंध कटाई और घटते हरित क्षेत्र ने पूरी दुनिया को पर्यावरण संकट के सामने खड़ा कर दिया है। ऐसे समय में 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला वन महोत्सव हमें प्रकृति से जुड़ने और वृक्षारोपण का संकल्प लेने का अवसर देता है। सखियों, वन महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी। इसका उद्देश्य देश भर में वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाना और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना था। आज यह अभियान पूरे देश में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। वृक्ष प्रकृति का एक अमूल्य उपहार हैं। वे हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वायु को स्वच्छ बनाते हैं और पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ वर्षा चक्र को बनाए रखने, भूजल स्तर बढ़ाने, मिट्टी के कटाव को रोकने और जैव विविधता की रक्षा करने में भी सहायक होते हैं। सखियों, आज शहरों के विस्तार, औद्योगिकरण और विकास कार्यों के कारण बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि गर्मी की तीव्रता बढ़ रही है, वर्षा का स्वरूप बदल रहा है। यदि हम समय रहते प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। वन महोत्सव हमें केवल पौधे लगाने की नहीं बल्कि उनकी देखभाल करने की भी सीख देता है। एक पौधा तभी वृक्ष बनता है जब उसे नियमित पानी, सुरक्षा और पर्याप्त देखभाल मिले। इसलिए पौधा लगाने के साथ साथ उसे जीवित रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हम सभी इस अभियान में अपना योगदान दे सकते हैं। अपने घर, विद्यालय, कार्यालय, खेत, पार्क या आसपास के खाली स्थान पर पौधे लगाएं। स्थानीय जलवायु के अनुकूल वृक्षों को प्राथमिकता दें। वर्षा ऋतु पौधारोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है क्योंकि इस मौसम में पौधों के जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। तो सखियों, हर वर्ष कम से कम एक पेड़ हम अवश्य लगाएंगे और उसे बड़ा होने तक उसकी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। यदि देश का प्रत्येक नागरिक ऐसा करे तो करोड़ों नए वृक्ष हमारी धरती को

सखियों, यह तो हम सबको पता है कि जल ही जीवन है। पृथ्वी का अधिकांश भाग जल से घिरा होने के बावजूद पीने योग्य मीठा जल बहुत सीमित है। बढ़ती जनसंख्या, अनियंत्रित जल उपयोग, भूजल का लगातार दोहन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण आज दुनिया के अनेक हिस्सों में जल संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यदि हम जल बचाने को अपनी दैनिक आदत का हिस्सा बना लें तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त जल उपलब्ध रहेगा। जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कृषि और उद्योग सभी जल पर निर्भर हैं। यदि जल स्रोत सूख गए तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए जल की प्रत्येक बूंद

और स्प्रिंकलर जैसे आधुनिक सिंचाई पद्धतियां अपनाकर कम पानी में अधिक सिंचाई की जा सकती है। बहनों, आज हमें यह समझना होगा कि जल बचाना केवल एक अभियान नहीं बल्कि जीवन जीने की आदत है। छोटी छोटी सावधानियां मिलकर बड़े परिवर्तन ला सकती हैं। यदि हम आज पानी की हर बूंद की रक्षा करेंगे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित और समृद्ध जीवन जी सकेंगी। तो जल संरक्षण को अपनी आदत बनाएं, हर बूंद बचाएं और जीवन बचाएं।

सखियों, अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पर्यटन की। यात्रा केवल स्थानों की नहीं बल्कि अनुभवों, सांस्कृतियों और जीवन को समझने की भी होती है। भारत प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता से समृद्ध देश है। उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियाँ, दक्षिण के समुद्र तट, पश्चिम का विशाल मरुस्थल, पूर्वोत्तर की हरी भरी घाटियाँ, प्राचीन मंदिर, ऐतिहासिक किले, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य देश को पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध बनाते हैं। यही कारण है कि भारत में हर वर्ष देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं। बहनों, हम बात कर रहे हैं पर्यटक स्थलों की। पर्यटन की दृष्टि से हमारी शिवपुरी काफी समृद्ध है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित शिवपुरी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहरों, धार्मिक आस्था और वन्य जीव संपदा के कारण प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे माधव टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। लगभग 350 वर्ग किलोमीटर में फैले इस उद्यान में हिरण, नीलगाय, स्यार और अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। मानसून और सर्दियों में इसकी प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। हमारे यहाँ सफेद संगमरमर से निर्मित सिंधिया राजवंश की छत्रियाँ उत्कृष्ट वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इनके चारों ओर बने सुंदर उद्यान और शांत वातावरण पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। सखियों, शिवपुरी में सांख सागर झील है। माधव राष्ट्रीय उद्यान के समीप स्थित यह झील शिवपुरी की पहचान है। यहाँ नौकायन, पक्षी दर्शन और सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। अपने स्वच्छ और ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध भदैया कुंड बरसों से पर्यटकों का पसंदीदा स्थल रहा है। वर्षा ऋतु में इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। ब्रिटिश काल में निर्मित एक ऐतिहासिक भवन, जिसे जॉर्ज कैसल के नाम से जाना जाता है, यह घने जंगलों के बीच स्थित है। यहाँ से आसपास के जंगलों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। सखियों, यहाँ पर तात्याटोपे स्मारक है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी तात्याटोपे की स्मृति में बना यह स्मारक देशभक्ति और इतिहास का महत्वपूर्ण प्रतीक है। धार्मिक महत्व रखने वाला एक स्थान बाणगंगा भी यहाँ है। यह स्थान स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के बीच विशेष आस्था का केंद्र है। बहनों, शिवपुरी प्राकृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन का अनूठा संगम है। यहाँ आने वाला प्रत्येक पर्यटक हरियाली, झीलों, ऐतिहासिक स्मारकों और वन्य जीवों की सुंदर दुनिया का अनुभव करता है। यदि पर्यटन के साथ प्रकृति का आनंद लेना हो तो शिवपुरी मध्य प्रदेश के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है। आइए शिवपुरी के इस अमूल्य धरोहर को देखें, समझें और इसके संरक्षण में अपना योगदान दें।

सखियों अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी छोटी सी बगिया की। वहनु बारिश की पहली फुहार के साथ ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे जैसे नई ऊर्जा से भर उठते हैं और प्रकृति का हर रंग पहले से अधिक निखर जाता है। मानसून का मौसम केवल मौसम का बदलाव नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ने और अपनी बगिया को नया जीवन देने का सबसे उपयुक्त समय है। यदि आपके घर में छोटा सा आंगन, छत, बालकनी या कुछ गमले ही क्यों ना हो, आप एक सुंदर और हरी भरी बगिया तैयार कर सकती हैं। इस मौसम में मिट्टी में पर्याप्त नमी रहती है, इसलिए पौधों की जड़ें जल्दी विकसित होती हैं और उनकी बढ़वार भी अच्छी होती है। यही कारण है कि अधिकांश पौधे मानसून में आसानी से लग जाते हैं। इस मौसम में आप गुलाब, गुड़हल, मोगरा, सदाबहार, कनेर जैसे फूलों के पौधे लगा सकते हैं। इनकी सुगंध और रंग आपकी बगिया को महका देंगे। यदि आप औषधीय पौधों के शौकीन हैं तो तुलसी, एलोवेरा, लेमन ग्रास, करी पत्ता लगा सकते हैं। सखियों, इस समय किचन गार्डन शुरू करने का भी सुनहरा अवसर है। टमाटर, मिर्च, लौकी, मेथी और धनिया जैसी सब्जियां घर पर आसानी से उगाई जा सकती हैं। घर में लगाई हुई ताजी सब्जियां न केवल स्वादिष्ट होती हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होती हैं। हालांकि इस मौसम में पौधों की देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है। गमलों में पानी जमा न होने दें क्योंकि अधिक पानी से जड़ें गल सकती हैं। समय समय पर खरपतवार हटाएं, सूखी पत्तियां निकालें और जैविक खाद का उपयोग करें। यदि पौधों में कीट दिखाई दे तो नीम के तेल का छिड़काव करें, इससे पौधे स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। बहनों, बागवानी केवल एक शौक नहीं बल्कि तनाव दूर करने का एक प्रभावी माध्यम है। पौधों के बीच बिताया गया समय मन को शांति देता है, सकारात्मक सोच विकसित करता है और परिवार के सदस्यों को प्रकृति के करीब लाता है। तो इस मानसून प्रकृति का आभार व्यक्त करें, अपने घर के किसी छोटे से कोने को हरियाली से सजाएं, पौधे लगाएं, उनकी देखभाल करें और अपनी बगिया को फूलों की खुशबू से महकाएं। सखियों, जैसे ही आसमान में काले बादल छाते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं और रिमझिम बारिश शुरू होती है, वैसे ही गर्मा गर्म पकौड़ों की याद हर किसी के मन में ताजा हो जाती है। इस याद को बनाए रखने के लिए आज हम खाना खजाना में लाए हैं मिक्स वेज पकौड़े की रेसिपी। तो नोट कीजिए सामग्री। हमें चाहिए 2 कप बेसन, 1 प्याज पतले स्लाइस में कटा हुआ, 1 आलू, 1-2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा

चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, स्वादानुसार नमक और साथ ही चाहिए तलने के लिए तेल। मिक्स वेज पकौड़े बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में बेसन लें, उसमें हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, अजवाइन और नमक डालकर मिला लें। अब इसमें कटा हुआ प्याज, आलू, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा घोल तैयार कर लें। अब कढ़ाई में तेल गरम करें। अच्छी तरह गरम होने पर मिश्रण को हाथ या चम्मच की सहायता से छोटे छोटे भागों में तेल में डालें। मध्यम आंच पर पकौड़ों को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। अतिरिक्त तेल निकालने के लिए पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर रखें। गर्मा गर्म पकौड़ों को हरी धनिया पुदीने की चटनी के साथ परोसें। साथ में अदरक इलायची वाली गर्म चाय हो तो बरसात का आनंद दोगुना हो जाता है। सखियों, पकौड़ों को अधिक कुरकुरा बनाने के लिए बेसन में आप 1-2 बड़े चम्मच चावल का आटा मिला सकती हैं। और इसी विधि से हम पालक, गोभी, बैगन, पनीर, हरी मिर्च के पकौड़े भी बना सकते हैं। तो इस बारिश के मौसम में आप यह पकौड़े बनाएं, खुद खाएं और सबको खिलाएं और वर्षा ऋतु का आनंद उठाएं। अब अपनी कार्यक्रम सखी वंदना को दे अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। वक्त है छोटी से अंतराल का।

लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं रजनी अर्जरिया का गाया ये लोकगीत।

सायदा कुरैशी के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोकगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं अशोक कसेरा का गाई ये गजल।

0: अशोक कसेरा की गई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: बरसात के सुहाने मौसम में जगह जगह गड्ढों में भरने लगता है गंदा पानी, कीचड़ गंदगी का फैल जाता है साम्राज्य, भिन भिन आती है मक्खियाँ, पनपने लगते हैं मच्छर, मौसमी बीमारियाँ देने लगती हैं दस्तक।
4: दिल करे हाए, हाए। कोई ये बताए क्या होगा?
5: हमें कुछ नहीं होगा अगर हम सभी अपने घर और आसपास सफाई रखें, गड्ढों में पानी न जमा होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की शुद्धता का ध्यान रखें, ताज़ा हल्का भोजन करें, खुले में रखें, कटे फल और खाद्य पदार्थ न खाएं,
3: और
5: फिर लें आनंद इस मौसम का।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: पानी की हर बूंद है अनमोल,
3: बहने ना दें इसे बेमोल।
2: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
3: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दें हरियाली का गहना।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की आर डी बर्मन ने और फिल्म का नाम है अजनबी।

आनंद बख्शी का लिखा, एस डी बर्मन का संगीतबद्ध किया, लता मंगेशकर का गाया, ये फिल्म था का गीत था चुपके चुपके फिल्म से। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 2:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: 100 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे। यह परियोजना औद्योगिक विकास के विजन को नई गति प्रदान करेगी। परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
1: डिफेंस रक्षा क्षेत्र का संयंत्र प्रोपेलेंट गैस और अनेक उपकरणों का 3,000 करोड़ का भूमि पूजन किया जा रहा है। ये एक अपने आप में एक इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की डिफेंस कॉरिडोर के साथ शिवपुरी को जोड़ा जा रहा है। इस रक्षा के संयंत्र से हमारे देश के रक्षा करने वाले वीर जवानों को नई टेक्नोलॉजी के अस्त्र शस्त्र भी मिलेंगे।
0: अब से कुछ देर में शिवपुरी के स्थानीय पोलो ग्राउंड में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिले के 211 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। आज जकार्ता में आकाशवाणी को दिए एक साक्षात्कार में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि 6 से 8 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोग के कई नए क्षेत्र खुलेंगे और इन दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आभार व्यक्त किया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू हो गया है। मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत अगले 5 सालों में 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश किया जाएगा।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तीजनबाई ने महाभारत की कहानियों को अपनी सशक्त आवाज, रोबदार व्यक्तित्व तथा अद्भुत शैली की प्रस्तुति के साथ मंच पर जीवंत बनाया और उन्होंने छत्तीसगढ़ की समृद्ध पंडवानी परंपरा को भारत तथा विदेश में प्रतिष्ठा दिलाई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने शानदार प्रदर्शनों के जरिए तीजनबाई ने छत्तीसगढ़ की लोक कला शैली के लिए वैश्विक पहचान अर्जित की। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में वर्षा का सबसे अधिक असर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन P652 ने 2 नन्हे शावकों को जन्म दिया है। दोनों नवजात शावकों की उम्र लगभग 10 दिन के आसपास हो गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब दोपहर समाचार सुनेंगे दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज

0: सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हुर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित LNG के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। हुर्मुज जलडमरू मध्य से LNG की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई 1 किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है 1 साल 2 साल नहीं पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि VBG राम जी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है।

0: है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
2: The significance is immense.
1: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में AI गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक AI संवाद में AI पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो AI की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
4: दिन दिन
5: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत

0: की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
1: दोनों जने मिलके सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
2: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मुला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
0: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

0: बाल साथियों, जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: अपने सभी बाल मित्रों का उनके अपने कार्यक्रम बाल सभा में स्वागत है। और मित्रों, आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी अर्चना दीदी। बाल साथियों, जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपको सबसे पहले क्या क्या दिखाई देता है? सुबह की ठंडी हवा, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी, रंग बिरंगे फूल, हरियाली से ढकी हुई हमारी धरती, बादलों से घिरा आसमान और रिमझिम बरसती बारिश। कितना सुंदर लगता है ना ये सब। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती इतनी सुंदर क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है साथियों, पेड़ और वन। पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं, फल फूल देते हैं, गर्मी से बचाते हैं और धरती को हरा भरा बनाए रखते हैं। कई पक्षियों और जानवरों का घर भी यही वन होते हैं। सच तो ये है कि पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। वे बिना कुछ मांगे हमें बहुत कुछ देते हैं। और शायद इसी बात को याद दिलाने के लिए हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। वन महोत्सव का मतलब केवल पौधे लगाना ही नहीं है, बल्कि पेड़ों से दोस्ती करना, प्रकृति से प्रेम करना और ये संकल्प लेना भी है कि हम अपने आसपास की हरियाली को बचाएंगे। तो बाल मित्रों, इस वन महोत्सव सप्ताह में हम सब भी एक छोटा सा संकल्प लें, एक पौधा लगाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे और अपनी धरती को और भी हरा भरा बनाएंगे।
2: दीदी, अगर हम पौधे रोपते हैं तो हमारी प्रकृति कितनी अद्भुत लगेगी। मैं वाणी एक ऐसी ही कविता सुनाना चाहती हूँ। कितनी मनमोहक है ये प्रकृति, कितनी प्यारी है हमारी संस्कृति। ये हंसते खिलखिलाते सुंदर फूल लाते हैं, हर चेहरे पर बड़ी मुस्कान। सिर उठा के जीना सिखाते हैं ये नीला आसमान, ये दूध सा सफेद चांद और टिमटिमाते तारे करते हैं रोशन इस अनुपम जग को। ये सारे ये गुनगुनाते भंवरे और रंगीन तितलियां खुशियों से भर देते हैं सबका चंचल मन। पेड़ों को मत काटो और रखो हरा भरा हर वन। पेड़ों से मिलती है शुद्ध वायु, जिससे होती है मानव की स्वस्थ आयु। बरखा रुकने पर आया सतरंगी इंद्रधनुष, कर देता है हर कोमल दिल को खुश। यह बहती नदियां सबकी प्यास बुझाती, कल कल कर ये मधुर गीत सुनाती। ये सब है ईश्वर की प्रिय अद्भुत और कीमती देन, जिससे करना है हमें सदा अटूट प्रेम।
0: तेजस्वी भी अपने मित्रों को कुछ सुनाना चाह रही है।
3: दीदी, मैं भी अपने मित्रों को एक कविता सुनाना चाहती हूँ। हमें काटो नहीं, हमें मिटाओ नहीं, हम तो दोस्त है तुम्हारे, दोस्त कभी जो भूलेगा नहीं। शुद्ध ऑक्सीजन देगा, शीतल छाया में सुखी नींद लाएगा। हमें काटो नहीं, हमें मिटाओ नहीं, आज को सवारो कल मजबूत रहेगा। दिन के उजाले पर हमें देखो, रात के शीतल छाया पर हमें महसूस करो, हमें दोस्त मानो। हम दोस्त है तुम्हारे, हमें काटो नहीं, हमें मिटाओ नहीं।
4: दीदी, मैं संजना, मैं अपने मित्रों को एक कविता सुनाना चाहती हूँ। नवयुग का होगा निर्माण, बनी रहे भारत की शान। वृक्ष हमारे कितने प्यारे, कितने सुंदर, कितने प्यारे। समृद्धि की यह है पहचान, नवयुग का होगा निर्माण, बनी रहे भारत की शान। कौन कहाँ है किसे खबर है, अंधकार से सबको डर है। प्रदूषण से मुक्त रहे सब, पर्यावरण से युक्त रहे सब। एक लक्ष्य हो यही हमारा, सदा रहे सब इसका ध्यान। नवयुग का होगा निर्माण, बनी रहे भारत की शान। जब हम विद्यालय में पढ़ते हैं, संग साथी रहते नहीं लड़ते, जीवन अपना सफल बनाते, पर वृक्ष लगाना भूल क्यों जाते। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, हरित क्रांति को खुशियां पाएं। नवयुग का होगा निर्माण, बनी रहे भारत की शान।
0: आपने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई हैं और साथियों, गीत संगीत सुनने में भी आपको मजा आता है ना?
1: हाँ दीदी।
0: चलिए तो साथ मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बाल मित्रों, आजकल बरसात का सुहाना मौसम है। बारिश की फुहारें, कागज की नाव और गर्मा गर्म पकौड़े सबको अच्छे लगते हैं ना?
1: हाँ दीदी।
0: लेकिन इसी मौसम में कुछ बीमारियां भी तेजी से फैलती हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल फीवर, पेट की गड़बड़ी, डेंगू और

0: मलेरिया। साथियों, यदि इस मौसम में हम थोड़ी सावधानी रखते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, तो हम बीमार होने से बच सकते हैं। बाल मित्रों, बारिश में भीगने के बाद तुरंत सूखे कपड़े पहने, हमेशा साफ और उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी ही आप पिए। बाहर का कटा या खुला हुआ भोजन खाने से बचें। खाने से पहले अपने हाथ साबुन से अवश्य धोएं। घर और घर के आसपास पानी बिल्कुल भी जमा न होने दें, क्योंकि मित्रों, इसमें मच्छर पनपते हैं और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी का कारण बनते हैं फिर वो। साथियों, पर्याप्त नींद लें, हरी सब्जी, फल और पौष्टिक भोजन खाएं, और यदि आपको उल्टी, बुखार, खांसी जैसे कुछ लगता है तो तुरंत अपने मम्मी पापा को बताएं और डॉक्टर से परामर्श लें। बाल मित्रों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, इसीलिए जितना आवश्यक पढ़ाई करना और खेलना है, उतना ही जरूरी है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और अब हमारा कौन सा मित्र हमें क्या सुनाने वाला है?
1: दीदी, मेरा नाम मानसी है। बरसात का सुहाना मौसम है, इसीलिए मैं अपने मित्रों को ऐसी ही कविता सुनाना चाहती हूँ। देखो आए बादल छाए, इंद्रधनुष वर्षा संग लाए, गूंज रही कोयल की वाणी, कह रही धरती बरसो अब पानी। तुम्हें देखकर खिल उठी कलियां, चहकने लगी सूनी गलियां, मस्त मयूरों ने पंख फैलाए। देखो आए बादल छाए, झरने झरझर नदियां कलकल, सबके मन को हर ले पल पल, इंद्रधनुष ने दिए दर्शन, निर्जीवन में दिखे जीवन के लक्षण। कब से इस वर्षा को तरसे, अब तो ये घने बादल बरसे, प्रकृति का ये रूप सुहाना, सबके मन को भाए, देखो आए बादल छाए।
2: मेरा नाम कांजी है और मैं अपने मित्र को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। सुबह सुबह जब आंखें खुली, रिमझिम रिमझिम थी बरसात, उठकर बाहर जब देखा मैंने, दिखी मुझे हरी गीली घास। माँ ने जब आवाज लगाई तो मैं थोड़ा सा अलसाई, ठंडी हवा से मैं थराई, काश आज हो जाती छुट्टी तो घर में हो जाती मस्ती।
3: दीदी, मेरा नाम शुभांगी है और मैं अपने मित्रों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जब हम अपने पर्यावरण को साफ रखने की बात करते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि हमारे अकेले कुछ करने से क्या होगा, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारा एक छोटा सा कदम भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर हम प्लास्टिक बैग्स की जगह पेपर बैग्स इस्तेमाल करेंगे तब भी कई सारे पेड़ काटने पड़ेंगे, इसलिए हमें क्लोथ बैग इस्तेमाल करने चाहिए। हम जितनी बार फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं, फ्रिज की 30% तक कोल्ड एयर बाहर निकल जाती है और कमरे की वार्म एयर फ्रिज में चली जाती है, उससे वापस ठंडा होने में बिजली बर्बाद होती है। मित्रों, हमें अपने नोटबुक के दोनों तरफ लिखना चाहिए, प्रिंटर पेपर को भी दोनों तरफ इस्तेमाल करना चाहिए। मित्रों, हमें ब्रश करते समय या फिर साबुन से हाथ धोते समय पूरे वक्त नल खुला नहीं रखना चाहिए। इसी तरह हमें अपने पेरेंट्स को अपने कमरे और साथ ही पूरे घर में भी एनर्जी सेविंग लाइट बल्ब्स लगाने को कहें, साथ ही जब जरूरत ना हो तो उन्हें ऑफ रखना चाहिए। इससे आपके घर का लाइट का बिल भी कम आएगा। टोस्टर, टीवी जैसे उपकरणों को जब यूज नहीं कर रहे हो तब उन्हें अनप्लग कर देना चाहिए।
0: नन्हे साथियों, एक और गीत सुन लिया जाए?
4: हाँ दीदी।
0: तो चलिए साथ मिलकर सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: नन्हे साथियों, कहानियाँ सुनना तो आप सभी को पसंद आता है ना?
1: हाँ दीदी।
0: चलिए तो मैं आप सभी को एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक जंगल में एक यात्री जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। वो सोचने लगा कि ये सिक्का मेरा तो है नहीं, अब मैं इसे लूँ या ना लूँ पता नहीं किसका ये सिक्का गिर गया होगा। ना तो मैं इसे रख सकता हूँ, लेकिन मैं इसे फेंक भी तो नहीं सकता हूँ क्योंकि ये सोने का है। यही सोचता हुआ वो यात्री जब आगे

0: घोड़ा चला जा रहा था तो रास्ते में माला जपते हुए उसे एक साधु महाराज मिले। तब उसने सोचा क्यों ना इस सिक्के को साधु को दे दिया जाए। यात्री ने जब वो सिक्का साधु को दिया तो मित्रों पता है क्या हुआ? सोने के सिक्के को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा, भाई ये सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है, इसे तो तुम किसी गरीब को दे दो ताकि ये उसके किसी काम आ सके। साधु की ये बात मानकर यात्री आगे चला। उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली जा रही है। इतनी बड़ी सेना को देखकर वो सोचने लगा कि जरूर कोई ना कोई बात है जो राजा अपनी सेना को लेकर जा रहा है। तभी उसने एक सैनिक से पूछा, भाई ये राजा इतनी बड़ी सेना लेकर कहाँ जा रहा है? तब किसी ने कहा, ये एक बहुत बड़ा राजा है जो पड़ोसी देश पर आक्रमण करके उसे लूटने जा रहा है। सैनिक की ये बात सुनकर कुछ देर के लिए तो वो युवक सोच में पड़ गया। फिर वो जो युवक यानी कि यात्री था राजा के रथ के करीब पहुंचा और सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाकर कहा, महाराज इस सिक्के को आप रख लीजिए। राजा को भी आश्चर्य हुआ, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मैं इतने लोगों को बहुत कुछ बांटता हूँ और ये मुझे सोने का सिक्का दे रहा है। तब राजा ने पूछा, ये सिक्का तुम मुझे क्यों दे रहे हो? तो मित्रों उस यात्री ने कहा, महाराज एक साधु ने कहा था कि जो सबसे ज्यादा गरीब दिखे उसे ये सिक्का दे देना। तब राजा बोला गुस्से से, मैं राजा हूँ राजा, मैं तुम्हें गरीब लगता हूँ? तब वो यात्री बड़े शांत भाव से बोला, महाराज यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर तो नहीं जाते। यात्री की बात राजा को समझ में आ गई, उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। तभी राजा ने यात्री को धन्यवाद दिया और अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। मित्रों कैसी लगी ये कहानी?
1: बहुत अच्छी।
0: और इस कहानी से आपने क्या शिक्षा ली?
2: दीदी हमने इस कहानी से यह शिक्षा ली कि गरीबी या अमीरी पैसों से नहीं होती, अपनी सोच से होती है। हमें दूसरों के प्रति अच्छा सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा है।
3: दीदी मेरा नाम स्नेहल है। बरसात का मौसम है, मैं अपने मित्रों से बरसात से जुड़ी हुई कुछ पहेलियाँ बूझना चाहती हूँ।
0: तो साथियों आप तैयार हैं पहेलियाँ बूझने के लिए?
1: हाँ दीदी।
3: सारी धरती हरी बना दे, कर दे पानी पानी, ऋतु कौन सी बादल संग में, बोलो ऋतु सुहानी, बताओ बताओ।
0: कौन बताएगा?
4: दीदी मैं बताऊँ, वर्षा ऋतु।
3: सही जवाब, कांची ने सही जवाब दिया। दीदी एक और पहेली, कीचड़ पानी में वह रहता, फुदक जमी पर आता, टर टर बोले नाम बताओ, जंतु क्या कहलाता?
0: कौन बताएगा?
5: दीदी मेंढक।
0: स्नेहल सही जवाब है।
3: हाँ हाँ शुभि दीदी, सच्ची में सही जवाब है।
4: दीदी मैं भी अपने मित्रों से एक पहेली पूछना चाहती हूँ। दो अक्षर का नाम मगर, चलते रहना है काम, बड़े बड़े जीवों को इसकी गोद में मिला आराम, बताओ कौन बताएगा?
3: मैं बताऊंगी, नदी।
4: हाँ दीदी स्नेहल ने सही उत्तर बताया।
5: दीदी मैं भी अपने मित्रों से पहेलियाँ पूछना चाहती हूँ। चढ़े घटा घनघोर, भला तब कड़के चमक डराए, आंधी व बरसात साथ बोले कड़क कपाए, बोलो बोलो बताओ उत्तर।
4: दीदी मैं बताओ, बिजली।
5: हाँ दीदी कांची ने सही जवाब दिया। दीदी मैं अपने मित्रों से एक और पहेली पूछना चाहती हूँ। सबको जीवन देता जल, जल के दाता कौन, वृष्टि उनसे कहो धुआं से गरजे रहे ना मौन,
0: कांची।
4: दीदी पानी।
5: नहीं दीदी।
0: स्नेहल।
3: बादल।
5: हाँ दीदी स्नेहल ने सही जवाब दिया।
3: एक पहेली मैं पूछती हूँ। रंग रंगीला मन को भाता, धनुष बड़ा आकार, अचरज नब में धनुष दिखाता, बोलो क्या विचार?
0: कौन बताएगा?
5: दीदी मैं बताऊँ, दीदी इंद्रधनुष।
3: हाँ दीदी सही जवाब दिया शुभि दीदी ने।
5: अपने मित्रों को एक चुटकुला सुनाना चाहती हूँ। डॉक्टर ने सलाह दी, बीमारियाँ बहुत बढ़ रही हैं, बच्चे को पानी पिलाने से पहले अच्छी तरह उबाल लें। बच्चे के पापा डॉक्टर से कहते हैं, ठीक है सर, पर उबालने से बच्चा मरेगा तो नहीं।
4: दीदी मैं भी अपने मित्र को एक चुटकुला सुनाना चाहती हूँ। बारिश के दिनों में एक लड़का छतरी लेकर बाहर गया। उसकी छतरी में एक बड़ा छेद था, पर एक दोस्त ने उससे पूछा, तेरी छतरी में छेद क्यों है? फिर उसका दोस्त बोला, अरे वो छेद तो मैंने ही किया है ताकि बारिश बंद होने पर मुझे पता चल जाए।
5: दीदी, मैं अपने मित्र को एक और चुटकुला सुनाना चाहूंगी। एक बार रिंकू जंगल से होकर गुजर रहा था, तभी सामने पेड़ पर लटकते सांप को देखकर वह रुक गया और बोला, सिर्फ लटकने से कुछ नहीं होगा, मम्मी को बोलो हेल्थ ड्रिंक भी पिलाएं।
4: दीदी, मैं एक और चुटकुला अपने मित्र को सुनाना चाहती हूँ। एक लड़की होटल में खाना खाने गई। खाने के बाद बिल का भुगतान किया, फिर अचानक वेटर के पास गई और बोली, ककड़ी के दो टुकड़े रोज आंखों पर रखा करो और रात को पानी में मेथी भिगोकर सुबह छान कर पिया करो। वेटर ने हैरान होकर पूछा, मैडम आप ये सब मुझे क्यों बता रही है? लड़की, मुझसे किसी ने कहा था कि बिल चुकाने के बाद वेटर को टिप जरूर देना।
0: बाल मित्रों, आपने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, चुटकुले सुनाए, कहानी सुनाई, बहुत अच्छी पहेलियां बूझी। और साथियों, आप भी अपनी कविताएं, कहानियां, रचनाएं अपने मित्रों को सुनाना चाहते हैं तो आकाशवाणी के भोपाल केंद्र आकर अपनी रिकॉर्डिंग करा सकते हैं। आप पत्रों द्वारा भी अपनी रचनाएं हम तक भेज सकते हैं। साथ ही आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा ये भी पत्रों में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। पत्र लिखने का पता है, कार्यक्रम बाल सभा, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, श्यामला हिल्स, भोपाल 462002। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद,
1: जय

0: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल सभा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आभार व्यक्त किया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025

यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई के निधन पर दुख व्यक्त किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने शानदार प्रदर्शनों के जरिए तीजनबाई ने छत्तीसगढ़ की लोक कला शैली के लिए वैश्विक पहचान अर्जित की। और प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं शाम 5:33 और शाम 6:00। 7:21 से 7:30 पर सुनिएगा लोक संगीत। ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य लंदन में खेले जाने वाले महिला T20 क्रिकेट मैच का फाइनल मैच का आंखों देखा हाल हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से शाम 7:30 से खेल की समाप्ति तक। ये थे आज शाम प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 3:01 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारा ट्रांसमिशन कुछ देर के लिए बंद होता है। शाम 5:05 से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 मीटर पर सुन सकेंगे। इस बीच कार्यक्रम DTH पर जारी है।

आप सुन रहे हैं डीटीएच भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं रजनी अर्जरिया के गाए ये लोकगीत।

इसके साथ ही लोक संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। सुनते हैं अशोक केसरा की गाई ये गजल।

इसके साथ ही सुगम संगीत यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पहले सुनवाते हैं हंसते जख्मों फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी को। कैफी आज़मी के बोल हैं संगीत मदन मोहन का।

धड़कन फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में। समीर के बोल संगीत नदीम श्रमण का है।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गाना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, गीत लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आप सुन रहे हैं DTH का प्रसारण। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उपस्थित रहे। इस परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि 6 से 8 जुलाई तक होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर आभार व्यक्त किया। श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने शानदार प्रदर्शनों के जरिए तीजन बाई ने छत्तीसगढ़ की लोक कला शैली के लिए वैश्विक पहचान अर्जित की। और मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं DTH का प्रसारण। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहाण।

साथियों जय झूलेलाल। सिंधियत जी सुरहाण में तव्हां सभिनी खे मां मनोज सोनी पंजवाणीअ पारां सिक भरी नमस्ते। साथियों मींहं जी मुंद हली रही आहे ऐं मौक़ो आहे गुरु पूर्णिमा जो। असां सभु कोशिशि कयूं त हिकु हिकु वण पंहिंजे गुरुनि जे नाले ते ज़रूरु लॻायूं, छो जे वृक्षारोपण अॼु जे समय जी ख़ासि ज़रूरत आहे। पर्यावरण संतुलित रखणु, हवा खे शुद्ध करणु, जल संरक्षण ऐं जलवायु जे परिवर्तन खे घटाइण लाइ वण तमामु ज़रूरी आहिनि। वृक्षारोपण सां मिटीअ जो कटाव घटिजंदो आहे, जंहिंसां जे

ऐं विविधता खे वाधारो मिलंदो आहे। वण लॻाइणु हिकु ज़रूरी कमु आहे। इहो पर्यावरण ऐं मानव जीवन ॿिन्ही जे लाइ महत्वपूर्ण आहे। असांखे वधीक में वधीक वण लॻाइणु घुरिजनि ऐं उन्हनि जी देखभाल बि करणु घुरिजे, जीअं असां हिकु स्वस्थ ऐं खु़शहाल भविष्य सुनिश्चित करे सघूं। साथियूं, असां ॾिसूं था त अॼुकल्ह घणेई संस्थाऊं इन बारे में कम बि करे रहियूं आहिनि, जीअं त घणेई आयोजन हलाईंदा आहिनि, हिकु वण माउ जे नाले ते, हिकु वण देश जे नाले ते, हिकु वण समाज जे नाले ते। इहा तमामु सुहिणी ॻाल्हि आहे त अॼु जी पीढ़ी वण लॻाइण जे प्रति जागरूक आहे, ऐं इहो निश्चित रूप सां असांजे सुठे भविष्य जी पहल आहे। इन सां असांखे भविष्य में बि सुठी जलवायु, सुठो पाणी ऐं सुठो पर्यावरण मिली सघंदो। इहा हिकु सुठी पहल आहे अॼु जे युवा पीढ़ीअ जे पारां। असां बि इन आयोजन जो हिकु हिसो ठहूं। रुगो इन्हनि कार्यक्रमनि खे ॾिसी करे ख़ुशि न थियूं, बल्कि कोशिशि कयूं त असां बि इन में पूरी पूरी भागीदारी वठी सघूं ऐं वण लॻाइण में पंहिंजो सहयोग ॾेई सघूं।

0: साथियों, ही गीत गायो हो महेश चंदर ऐं सरोज रामचंदानी। हाणे अॻियां वधंदासीं अॼु जी ॿी ॼाण पासे। विश्व जनसंख्या दिवस इहो हिकु अहिड़ो ॾींहुं या कार्यक्रम आहे जेको हर साल 11 जुलाई ते मल्हायो वेंदो आहे। इन जो मूल उद्देश्य जनसंख्या सां जुड़ियल समस्याऊं ऐं पूरे विश्व में इन जे प्रति जागरूकता आणणु आहे। इहो आयोजन सन 1999 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जी गवर्निंग काउंसिलिंग पारां शुरू कयो वियो हो। जनसंख्या वृद्धि अॼु जे समय जी हिकु वॾी चुनौती आहे। अॼु जी वार्ता जो विषय बि इन सां ई जुड़ियल आहे, जनसंख्या वृद्धिअ जे करे चुनौतियूं ऐं उन्हनि जो समाधान। अॼु असां सां गॾु वार्ताकार आहिनि भेण किरण वाधवानी जी। अचो त ॿुधूं था इन्हनि खां अॼु जी वार्ता ते ॼाण।
1: साथियूं, सभ खां पहिरीं मां किरण वाधवानी तव्हां खे सिक ऐं प्यार भरियो जय झूलेलाल थी चवां। अॼु जो असांजो विषय आहे जनसंख्या वृद्धि चुनौतियूं ऐं समाधान। त अचो त असीं हिन वार्ता खे ॿुधूं। जनसंख्या हर देश जी प्रगतिअ जो संकेत ॾींदी आहे, पर जेकॾहिं इहा ई जनसंख्या नियंत्रण खां ॿाहिरि थी वेंदी आहे त देश जे विकास जे लाइ हिकु गंभीर समस्या थी वेंदी आहे। भारत जहिड़े विकासशील देश लाइ जनसंख्या वृद्धि हिकु जटिल ऐं बहुआयामी चुनौती ठही वई आहे। भारत जे विश्व जो ॿियों सभिनि खां वधीक जनसंख्या वारो देश आहे ऐं इहो अनुमान आहे त ईंदड़नि सालनि में भारत चीन खे बि पुठियां छॾींदो। त इन्हीअ करे इहो ॾाढो ज़रूरी आहे त असां जनसंख्या वृद्धिअ खां थींदड़ समस्याउनि खां बचणु असांजे लाइ उत्तम आहे। जनसंख्या वृद्धिअ खे पूरीअ तरह रोकणु सवलो त संभव आहे ई कोन, पर जनसंख्या खे नियंत्रण ऐं संतुलित करणु ज़रूरु संभव आहे। इन जे लाइ ज़रूरी आहे त सरकार, समाज ऐं समाज जो रहंदड़ हर माण्हू पंहिंजी भूमिका ज़िमेदारीअ सां निभाए। इहो हर माण्हूअ जो फ़र्ज़ु आहे जेसीं ताईं शिक्षा, स्वास्थ्य ऐं जागरूकता खे बढ़ावो न ॾिनो वेंदो तेसीं ताईं जनसंख्या वृद्धिअ खे रोकणु मुश्किल ई न पर नामुमकिन बि आहे। असांखे इहो सम्झणु घुर्जे, नंढो परिवार सुखी परिवार नारो जेको आहे सिर्फ़ु हिकु स्लोगन ई कोन्हे, बल्कि हिकु विकसित समाज जी आधारशिला पिणु आहे। जेकॾहिं असीं हाणे इहो निर्णय न वठंदासीं त सुभाणे हिकु सुरक्षित, संतुलित ऐं विकसित भारत जी कल्पना साकार न थी सघंदी आहे। चुनौतियूं ऐं समाधान। जनसंख्या वृद्धि हिकु ॾाढी वॾी जटिल समस्या आहे जंहिंजा घणेई कारण बि आहिनि ऐं परिणाम बि आहिनि। उन्हीअ जे समाधाननि जे लाइ शिक्षा ऐं स्वास्थ्य सेवाउनि में सुधार ऐं लैंगिक समानता जहिड़ा कम ज़रूरी आहिनि। जीअं त स्वास्थ्य सेवाउनि में वाधारो करणु, वधंदड़ जनसंख्या जे करे ग़रीबी बि वधंदी आहे ऐं ग़रीबी वधण सां बेरोज़गारी वधंदी आहे। इहा ग़रीबी ख़ासि करे विकसित देशनि ते ई पंहिंजो असर छॾींदी आहे। सेवाउनि जी गुणवत्ता में कमी ऐं गिरावट बि अची सघे थी ऐं इन सां स्वास्थ्य जी सेवाउनि ते दॿाउ बि पवंदा आहिनि। शिक्षा जी गुणवत्ता में कमी। जीअं जीअं जनसंख्या वधे थी तीअं तीअं शिक्षा जी प्रणाली ते बि उन जो घणेई असर पवे थो। जनसंख्या अगरि वधंदी सभिनि खे सुठी शिक्षा ॾियणु थींदो ऐं शिक्षा जी गुणवत्ता बि घटि बि। जागरूकता जी बि कमी। जनसंख्या वृद्धिअ जे ख़तरनि ऐं उन्हनि जे समाधाननि जे बारे में जागरूकता जो प्रचार ऐं प्रसार पण सुठे रूप में असांखे करणु घुरिजे ऐं उन्हनि उपायनि खे लागू करे जनसंख्या वृद्धिअ जी

चुनौतियुनि जो समाधान करण पिण सरल थी वेंदो ऐं हिकु बहितर उज्जवल भविष्य पिण आहे। हाणे

वठंदा। जनसंख्या वृद्धिअ खे पिण कंट्रोल कयो वेंदो। महिला शिक्षा ते जोर, ख़ासि करे युवा महिलाउनि ऐं महिलाउनि जी शिक्षा ते ज़ोर ॾिनो वञे, मतिलबु छोकिरी शिक्षा ते इहो पाठ पढ़ाइणु घुरिजे। ऐं महिलाऊं अगरि वधीक शिक्षित हूंदियूं त प्रजनन जी दर में बि कमी थी सघे थी ऐं जनसंख्या जे वाधारे ते कंट्रोल बि करे सघिजे थो। महिला शिक्षा जो ॾाढो रोल जनसंख्या वृद्धिअ में अदा थींदो आहे। आर्थिक अवसर, महिलाउनि खे जीवन यापन लाइ आर्थिक अवसर पिण प्रदान करणु घुरिजनि ऐं हुननि खे पंहिंजे जीवन ते नियंत्रण रखण जी मदद बि करणु घुरिजे। इन सां बि जनसंख्या वृद्धिअ ते कमी थी सघे थी। स्वास्थ्य सेवाउनि खे बहितर करणु, अगरि स्वास्थ्य जी सेवाउनि में बहितर कबो त परिवार नियोजन सां गॾोगॾु मातृ एवं शिशु दर बि घटिबी। अगरि उन्हनि खे सुठियूं सेवाऊं ॾिनियूं वेंदियूं ऐं उन्हनि खे प्रेरित कयो वञिबो त उन जो लाभ बि असांखे मिली सघिबो। लैंगिक समानता, महिलाउनि खे सशक्त ठाहिणु घुरिजे ऐं महिलाउनि खे सामाजिक ऐं आर्थिक मसलनि में फ़ैसिला वठण जी छूट बि ॾिनी वञे। हू वधीक सम्झी सघंदियूं इन सां, अगरि हू पंहिंजा फ़ैसिला सामाजिक ऐं आर्थिक स्तर ते पाण खणंदियूं त लैंगिक समानता ते ज़ोर पवंदो ऐं जनसंख्या जी दर पिण घटिबी। पर्यावरण अनुकूल शहरी नियोजन, साफ़ पाणी ऐं किफ़ायती दर ते आवास मुहैया करणु घुरिजे। हुननि खे सभु सुविधाऊं हुजनि त इन जनसंख्या ते वृद्धिअ खे असां रोके सघजूं था। दीर्घकालिक विकास लाइ टिकाऊ योजनाऊं ऐं समाधान में निवेश करणु घुरिजे। टिकाऊ ऐं बुनियादी ढांचे में अगरि असां निवेश कंदासीं त ॾाढो ज़रूरी थींदो ऐं जनसंख्या वृद्धिअ खे रोकण में असांखे पिणु सवलाई थींदी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वठणु घुरिजे। संयुक्त राष्ट्र संघ जहिड़नि वैश्विक मंचनि जे माध्यमनि सां सतत विकास ॾे ध्यानु ॾियणु घुरिजे ऐं उन्हनि जे लक्षणनि ते पहुचण जी कोशिश बि असांखे पिणु करणु घुरिजे। आर्थिक विकास ॾे बि ध्यानु ॾियणु घुरिजे। शिक्षा ऐं कौशल विकास ते सभिनीनि जो ध्यानु केंद्रित करणु घुरिजे ऐं आर्थिक रूप सां सभिनि खे सशक्त ठाहिणु घुरिजे, तब असांजी इहा समस्या हल थी वेंदी। शिक्षा खे प्राथमिकता ॾिजे। अगरि शिक्षा खे प्राथमिकता ॾिनी वेंदी त बि असांखे इन्हनि समस्याउनि खां मुक्ति मिली सघंदी। जो शिक्षित माण्हू आहे उहो सही निर्णय वठी सघंदो आहे। जनसंख्या वृद्धिअ जूं चुनौतियूं, हाणे असीं चुनौतियुनि खे ॿुधूं था। वधंदड़ जनसंख्या जे करे रोटी पाणी ऐं ऊर्जा सां गॾो अटे ऐं लटे जी समस्या पिणु खड़ी थी वेंदी आहे, जंहिं करे जीवन यापन करण में जे संसाधन खे उन्हनि कमी जो सामनो पिणु करणो पवंदो आहे। पर्यावरण जो प्रदूषण, असीं ॼाणूं था जनसंख्या जे करे पर्यावरण बि प्रदूषित थींदो आहे। जेतिरा वधीक माण्हू ऐं जेतिरी वधीक जनसंख्या हूंदी, ओतिरो ई वधीक कचिरो ऐं गंदगी बि हूंदी। पर्यावरण बि प्रदूषित थींदो ऐं ॾाढी गंदगी बि थींदी ऐं इन्हीअ चुनौती जो बि असांखे ई सामनो करणो पवंदो। हाणे असीं पहुचूं था इन जे निष्कर्ष ते, त निष्कर्ष छा थो निकिरे। जनसंख्या वृद्धि हिकु ॾाढी वॾी जटिल सामाजिक ऐं आर्थिक समस्या आहे, जंहिंजो समाधान सिर्फ़ कानूननि सां ई न थींदो, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य ऐं जागरूकता जे सामूहिक प्रयासनि सां ई संभव थी सघे थो। यदि संभव हूंदे प्रभावी कम न कया विया त प्राक

0: प्राकृतिक संसाधनन जी कमी ऐं जीवन स्तर में गिरावट जहिड़ियूं गंभीर स्थितियूं पैदा थियण में देर न लॻंदी, जंहिंजो सिधो असर असांजे मथां थींदो आहे। जय झूलेलाल।
1: जनसंख्या वृद्धि चुनौतियूं ऐं समाधान, अॼु जी इहा वार्ता हुई। वार्ता पेश करे रहिया हुया भेण किरन वाधवानी जी, तमामु सुहिणी ऐं सवले अखरनि में ॼाण जनसंख्या वृद्धि जे प्रति। हाणे अचो साथियूं, ॿुधूं था ही गीत।

0: ही गीत गायो हो कमला केसवाणी ए संगीत हो सी अर्जुन जो।
1: साथियों हिन गीत का पो जेका जाना है सा है अल्पसंख्यकन जे लाए सरकारी योजनाओं जे बारे में। अल्पसंख्यकन जे लाए भारत सरकार घणई योजनाओं हलाए रही आहे, जीअं त पीएम विकास योजना जेका जुड़ियल आहे कौशल ऐं उद्यमता सां, प्री व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पढ़ण वारे ॿारनि जे लाइ मैट्रिक करण जे लाइ छात्रवृत्ति सां जुड़ियल आहे हीअ सरकारी योजना, ऐं ऋण योजनाऊं याने जेके लोन थो मिले कर्ज़ो थी ॾिए सरकार उन्हनि सां जेका जुड़ियल योजना आहे सा आहे NMDFC। इन तरीक़े सां घणेई योजनाऊं सरकार पारां अल्पसंख्यकनि जे उधार जे लाइ, जीवन में सुधार जे लाइ, शिक्षा ऐं रोज़गार खे वधाइण जे लाइ हली रहियूं आहिनि। अल्पसंख्यक वर्ग पंहिंजा ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करे संबंधित कार्यालय मां इन्हनि योजनाउनि जो फ़ाइदो खणी रहिया आहिनि ऐं अॻिते बि खणी सघनि था। साथियों सरकारी योजनाउनि सां ही हिकु जुड़ियल ॿी नंढड़ी ॼाण आहे जंहिंजो नालो आहे विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG RAM जी। दरअसल दोस्तों जेका मनरेगा नाले सां सरकारी योजना आहे उन जी ही जॻह ते 1 जुलाई 2026 खां वठी इन VBG RAM जी योजना स्थान वरितो आहे। इन में मज़दूरनि जे लाइ साल में 125 ॾींहनि जी मज़दूरीअ जी गारंटी ॾिनी वेंदी आहे। साथियों इन सरकारी योजनाउनि जी ॼाण खां पोइ अचो त ॿुधूं था हिकिड़ो ई मज़ाकिया ॿारनि जो गीत।

साथियों ही गीत गायो भगवंती नावाणी ए साथियों ए इन गीत से गडु ही अज जे कार्यक्रम जो समय भी पूरो थी रहयो आहे। इजाजत दियो पहेंजे रेडियो साथी मनोज सोनी पंजवाणी के वरी मिलंदा से सब जो भलो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिंधिया जी सोरहाण। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से, जिसमें आज आप सुनेंगे धारावाहिक हंसना मना है का भाग 4।

लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी। एक ट्रेन की कहानी है जिसमें मैं सफर कर रहा था। वो किस स्पीड में चल रही है इसका अंदाज आपको आगे हो जाएगा। वो 20 की स्पीड में थी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में थी कि 50 की थी कि 100 की थी, इसका अंदाज जरा देखिए। चली जा रही है ट्रेन, गर्मी का मौसम है, पसीना पसीना हो रहे हैं हम। जो पंखे लगे थे वो सिर्फ दिखने भर के थे, वो चल नहीं रहा था, एक दो जरूर चल रहे थे। चली जा रही थी ट्रेन, अचानक वो ट्रेन रुक गई। थोड़ा सा जंगली एरिया आया। जब वो ट्रेन रुक गई तो मैंने पूछा कि यार अचानक क्या हो गया, ये ट्रेन रुक क्यों गई है, लगता कोई स्टेशन आया। तो एक दो लोगों ने कहा, नहीं नहीं नहीं साहब, स्टेशन नहीं आया है, क्या हुआ है, एक भैंस वो इंजन के आगे आगे आ गई है। तो हमने कहा, वो भैंस कट गई है क्या? कह नहीं साहब, कट नहीं गई है, वो खड़ी हो गई है। तो फिर क्या किया जाए? वो कह साहब, रेलवे के जो गार्ड हैं और दूसरे कर्मचारी हैं वो जा रहे हैं उस भैंस को आगे, इससे भगा देंगे, फिर अपनी ट्रेन चलेगी। हमने कहा बहुत बढ़िया। दो चार मिनट ट्रेन रुकी रही, फिर गाड़ी चालू हो गई। चलती रही ट्रेन, चलती रही ट्रेन, चलती रही ट्रेन, चलती रही ट्रेन, अचानक फिर ट्रेन रुक गई। मैंने कहा, भैया अब क्या हुआ, कोई स्टेशन आया क्या?

कोई स्टेशन आया क्या? तो लोगों ने कहा नहीं साहब स्टेशन तो नहीं आया। तो हमने फिर ट्रेन क्यों रुक गई? तो एक सज्जन बोलते हैं कि वो वाली भैंस जो पीछे आ गई थी ना वही वाली फिर से आगे आ गई है। अब साहब हुआ क्या, हम लोग तो चले जा रहे थे साम दाम दंड भेद, भाई सफर तो तय करना ही करना था, बहुत लंबा सफर था हमारा। चली जा रही ट्रेन, बड़ा मजा आया, गर्मी बहुत हो रही थी, अचानक वो ट्रेन एक स्टेशन पे रुक गई। हमने कहा चलो स्टेशन तो आया है, चाय वाय लेने लगा मैं, तो अचानक क्या देखता हूँ कि एक लड़का पंखे बेच रहा था, हाथ वाले पंखे जो हाथ से चलते हैं वो वाले पंखे लेके आवाज लगा रहा था।

चला पंखा। तो मैंने कहा भाई गर्मी तो मेरे को भी लग रही है, घंटे चार घंटे का सफ़र है, पंखा ले लिया जाए। मैंने पंखे वाले को बुलाया, हमने भाई पंखे कितने कितने के, एक है चार आने का, दूसरा है आठ आने का। हमने कहा भाई एक काम कर, दो चार घंटे के लिए कौन पैसे ज़्यादा खर्च करे, तू एक काम कर चार आने वाला दे दे। तो उसने मुझे चार आने वाला पंखा दे दिया। हम बड़े खुश कि चलो कुछ ठंडी ठंडी हवा आएगी। ट्रेन जब चलने को थी, बस उसके दो मिनट पहले ही मैंने वो पंखा लिया और उसको हिलाने लगा। मैं हिलाता हूँ तो क्या देखता हूँ, आधा मिनट भी वो पंखा नहीं चला, उसके अंदर जितने भी मटेरियल लगा था पंखे का पूरा ज़मीन में आ गया। हमने कहा अरे यार ये क्या हुआ, 25 पैसे खर्च किए और इसमें तो हवा ही नहीं निकल रही, ये तो टूट गया, दो मिनट एक मिनट में भी टूट गया। मैंने फ़ौरन पंखे वाले को बुलाया, हमने पंखे वाले इधर आना भाई, इधर आइए, ये क्या दिया आपने, ये कैसा पंखा दिया आपने, मैंने जैसे ही इसको हिलाया है तो ये तो टूट गया। तो पंखे वाला बोलता है आपने कितने वाला पंखा लिया था। मैंने कहा भाई चार आने वाला पंखा लिया था। आपने गलती की साहब, ये जो चार आने वाला पंखा और आठ आने वाला पंखा है इसमें ज़रा सा फ़र्क है। ये जो आठ आने वाला पंखा मैं देता हूँ ना, वो उसको ऐसे हाथ में पकड़ना पड़ता है और हाथ को ऐसे हिलाना पड़ता है तो हवा लगती है ना। हमने कहा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, और ये चार आने वाले की क्या खासियत है। इसकी खासियत ये है साहब, इसको हाथ में ऐसा पकड़ना पड़ता है और अपना सिर को हिलाना पड़ता है बड़ी ज़ोर ज़ोर से। हमने ट्रेन आगे बढ़ी, बड़ा मज़ा आ रहा था साहब, सफ़र का अलग आनंद आ रहा था। अचानक जहाँ मैं बैठा था उसके ऊपर की तरफ एक दो लोग बैठे हुए थे, कुछ इस तरफ बैठे थे कुछ उस तरफ बैठे थे। एक बुज़ुर्ग जैसे एक नौजवान साथी से कुछ पूछते हैं, वो बुज़ुर्ग ने नौजवान से पूछा क्यों भाई कहाँ जा रहे हो। तो लड़का बोलता है बुज़ुर्ग से, कहले मैं तो साहब जबलपुर जा रहा हूँ। कहले अच्छा अच्छा जबलपुर तो भाई मैं भी जा रहा हूँ। कहले अच्छा बाबू जी जबलपुर तो हम भी जा रहे हैं। कहले वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, जबलपुर में आप कहाँ रहते हैं। कहले जबलपुर में मैं तो वहाँ मतलब जो बड़ा फुहारा है, कमानिया गेट है, बड़ा फुहारा है, व्यापारी क्षेत्र है, बड़े अच्छे अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पर, वहाँ रहता हूँ। तो बुज़ुर्ग नौजवान से बोलते, कहले बहुत खूब बात है भाई, वाह वाह वहाँ तो हम भी रहते हैं। तो लड़का बोलता अच्छा बाबू जी कितनी अच्छी बात है, आप वहाँ पर कहाँ रहते हैं साहब। कहले वहाँ एक कृष्ण भगवान का मंदिर है उसके पास में रहता हूँ। तो लड़का बोलता कहले क्या बात है बाबू जी वहाँ तो हम भी रहते हैं, अच्छा कृष्ण भगवान के मंदिर के पास। बुजुर्ग बोलते हैं बहुत खूब बात है, वहाँ आप कहाँ रहते हैं। कि साहब कृष्ण भगवान के मंदिर के बिल्कुल बाजू से जो गली जाती है ना, जहाँ वकील साहब रहते हैं और एक कपड़े वाले भैया रहते हैं, एक किराने वाले भैया रहते हैं। हमने हाँ हाँ हाँ हाँ मैं वहीं रहता हूँ। फौरन बुजुर्ग बोलते कहले कितनी अच्छी बात है बेटा, देखो है जहाँ तुम रहते वहाँ हम रहते, जिस शहर में तुम रहते उसी शहर में हम रहते। तो बुजुर्ग ने बोला बेटा एक बात और बताओ, तुम्हारे मकान का नंबर क्या है। तो लड़का बोलता हमारे मकान का नंबर तो 115 है। तो बुजुर्ग बोलता कहले कितना इत्तेफाक, क्या बढ़िया बात है बेटा, कहले मेरे मकान का भी नंबर 115 है। मेरा हो गया दिमाग खराब। हमने यार ये दोनों बुजुर्ग और ये नौजवान एक ही शहर में रहते हैं, एक ही महल्ले में रहते हैं, पूरा एरिया एक ही गली मकान, वो नंबर वही सब कुछ वही, लेकिन ये आपस में पहचानते नहीं कि ये कौन है और वो कौन है। मैंने अचानक सवाल किया किससे, बुजुर्ग से। हमने क्यों बुजुर्गवार आप एक बात बताइए, आप दोनों एक ही शहर में रहते हैं, एक ही इलाके में रहते हैं, एक ही गली में रहते हैं, अरे एक ये तो छोड़िए आप एक ही मकान में रहते हैं और उसके बाद आप लोग आपस में पहचानते नहीं कि ये कौन है वो कौन है। तो बुजुर्ग को कुछ बोले, वो लड़का ऊपर से कूदा मेरे सामने और मुझसे बोलता है आप चुप रहिए, हम लोग बाप बेटे हैं, हम लोग बोर हो रहे थे इसलिए मनोरंजन कर रहे हैं। और अब एक और हंसोड़, विनय जैन, जब देखो तब दांत निपोरी।

0: इनकी आदत है, फिक्र नहीं करते किसी को पसंद आए या ना आए। देखिए तो क्या कहते हैं ये।
1: हंसी की एक फुलझड़ी प्रस्तुत कर रहा हूँ कि साहब, कॉलेज की एक लड़की अपने प्रिंसिपल साहब के पास पहुंची और बोली,
2: सर।
1: क्या बात है?
2: सर, कॉलेज के सभी लड़के मेरे को ना बुआ जी कह के चिढ़ाते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सर।
1: रुक जाओ बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। रमेश, आप खड़े हो जाइए, आप इनको बुआ जी बोलते हैं?
3: नो सर, मैं इनको बुआ जी नहीं बोलता।
1: बैठ जाइए। सुरेश, आप खड़े हो जाइए, आप जरूर इनको बुआ जी बोलते होंगे। भले माफा भगवान की कसम खा के कह रहा है, हम तो बोला ही नहीं सकते। भले भैया, भगवान ने तुम्हारा मुंह दिया है, कैसे नहीं बोल सकते, कैसे नहीं बोल सकते? भले माँ साहब ऐसे नहीं बोल सकते, काहे कि सारा कॉलेज तो हमें फूफा जी कहता है। एक ऐसे साहब जिन्हें बोलने में बहुत परेशानी महसूस हुआ करती थी, बहुत सारी बातें अटक अटक कर बोला करते थे। तो जैसे ही साहब प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए अखबार पढ़ रहे थे और एक सज्जन अपना बहुत सारा सामान लेके प्लेटफॉर्म में एंट्री हुए, अब उनको क्या मालूम कि सामने वाले साहब अटक अटक के बोला करते हैं। बड़ा हाथ में सामान वगैरह लिए हुए थे, एक हाथ में छाता था, एक हौलदार कंधे में था, एक संदूक दूसरे हाथ में था, एक बंदूक उस कंधे में थी और पोजीशन वजन से बिल्कुल डाउन हुई जा रही थी। जैसे ही प्लेटफॉर्म में एंट्री हुए, उनने आना देखा, ताओ अटक के बोलने वाले साहब के पास पहुँच के फ़ौरन सवाल किया, क्यों भाई साहब, वो भोपाल जाने वाली राजकोट एक्सप्रेस कहाँ है, जल्दी बता दो, बहुत भजन है भाई। तो अटके लाल साहब, जिनका पूरा नाम अटक लाल झपट सिंह था, उन्होंने फौरन जवाब दिया,
4: किसी और से पूछा होता तो बता दिया होता, अब तक भोपाल जाने वाली राजकोट एक्सप्रेस वो जा रही।
1: साहब भी बड़े गुस्से में आ गए, अटकलाल झपट सिंह जी, और बस स्टैंड पहुंच गए। बोले साहब, मैं बस से जाऊंगा। सारे लोग बस स्टैंड पहुंच गए। बस जैसे ही चली, सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, एक सज्जन बस में और चढ़े और वो भी बोलने में अटकते थे, और बैठे कहाँ, वो अटकने वाले सज्जन के बाजू ही में। जैसे ही बस चली, जो नए सज्जन थे उन्होंने पुराने सज्जन से सवाल किया,
4: क्यों भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सीता, और तुम्हारा नाम क्या है?
3: मेरा नाम भी घसीटा है, मगर उतना नहीं जितना तुमने घसीटा।
1: अपनी श्रीमती जी को लेकर साड़ी की दुकान में पहुंचे, काउंटर मैन से जाके क्या बोलते हैं,
4: क्यों भाई साहब, साड़ी है?
1: तो काउंटर मैन जवाब देता है, हाँ भाई साहब साड़ी है, मगर इतनी लंबी नहीं है। अपने चाचा जी की किताबों की दुकान में पहुंचते हैं। किताबों की दुकान चाचा जी की बुक्स एंड स्टेशनर्स के नाम से एक बाज़ार में खुली हुई थी, और चाचा जी की जैसी दुकान में जाते हैं तो चाचा जी से पहुंचते ही से चाचा जी भोजन करने के लिए जाने वाले रहते हैं, तो फौरन वो अपने भतीजे को बुलाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा हुआ आप आ गए, हमारी दुकान में बैठो और हम खाना खाने जा रहे हैं, और भतीजे को बिठा देते हैं। तो साहब जैसे ही चाचा जी ने उनसे बोला
5: कि देखो तुम अटक बेटा, तुम यही दुकान में बैठो और मैं खाना खा के आता हूँ, समझे, और ध्यान रखना ग्राहकी का जरा।
1: ठीक है चाचा जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे ही चाचा जी गए, फौरन एक ग्राहक आया और इनसे पूछा, भैया वो संस्कृत की कुंजी देना। साहब ने फौरन कुंजी निकाल के सामने काउंटर पर रख दी, कितने की?
4: 7 रुपये 75 पैसे।
1: क्या भाई साहब आप मजाक कर रहे हैं, इतनी बड़ी दुकान चलाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमारा छोटा भाई 7 रुपये में लेके गया है, 2 घंटे बाद ऐसा बिल्कुल 75 पैसे रेट बढ़ गया, बिल्कुल गलत है ये तो।
4: तुम चुप रहो, वो लड़का 75 पैसे बोलने के पहले ही ले गया।
1: हाँ। एक साहब बहुत ज़्यादा गप हाँकने के शौकीन थे, शिकार के तो शौकीन थे ही, अपने किसी ज़माने की बात लेकर बैठ गए, चार लोगों के बीच में अपना शिकार का वाकया सुनाने लगे।
6: बोलो साहब, हुआ यूं कि मैं गया जंगल और मैंने देखा कि एक शेर चला जा रहा है। अब मुझे आया गुस्सा तो मैंने निकाली अपनी बंदूक। जैसे निकाली बंदूक तो शेर ने बंदूक देखी तो एक छलांग लगाई, और शेर ने जैसी छलांग लगाई तो मैं घबरा गया, और जैसे मैं घबराया तो शेर ने मेरे को दिया पटक।
1: बोले फिर तो अचानक किसी ने उनको बताया, बोले साहब आपका टेलीफोन आया, कोई आपको फ़ोन पे याद कर रहा है। तो भाई साहब यहाँ गप सुनाते सुनाते वहाँ टेलीफोन पे किसी के साथ बात करने चले गए। आधा पौन घंटा कोई से टेलीफोन पे बात करते रहे, लौट के जैसे ही आए लोगों ने बोला हाँ साहब फिर आगे क्या हुआ। तो साहब तो वैसे ही गप्पी भूल चुके थे कि क्या सुना रहे थे। बोले साहब वो आप शेर का वाक्य सुना रहे थे कि गुस्से में। बोले हाँ, फिर हम लोग तो साथ में घूमने गए और बहुत देर बगीचे में बैठे रहे, फिर एक साथ फिल्म देखी और नाश्ता वगैरह किया, वापस आके सो गए।
7: भाई वाह, लतीफे सुनाने में मकरंद बड़नेरकर का जवाब नहीं, यकीन नहीं आता ना, तो चले सुने इनको।
8: एक ट्रैफिक हवलदार सड़क पर खड़े ट्रैफिक का संचालन कर रहे थे, अचानक उन्होंने एक साइकिल वाले को आते हुए देखा और डंडा फटकारते हुए बोले, अरे रुक रुक, बिना हेडलाइट और बिना घंटे की साइकिल चलाता है। साइकिल वाला बोला, हवलदार जी हट जाइए, इसमें ब्रेक भी नहीं है। एक क्लास के दौरान मास्टर जी पढ़ा रहे थे कि पढ़ाते पढ़ाते उनका ध्यान अचानक एक छात्र पर गया। सभी छात्र तो उनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उस छात्र का ध्यान किसी और जगह लगा हुआ था। उस छात्र का नाम गया प्रसाद था, और छात्र जो था वो कमरे के एक कोने में बिल में एक चूहे को अंदर और बाहर आते हुए जाते हुए देख रहा था। बार बार चूहा अंदर आ रहा था, बाहर जा रहा था, और छात्र का ध्यान बिल्कुल उसी चूहे की ओर था। मास्टर जी परेशान हो गए, क्या बात है, कहीं और ध्यान दे रहा। मास्टर जी ने लगभग चीखते हुए कहा, अबे गया। लड़के ने कहा, नहीं मास्टर जी, अभी पूंछ बाकी है।
7: ध्यान रहे, आप सुन रहे हैं एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है हस्त

0: जन्मदिन आपने बहुत मनाए होंगे, खूब मनाए होंगे, बड़े प्यारे प्यारे मनाए होंगे, मगर हमारे दोस्त गोपाल तिवारी शामिल हुए एक खास जन्मदिन पर। सुनिए,
1: घटना गांव की है, और गांव की इसलिए क्योंकि भारत गांव का देश है, गांव में बसता है, और ये पटेल साहब हैं, सरपंच बन गए, पटेल इनकी उपाधि है। उन्होंने अपने बच्चे का जन्मदिन कैसे मनाया वो एक घटना मैं आपको सुना रहा हूं। के पटेल साहब ने पटेलन से पूछा,
2: अरे काय पटेलन?
1: हाँ बोलो।
2: वो अपने गुड्डा को जन्मदिन कब है?
3: गुड्डा को जन्मदिन समझ लो आप, बड़ी जीजी को लड़का छठ में भाव और जी छोटी को भाव तेरह महीने के बाद चौथ को, और जी समझ लो पंचमी को है, तो जो समझ लो कि हर छठ के दूसरे दिन की बात है। अरे तुम यार हर छठ टीजा ना बताओ, तुम मतलब डेट बताओ ना। हाँ समझ लो हम तुम्हारा बोला हुआ रहो या वो तैसे नौकरी को, और तुम गए तुमने फिर कैंसिल करवा दई, उसके बाद पानी गए बरसो रहो खूब कड़क के बिजली, फिर ओरा गिरे थे वो दिन। अरे तुम यार खगलो नहीं यार, तो मतलब बताओगे ये हुआ कब है? डायरी देखो। अच्छा एक मिनट देख रहे ला कर डायरी, डायरी वायरी उन्होंने देखी, और डायरी देख के बाद उन्होंने बताया कि ये कब हुआ। जे समझ लो कि तीज के दूज की बात 22 तारीख को भाव, और आज है समझ लो 20 तारीख, कल छोड़ पा रहा हूँ जन्मदिन। हाँ तो कहने लगे ठीक है, अब वो पहले जैसा जन्मदिन नहीं हो। क्या मतलब पहले जैसा नहीं होगा? अरे पहले अपन वो चौक और वो सब नहीं कर लेते रहे, मतलब बुला के आरती पूजा टीके चंदन, वो मतलब नहीं होगा। काय अब काय ना हुआ भाई, गुड्डा को तीसरा जन्मदिन वो काय ना हुआ? तो बोले अरे नहीं समझो तुम, अब हम बन गए सरपंच। हाँ बात वो तो बन गए, खूब वोट मिले, अब जी जो है गुड्डा जो है इसका जन्मदिन अपन शहर की स्टाइल में मनाएंगे, लोगों को लगे तो कि नहीं मतलब अपन सरपंच बन गए ना, मतलब थोड़ा कादर खड़ी हो जाए जरा, समझा करो बात को। अब साहब ये हुआ कि उसने कहा कि कैसे करेंगे? करना कुछ नहीं है, अब जैसा आप बोले वैसा करेंगे।
2: एक काम करेंगे, हम शहर से वो कैंडल वैंडल और केक वेक वो सब पूरा ले आएंगे, और तुम पूरे गांव में चर्चा बिल्कुल भजवा देना, समझ गए ना, और फिर उसके बाद जो है अपन बढ़िया सेलिब्रेट करेंगे।
1: बात डिसाइड हो गई, कंप्लीट हो गई कि ऐसा मनाना है। पटेल साहब शहर चले, और शहर से जैसे ही लौट के आए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया, जिस दिन गुड्डा का बर्थडे है उस दिन दरवाजा उन्होंने खटखटाया।
2: पटेलन पटेलन
3: एक मिनट आ रहा है।
2: अरे क्या कर रहे हैं, जल्दी खोलो यार दरवाजा।
3: एक मिनट आ रहा है, तुम मतलब ऐसी जल्दी मचा।
2: अरे जल्दी खोलो, मतलब डेढ़ घंटा हो गया हम मतलब खड़े हो, तुम कहाँ रहे हो अंदर?
3: अरे भाई मतलब अब रार की दाल चढ़ी है, उधर खिचड़ी चढ़ी, एक तरफ भी माता रानी की रानी भी बना रहे, अब एक आदमी के तो काम करे मतलब आ तुम खाली यहाँ चले आए।
2: अरे हाँ यार वो कहो कि मतलब गाड़ी जो है हमारी खराब हो गई, तो ओके मतलब पीछे इंजन में काम निकलाओ, अब इंजन बनवाओ दो चका पंचर, चका बनवाओ दो फिर पीछे चका पंचर, जे माने पूरी नपोर चौदस में मतलब पूरी दिक्कत हो गई, और धर माने लाओ करो सामान जो है तो छूट गो।
3: हाँ मालूम है तुम्हारे भरोसे कच्छू नहीं हो सके।
2: अरे नहीं मतलब ऐसी बात नहीं, हम कोशिश हमने पूरी की थी, सब सामान ले लिया था, वो वहीं वो गैरेज में छूट गया।
3: तुम्हारे भरोसे रहते जो चार चार ठैया लड़का बच्चा नहीं, तुम आ जाओ तुम तो अंदर, अब हमने सब व्यवस्था कर ली है।
1: अब साहब ये अंदर आए और उन्होंने कहा अब ये बताओ कि अब वो कैसे मतलब करेंगे, अब फिर चौक बधाव वाला होगा?
3: नहीं ऐसा नहीं कहा, आप हमें कहीं से समझ रहे भाई, जब आप सरपंच तो हम भी तो कछु भाई, और ऐसा नहीं हम भी खूब पढ़े लिखे हैं।
1: अच्छे कहाँ पढ़ गई?
3: नहीं भी प्रौढ़ शिक्षक चल रहा हूँ आजकल, रेडियो में बता रहे पढ़े पढ़ाए जीवन बनाए, और एक नहीं एक दूनी दो चौके पाँच छक्के आठ, अलग खूब बढ़िया पढ़े हमने, कोचिंग क्लास पढ़ी हमने।
2: कौन से पढ़ लाई?
3: पंडित जी की ललकच पढ़ी, पंडित जी की बहुत बढ़िया पढ़ा, तुमने पढ़ा दो हमें।
2: तो ठीक है तुमने व्यवस्था क्या करी जो दिखाओ हमें?
3: केक बना लो।
2: केक बना लो? केक कहाँ से बना लो तुमने?
3: नहीं टीवी पे हमने बाकी रैप सीट देखी थी।
2: क्या देखी रही?
3: रैप
2: अरे रैप सीट नहीं यार, वो तो तेल होता रैप सीट, रेसिपी रेसिपी बोलते हैं, दो क्लास और पढ़ लेती बाबू की यहाँ,
3: फालतू बात ना कर तुम बाबू की यहाँ, इतो दही दो सब अंदर कर लो बाबू खुद तुम बिल्कुल एकदम।
2: ठीक है भाई ठीक है, गुस्सा नहीं हो तुम, मतलब जो बताओ कहाँ केक कहाँ?
3: जी जी धरो आ देखो टीवी में धरो टीवी।
2: अरे बहुत गजब बहुत बढ़िया यार, एक बात बताओ तुम।
3: हाँ वो पूछो
2: जी, इतना बढ़िया केक तुमने बनाया कैसे? इतना बड़ा इतना सुंदर मतलब बनाया है, ऐसा लग रहा कम से कम 10 किलो से कम का नहीं होगा ये केक, कितना बढ़िया बनाया, कैसे बनाया गया, तुम्हें आइडिया कैसे आया?
3: नहीं कछू नहीं, टीवी में हमने रेप शीट देखी, हमने दिमाग लगाओ कि अब जो केक तो हमें बनाने न वो बन है ना कच्छू, कैसे बनाए तो हमने जुगाड़ करो। हम गए कहाँ बाजू में भी जो दुकान है ना किराना की, वो कहाँ गए हम? कहीं फिर हमने उसे कही, हमने भैया 6-8 फैमिली ब्रेडें दे दू।
1: कौन सी ब्रेड है?
3: फैमिली ब्रेड। अरे फैमिली ब्रेड बोलते यार बड़ी वाली को। हाँ फिर तो बोले फिर हम ब्रेड लाए और ला के ब्रेडों की किनार हमने काट के माहे करी।
1: अच्छा मतलब फेंक दी?
3: हाँ मैं फेंक दी, अलग कर दी। फिर हमने ऐसी 4-6 ब्रेड धारी और गुड़ की बनाई चाशनी, तो गुड़ की चाशनी फिर ब्रेड, फिर चाशनी, फिर ब्रेड, फिर चाशनी।
1: बहुत बढ़िया। फिर क्या करो?
3: फिर कछु नहीं, गुड़ की चाशनी माहौ डार के अपनो हरी रंग होली को बचो तो वो रंग 2-4 प्रकार के कलर और टेसू को रंग बना लो अच्छे रंग रोगन कर दो झगा झगके। फिर और क्या करो? नहीं दूध की मलाई बची तो आइसिंग कर दाई होगी बन गए धरो का। और सुनो ऐसी पन्नी की पंगड़िया बनाई हमने और पंगड़िया बना के उसके अंदर भरी चाशनी में अपन थोड़ी सी मलाई मिला के और रंग मिला के अच्छे भरो, ऊपर से बांध के बढ़िया डिजाइनदार को नाम लिख दो हैप्पी बर्थडे टू यू गड्डा और 3 लग दो, 30 रो जरा दे 3 लिख दो और अपना सिग्नेचर मार दे बढ़िया कैसा। अच्छा एक बात बताओ बेटा।
1: हाँ पूछो।
3: अपने से मतलब कोई को जन्मदिन हो, शादी ब्याह हो, चाहे कोई आदमी दुनिया में नहीं रहे।
1: हाँ तो तुम्हारा कहवे को मतलब का कौन नहीं रहो?
3: नहीं वैसे नहीं पूछ रहे हम, दो आदमी को अपन जरूर बुलाते।
1: कौन?
3: एक तो वे पंडित जी।
1: हाँ तो वो तो ठीक है।
3: और दूसरा कौन? खवाजा।
1: अरे तुम यार, तुमको पता नहीं कब अकल आएगी।
3: क्यों कब हुआ ऐसे अकल आए?
1: भाई देखो ऐसा है कि ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं ये विदेश का है, वहां कहां पंडित जी और वहां कहां मतलब खवासन।
3: भाई ऐसा है कि देखो अब एक दिन का काम तो है नहीं, आज तुमने जो करवा लाओ कल भी आने पर फिर दूसरो तुम फंक्शन करवाओ। उन्हें बोला तो कहें काए जन्मदिन में नहीं पूछो, अब कह रहे हैं कि आ जाओ हैं जज की भाई से फिर पूछो, मतलब पूरे काम है मतलब हमें मतलब है खोटे काम हम करवाएं हैं और मतलब जो अच्छो काम मिलवे दिलवे को तो दूसरो, ऐसा नहीं हो सके भाई।
1: ठीक है तुम देखो एडजस्ट करना, पंडित जी को बुलाओ। पंडित साहब नमस्कार। पंडित जी प्रणाम, चरण छूते हैं। पंडित जी ये जो कार्यक्रम है आपको निमंत्रण दिया आप आए, बड़ी हर्ष की बात है, लेकिन इस कार्यक्रम में कोई पूजन नहीं होना है। असल में ये हम लोग इस बार पाश्चात्य संस्कृति से अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं, आजकल शहरों में जैसा मनाया जाता है, तो आपसे क्षमा चाहेंगे। आप आए बड़ा अच्छा हुआ। आप एक काम करिए, नाश्ता करिए और ये छोटी सी दक्षिणा।

0: रखिए और क्षमा करेंगे आप। अरे नहीं, वो तो कोई बात नहीं, हम तो आपके घर के आदमी हैं, मतलब जब भी आप याद करें ऐसी कोई बात नहीं। पंडित जी ने साहब नाश्ता किया, दक्षिणा ली और चले। लेकिन जो खवासा होती है वो कुछ कुछ जगह पंडित जी से ज्यादा प्रैक्टिकल दिमाग रखती है, और उसका प्रैक्टिकल दिमाग कैसे चला देखिए आपकी नजर, कि उसने पटेलन को हैंडल किया। कैसे? देखो भाई, ऐसा कि हमने खूब शहर में देखे हैंगे, करवाए हैं, और हमें ऐसी न बताओ, हमें सब समझ में आते ऐसा करवाने हैं। एक काम करो, बलगुआ हमने सबको दे दो, और बलगुआ दे के बाद हमने जो जमा दी थी बिल सब कर दो। अच्छा, फोटोग्राफर को बोलो कि नहीं बोलो? फोटोग्राफर को बोला के लाओ। एक लचर पचर फोटोग्राफर उनको भी बुलाया, वो भी बेचारे मतलब ऐसे समय के मारे थे, लचर पचर टाइप की, मतलब काम उनका बड़ा ढीला ढाला, सुस्त अपने चले आ रहे हैं। अपना साइकिल भी उनकी ऐसी है खट्ट पट्ट घैटर वाली साइकिल। वो साहब आए कैमरा वैमरा लेके, और फिर उसका गुड्डा का बर्थडे बनाना शुरू। केक रखा सेंटर में। हाँ अच्छा, जय बताओ कि गुड्डा कौन सा जन्मदिन है? मतलब अब जी समझ लो कि पहलो जन्मदिन भाओ, तो जो दूसरे तीसरो है जे भाई, देखो यहाँ से पहले जन्मदिन में दद्दा ने काम करो, करो नहीं करो, दूसरे जन्मदिन में फिर आपने करो, और जो तीसरे फुआ को नेंग लगा, फुआ को बुलाओ। अरे तुम यार, उसमें कहाँ फुआ हुआ भाई, हमारे साहब चले, हम पूरे डायरेक्शन हमारे यहाँ थोड़े हैं, मतलब शहर में करवाए हम। फुआ को बुलाओ। अब फुआ को बुलाया गया भाई, केक रखा गया। हाँ चलो जल्दी से, अच्छा एक काम तो करो, का बेक गुड्डा को तीसरे जन्मदिन है, तीन ठैया कैंडल तो धर, तुम समझो कहीं नहीं अभी लफड़ा करवा, क्या होगा तो हमें तो कान में बताओ ना। अरे पटेल साहब भूल गया सामान, हमने जुगाड़ करके केक बनाओ, और तुम अब मतलब कैंडल फैंडल के बीच कच्छू नहीं, जहाँ हम हैं तो गम नहीं। अब भाई हम व्यवस्था करवाए थे तुम्हें, कहा जब तुमने जुगाड़ से केक बना, हम कछू नहीं कर सके तुम्हारे आने, तुमने तो कर। अब भाई देखो, ए बेटा छुट्टू होते आओ,
1: हाँ आओ, तुम एक काम करो तीन ठेंगे भपका ले आओ।
0: अब साहब तीन भपके मंगवाए गए, वो मिट्टी के तेल के होते हैं, और उनको जलवाया गया कैंडल पे धर के। पटे जो खवासन है उनने पटेलन के यहाँ जलवाया। लेस वेन है, लेस दो। अच्छा लड़का बच्चा जितने सब पीछे आ जाएं। हाँ, और अब ये तो बताओ कि जैसा ही सब जन केक कटे और सबको चिल्लाने हैप्पी बर्थडे टू यू गुड, अरे एक काम तो हम रह गई, पहले जैसा ही समझ लो कि हम तुमसे कहें गुड्डा, तुम पहले केक फूकियो, का बेभपकन खो। हाओ पहले एक काम और करो। अब कहा तुम ये काम करके काम बढ़ा जा रहे हैं, जल्दी करेगा नहीं तुम, बिल्कुल नहीं तो डेढ़ घंटा हो गया भाई। पहले फुआ ऐसी आ, तुम ऐसे बाजू में खड़े हो जा, पहले केक की निछाड़ करो। ऐसी गजा बता रहे हैं, केक की निछाड़ रहा तक, देखो जो गांव काम है केक की निछाड़ करो, जल्दी करो। उन्होंने भी केक की निछाड़ हमने आज तक सुनी नहीं, खुटिया के पैसे 2 रुपये दे दीजिए। अब दो दो में काम न चल है, 10 को निकाले लूट है, केक की निछावर है ऐसे कम ना ले हम, वहाँ केक की निछावर करो। केक की निछावर साफ हो गई, और केक की निछावर के बाद 10 रुपये ने, हाँ एक माहौर कटोरी ला, माहौर राहौर लगाया गुड्डा को, बाकायदा माहौर टिप कीप की लगाई, और उसके बाद में केक का कटने का आइटम शुरू हो रहा है। उसके पहले उन्होंने कहा, अच्छा एक बात और, अब कहे गो एक बात और देखो, मैं नेंग के तुमने 10 रुपये निछावर के दे, निशानी भी तो दो। काहे की निशानी भाई? देखो अब गुड्डा को जन्मदिन हम याद रखें हैं, तो एक ठैया जो सूट गुड्डा को सलवार है तुमने छोटे होगा पार्टी रखो दे दो। कहने लगे फिर का, चलो दे और 5 कुरे गेहूँ दे, हमने 5 कुरे गेहूँ दे। और बोलो अब गुड्डा तुम एक काम करो, पहले जो भपकन को फूको। तो गुड्डा ने जैसी भपकों को फूका, बेटा गुड्डा ऐसे नहीं अच्छे से, अरे फूंक बे कह रहे, थूको नहीं, बस सब खा चल ला हम बुझाए दे रहे। उन्हें लाए खवासन ने और भपका बुझाए अलग करे, देखो बुझ गए। आप गुड्डा एक काम करो, चक्कू से, चक्कू तो लाओ। ए बेटा ऐसे हाँ, तुम्हारा को नाम
1: लपका?
0: अरे लपका ते लपक के जरा चक्कू लिया।
1: बाऊ नहीं मिल रहा?
0: अरे तो बाजू में देख,
1: बाऊ उनका भी नहीं है,
0: पड़ोस में देख ले,
1: मुझे जीत लो तुम्हारे थे चक्कू नहीं, उनका भी नहीं मिल रहा।
0: एक काम करो, तुम तो हंसिया ले आओ। गांव का परिवेश है, हंसिया मंगवा लिया गया साहब, और हंसिए से केक कट रहा है, एक नई बात है। और जैसे ही केक कटे तो उन्होंने कह दिया खवासन की, सबको चिल्लाने हैप्पी बर्थडे टू यू गुड्डा, और न चिल्ला तो फिर केक न मिले, जो समझ लो हाँ टाफियाँ बांटे भी न मिले। तो साहब जैसे ही केक के लिए उसने गुड्डा ने हंसिया उठाया, और बुआ ने पकड़ा, साथ में उनके मम्मी पापा पटेल साहब पटेलन पकड़े हैं, और उनने बोले हाँ चिल्लाओ,

0: पूरो केक को कीमा बना दो उन्हें। तुम चटनी निकाल डालो, अलग करो, अलग करो। बस हंसिया खो। अरे राम, पूरो केक
1: बाबू हमें हंसिया
0: का करो तुम। हंसिया
1: नहीं, हमें केक लगो
0: का करो केक को। हम वो चाट जी कट जाए, हंसिया चाट हो तुम, अलग करो।
1: नहीं गुड़ तो दे,
0: गुड़ की हंसिया बात अलग है, जो केक को हंसिया है गारे में फंस गया है।
1: खैर साहब, अब वो हंसिया अलग किया गया। अच्छा एक काम करो, केक डिस्ट्रीब्यूट करो।
0: क्या करो
1: डिस्ट्रीब्यूट?
0: अरे यार डिस्ट्रीब्यूट अंग्रेजी मत बोलो, अंग्रेज चले गए। तुम केक बांटो सबको।
1: एक परात में केक धरा गया और परात में केक धर के सबको बांटा जा रहा है और छिवला के पत्ता में धर धर के दिया जा रहा है।
0: अजय कौन का लड़का दो वाले दो दो बार? अब झापड़ मत, दो दो बार नहीं, अब दो बार ज्यादा खिलाओ उल्टी।
1: एक बात तो ये हो गया ना।
0: अच्छा एक दे दो जी, बाजू वाले सरपंच को लड़का को दो दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब साहब जैसे ही केक सबको बढ़ गया और उसके बाद केक बढ़ने के बाद क्या बात आई? अरे कैसो केक बनाए यार पटेल साहब?
1: अरे राम कैसो केक बनाए, बड़ो खराब केक बनो है। अरे राम कैसी स्मेल आ रही ना, मम्मी कितना गंदा केक है, भाई भाई कितना गंदा केक है, दीदी कितना बेकार बना ना, कितना पैसा स्वाद लग रहा।
0: पटेल साहब बोले इधर लाओ पटेल, तुम केक लाओ, हम खा के देखे क्या ना उसमें कोई दिक्कत, तुम बड़ा हम केक बना लेते हो, रेसिपी हो जी लगा तुमको। जैसे ही पटेल साहब ने केक खवासन कहोगे पटेल, अरे तुम्हारी तुमने जे केक में नाश करवा दो सब केक, इतने बढ़िया हमारे मतलब पटेला ने बनाओ केक इतने जतन से, तुमने पूरा सत्या नाश करवा दो, भत्का धर दो मट्टी के तेल में कराओ, अरे करो

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आपने सुना हंसना मना है धारावाहिक का चौथा एपिसोड। ये आकाशवाणी बाल केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देर में होगा। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ के साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर। शाम के 5 बजने वाले हैं। अब मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उपस्थित रहे। इस परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि 6 से 8 जुलाई तक होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर के दर्शन किए। उन्होंने बताया कि साल 2003 में देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का संकल्प लिया था। लगभग 23 वर्षों की यह आध्यात्मिक यात्रा ओंकारेश्वर में पूर्ण हुई। उत्तराखंड के तनकपुर से आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का पहला जत्था रवाना हुआ। इस जत्थे में एक डॉक्टर सहित 49 तीर्थयात्री हैं। इनमें 34 पुरुष और 15 महिलाएँ शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं उज्जैन इंदौर सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें श्रृंखला में बिना कोई मैच हारे हुए फाइनल में पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। आप सुन रहे थे इस

0: घंटे की खास खबरें।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युगवाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे वनों का संरक्षण हमारा दायित्व विषय पर। संदर्भ है वन महोत्सव सप्ताह। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा शिक्षा है अनमोल रत्न, पढ़ने का सब करो जतन। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे विषय जल है तो कल है पर। वार्ताकार हैं शिवांगी तोमर। साथ ही क्रम जीवन आलोक में हम चर्चा करेंगे अपने गुरुजनों का सम्मान करें विषय पर, और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं वनों का संरक्षण हमारा दायित्व विषय पर। दोस्तों, वनों का संरक्षण हमारा दायित्व है। वन महोत्सव भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1950 में कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा की गई थी। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और लोगों में वन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। दोस्तों, वनों का संरक्षण हमारा दायित्व है। वन प्रकृति की अमूल्य देन है। वे पृथ्वी पर जीवन के आधार स्तंभ हैं। मानव जीवन, पशु पक्षियों का अस्तित्व तथा पर्यावरण संतुलन वनों पर निर्भर करता है। वन हमें शुद्ध वायु, वर्षा, औषधियाँ, ईंधन, लकड़ी और अनेक प्रकार के संसाधन प्रदान करते हैं। इसलिए वनों का संरक्षण केवल सरकार का ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। दोस्तों, वन पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, कटाव को भी रोकते हैं और जल स्रोतों को सुरक्षित रखते हैं। दोस्तों, वे वर्षा चक्र को भी प्रभावित करते हैं जिससे कृषि और जल आपूर्ति सुचारू रूप से चलती है। यदि वन नष्ट हो जाएं तो पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा और मानव जीवन अनेक संकटों से घिर जाएगा। दोस्तों, वर्तमान समय में वनों का संरक्षण आज की महती आवश्यकता है। औद्योगिकरण, शहरीकरण के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। नई सड़कों, भवनों, कारखानों और कृषि भूमि के विस्तार के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं, जो आने वाले समय के लिए बहुत हानिकारक है। हमें वनों का संरक्षण करना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसका परिणाम जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, बाढ़ और जैव विविधता जैसे विनाश के रूप में सामने आ सकता है। दोस्तों, वन केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि लाखों जीव जंतुओं, पक्षियों का प्राकृतिक आवास भी हैं। वन नष्ट होने पर अनेक प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर पहुंच जाती हैं। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। इसलिए हमें वनों का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, सरकार के द्वारा भी वन संरक्षण के लिए कई योजनाएं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे सामाजिक वानिकी, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम तथा विभिन्न पर्यावरण संरक्षण अभियान। किंतु इन योजनाओं की सफलता तभी संभव है जब आम जनता सक्रिय रूप से इसमें भाग ले। समाज के प्रत्येक वर्ग को यह समझना होगा कि वन हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। वन मानव जीवन और प्रकृति के लिए अमूल्य संपदा है। उनका संरक्षण करना हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व है। यदि हम वनों की रक्षा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण, पर्याप्त जल और स्वस्थ जीवन प्राप्त होगा। दोस्तों, इसीलिए हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम पेड़ों की रक्षा करेंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे और दूसरों को भी वन संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे। वास्तव में वनों का संरक्षण ही मानव जीवन का संरक्षण है। दोस्तों, आइए चलते हैं अब फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा गीत।

बोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। दोस्तों, शिक्षा मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धन और अनमोल रत्न है। यह व्यक्ति को ज्ञान, विवेक, संस्कार और आत्मविश्वास प्रदान

0: है। इस स्तर पर बच्चों को भाषा विज्ञान, नैतिक मूल्य, अनुशासन और सामाजिक व्यवहार की जानकारी दी जाती है। बच्चे इसी अवस्था में अच्छी आदतें को ग्रहण करते हैं और उनके मानसिक और बौद्धिक विकास की शुरुआत होती है। यदि प्रारंभिक शिक्षा मजबूत होगी तो भविष्य में विद्यार्थी उच्च शिक्षा आसानी से प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का महत्व भी उतना ही है जितना प्रारंभिक शिक्षा का है। माध्यमिक शिक्षा विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल को विकसित करती है। इस स्तर पर विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन कराया जाता है, जिससे उनकी रुचियों और क्षमताओं की पहचान होती है। इसके बाद उच्च शिक्षा का चरण आता है। दोस्तों, उच्च शिक्षा व्यक्ति को किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान करती है। इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून प्रबंधन, कृषि, विज्ञान, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करके विद्यार्थी अपना करियर निर्माण करते हैं। आज के प्रतिस्पर्धा भरे युग में उच्च शिक्षा का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि यह व्यक्ति को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करती है और उसे आत्मनिर्भर बनाती है। दोस्तों, महिलाओं की शिक्षा भी अत्यंत आवश्यक है। कहा जाता है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो वह एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इसलिए सरकार भी शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। विद्यार्थियों को शिक्षा का महत्व समझते हुए नियमित अध्ययन करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना, अनुशासन का पालन करना, शिक्षकों का सम्मान करना और कठिन परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना विद्यार्थियों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों, शिक्षा वास्तव में जीवन का अनमोल रत्न है। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक स्तर तक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा ही व्यक्ति को सफल, जिम्मेदार और आत्मनिर्भर नागरिक बनाती है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि स्वयं शिक्षा प्राप्त करें और दूसरों को भी शिक्षित होने के लिए प्रेरित करें। आइए साथियों, अब समय हुआ है क्रम वार्ता में हमारे आज के विषय जल है तो कल है पर आपको वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार हैं शिवांगी तोमर।
1: जल है तो कल है, वरना मुश्किल हर पल है। बचा लो पानी, अब भी मौका है, वरना आने वाली समस्या बड़ी जटिल है। जल के बिना हम सभी प्राणियों का जीवित रहना असंभव है। इसलिए ऐसा कहा भी गया है कि जल ही जीवन है। हमारी रोजमर्रा की दैनिक जरूरतें जल से ही पूरी होती हैं। हमें नदी, तालाब, कुएं इत्यादि जल स्रोतों से जल प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम अपने दैनिक गतिविधियों में करते हैं। पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से जगह जगह पानी की किल्लत देखी जा सकती है। जल को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर जल संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय में जल की भीषण समस्या बन जाएगी। जल को बेवजह नहीं बहाना चाहिए। जल के दुरुपयोग पर मनुष्य को निश्चित तौर पर अंकुश लगानी होगी। हमें अपने प्रत्येक दैनिक कार्य के लिए जल की आवश्यकता होती ही है। सुबह होते ही ब्रश करने से लेकर नहाने से लेकर कपड़े धोने तक जल की जरूरत होती है। घरेलू कार्यों में भी, जैसे भोजन पकाने में, बर्तन धोने में, घर की साफ सफाई करने में जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन कार्यों के लिए संतुलित मात्रा में ही जल का उपयोग करना चाहिए। जल प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है। इसका सोच समझकर उपयोग करना हमारे हाथ में है। बहुत सारे नागरिकों को आदत है कि जल का उपयोग करने के पश्चात वह नल को खुला ही छोड़ देते हैं। यह गलत है। पानी को बेवजह व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें अपने भविष्य के बारे में भी सोचना होगा। पृथ्वी पर 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 97% पानी सागरों और महासागरों में पाया जाता है। यानी पीने योग्य पानी बहुत ही कम है, क्योंकि जो पानी महासागरों में और सागरों में भरा हुआ है वो बहुत ही खारा है, जो कि पीने योग्य नहीं है। सिर्फ 3% पानी ही पीने के काबिल है। उसमें से भी 2% पानी बर्फ यानी ग्लेशियरों में पाया जाता है। सिर्फ 1% पानी ही नदी, नहर, झरने, कुएं तरल रूप में पाए जाते हैं। इसी से हम समझ सकते हैं कि पीने योग्य पानी बहुत कम है।

0: अभी से सचेत हो जाना चाहिए और सभी को इस विषय में जानकारी देनी चाहिए ताकि सभी पानी जैसे महत्वपूर्ण संसाधन को बचा सकें। ज़्यादातर लोग, तकरीबन 70 से 75% लोग पानी की परेशानी झेल रहे हैं। गर्मियों में अक्सर जल स्रोत सूख जाते हैं। आने वाले कुछ वर्षों में यह समस्या भयानक रूप धारण कर सकती है। अगर इसी तरह से लोग बिना सोचे समझे पानी का उपयोग करते रहे तो हमें स्वच्छ जल की एक बूंद भी प्राप्त नहीं होगी। हमें पानी का संचय करना ही होगा, वर्षा के जल को बचाकर। उसे तालाबों में जमा कर लेना चाहिए। वर्षा के जमा जल को ज़रूरत के समय इस्तेमाल किया जाना चाहिए और हम सबको पेड़ पौधे भी अधिक से अधिक लगाने चाहिए, क्योंकि जितने अधिक धरती पर पेड़ पौधे होंगे वर्षा उतनी ही ज़्यादा होगी। जल को बचाने के कई सारे उपाय हैं, जैसे कि हर नागरिक को जल संरक्षण हेतु जागरूकता देना, शावर की जगह बाल्टी में पानी भरकर स्नान करना, बर्तन धोते समय भी नल की स्थान पर टब का प्रयोग करना। आपको याद हो तो गांव और शहरों में पहले तालाब हुआ करते थे जिनमें जल एकत्र रहता था, जो न केवल पानी के स्तर को आसपास बचाए रखता था बल्कि दैनिक उपयोग के लिए भी काम आता था। आज गांव और शहरों में तालाबों को पाट कर घर बना दिए गए हैं, इसलिए ज़रूरी है कि जल संरक्षण हेतु गांव और शहरों में तालाब फिर से खोदे जाएं। पहले से उपयोग किए हुए जल का भी या फिर थोड़े से गंदे जल का भी सिंचाई में उपयोग करके भी जल संरक्षण किया जा सकता है। वर्षा का जल छत पर संरक्षण करके उसका उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमें छतों पर भी पानी की टंकियां बनानी चाहिए जिससे वर्षा का जो जल आए वो टंकियों में भर जाए और बाद में हम उनका उपयोग कर पाएँ। पर्यावरण के प्रति जागरूकता ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण संतुलन का सकारात्मक प्रभाव जल संरक्षण पर पड़ता है। कटते हुए वृक्षों के कारण भूमि की नमी लगातार कम हो रही है, जिससे भूजल स्तर पर बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु जागरूकता लाई जाए। नदियों के जल में गंदा पानी भी ना छोड़ा जाए, जिससे ज़रूरत पर उस जल का प्रयोग पीने तथा अन्य उपयोगों में किया जा सके। जल संरक्षण विषय को व्यापक अभियान की तरह सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तरों पर प्रचारित की ज़रूरत है, जिससे छोटे बड़े सभी इस विषय की गंभीरता को समझें और इस अभियान को अपनी भूमिका अदा करें। विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी निरंतर प्रचार एवं प्रसार की ज़रूरत है, जिससे युवा पीढ़ी समय रहते इसकी गंभीरता को अच्छी तरह से समझ सके। जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का सहारा लेना चाहिए। यह तकनीक पानी की कमी से निपटने का तरीका भर नहीं है, कई बार तो ऐसा देखने में आया है कि इस तकनीक से इतना जल एकत्र हो जाता है कि दूसरे स्रोत की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और यहाँ तक कि दूसरे को भी पानी उधार देने में सक्षम हो जाते हैं लोग। तो ये है कुछ हमारे जल को बचाने के उपाय। इन्हें अपनाकर हम निश्चित ही अपना कल सुरक्षित कर सकते हैं। लोगों में पानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं, ताकि लोग पानी की कीमत को समझ सकें। विश्व के हर नागरिक को इसके महत्व से अवगत कराने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। विश्व जल दिवस पर हर वर्ष एक नई थीम रखी जाती है। इसी तरह इस वर्ष की थीम है वैल्यूइंग वाटर। वैल्यूइंग वाटर का अर्थ है कि पानी का क्या महत्व है, यह कितना कीमती है और हम इस महत्वपूर्ण संसाधन की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी भी साफ सुथरे पानी का लाभ उठा सके। पानी ही जीवन का आधार है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जिस तरह से अब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, उससे साफ है कि भविष्य में संकट और गहरा हो सकता है। इसलिए जितना हो सके उतना जल बचाएं एवं अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और अपनी धरती माँ का अभिनंदन करें।
1: दोस्तों, अभी सुन रही थी आप वार्ता, विषय जल है तो कल है पर। वार्ताकार थी शिवांगी तोमर। अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय अपने गुरुजनों का सम्मान करें पर चर्चा करने का। दोस्तों भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, अर्थात गुरु को ईश्वर के समान माना गया है। माता पिता हमें जन्म देते हैं लेकिन गुरु हमें ज्ञान देकर जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। वे हमें एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनने की शिक्षा देते हैं। हमारी प्रथम गुरु हमारी माँ होती है। दोस्तों गुरु केवल पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान ही नहीं देते बल्कि

0: अच्छे संस्कार, अनुशासन, नैतिकता और जीवन के मूल्यों की भी शिक्षा देते हैं। वे विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारने का कार्य करते हैं। गुरु हमें सही और गलत में अंतर समझाते हैं और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, एक अच्छा गुरु अपने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर मेहनत करता है। वह चाहता है कि उसका विद्यार्थी जीवन में सफल हो और समाज तथा देश का नाम रोशन करे। इसलिए गुरु का योगदान अमूल्य होता है। विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे और अपने गुरु की सेवा करते थे। आज के आधुनिक युग में शिक्षा के साधन बदल गए हैं, लेकिन गुरु का महत्व आज भी उतना ही है। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान कर उनके भविष्य का निर्माण करते हैं। दोस्तों, गुरुजनों का सम्मान केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से करना चाहिए। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, विद्यालय में गुरुजनों का आदर पूर्वक अभिवादन करना चाहिए। हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। समय पर गृह कार्य और पढ़ाई पूरी करना चाहिए। अनुशासन का पालन करना चाहिए और अपने गुरुओं से हमेशा विनम्रता से बात करनी चाहिए। दोस्तों, गुरु हमारे भविष्य के निर्माता हैं। जो विद्यार्थी अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं, वे जीवन में सफलता, ज्ञान और अच्छे संस्कार प्राप्त करते हैं। हमें सदैव यह याद रखना चाहिए कि गुरु का सम्मान करना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हमारा नैतिक दायित्व भी है। गुरुजनों के प्रति आदर, विनम्रता और कृतज्ञता का भाव ही हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। सच ही कहा गया है, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है और गुरु का सम्मान ही सच्चे विद्यार्थी की पहचान है। दोस्तों, घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।
1: अभी युवाओं के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की थी। मीडियम वेव डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आपसे मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: हो गया इंतजाम।
5: किसका?
4: गुड्डी की फीस का।
5: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
6: आरबीआई कहता है,
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
9: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
10: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
11: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है,
12: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
13: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी,
14: न उत्तेजना, न उत्तेजना,
15: न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न
16: चोरी चोरी किया,
15: न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

मीडियम वेव डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत का पहला नगमा हमने लिया है दुश्मन फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और कुमार सानू ने। आनंद बख्शी के बोल हैं और धुन बनाई है उत्तम सिंह ने।

अभी आप सुन रहे थे फना फिल्म का गीत सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे प्रसून जोशी ने और संगीत बनाया था जतिन ललित ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं दुश्मन फिल्म का गीत लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ में। इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है उत्तम सिंह ने।

फिल्म संगीत का, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। सुनते हैं कार्यक्रम का गीत अगला, जिसे गाया है साधना सरगम और उदित नारायण ने। जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत है शंकर एहसान लॉय का। फिल्म का नाम है क्यों हो गया ना।

अभी आप सुन रहे थे जब प्यार किसी से होता है फिल्म का गीत लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत था जतिन ललित का। अब आपको सुनवा रहे हैं लाल सिंह चड्ढा फिल्म से अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ में सॉन्ग, जिसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत बद्ध किया है प्रीतम ने।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में अदानी समूह के लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले अत्याधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उपस्थित रहे। इस परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के छोटे एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि 6 से 8 जुलाई तक होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर व ममलेश्वर के दर्शन किए। उन्होंने बताया कि साल 2003 में देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का संकल्प लिया था। लगभग 23 वर्षों की यह आध्यात्मिक यात्रा ओंकारेश्वर में पूर्ण हुई। उत्तराखंड के टनकपुर से आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का पहला जत्था रवाना हुआ। इस जत्थे में एक डॉक्टर सहित 49 तीर्थयात्री हैं। इनमें 34 पुरुष और 15 महिलाएँ शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं उज्जैन इंदौर सहित 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें श्रृंखला में बिना कोई मैच हारे हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। मीडियम वेव, DTH और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी जो आप गीत सुन रहे थे वो हमने लिया था लोफर फिल्म से, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने, आनंद बख्शी के बोल थे और धुन थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के। और उसके पहले आपने सुना था पाकीज़ा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसके बोल लिखे थे कमल आरोही ने और संगीत था गुलाम मोहम्मद का। अब हम आपको सुनवा रहे हैं सातवां आसमान फिल्म का गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में। सूरज नईम का गीत है और संगीत निर्देशन है राम लक्ष्मण का।

दो बदन, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में। शकील बदायूं का लिखा गीत था और संगीत निर्देशन था रवि का। अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में खामोशी फिल्म का गीत, जिसे लिखा है गुलजार ने और संगीत से सवारा है हेमंत कुमार ने।

श्रोताओ, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला नगमा, जिसे हमने लिया है शिकारी फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर ने। फारूक कैसर का यह गीत है और संगीत से सवारा है जीएस कोहली ने।

अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और सलमा आगा को फिल्म निकाह में। हसन कमाल का गीत था और संगीत था रवि का। आइए अब सुनते हैं दीदारे यार फिल्म में लता मंगेशकर को। साहिर का लिखा हुआ गीत है और संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर का गीत दीदारी फिल्म यार से। साहिर का गीत था और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अब सुनवाते हैं आपको अनुभव फिल्म का गीत गीता दत्त की आवाज़ में, जिसे लिखा है गुलजार ने और धुन बनाई है कनू राव ने।

अभी आप सुन रहे थे अनुभव फिल्म का गीत, गीता दत्त की आवाज़ में गुलजार का गीत था और धुन बनाई थी कनू राव ने। आइए सुनते हैं रुदाली फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत से सवारा है भूपेन हजारिका ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शंकर हुसैन फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। जानी सारी ने इस गीत को लिखा था और संगीत से सवार था खयाम ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, या कार्यक्रम का आखिरी गीत, जिसे हमने लिया है स्वामी फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, गीत के बोल लिखे अमित खन्ना ने और धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

0: श्रोतो, अभी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आपसे मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू करने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इसी बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसे विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के उदयगिरी शक्ति और कवरत्ती युद्धपोत ने सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे का दौरा पूरा कर लिया है। यह दौरा भारतीय नौसेना की परिचालन तैनाती का हिस्सा था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा भारत और सिंगापुर के बीच बढ़ती समुद्री साझेदारी में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ग्रामीण

0: विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं के प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात डेढ़ बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, शाम के 7:05 हुए हैं, वक्त है कार्यक्रम विवरण का। शाम सबसे पहले आइए श्रोताओं, आपको आज शाम के सभा के शेष कार्यक्रम बता दें। शाम 7:10 पर होंगे प्रादेशिक समाचार। शाम 7:21 पर आनंद लीजिएगा लोक संगीत का। शाम 7:30 से सुनिए आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य लंदन में खेले जा रहे T20 क्रिकेट वर्ल्ड क्रिकेट का फाइनल मैच का आंखों देखा हाल। मैच के समाप्त होने तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारी आज शाम की सभा के शेष कार्यक्रमों की। आइए अब आपको कल की तीनों सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता दें। भीने भीने मौसम में आपकी चाय की चुस्कियों में रस घोल ले आपको तरोताज़ा करने हम लेकर आते हैं हमारा दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, जिसे आप सुन सकेंगे कल सुबह 7:20 पर। सुबह 8:30 पर सुनिए फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। लोक संगीत में बुंदेली लोकगीतों का आनंद आप ले सकेंगे सुबह 9:15 पर। कल इसमें कलाकार होंगे चंदा श्रीवास और साथी। उर्दू कार्यक्रम आईना सुनिएगा सुबह 9:30 पर। जिले की चिट्ठी का वक्त होगा सुबह 10:00 और 10:05 पर सुनिए कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग माला सुनिएगा कल सुबह 10:30 पर। इसके अंतर्गत कल आप सुनेंगे राग भटियार उस्ताद हुसैन खान साहब से। श्रोताओं, ये तो थे आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम। अब आपको बता दें आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। कल सुबह 11:00 आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। आपकी फरमाइश ये कार्यक्रम होगा दिन में 12:00। दिन में 12:30 पर सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे हंसना मना है धारावाहिक का 5वां एपिसोड। स्वास्थ्य दर्पण ये कार्यक्रम होगा दिन में 1:00। इसके अंतर्गत विशेष होगी भेंटवार्ता डॉक्टर आयुष दुबे से। कल का विषय होगा पार्किंसन रोग कारण लक्षण और उपचार। लोक संगीत का आनंद आप ले सकेंगे दिन में 1:30 पर और 1:45 पर होगा सुगम संगीत। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा दिन में 2:00 और 2:30 पर कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। शाम 5:02 पर सुनिए युवा धड़कनों को तरंगित करने वाला कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की होगी।

फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर। शाम 6 बजे सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम, 6:30 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। आजकल ये कार्यक्रम होगा शाम 6:40 पर, और शाम 6:45 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार दर्शन। प्रादेशिक समाचार होंगे शाम 7:10 पर। आकाशवाणी भोपाल से ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:21 पर। रात्रि 8 बजे होगा कार्यक्रम सुर्खियों में, और फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 8:15 पर। आकाशवाणी दिल्ली से पब्लिक स्पीक कार्यक्रम सुनिए रात्रि 9:30 पर, और रात्रि 10 बजे सुनिए अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: दीदी नौकरी लग गई।
4: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
3: हाँ दी, नया मोबाइल।
4: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
3: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
4: पहले

0: अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले

0: परसेंट ऑफ बैटिंग पिच है एंड 25% बॉलिंग पिच है. अगर और सी अगर बॉल के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में मीडियम पेसर को काफ़ी स्विंग में फ़ायदा देगी, लेकिन जैसे जैसे बॉल पुरानी होती जाएगी वो स्पिनर्स पे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. तो मुझे ये लगता है कि इस पिच पे 180 प्लस का स्कोर जरूर देखेगी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने. एंड उसके साथ ऑस्ट्रेलिया ने, मुझे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये जो बॉलिंग लेने का निर्णय लिया है वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी बॉलिंग के ऊपर. एंड दे नो कि जिस तरह से बॉल, हम कहते हैं कि बॉल रिएक्ट करती है धीरे धीरे वो कम उसकी स्विंग एंड वो सब कम होता जाता है, तो वो स्पिनर पे ज़्यादा फोकस करती है. तो आई थिंक इस यही एक बेनिफिट की वजह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग लेने का निर्णय लिया है.
1: ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन अपने कॉलर्स को बता दें कि अगर आप इस शो में जुड़ना चाहते हैं, वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले हमारे दिग्गज खिलाड़ी चेतन शर्मा मौजूद हैं, मोना पार्थसारथी मौजूद हैं, वैशाली माथुर हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे साथ गीतांजलि सोनी मौजूद हैं जो टेलीफोन रिसीव करेंगे. तो टेलीफोन नंबर्स मैं जल्दी से बता देता हूँ. हमारे नंबर्स हैं 2342108423421085. दिल्ली का कोड है 011, उसे लगाना बिल्कुल ना भूलें. 2342108423421085 2342108485. गीतांजलि
2: जी, मनीष बहुत सारी बातें इनफैक्ट हमारे कॉलर्स हमसे करना चाहते हैं, जैसा नंबर आपको बताया उन नंबर्स पे आप जरूर कॉल करें. मोना बहुत सारे फैक्टर्स इनिशियली मैं कह रही थी चर्चा जरूर करेंगे उस बारे में, लेकिन सबसे पहले पिच की बात करें. लाइक वैशाली कह रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है उन लोगों को जो स्टार्ट पहले कर रहे हैं बैट करने से, राइट. लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग जब हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट व्हाट पिच इज़ गोइंग टू डू, इट वाज ऑलवेज लाइक बिकॉज इंग्लैंड का होम ग्राउंड है और इंग्लैंड ने अभी तक यहाँ पर एक भी मैच नहीं हारा है, उनको ये एज मिलेगा.
3: इंग्लैंड को न सिर्फ मैदान का एज मिलेगा बल्कि आप कहीं भी देखिए जो इंग्लैंड के लॉर्ड्स का मैदान इतना बड़ा है और उसमें पूरा होम सपोर्ट इंग्लैंड को मिलेगा, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. और उसके अलावा पिच की जो आप बात कर रहे थे तो 158 एवरेज स्कोर रहा है इस पिच पर और हमेशा चेस करने वाली टीम जैसे चेतन सर बोल रहे थे यहाँ जीतती है और उनको फ़ायदा मिला. इसीलिए दोनों कैप्टन्स ने भी ये कहा कि अगर वो टॉस जीतते तो वो भी शायद चेस करना पसंद करते. और काफ़ी ही रोचक मुकाबला रहने वाला है क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों की अगर हम अभी तक का जो उनका सफ़र रहा है उसकी बात करें तो एकदम बराबर नज़र आती हैं. इंग्लैंड पिछले 2 साल में 18 महीने में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म टीम नज़र आ रही है, तो काफ़ी एक मुझे लगता है रोचक मुकाबला रहने वाला
2: जी. और अभी रोचक बात यह है कॉलर हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं और उम्मीद करते हैं पहले कॉलर एकदम डायरेक्ट सवाल पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से. नमस्कार जी, नाम बताइए अपना. जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं. जी टोटल की चर्चा जरूर करेंगे, सोफिया के सिलेक्शन से खुश नहीं है. सो चेतन, वी विल हैव लॉट मेनी क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो चेंज मेड बाय एनी टीम, सो व्हाट एग्जैक्टली यू फील अबाउट द टीम.
4: देखिए दोनों अनबीटन साइड्स हैं और जब आप जीतते आते हैं तो हर समय ये कहा जाता है कि ज्यादा बदलाव ना करेंगे तो अच्छी बात है आपकी टीम के लिए. और टॉस के समय अगर आप दोनों कैप्टन्स का रिएक्शन देखें, ऑस्ट्रेलिया तो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना चाहती थी, उनके सोच में ये है कि आप फील्डिंग करें. बट मैं हर समय ये कहता हूँ कि इतने बड़े मंच पे आकर जब आप रहते हैं ना, रन्स ऑन बोर्ड हर समय आपकी मदद करता है इस प्लेटफॉर्म पे आकर. और इंग्लैंड की कैप्टन की भी यही सोच थी कि ठीक है हम टॉस हार गए लेकिन रन्स ऑन बोर्ड हो सकता है कि ये प्रेशर में डाल दे, क्योंकि ये प्रेशर गेम रहेगा. आपके सपोर्ट, जो कहते हैं ना सपोर्ट इंग्लैंड को रहेगी, क्राउड आपके अगेंस्ट रहेगा, आप चेस कर रहे हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ इस समय, तो चीज़ें अच्छी नहीं होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए इफ इंग्लैंड गेट अराउंड 170-180. देखिए 150 पे कुछ नहीं होगा, 150 ये ग्राउंड ऐसा है कि इट्स ए ब्यूटीफुल विकेट. इसके ऊपर हम देख चुके हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच भी इसी ग्राउंड पर हुआ था, 170 रन एक ओवर पहले चेस कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने और लास्ट 10 ओवर में उस समय गीतांजलि 107 रन थे, स्टिल 1 ओवर टू स्पेयर दे फिनिश द गेम. तो वहां से अनुमान लगाया जा सकता है ये विकेट कितनी अच्छी है. तो इसलिए 170-180 ऑन अ फाइनल गेम विल बी अ प्रेशर ऑन ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली.
2: चेतन अभी तक 186 हाईएस्ट स्कोर रहा है इस ग्राउंड पर.
4: 180 बना दीजिए.
1: राइट देन वैशाली, तो आपने जो अनुमान लगाया 180-185 उसके पास मेरे ख्याल से इंग्लैंड की भी टीम जो है वही यही सोच रही होगी, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक प्लेयर है एशली गार्डनर, उनके बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। शी इज बीन एन ऑलराउंडर प्लेयर ऑफ द मैच पिछले गेम में। हाउ गुड इज ऑस्ट्रेलिया? ठीक है एशली गार्डनर के बारे में हम शक नहीं कर रहे, लेकिन वॉट डेप्थ है उनके बैटिंग में भी बोलिंग में भी, अगर हम देखें क्या खास आपको दिखता है ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा कैसे कंसिस्टेंट

0: कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं?
1: देखिए उनके पास ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं, एलिसी पेरी, वो एक ऐसी ऑलराउंडर है जो आपके मीडियम पेसर में ही सिर्फ बॉलिंग में ही फ़ायदा नहीं देती, आपको बैटिंग भी करके देखती है। और उनका ये खासियत, उन्होंने 170 स्कोर जब हुआ था इंडिया के अगेंस्ट और वही वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने बैटिंग भी की थी उस टाइम पे, तो ये एक बेनिफिट होता है एक्सपीरियंस प्लेयर का। और एलिसी पेरी वो प्लेयर है जो WPL में भी बहुत अच्छा करके गई है एंड उसकी वजह से वो काफ़ी बेटर इम्प्रूवमेंट इम्पैक्ट पड़ता है एक टीम पे, तो ये एक फ़ायदा है। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि इंग्लैंड के पास एक बेनिफिट ये है कि वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं एंड उसके साथ उन्होंने इसी ग्राउंड पे इंडिया के साथ मैचेस खेले हैं, सीरीज़ खेली हैं और वो उन्होंने एक एक्सपीरियंस गेन किया उनके बैटर और बॉलर्स ने।
0: मोना, आपसे एक बहुत छोटी सी बात जानना चाहूंगा, ये एलिसी पेरी के बारे में बात हो रही है, आपने कभी देखा कि सेमीफाइनल में रिटायर्ड हर्ट होके विमेंस क्रिकेट में एक प्लेयर को बाहर बुला लिया क्योंकि फाइनल गेम तैयारी कर रहे हैं?
2: जिस तरीके से सेमीफाइनल में वो रिटायर्ड हर्ट होके बाहर गई थी तो लग रहा था कि पता नहीं फाइनल खेल पाएंगी या नहीं, लेकिन पिछले दो प्रैक्टिस सेशन में वो नजर आई और उससे लग गया था कि इतना बड़ा मैच है वो इस मैच से अलग नहीं हो सकती। और कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि वो पूरी तैयारी कर रही हैं, सारा कुछ जतन उन्होंने कर लिया है कि किसी तरह से उनको ये फाइनल खेलना है। सेवन्थ अभी तक वो 6 बार जितना ऑस्ट्रेलिया जीती है, उन्होंने काफ़ी अच्छा सफ़र देखा है और 2023 से जैसा कि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया कोई ICC ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, तो ये एक बहुत बड़ी खिलाड़ी है और उनको बाहर रखने का मुझे नहीं लगता जोखिम ऑस्ट्रेलिया ले।
3: और एक जोखिम हम कभी नहीं ले सकते हमारे कॉलर्स को बाहर रखने का, एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।
4: नमस्कार जी, नहीं आप, मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप कब आएंगे, आपका टेलीफोन कब बजेगा।
3: जी सभी को याद है हैट्रिक।
4: जी जी जी जी,
3: बहुत इंटरेस्टिंग मेमोरीज।
4: आज वुमेन्स क्रिकेट की बात करते हैं और छोड़ देते हैं सभी को
0: जी। वो मेरे ख्याल से वो कुछ और बोलना चाह रहे थे, लेकिन
3: एक्साइटमेंट
0: जस्ट आउट ऑफ दिस एक्साइटमेंट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शारजा की बात की, गर्मी याद आ गई। अब आपने 86 में टूर किया था, घातक स्पेल डाला था इंग्लैंड में, तब का मौसम इतना चेंज हो गया पाजी, प्लेयर्स कैसे अडैप्ट कर लेते हैं इन गर्मियों में और इन टेम्परेचर चेंजेस?
4: देखिए कभी आप सोच नहीं सकते कि अगस्त सितंबर में इंग्लैंड में डे नाइट क्रिकेट होगी। आज के समय में देखिए डे नाइट क्रिकेट आप खेलते हैं, वहाँ से अनुमान लगाया जा सकता है कि कैसा टेम्परेचर में बदलाव हुआ पूरे वर्ल्ड में। अगर आप देखें टेम्परेचर में बदलाव है, इस विकेट के ऊपर मैं बात करूंगा, इन दोनों टीम्स की बात करूंगा, 9.2 पूरे टूर्नामेंट में 9.2 पर ओवर के हिसाब से इंग्लैंड ने रन्स बनाए हैं, 9.4 के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने रन्स बनाए हैं। यहाँ पर एडवांटेज अगर हम, मैं मनीष और गीतांजलि बात करूँ, एडवांटेज किस पक्ष में जाता है, वो जाता है थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में क्योंकि उनके गेंदबाजों ने 6.2 पर ओवर इकोनॉमी से गेंदबाजी की है। देखिए आपको मैचेस कौन जिताएगा, मैचेस आपको T20 क्रिकेट हो या टेस्ट मैचेस हो, आपको गेंदबाज, आप 200 रन बना देंगे, आपके गेंदबाजों में दम नहीं है तो 200 रन ऑपोजिशन चेस कर लेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर आप इकोनॉमी देखें गेंदबाजों की 6.2, तो ये थोड़ा एडवांटेज जाता है। लेकिन वो एडवांटेज तब आता आपके पास ज्यादा अगर मैं कैप्टन होता कि जब मैं पहले बल्लेबाजी करके 180-190 ऑन बोर्ड लगाता और दूसरे को चेज करने देता क्योंकि मेरे गेंदबाजों की जो इकोनॉमी रेट है वो 6.2 है। या तो आप ऑस्ट्रेलिया जाए और 6.2 से रोकने की कोशिश करें, इसका मतलब 140 के आसपास आप इंग्लैंड को रोकने की सोच रहे हैं अगर मैं आपके आंकड़े देख रहा हूँ। तो लेट्स सी व्हाट ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स डू नाउ।
3: और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है मोना, अगर आप दोनों टीम को एनालाइज करें तो जो इंग्लैंड ऑफ कोर्स एक होम ग्राउंड का तो उनके पास एडवांटेज है, लेकिन वो बहुत रिलाई करते हैं अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे, मतलब अभी जो हम देख रहे हैं उनका प्लेइंग स्टाइल। जहाँ ऑस्ट्रेलिया को देखो तो बहुत ही अच्छी कलेक्टिव, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है, तो ये एक एडवांटेज तो ऑस्ट्रेलिया के पास बाय डिफ़ॉल्ट है। प्लस ऑब्वियसली वॉल ने भी 101 रन बनाकर नंबर 1 क्रिकेटर बन गई हैं, सो वो भी बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है ये
2: देखिए अभी बहुत बातें हो रही थी कि जब इंग्लैंड की टीम बहुत ज़्यादा डैनी वेयर्ट पर डिपेंड करती है, लेकिन आपने सेमीफाइनल में देखा 3 विकेट गिर गए थे उनके 23 रन पर, और उसके बाद जिस तरीके से नेट सीवर ब्रंट ने या हीटर नाइट ने जिस तरह की पार्टनरशिप की और जो टीम को जीत तक ले गए, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो 2017 की टीम थी जिसने वनडे वर्ल्ड कप जीता

0: था, उसमें से कैप्टन और हीटर नाइट और डैनी तीनों प्लेयर के पास काफी एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप का. वो कहते हैं ना, बीन देयर डन दैट, तो वो वर्ल्ड कप जीतने का अनुभव उनके पास है. और यहाँ एक और बात रोचक है कि जो इनकी कोच है चार्लोट एडवर्ड्स, 2009 में जब पहली बार इनॉग्रल जीता था वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने, एकमात्र जो जीता है अभी तक, उस समय वो उस टीम की प्लेयर थी, तो उनको अनुभव है कि कैसे जीते जाते हैं वर्ल्ड कप. और वही जिस टीम को उन्होंने हराया था ऑस्ट्रेलिया की, उसकी जो प्लेयर थी शैली निशके, वो भी ऑस्ट्रेलिया की कोच हैं. तो कोचों का भी एक अलग ही मुकाबला यहाँ चल रहा है कि कौन किस पर भारी पड़ता है.
1: वी आर हैविंग अ लवली डिस्कशन हियर बिकॉज यू नो बहुत अच्छा पैनल हमारे पास है एंड वी आर जस्ट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द फाइनल. आकाशवाणी में आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 20. हमारे साथ चेतन शर्मा मौजूद हैं, मोना पार्थ सारथी मौजूद हैं, वैशाली माथुर हमारे साथ मौजूद हैं, गीतांजलि भी रनअप ले रही हैं, वो थोड़ा सा रनअप ले रही हैं. तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ वैशाली, हमने स्टैट्स की बात कर ली, ऑन ग्राउंड आज की डेट में अगर मैं आपसे कहूँ कि इंग्लैंड को ठीक है रन तो बनाने, लेकिन ऐसी क्या स्ट्रेंथ आपको इन दोनों टीमों में किसकी ज्यादा दिख रही है, पहला सवाल ये. और दूसरा ये कि इंग्लैंड की तरफ से ऐसा क्या उनको पावर प्ले में या स्लो गोवर्स में अलग करना पड़ेगा जिससे वो आगे हो जाएं.
2: इंग्लैंड में नेट सीवर अभी इस टूर्नामेंट की हाईएस्ट रनर है
1: जी,
2: तो उनके ज़्यादा रन्स है, तो उनके पास ये एक बेनिफिट है इंग्लैंड टीम के पास. एंड उनके पास एक डैनी वॉट है जो ओपनर आती हैं एंड जो पावर प्ले में वो एग्रेसिव प्ले करती हैं वो शानदार है, काबिले तारीफ है. और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में भी बैटर बहुत ज़बरदस्त है, बेथ मूनी है उनके पास, जो उनकी कंसिस्टेंसी काफ़ी बेटर है. इंडिया के अगेंस्ट भी उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला है और बाकी मैचेस में भी उन्होंने काफ़ी बेटर करते हुए दिखाई दी हैं. तो दोनों टीमों में आज जो बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों टीमें अच्छी करती हैं, लेकिन जो फील्डिंग जो मेन पार्ट है वो है फील्डिंग. आप फील्डिंग कितना अच्छा करते हैं वो ज़्यादा मैटर करती है.
1: ऑलराइट, इससे पहले कि गीतांजलि अपनी रनअप के साथ आएं और एक अगला सवाल पूछें, भारतीय रिप्रेजेंटेशन भी है इन दोनों टीम्स में. पाजी, आईपीएल में लगभग सारी प्लेयर्स जो हैं इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की, आईपीएल में कहीं ना कहीं किसी टीम से वो लोग खेल चुकी हैं, सो वो एक तरह का इंडियन रिप्रेजेंटेशन हो रहा है
3: जी. और रिप्रेजेंटेशन की आप बात कर रहे हैं तो दोनों कैप्टन्स की, चेतन मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा एनालाइज करें दैट बोथ द कैप्टन्स, इंग्लैंड की जो हेथ नाइट हैं और ऑस्ट्रेलियन की नई कैप्टन है सोफी, इनमें से किसकी कैप्टनसी आपको बहुत इफेक्टिव लग रही है?
4: देखिए दोनों टीमें अनबीटन आई हैं अभी तक, और अनबीटन जब आती हैं तो ऑब्वियसली बोथ कैप्टन्स हैव डन वेल. अभी मनीष ने जो क्वेश्चन पूछा था ना किसके ऊपर इंग्लैंड रिलाई करता, मैं कहूंगा ओपनर्स के ऊपर बिकॉज दे आर वेरी एक्सप्लोसिव. और अगर एक चांस इंग्लैंड के पास बनता है वो बनता है कि आप पहले 6 ओवर्स को कैसे भुनाते हैं, फर्स्ट 6 ओवर्स, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली मेरे साथ डिबेट हुआ है कि लॉट ऑफ पीपल थिंक कि 7 से 15 बहुत इंपॉर्टेंट ओवर्स होते हैं. मैं हर समय एज ए बॉलर मानता हूँ कि पहले 6 ओवर्स हर समय इंपॉर्टेंट माने जाते हैं बिकॉज दैट विल टेक अवे द गेम फ्रॉम यू. देखिए कैप्टन्स का रोल कैसा होता है गीतांजलि, जो आपने बोला कैप्टन्स तो सभी बनते हैं, लीडर कौन बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. अपनी टीम को कौन लीड करता है, जो परफॉर्म करेगा. और अभी तक मुझे अभी तक लगता है कि ऑस्ट्रेलिया हैज डन ए ग्रेट जॉब बिकॉज अगर आप ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल्स और नॉकआउट गेम्स देखें ना, वेस्ट इंडीज को कैसे धाराशाही किया, वो कॉन्टेस्ट नहीं रहना देते हर समय, दे जस्ट फिनिश द ऑपोजिशन. जैसे नॉकआउट स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया आती है दे नेवर वॉन्ट की कॉन्टेस्ट रहेगा, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट. तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियंस आर टफर व्हाट इंग्लैंड आर, बट इंग्लैंड के जो रिकॉर्ड्स, अभी मैम भी बोल रही थी कि दे आर अनबीटन वर्ल्ड कप में, आज तक इंग्लैंड में हारे नहीं. होम सपोर्ट होगा, अपने विकेट्स को जानते हैं, थोड़ा सा होम एडवांटेज रहता ही है आपको, तो इट्स गोइंग टू बी अ कंटेस्ट. बट मैं सिर्फ चाहता हूँ बैटिंग करते हुए इंग्लैंड 180 रन बना दे एंड आई वांट टू सी ऑस्ट्रेलिया चेजिंग दैट.
1: और चेतन भाई आप कह रहे हैं कि 180 विनिंग स्कोर होने वाला है,
4: देखिए हो सकता है. देखिए आप यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट ऑस्ट्रेलियंस, नंबर 10 तक बैटिंग करते हैं वो, और जैसे उन्होंने इंडिया के खिलाफ ताबड़तोड़ की, मुझे तो मैं भी था यही स्टूडियो में था उस दिन, में मुझे लग रहा था एक तरफा इंडिया मैच जीतेगी और मैच ऐसे गया हाथ से कि मतलब आप पूछ नहीं सकते. तो ऑस्ट्रेलिया गॉट अ डेप्थ एंड ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी टफ स्पेशली इन नॉकआउट गेम्स.
1: हमारे हाथ से कॉलर ना चले जाए.
3: हां बिल्कुल, वो टफ कॉलर हमारे साथ हैं अभी तक, उनसे बात करते हैं. हेलो नमस्कार जी, नाम बताइए और सवाल पूछिए अपना. हां जी जी अगर आपने अभी तक हमारा शो सुना है लगातार और आप फोन करने में बिजी नहीं थे तो इसकी चर्चा हो चुकी है बिल्कुल। दोनों टीम्स हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं लगातार कि हर एक के पास कुछ प्लस पॉइंट्स हैं और कुछ उस पर चीज़ें वर्कआउट होंगी, बाकी तो आप जानते हैं जो क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल है। हमेशा हम यही कहते हैं, एक बार फिर आपको बता दें, आप सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 2020 और हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं चेतन शर्मा हमारे साथ, मोना पार्था सारथी हैं और हमारे साथ हैं वैशाली माथुर, मैं हूं गीतांजलि सोनी और मेरे साथ हैं मुनीश जौली।
1: मोना, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप दो दिग्गज टीमों को देखते हैं कितना आसान या कितना मुश्किल होता है एनालिसिस करना, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं यहाँ पे। सो हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज फॉर स्क्रिप्टिंग यू नो अ मैच लाइक दिस बिफोर द फर्स्ट बॉल इज बोल्ड।
0: मुनीश जी, कई बार तो ऐसा होता है कि लास्ट बॉल में पूरा इंट्रो बदलना पड़ता है, पूरी कॉपी चेंज हो जाती है, ऐसे भी कई बार हुआ है। और तब अगर इंडिया का मैच नहीं है तो कभी चाहे कोई कितना भी बोले कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप अच्छे गेम को एनकरेज करें, लेकिन जहां इंडिया एंगल आता है थोड़े से हमारे भी इमोशंस आ जाते हैं उसमें। लेकिन अब यहां तो आपको तटस्थ होके देखना है कि कौन टीम कैसा खेल रही है, और मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा क्रिकेट अब होने लगा है ना कि सब एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी क्रिकेट खेलते हैं, तो अब वो ज़माना नहीं रहा कि आपको वर्ल्ड कप में ही दो दिग्गजों की टक्कर देखने को मिल रही है। और अभी जैसे चेतन सर कह रहे थे कि ज़्यादातर सारे प्लेयर्स जो हैं वो हम WPL में इनको देखते हैं, तो अभी ऐसा कुछ नहीं रह गया है कि आप कुछ एक दिमाग में प्रिजुडिस लेके बैठेंगे कि हाँ ये ऑस्ट्रेलिया है, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में आने के बाद सामने कोई कंटेस्ट रहने नहीं देती दूसरी टीम पर, एक साइकोलॉजिकल गेम भी उनका चलता रहता है लगातार। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगी कि आपस में इतना आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जा रहा है कि सब एक दूसरे के वीकनेसेस और स्ट्रेंथ जानते हैं और जर्नलिस्ट भी जानते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करना है, और कभी कभी स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है।
3: जी वैशाली, एज अ क्रिकेटर बहुत सारे मोमेंट्स आपने भी एक्सपीरियंस किए होंगे। अभी जो कंडीशन चल रही है आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में हम भारतीय टीम की भी बात करेंगे, बहुत सारे हमारे श्रोता जानना चाहेंगे इस बारे में, लेकिन अभी जो टीम है, आप इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, एक अलग जज्बा आपको ऑस्ट्रेलियन टीम में नज़र आता है, क्या कारण है? आप देखा जाए तो हमारी भी भारतीय टीम वो बहुत ही ज़्यादा सशक्त टीम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आपको लगता है कि मिस कर गए और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन टीम के पास वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से मौजूद है?
2: इंडिया के बाद मेरी तो सबसे फेवरेट है, उसके बाद इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम। एंड ऑस्ट्रेलिया टीम में हम कह सकते हैं कि उनका जो फिटनेस लेवल है वो आउटस्टैंडिंग है, वो कहीं और हम अगर किसी कंपेयर करें किसी भी टीम से तो वो उतना हाई लेवल पे नहीं है। एंड उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें तो उनके पास टॉलर बॉलर्स हैं। आप देखिए कि हमारे पास एक झूलन गोस्वामी थी, और टॉल का जो निप मिलता है ना बॉल को वो डिफरेंट होता है, वो बॉलर को थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं मिलता है, तो वो आउट होने के कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं उनके। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि ऑस्ट्रेलिया टीम एंड उनके पास एक कंसिस्टेंसी है, वो जितने मैचेस वो खेलते हैं उतना मुझे लगता है कि एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया उतने मैचेस वो नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि 25% कहीं ना कहीं वो रह जाते हैं मैचेस के लिए। तो एक ऑस्ट्रेलिया टीम के पास एक बेनिफिट है। एंड उनकी जो हम ट्रेनिंग की बात करें तो वो ट्रेनिंग अगर हम देखें तो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज वो बेटर है, चाहे वो आप इंग्लैंड ले लीजिए या साउथ अफ्रीका ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के पास एक बेनिफिट है।
1: पाजी, बहुत जल्दी हम लोग जाएंगे हमारी कमेंट्री टीम के पास और दो दिग्गज कमेंटेटर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आई नो बहुत अर्ली पूछ रहा हूं, लेकिन प्रिडिक्ट करना चाहेंगे कि विनर कौन होने वाला है?
4: देखिए, मैं तो आंकड़ों के साथ जाऊंगा, मैं आंकड़ों के ऊपर देखता हूं, तो ऑस्ट्रेलिया ने इस स्टेज पर आकर तीन बार मतलब मात दी है, 2012, 2014, 2018 इंग्लैंड को मात दी है फाइनल्स में आकर, तो मतलब इतनी पिटाई के बाद तो मनोबल नीचे रहता है। तो लेट्स सी, दैट्स व्हाई आई वांटेड इंग्लैंड टू गेट टू 180 एंड आई वॉन्ट सी ऑस्ट्रेलिया चेजिंग इट। तो मैं इस मैच को एक कांटे वाला मैच देखना चाहता हूँ, ऐसा ना हो कि 6.2 इकोनॉमी रेट की वजह से 140-145 में रह जाए इंग्लैंड, तो इट वोंट बी अ कंटेस्ट, आई वॉन्ट इंग्लैंड टू स्कोर 180।
1: मोना, क्योंकि इशारा हो गया प्रोड्यूसर साहब का, हमको जाना है, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि एक शब्द आपको बोलना है, इंडिया और सॉरी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, मेरा पेट्रियोटिज्म आ गया इंडिया के नाम।
0: हाँ, बिल्कुल, हम सबके मन में आज मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया।
1: ऑस्ट्रेलिया, राइट। वैशाली बता चुकी हैं, तो मैं मुनीश जौली, गीतांजलि सोनी के साथ आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे साथ ट्यून्ड इन थे, और आपने सुना ये प्रोग्राम फर्स्ट बॉल 20, और सीधा चलेंगे लॉर्ड्स लाइव कमेंट्री के लिए हमारी टीम के साथ।
5: फर्स्ट बॉल 20।
1: आइए चलते हैं हमारी

0: कमेंट्री टीम के पास दिग्गज कमेंटेटर्स हिंदी में विनीत गर्ग, अंग्रेजी में प्रकाश वाकणकर, स्कोरर भूपेंद्र सिंह भाटी और स्टैटिस्टिशियन ओम प्रकाश शर्मा। ओवर टू आवर कमेंट्री टीम।
1: नमस्कार, स्वागत है क्रिकेट के इस महाकुंभ में। आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है और ये फाइनल मुकाबला है, और किसके बीच में? पुराने जाने माने प्रतिद्वंदी। कांटे का मुकाबला हमेशा होता है जिनके बीच में, ऑस्ट्रेलिया और मेजबान इंग्लैंड। लॉर्ड्स का यह मैदान क्रिकेट का मुख्यालय है, और पहली सूचना जो आपके पास अब पहुंच चुकी होगी, दोनों ही टीमों में सेमीफाइनल में जो टीमें खेली थी परिवर्तन नहीं है और दोनों विजय रथ पर सवार हैं। क्यों होगी टीम में बदलाव या परिवर्तन क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही अब तक अविजित हैं इस टूर्नामेंट में, और ऐसे में इंग्लैंड जो कि कभी भी इंग्लैंड में किसी भी फॉर्मेट में वर्ल्ड कप होता हारा नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया को उसने कभी किसी भी फॉर्मेट में ICC टूर्नामेंट के में हराया नहीं है। तो ये अजीब सब समा बंधा है यहाँ पर, और सब उत्सुक, सब चाहते हैं कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले। और तो चार हैं, उसमें से आज दो भारतीय हैं। चर्चा जारी रहेगी। पिच नंबर 10 जिस पे थोड़ी सी घास है, नीचे से वो काफी सूखी हुई नजर आ रही है। बाउंड्रीज 70-71 मीटर की हैं, बाउंड्रीज लगभग 60-65 के आसपास की हैं, पिच और मैदान पर 20 पिच हैं, तो लगभग लगभग सेंटर पिच है। तो ऐसा नहीं है कि एक और स्क्वायर छोटा हो जाए। सबसे छोटी बाउंड्री 58 फुट के आसपास की है। जब विकेट पीछे की ओर खेलते हैं तब स्वाभाविक है कि वो उस ओर की बाउंड्री कम हो जाती है। तो टीमें मैदान में आ रही हैं, राष्ट्रीय गान हो चुके हैं दोनों ही देशों के, और ये महत्वपूर्ण मुकाबला होगा। प्रकाश मेरे साथ हैं और आप सुख होंगे कि उनके क्या विचार हैं, और ये और लॉर्ड्स के स्लोप की हम बात करते रहेंगे। स्वागत करता हूँ प्रकाश वाकणकर।
2: थैंक यू विनीत, एंड गुड इवनिंग Whenever you are listening, it's a big day at the T20 World Cup final between the old rivals, as we described, going to be played, and one of the two prevailing equations has to change. That is that England have never lost in an ICC tournament at home, and will never beat Australia. Australia looking for their seventh cycle, England for their second, and those of our listeners who remember will know that that came right here on the ground when Anya Shrupsole really was the key difference. Harmanpreet's great innings proving to be not enough, and that was the final they won against India. Well, bright sunshine here on our TV monitors. Seems to be good conditions. Described as a fresh pitch. This brilliant turnout is not going to be stopped by short of that.
1: लोगों में यही बात है प्रकाश की, ऑयल्ड मशीन जिसको कहते हैं, क्या ये खिलाड़ी हैं? आप देखें कि ऑलराउंडर से भरी हुई है ऑस्ट्रेलिया टीम। एक मैच में तो 8 बॉलर्स का इस्तेमाल किया, शायद एक दो हैं क्रिकेटर विकेट कीपर को हटाई के बैटर हैं, सारे के सारे बोलिंग करते हैं। तो मैदान पर कि अगर कोई दिन आपका नहीं है, किसी दिन आप नहीं चल पा रहे हैं, दो भारतीय ऑफिशियल्स हैं, उनमें से एक इस समय बॉलिंग वाले वो मशहूर वेस्ट विश्व कप है क्लीन अभी नजर। तो ये है कि जो बहुत बढ़िया शानदार जोड़ी है वो बैटर कि सबसे अधिक रन बनाए हैं अब तक टूर्नामेंट में, किशोर करेंगे साथ में तो डेनी वाइटरोज, दोनों ही दाएं हाथ के बैटर्स हैं। और दिलचस्प होगा कि शुरुआत किस ओर से होती है, पेवेलियन या नर्सिंग। दूसरा ये क्या होता है, लूसी हैमिल्टन और केम गार्थ की जोड़ी है, मैच को छोड़कर इन्होंने ही गेंद का इस्तेमाल किया है। 7 मैचों में 5 वाली बाएं हाथ से बॉलिंग का विकेट उनको मिलता है। केम गार्थ की शुरुआत ओवर की 1-6 के बीच का ये

0: खिलाड़ी बाहर रखे जाते हैं। ये ही मैच की फाइनल की पहली गेंद, एक स्लिप तैयार है और जैसी कि आमतौर पर गार्ड करती है उनकी पहली गेंद आउट से करती है, लेंथ दाएं के बैटर को छोड़ती हुई के पास नहीं होकर बल्कि थोड़ी सी जगह थी। लेकिन आजकल बॉलर जो है पहली गेंद पे विकेट खूब ले रहे हैं, पहले इक्का दुक्का कोई होते थे, आजकल ये बड़ी चर्चा का विषय हो गया। सावधानी रखी, कुछ नहीं छोड़ दिया उसको विकेट कीपर के लिए। जैकलिन विलियम्स, जैसा कि मैंने आपको कहा, उनका 96वां वर्ल्ड T20 इंटरनेशनल मैच है। गेंद बल्ले पे ठीक से नहीं आई, घूम कर पुल करना चाहती थी, अंदरूनी सिरा लगा, फील्डर ने कोशिश बहुत की, सफलता नहीं मिलेगी और ये शुरुआत हुई खाते की, 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: जोन्स के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका था, लगभग टू ऑफ द बैट के पास से, स्टंप्स और बैटर के बीच में से भाग्य ने साथ दिया और उस पर 4 रन अवश्य मिले। वेरहम ने भरपूर प्रयास किया उस गेंद को रोकने का। फील्डिंग का देखिएगा, बड़ा मजा आएगा, फील्डिंग के स्तर एक आसमान छू रहे हैं प्रकाश, और जिस तरह से बाउंड्री लाइन पे किया, वाह क्या दृश्य था। संतुष्ट नहीं है, दोनों बातचीत कर रहे हैं, अब तक थोड़ा सा स्विंग मूवमेंट जरूर नजर आया है, और ये जो स्विंग मूवमेंट है, नर्सरी एंड और पेविलियन एंड दो हैं और दोनों ही एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। तीसरा अंपायर सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो 4 रन वहाँ पे जो छोटे छोटे विज्ञापन है रोक के ऊपर, उससे छू गई या नहीं छू गई, और अब वो 4 रन का इशारा आ रहा है जिससे खाता खुला है और जोन्स के खाते में जोड़ा है, और इंग्लैंड फाइनल्स में 4 रन बगैर नुकसान के तीसरी गेंद के लिए तैयार। किम गार्थ, और इस बार ज्यादा ललचाती हुई गेंद थी, खेला उसको, पॉइंट फील्डर है, बाउंड्री लाइन के नजदीक फील्ड कर लिया गया। पिच को अगर आप देखें तो काफ़ी घास है, लेकिन नीचे से काफ़ी सूखी नज़र आ रही है, और जैसा प्रकाश ने बताया बिल्कुल फ्रेश है, अब तक इस पर कोई मैच हुआ नहीं है। आमतौर पर स्क्वायर बाउंड्री 58 और 65 की रही है लॉर्ड्स में, आज लगभग लगभग 64-64 की रहेगी, दोनों ओर एक सार नज़र आ रहा है स्क्वायर बाउंड्री का जो इलाका है। 5 रन बगैर नुकसान के, पहले फील्डिंग करने का निर्णय, टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने। व्हाइट हॉट जो जबरदस्त फॉर्म में हैं, किम गार्थ सामने हैं, और क्योंकि बॉलिंग इस समय पेविलियन एंड से हो रही है, उनको अपने फुटवर्क पे ध्यान देना होगा। ओ खतरनाक गेंद, इस ओर से जब बॉलिंग होती है तो एक नेचुरल वेरिएशन से गेंद सीधी रह जाती है, इससे आपको अपने आप को काबू रखना पड़ेगा, अपने फुटवर्क पे भी काबू रखना पड़ेगा। एज लगी और स्टंप्स के पास से निकल गई, आज का दिन साबित होने वाला है, क्या भाग्य उनका साथ दे रहा है।
2: सर्टेनली लुक लाइक दैट ऑन दैट ओकेशन, ड्रॉप्ड बिटवीन द बैटर एंड स्टंप्स एंड देन बाउंस ओवर, अनबिलीवेबल।
0: टूर्नामेंट में ब्लू स्टंप्स के पास आके शॉर्ट एंड वाइड कट किया उसको, पॉइंट पे फील्डर मौजूद है, बैकवर्ड फील्ड किया गया, 1 रन और। तो तौर पर जो सीम इस्तेमाल करता है वो पेविलियन एंड बॉलिंग करता है, यहाँ जहाँ पेविलियन एंड सीम बॉलर्स जो इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और लाजमी करें जो खासा स्विंग है। ओवर पे गेंद, हाफ फुली स्विंग होती हुई, क्या फील्डिंग, कवर क्षेत्र में शानदार क्षेत्र रक्षण, नहीं लेने दिया, यही है T20 क्रिकेट का मजा।
3: स्पोर्ट्स लाइव हो ना?
4: नहीं, मुझे भूल आ गई।
3: तुम वही भूल कर,
4: भूल बस इतनी है कि तुमने शादी कर ली।
5: जानिए अब यानी अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहे। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें, डायल करें 4477।
2: tentative start really by England. Tricky boundary for Amy Jones got things underway. And there have been a couple of questions asked. Already we've seen the athleticism of the Australian girls in the field. And that will be a factor, as we've mentioned quite clearly. Both sides, but particularly Australia, just exceptional in the form of a well-oiled machine that has not had any silverware for a few years now. And they'll be thirsting to get the trophy in the unit. Right then, Lucy Hamilton, left arm over the wicket, balls wide outside. Left arm may well be called. We'll wait to see whether Jackie Williams thinks so. No, it's all right. Must have pitched just inside the tram line. Certainly moved away, exaggerated movement away from the right-hander. Danny Wyatt-Hodge, leading run scorer in the tournament so far. Healthy strike rate, just under 300 runs as well. And Amy Jones, who hasn't really blossomed with the bat. Next one, pitched up and scored! Yes, it has! And that's a big wicket. Amy Jones, aging one to the lone fielder at a slip cordon. And that means England have lost an early wicket. Australia rocking the whole team in the very second over. In fact, that is the last thing that England wanted, having been put in that shaping way, looking for a big drive outside edge, catch the gully, and take very comfortably. Australians don't drop catches. That's the dream start for the girls in their team. And
0: Amy Jones, offside, may out ho rahi hai. Predominantly on-side की क्रिकेटर है, पता नहीं क्यों जो विकेटकीपर्स होते हैं वो on-side में ज़्यादा मजबूत क्यों होते हैं। पिछले मैच में सेमीफाइनल में भी पॉइंट के आसपास वो आउट हुई थी, इसी तरीके की ऑफ-साइड के बाहर की स्लाइटली गेंद पर, और लगभग उसी इलाके में जैसा कि प्रकाश ने आपको बताया, गली पे वो कैच आउट हो गई। महत्वपूर्ण सफलता मिली है ऑस्ट्रेलिया को, और इंग्लैंड को अब भरपाई करनी पड़ेगी ऑन द बैट शुरुआत में ही, और पावर प्ले में अगर जल्दी जल्दी विकेट मिल जाए तो फिर एक बड़ा स्कोर बना पाना थोड़ा दुष्कर हो जाता है।
2: Well, we saw that we finally didn't we, Vineet? England lost three early wickets, and then it was the two captains, the current and the former, Nat Siva Brunt, who will come into bat at number three, and her immediate predecessor, Heather Knight, who stitched together that partnership. Here's the first ball that's been faced, and it's been creamed away just elegantly and timed to perfection through the extra cover boundary for four. What a terrific shot. That's the class there, just waiting on it, Siva Brunt, and then easing it away, not trying to hit the ball too hard, just pure timing, and it races across the hallowed turf at the Lord's Cricket Ground, and England move into double figures. 11 for Hamilton in again, and this time unable to quite time it. The inside part of the bat trickles away towards the offside. There'll be no run. Just watching the replay of that dismissal again now in real time, Vineet, you can see that the anticipation was there. There was a plan there, and Amy Jones unable to get her foot to the pitch of it, and as a result, way and Wall, Georgia Wall, making no mistake. Here's the fifth ball of the second over. It's Lucy Hamilton, left arm over, past Pai Williams, bowls, and Siva Brunt is defending the offside. Out to cover, there will be no run. The home crowd will be a big factor in this game. One feels England playing at Lord's, the last time any England team, men or women, played a World Cup final at Lord's. We all know the drama that happened there, and many would argue that it was a victory that was snatched by defeat or by fate more than anything else, but it was a great game of cricket. Let's hope this one lives up to it. Last ball of the over. Here's Hamilton ball to this one. Swing and a miss from Siva Brunt as the ball shapes away. End of the over, 11 for 1.
6: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के शुल्क नंबर 14416 कॉल, कहीं से कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है, शिक्षा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: ऑस्ट्रेलिया की ओर से जोरदार शुरुआत, ऐसी शुरुआत जिसकी दरकार उनको थी, पर ताज्जुब ये होता है ज्यादा इस मैदान को समझते हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, लेकिन फील्डमैनशिप की गेंद नर्सरी एंड से की जा रही थी, इतनी लाजवाब थी कि स्क्वायर ऑफ द विकेट

0: जो फील्ड प्लेसमेंट विकेट के पीछे अतिरिक्त खिलाड़ी लेकर दो खिलाड़ी विकेट पर के अलावा लेकर उन्होंने बॉलिंग की। गार्थ के नए ओवर की पहली गेंद को बैकफुट पर संतुलित होकर खेल दिया डीप विकेट पॉइंट। एक समय था एक थर्ड लेग लगता था और एक फाइनल लेग लगता था, काम पूरा हुआ शुरुआती ओवर्स का। अब आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक बैकवर्ड पॉइंट और स्क्वायर लेग क्षेत्र के आसपास नहीं तो लॉन्ग लेग की दिशा में नजर आएगा। क्रिकेट बहुत बदला है, उसकी तस्वीर बहुत बदली है और दोनों ही टीम वही हैं जो सेमीफाइनल में खेली थी, कोई परिवर्तन नहीं है। और गार्थ पेवेलियन एंड से बॉलिंग कर रही हैं और ये डाउन द हिल है। डाउन द हिल वो जो पेवेलियन एंड है वो थोड़ा सा इस समय मदद करता है कि आप गेंद को बाहर की ओर निकालें। गार्थ देखें इस ओवर में क्या करती हैं, क्रीज के बीचों बीच से ये गेंद थी और वहीं दबाकर सिंगल दौड़ना चाहती थी, टैग नहीं कर पाई अपनी स्ट्रोक को, गेंद वहीं लुढ़क कर रह गई और वापस दी जा रही है किम गार्थ को। ताहिला मैग्रा उप कप्तान है टीम नहीं, चार बेंच पे जो बैठी हुई खिलाड़ी हैं सब आईसीसी ट्रॉफी में जीत के समय शामिल रही हैं।
1: They're all World Cup winners, right? That shows the depth of Australia.
0: Danny Whitehodge enables Sutherland. Sutherland को एक विकेट चाहिए 50 T20 इंटरनेशनल विकेट पूरे करने के लिए। मेगन शूट जो अब तक सब टूर्नामेंट्स में खेली हैं T20 के, ऑस्ट्रेलिया की ओर से टीम में नहीं है, केवल एक मैच में दूसरे मैच में शामिल किया गया था अगली के, और उसको पूरा सम्मान देते हुए उसके ऊपर आते हुए कलाइयों को जोर से धीरे से पुश भर किया। 2.3 ओवर के बाद टॉस हारकर इंग्लैंड 12 रन और विकेट कीपर एमी जोन्स का खो चुके हैं। शिवर ब्रंट और व्हाइट हॉज जोड़ी में मैदान पर है। शिवर तीन मैच खेली उसके बाद उनको क्वाड की ट्रबल हुई, उनको जांगों में तकलीफ हुई, उसके बाद नहीं खेली। पिछले मैच में क्या जोरदार वापसी की, 75 रन आए 47 गेंदों पर। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से कलाइयों का प्रयोग किया, डाइव किए हुए फील्डर से गेंद छिटकी, दूसरे रन के लिए जा रही है। इससे पहले कि आके उसको उठाया जाए दूसरा रन भी पूरा हो गया। ये होता है जब पहला रन आप तेज लें, फील्डर के ऊपर दबाव बनाए, अपनी दाईं तरफ जाकर डाइव लगाई, पूरी लंबाई का फायदा उठाते हुए डाइव लगाई, लेकिन हाथ से लगने के बाद छिटके और एक रन और पूरा हुआ। 3 रन अब तक इस ओवर में, 2 गेंदे शेष हैं। ऑफ साइड में एक कवर पॉइंट है बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर और लॉन्ग लेग है सीमा रेखा पर, बाकी सब दायरे के अंदर है। बहुत फुर्ती दिखा रहे हैं ओवर्स करने में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, जरूरी है नहीं तो लास्ट पावर प्ले में एक फील्डर कम मिलेगा बाउंड्री लाइन के पास। अगली गेंद को रक्षात्मक रूप से खेला और गेंद वापस बॉलर को दी जा रही है। शिवर ब्रंट 10 इनिंग्स

0: चल रहा है, ये पिछली गेंद 80 के आसपास की थी। कभी कभी ऐसा अब तक जितना थोड़ा सा खेल हुआ है उसमें ये प्रतीत हो रहा है कि गेंद बहुत आसानी से बल्ले की तरफ आ नहीं रही है। स्ट्रोक्स खेलना इतना आसान नहीं है, गति में परिवर्तन, वेरिएशन ऑफ द पेस भी नज़र आ रहा है। बहुत ही बुद्धिमानी और चतुराई के साथ बॉलिंग कर रही है ऑस्ट्रेलिया इस समय, और राइट हैंडर्स हैं। उधर आप देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम में सब लेफ्ट हैंडर्स हैं, ज़्यादातर लेफ्ट हैंडर्स हैं, कम से कम 3-4 लेफ्ट हैंडर्स हैं, और इसीलिए वो ऑफ स्पिनर का मैचअप जो उनके साथ होगा तो चार्ली डीन कारगर साबित हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल नेट सेवर ब्रंट के दिमाग में भी ये बात होगी कि उनको कई बार मोलिनो ने आउट किया है। अच्छा बॉलिंग चेंज था और परेशानी में नज़र भी आई। कोई भी बैटर अब तक प्रकाश विश्वसनीय नज़र नहीं आया है पिच पे कि वो रफ्तार को समझ गया है या अपना खुलकर स्ट्रोक खेल पा रहे हों। ओवर पिच गेंद पैरों के पास ऑफ द टोस खेल दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर बाउंड्री की तरफ, 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: लगातार बॉलिंग में परिवर्तन कर रही हैं कप्तान अनाबेल सदरलैंड को लगाया था और उनका अच्छा स्वागत किया और नसीहत दी। एक खराब गेंद जो ओवर पिच हुई और स्विंग के साथ अंदर की तरफ आ रही थी, विद द टाइड खेल दिया उसको और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास, उधर जहां टेवन स्टैंड है उस ओर गेंद चली गई 4 रन के लिए। 24 रन एक विकेट पर। इस बार उठा कर खेला है, उस ओर फील्डर है लेकिन काफ़ी दूर है, फील्ड किया, दूसरे रन के बारे में नहीं सोच रही हैं। लॉर्ड्स के मैदान पर जब आप देखेंगे मैदान, तो आमतौर पर तजुर्बेकार खिलाड़ी होते हैं वो बाउंड्री लाइन पे कम से कम 5-7 फिट अंदर की तरफ खड़े रहते हैं। लॉर्ड्स में आप बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े नहीं रह सकते, ये एक विशेषता है इस मैदान की। इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखना होता है, उसके बाद भी लोग उत्सुक होते हैं कि लॉर्ड्स में आकर खेलना है। 25 रन एक विकेट पर, 5वां ओवर चल रहा है, टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता, फील्डिंग कर रही है, अच्छी लंबाई की गेंद कर रही है, स्विंग हो रही है गेंद और रन लिया जरूर है, लेकिन इसमें वेल विद इन देमसेल्व्स दोनों बैटर्स कोई बहुत ज्यादा आक्रामक तेवर प्रकाश नहीं दिखा रही है।
2: ट्राइंग टू कंसोलिडेट एंड क्रिएट अ बेस हियर, आई डोंट थिंक टू वरीड अबाउट द पावर प्ले। डिफरेंट टीम्स अप्रोच पावर प्लेस डिफरेंटली एज वी नो विनीत, इंग्लैंड लुकिंग लाइक दे वांट टू जस्ट मेक श्योर दे डोंट लूज टू मेनी विकेट्स।
0: सदरलैंड प्रतीक्षा कर रही है, फील्ड को ही बड़ी जतन के साथ जमाई जा रही है और अंपायर की भी निगाह है और बैटर की भी निगाह होगी। नो बॉल का इशारा कुछ विलंब के साथ आया, तीसरे अंपायर जो कि किम कॉटन बहुत ही तजुर्बेकार अंपायर हैं और वहीं से तीसरे अंपायर से ही इस टूर्नामेंट में इशारे आते रहे हैं और यही नियम बनाया गया है।
3: वेरी क्लोज, जस्ट ऑन द लाइन,
2: ऑलमोस्ट हार्श,
0: कड़ा निर्णय अंपायर ने काफी समय भी लिया ये फैसला करने में और अंततः बैटर के पक्ष में ये निर्णय गया। फ्री हिट मिलेगा, उसकी तैयारी की जा रही है। मुझे याद आता ऑस्ट्रेलिया में हम कमेंट्री कर रहे थे सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में, प्रकाश ने मुझसे पूछा था कि जब इस तरीके से होता है फील्ड में परिवर्तन होता है या नहीं होता है, फिर वही जवाब ढूंढ के लाए थे, अगर बैटर बदल गया है तो होता है, ऑफ स्टंप के बाहर से ये गेंद और उसको घुमा दिया है के अंदाज में और गेंद जा रही है स्लॉग कॉर्नर में, मिड विकेट के बाई तरफ से सीमा रेखा के बाहर, 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: पूरी बैकलिफ्ट 360 डिग्री में घूमता हुआ बैट, जैसे कि पुराने समय में कैलेप्सो कहलाने वाले वेस्टइंडीज क्रिकेटर खेलते थे, लेकिन ये T20 का जमाना है साहब, और महिलाओं का क्रिकेट हो या मेंस का पारंपरिक क्रिकेट हो, अब तो बल्ला घूमता है और बखूबी घूमता है। 2 चौके लग चुके हैं इस ओवर में, खराब गेंद, थोड़ी दिशाहीन, लेग स्टंप के बाहर आई, पूरा फायदा नहीं उठा पाई, दूसरे रन के लिए सोच रही हैं, 2 फील्डर झपटे, विकेट कीपर स्वयं पहुंची वहां उस गेंद को रोकने के लिए, लेकिन कोई विशेष लाभ बैटर उठा नहीं पाए क्योंकि गुंजाइश केवल उस लेग बाइस पर 1 रन की ही थी। तो जैसा कि हम दोनों ही आपको बताते रहे, अब तक टाइम नहीं कर पा रहे हैं, गति का परिवर्तन है निश्चित है, कर रहे हैं चतुराई के साथ बॉलर्स, लेकिन उसके बावजूद भी ये विकेट कुछ धीमा लग रहा है और बैट पे नहीं आ रही है गेंद, फिर लेग स्टंप के बाहर, कलाबाजी खाते हुए विकेट के पीछे, कैच के लिए अपील कर रही है और अंपायर इशारा कर रहे हैं वाइड का। गार था ये बात करने के लिए और सलाह मशवरा हो रहा है कि रेफरल लिया जाए या नहीं लिया जाए। 7, 6, 5 समय रुकता थोड़ी है और ले लिया। सोफी मोलिनू कप्तान जो है उन्होंने इशारा कर दिया हमें रेफरल चाहिए, तीसरे अंपायर को निर्णय कर लेने दीजिए क्या ये आउट था अथवा नहीं।
2: Might be close. Reminds me of what happened last night when Harry Brook was given out. Exactly the same situation. Down the leg side, the umpire declared it a wide and then the replay showed the ball had taken the glove. This will tell you, Vineet.
0: बिल्कुल ग्लव्स के बेहद करीब से जा रही है। निश्चित रूप से अल्ट्रा एज देखना चाहेंगी किम कॉटन। बहुत ही तजुर्बेकार अंपायर हैं, बहुत अनुभव है उनके पास। और वो जो दृश्य है आपके दिमाग में भी आया होगा, ईशान किशन बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नजर आ रहे थे, संकल्प से भरे हुए थे, कह रहे थे बिल्कुल बिल्कुल आउट है आउट है। और यहाँ विकेट कीपर एमी, जबकि ग्लव्स के पास से एज नजर आ रही और ये निश्चित रूप से विकेट मिल जाएगा वहाँ। अच्छा रेफरल किम कॉटन के निर्णय की हालांकि प्रतीक्षा है, लेकिन वो स्निको, वो जो अल्ट्रा एज है जो कार्डियोग्राम की तरह उस ऊपर नीचे उठने वाली रेखाएं आती हैं, ग्लव्स के पास से जब गेंद गुजर रही थी और विकेट कीपर बहुत जल्दी बर्ट मुनी उसको समझ गई थी और उन्होंने बड़ी मुस्तैदी के साथ कैच की तरफ वो लपकी थी और छलांग लगाते हुए डाइव लगाते हुए उन्होंने किया था, वो कैच किया था और रेफरल मिला। उनके रेफरल 2 अभी भी बरकरार रहेंगे, दोनों टीमों को 2-2 इस इनिंग्स में सफल जब तक वो रहेंगे, जब तक 2 बने रहेंगे। पूरे हाथ आगे फैलाए, पोजीशनिंग अच्छी थी, अनुमान अच्छा लगाया था, हालांकि अनसाइटेड थी बैटर के द्वारा। और उसके बाद भी मुनी, जिन्होंने कि अब तक 5 कैच पकड़े हैं पीछे विकेट के इस टूर्नामेंट में, अपना पूरा अनुमान लगाकर और उसका लाभ दिया और उसके बाद उन्होंने जानबूझकर सलाह भी दी कि लीजिए इसमें गुंजाइश है। और अब उंगली उठती हुई विंदा राठी की, जबकि बैटर जा रही हैं, तो दबाव इंग्लैंड के ऊपर अचानक नजर आ रहा है।
2: एब्सोल्युटली, एंड सो द लीडिंग रन स्कोरर इन द टूर्नामेंट डैनी वाइट हॉज जॉइंस हर ओपनिंग पार्टनर एमी जोन्स बैक इन द लॉर्ड्स पवेलियन। इंग्लैंड इन ट्रबल आई वुड से, हैविंग लॉस्ट द सेकंड विकेट फॉर 32।
0: तो ऑस्ट्रेलिया न केवल 2 विकेट ले चुका है और रन बनाने की गति जो पावर प्ले में इंग्लैंड रखना चाहता है, हर टीम रखना चाहती है, क्योंकि 2 ही फील्डर बाउंड्री पे होते हैं, उसका लाभ भी वो नहीं उठा पाए हैं। और एक वो जो पार्स स्कोर की जो परिकल्पना उन्होंने की होगी और जो दिमाग में बैठा होगा, उसका इस पिच को देखकर और परिस्थितियों को देखकर अब संभल कर खेलना होगा। ज़्यादा विकेट वो खोना नहीं चाहेंगे। एलिस कैप्सी, इनकी बहुत ज़्यादा चर्चा इस टूर्नामेंट में नहीं हुई है, लेकिन आज सुनहरा अवसर है, वो अपने आप को साबित कर सकती हैं और बीड़ा उठाएं इंग्लैंड को आगे ले जाने के लिए। 5 मैच 74 रन ये उनके लेखा जोखा है पिछली 5 इनिंग्स का। कैप्सी सामना करेंगी, वही स्ट्राइक लेंगी अंतिम गेंद और धीरे से पुश भर कर दिया बहुत ही इत्मीनान के साथ। और कप्तान 7 दे रही थी, सेवर ब्रंट 1 रन पूरा हो गया। 5 ओवर समाप्त, 33 रन 2 विकेट पर।
4: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
5: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
4: तुम हो ही भुलक्कड़।
5: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
6: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
7: आभा
6: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
2: 33 for 2, not dissimilar to the kind of position England found themselves in the semi-final against South Africa. The important thing is Siva Brunt is still there. She's on 16. Alice Capsey has just joined her. Danny Wyatt-Hodge would consider herself a little bit unfortunate to have been snaffled down the leg side, but the athleticism of Beth Mooney once again showing that if you are fit and sharp, a lot more is possible. Capsey now on strike, and Lucy Hamilton is back into the attack for her second over, having bowled the first one for just 4. Bowls to Capsey. Capsey swings and misses outside the off stump. That left arm over the wicket angle, looking to play it square towards backward point, was Capsey. Slightly thick set, but a wonderful timer of the ball is Alice Capsey. In the women's 100, she's played some blistering innings. She's a strong hitter of the ball across on the onside, but also has a very pleasing drive through the offside. So one of the younger players coming through in recent years. Bowls now, and Capsey this time is striking it well, but a little fumble at point allows the single to be taken, and there will be a run added to the total. 34 for 2 now, with the last over of the power play. four more deliveries to come. Charlotte Edwards, after the trouble and the problems that England had with that Ashes loss in Australia, having not made the World Cup final, or in fact the semi-final losses that they suffered, all that has been looked at by Edwards. Here's the next one. Inside edge. Fortunate again is Siva Brunt. The bottom hand coming through a little bit earlier. And as a result, the inside edge squeezes through on the onside. Not where she wanted it to go, but she'll take the run. That'll take the total up by a run further now. 35 for 2. But as Vineet said, not able to time the ball, the English batters at the moment. Some of it on account of the variations of the Australian bowlers, but also maybe the pitch is just a little bit too paced at the moment. Slower ball, and thought about it. Capsie then withdrew her bat and let it go through on the bounce into the gloves of Beth Mooney. So really a testing time at the moment for the England batters. Siva Brunt holding things together at the moment on 17. Capsie's got two runs, and certainly not looking an inspiring start by England. Not the kind of beginning they would have liked, but at the moment, slight hold up and another no ball. The no balls are taking a fair amount of time to come through from Kim Cotton and the technology. Technology has been in talk of the world. This is a big no ball, this one, Vineet, no question here. But whether it is the FIFA World Cup in football that's been going on in the other part of the world, in the States, along with Canada and Mexico, technology has been controversial. But here, no controversy, clear no ball, signalled as such, and a free hit is just what the doctor ordered for England. Alice Capsie now has a chance to be able to get at least a boundary, if not tonk it over the rope. She's well capable. Round the wicket comes, and she will not get a single, or she just about gets it. It wasn't an easy run, so well bowled in the end by Lucy Hamilton. Came round the wicket and made sure that only a single accrued. 37 for 2 now. And a little fumble at mid-wicket. Otherwise, there could have been trouble at the non-strikers end. Vineet Capsie had no chance. She was way out of the crease when the ball came to the hands of Annabel Sutherland. But the throw wasn't great from Ash Gardner, and that allowed the run to be completed. So fortune still continuing to favour England. How long are they going to ride their luck, Vineet? That is what we have to wait and watch. Everything so far, from a luck point of view, seems to have gone in favour of the hosts, along with the fact that they're playing at their home ground. Wide of the crease, cut away on the offside. Fielder at deep point will cut it off for a single, is all that England will get. 38 for 2. Brunt, Siva Brunt moves to 18, and Capsie back on strike. The run rate just edging over 6.5. Not the kind of start you'd expect in the power play of a big World Cup final, but that's just the way it is at the moment. 38 for 2. England will have to do some rebuilding here. Australia will be quite pleased, I think, with the way things have gone so far. Sophie Molyneux, their captain. Two no balls already. Not something Australia will be proud of. They really love their discipline. Capsie waits for the last ball of the power play. Bowls, and she's placing it out onto the deep cover area for another run. End of the over. Six gone. 39 for 2.
7: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है.
0: तो ड्रिंक्स मैदान पर हैं, 6 ओवर के बाद और फिर 14 ओवर के बाद दो ड्रिंक्स इंटरवल एक पारी में. सवा घंटे की पारी, 15 मिनट 20 मिनट मौके के अनुसार कि ओवर्स टाइम पे पूरे होते हैं या नहीं होते हैं. ओवर टाइम पे पूरे करने बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका एक खिलाड़ी अंतिम ओवर्स में कम आपको मिलेगा बाउंड्री लाइन के इर्द गिर्द. ये सूरत हाल है यहाँ पर. आज टॉस हुआ, फाइनल मुकाबला है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में. टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का ये 10वां है. कुल मिलाकर अब स्थिति यह है कि 39 रन के स्कोर पर दो खिलाड़ी इंग्लैंड ने खोल दिए हैं. हालांकि कप्तान अभी भी मौजूद है नेट सेवर ब्रंट, और जैसा कि प्रकाश ने बताया, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब उनका मुकाबला हुआ सेमीफाइनल, लगभग यही परिस्थितियां थी. उसके बाद हैदर नाइट और कप्तान के बीच में 133 रन की साझेदारी हुई. तो इसी तरीके की कुछ ज़रूरत यहां पर है. लेकिन पिच निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बैटिंग के अनुकूल लगभग इस समय नज़र नहीं आ रही है. और जैसे जैसे धूप होगी

0: क्रॉस ब्रीज है मैदान पर, वेस्टर्ली ब्लो कर रही है जो पिच के ऊपर से अक्रॉस जा रही है, तो शायद बाद में बैटिंग करना शायद कुछ अपेक्षाकृत आसान हो, लेकिन अभी जूझ रही है इंग्लैंड की टीम एक बड़े स्कोर करने के लिए। एक स्ट्रोक ऐसा याद नहीं आ रहा है प्रकाश जिसमें आक्रामक तेवर से मिडल करके उसको बाउंड्री पार पहुंचाया।
1: I would say Vinith, except for the first cover driven boundary that Nat Sivabrant played, which was really a beautifully timed shot, there hasn't been, you're right, a stroke of authority, a stroke of control or a stroke of determination, but it seems like that is the plan that England are playing with. They haven't shown aggression, and different teams approach power plays differently. India, for example, look to maximize the power play, and in the process, if they lose wickets, it's okay. That's their thinking. Some other teams play slightly more conservatively, but the occasion, the World Cup final, the losses to Australia, home pressure, all of those things must be playing on the minds of the England batters as well.
0: एक बात तो तय हो चुकी है और आंकड़े इस बात का सबूत हैं, स्टैट्स इस बात का सबूत हैं, प्रमाण हैं कि ये सिक्सर लगाने का खेल तो नहीं है T20 क्रिकेट। आप देखेंगे कि जो टीमें आगे बढ़ी हैं उनमें कम सिक्सर लगाने का ही रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, ज़्यादा लगाए नहीं हैं। सबसे बड़ी बात स्ट्राइक रोटेशन और डॉट बॉल्स कम से कम खेलना बहुत मायने रखता है, और उसमें कुछ टीमें पिछड़ी हैं जिसमें भारत भी है। हालांकि आप देखें छक्के लगाने में स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा दोनों ने 5-5 छक्के लगाए हैं, सबसे ज़्यादा ड्रैक्सन ने लगाए हैं दक्षिण अफ्रीका के लिए, तो ऊपर हैं सिक्सर्स में तो। लेकिन वो जो स्टार्ट मिलना चाहिए था भारत को नहीं मिला, क्योंकि वो स्ट्राइक रोटेशन नज़र नहीं आया। ये दीजिए, ये एक और ख़तरनाक बॉलर जॉर्जिया वेरहम, लेग स्पिनर हैं लेकिन गजब की बॉलिंग करती हैं, झांसा देने में माहिर हैं, हवा में झूलती हुई, तैरती हुई, डिप होती हुई गेंद मिडिल स्टंप पर आती हुई। ऑस्ट्रेलिया ने स्टंप्स को लगातार अटैक किया है, यथासंभव स्टंप्स पर रखी है, यू मिस आई हिट, और ऐसे में फिर दुश्वारियां बैटर्स की बढ़ जाती है और आपको देखना पड़ता है कि कैसे खेलेंगे। 40 रन 2 विकेट पर, ये 7वां ओवर ड्रिंक्स के बाद का पहला ओवर लॉर्ड्स में शुरू हुआ है, इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया ये मुकाबला खेला जा रहा है T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा है, और उसको उल्टा खेलना चाहती थी, रिवर्स रैंप के हिसाब से खेलना चाहती थी या स्कूप कह लीजिए, हालांकि संपर्क हुआ, दूसरे रन के लिए आएंगी ज़रूर, लेकिन इससे ज़्यादा तेज़ी से रन चाहिए क्योंकि पावर प्ले अब समाप्त हो चुका है, फील्ड रिस्ट्रिक्शन खत्म हो चुकी है, अब बाउंड्री लाइन के इर्द गिर्द ज़्यादा खिलाड़ी रखे जा सकते हैं। आगे की ओर झुकी, कलाइयों को घुमाया, बैट का मुंह आसमान की ओर कर दिया और फिर विकेट के पीछे की ओर उसको खेलने का प्रयास किया, और गेंद का जो मूवमेंट था, टप्पा खाने के बाद गेंद एक तो नीचे रह रही थी, ज़्यादा उसमें उछाल नहीं था, अपने स्ट्रोक को नियंत्रित करके चेंज करने की कोशिश की थी, 3 रन 2 गेंदों पर अगली गेंद को कवर्स में फील्ड कर लिया गया, ज़्यादा ऊंची बैकलिफ्ट लेके ड्राइव किया था इस बार। लेकिन नेट शिवब्रंट जिन्होंने 75 रन 47 गेंदों पर पिछले मैच में बनाए थे, जबकि सोफिया डंकली के स्थान पर टीम में शामिल हुई जो अच्छे फॉर्म में थी, लेकिन कप्तान ने बढ़िया पारी खेली, एक और सिंगल दौड़ते हुए इस बार गेंद को खेला है डाउन द स्लोप, उस ओर गई है जहां की माउंट स्टैंड है, और वहां गेंद खुद ब खुद तेज़ी से जाती है, लेकिन स्ट्रोक में कोई गति ही नहीं थी, कोई शक्ति नहीं थी, प्लेसमेंट थी, गेंद की रफ्तार का इस्तेमाल करने का प्रयास था, मोड़ा भर था, केवल 1 रन। अब तक 4 रन इस ओवर में, 2 गेंदें शेष हैं, 43 रन 2 विकेट पर, अगली गेंद वेरहम की, वेरहम देखिए बहुत बढ़िया गेंदें कर रही हैं, गेंद को आई लाइन के ऊपर कर रही हैं, बीच में फास्टर वन करती हैं, लोअर ट्रिजेक्टरी की गेंदें करती हैं, भरपूर वेरिएशन, विविधता लिए हुए उनका ओवर होता है, और कुल मिलाकर टूर्नामेंट में उनका इस्तेमाल किया है, और जब इस्तेमाल किया है उन्होंने ब्रेक थ्रूज दिलाए हैं। हालांकि इस समय हावी है ऑस्ट्रेलिया की टीम, 7वें ओवर की 1 गेंद शेष है, 43 रन 2 विकेट पर, 43 for 2, ऑस्ट्रेलिया फील्डिंग, इंग्लैंड बैटिंग आफ्टर लूजिंग द टॉस। अगली गेंद बहुत नीचे रह गई एकदम, और अब लाचार हैं, खफा हैं अपने आप से, और क्या करें, गेंद बल्ले पे आ ही नहीं रही और ओवर पूरा हो गया।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: England's woes with the bat continue.

0: doing at the moment, 43 for 2. If there's a positive they can take from it, is that they haven't lost a third wicket. And this is the phase now where they're going to have to really start looking to move on. But the Lord's pitch in recent times, whether it was the test match between New Zealand and England, whether it was the earlier games played in the county championship, the Lord's pitch after the square has been relayed has had the odd occasion. The last one barely got up to ankle high, and that is a concern for sure at this early in a big game like the Women's T20 World Cup final. Start of a fresh over, Sutherland bowls, and she has no idea at all, does Siva Brunt. I think leading edge, she's lucky that the ball didn't go further up the pitch. In fact, looking at the replay, it looks like it just came off the pad, inward movement, and defeating the stroke that she attempted, to which was a flick towards the onside. So the two-paced nature maybe of the pitch and the variable bounce already on view, not an ideal advertisement for a T20 cricket. Here's the next ball, this one short, and this time Siva Brunt makes some room and pulls it away, but again not getting any timing. The ball sort of trickles away. The effort, as visible on our screens, clearly not translating into power off the middle of the bat, and just a single, limping along to 44 for 2. It's almost like the England car is only in first gear at the moment. They haven't even been able to move up to second, and Australia will not be disturbed at all. They'll be happy with the pressure they've put on the bowlers. And even as we watch Sutherland bowling, the keeper is up to the stumps, which is to prevent the England batters from looking at going down the pitch. Here's Sutherland bowls. This one's an ill-directed delivery. Will go off the pad. We'll wait for the umpire to signal. But there'll be one more run to the total before it's fielded by the fielder Kim Garth, coming around from a squarer position deep on the onside. Leg by signal by Jackie Williams. And that'll take the total to 45 now for 2. Siva Brunt 22. Alice Capsey is on 5. And Australia keeping a stranglehold on the England run scoring. Here's the next one from Sutherland, again keeping a little bit low, but this time timed a little bit better by Nat Siva Brunt, and that will allow them to come across. But just a single, because Ash Gardner was quickly onto it, moving around, and she's got a good throwing arm, and there was no way that England were going to take a chance with that one. So two balls of the eighth over to come. England will be reassessing what kind of target they'll be thinking given the nature of the pitch, as Sutherland comes in, this time making room. Capsey, she sees it, does Sutherland, drops it short and over the head, says the square leg umpire, and therefore a wide signal. She'll have to bowl that one again, and one more run to the total. This is not a game for bowlers, Vineet. Back in the day, if a batter showed intention and came down the wicket, you had a couple of balls whizzing through your in front of your nose, and as they say, you made them smell the leather. Next one's driven up on the offside, slightly over pitch, but only as far as cover. No placement, no timing. England struggling big time. The last ball of the eighth over coming up, 47 for 2. The run rate just about to run a ball. Not the kind of start you want in a big World Cup final when the opposition has put you into bat. How is Nat Siva Brunt going to respond now? It looks like the onus is going to be on her yet again. She's the champion batter. Sutherland bowls. Capsey comes down the wicket, cracks it away square of the wicket at the offside. But for all her effort, she'll just get a single. Another excellent over from Sutherland and Australia. 48 for 2.
1: So, ye samjha ja raha tha ki ek over se hi pitch par gende niche reh rahi hain. Lekin ab jis tarah se Sutherland ki gend is over mein niche rahi hai, usse lagta hai ki बीच बीच में दोनों ही छोर पर कुछ गेंद बिल्कुल सुर्रा के अंदाज में नीची हो जाती हैं और हतप्रभ हैं इंग्लैंड के बैटर्स. उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे स्ट्रोक खेलें, और विशेष करके प्रकाश उनकी परेशानी इसलिए ज़्यादा है कि ओवल जहां की दोनों सेमीफाइनल इन टीमों ने खेले हैं दोनों अपने अपने, वो इंग्लैंड में इस समय सबसे ज़्यादा बाउंसी पिच है. तो वो जो बाउंस का परिवर्तन आया है उससे बड़ी परेशानी बढ़ गई है इंग्लैंड के खिलाड़ियों की, और टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग कर रही हैं. और पावर प्ले के 6 ओवर में 39 रन बनाए और 2 खिलाड़ी उनके आउट हुए थे. सिव ब्रंट कप्तान मौजूद हैं. एशली गार्डनर एक और ख़तरनाक बॉलर, उनको बुलाया गया है. ब्रेक थ्रू दिलाती हैं ये जब बॉलिंग के मोर्चे पर आती हैं. इनसे कुछ भी करा लीजिए आप, इनसे बैटिंग.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री

0: और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जन संबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
2: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थ यात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
4: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आसानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने मार्केट इस्तेहकाम में मदद देने के लिए अगले महीने से तेल की पैदावार में यौमिया 188,000 बैरल्स इजाफे से इत्तेफाक किया है। फीफा आलमी कप में आज रात न्यूजर्सी में क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा और T20 क्रिकेट आलमी कप में लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में जनूब मगरबी मानसून में तेजी आ गई है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर बारिश, गरज चमक के साथ छींटे, बिजली चमकने और तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले चार दिन में मानसून के गुजरात के कुछ मजीद इलाकों, हरियाणा, पंजाब के बकिया इलाकों और राजस्थान के कुछ मजीद इलाकों में आगे बढ़ने के इम्कान हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड में दिन के दौरान शदीद से ज्यादा शदीद बारिश की पेशगोई है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में अगले दो से तीन दिन के दौरान अलग अलग जगहों पर बारिश का इम्कान है। महाराष्ट्र में आज मानसून की शदीद बारिश से बहुत से इलाके मुतासिर हुए हैं। बारिश की वजह से कुछ हादसात पेश आए, जहां बचाव कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रायगढ़ जिले में पुलिस ने 10 से 12 सयाहों को खपोली के नजदीक अदूशी आबशार से बचाया, क्योंकि यहां पानी की सतह में अचानक इजाफा हो गया था। हुक्काम ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो मानसून के दौरान दरियाओं, आबशारों और पानी के दीगर जखायर से दूर रहें। मुंबई में आज दोपहर मूसलाधार बारिश के दौरान कुर्ला में एक दुकान पर एक दरख्त गिर जाने से एक 63 साल शख्स हलाक हो गया। बीएमसी ने बताया कि शहर में दरख्त गिरने के 64 और दीवार और जुजवी तौर पर मकान गिरने के 8 हादसात की खबर मिली है। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं की वजह से परवाजों के आने जाने में भी काफी रुकावट आई है। भारत के महकमे मौसमियात ने मुंबई, थाने, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी समेत कोंकण जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में डांग, नवसारी, वलसाड़, भावनगर, अमरेली, गीर सोमनाथ और दमन व दीव और दादर व नगर हवेली में कल इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई है। आईएमडी अहमदाबाद में साइंसदान प्रदीप शर्मा ने हमारे नामानिगार को बताया कि इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और माही गीरों को मशवरा दिया गया है कि वो अगले 5 दिन समंदर में न जाएं। इसी दौरान दिल्ली एनसीआर के बहुत से इलाकों में आज दोपहर औसत दर्जे की बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम में यकसर तब्दीली आई और लोगों को नमी वाले मौसम से कुछ राहत मिली। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस माह की 20 तारीख से शुरू होगा, जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास को 20 जुलाई से शुरू करने के लिए हुकूमत की तजवीज को मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉ मोहन यादव ने आज शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट का संग बुनियाद रखा। इस प्लांट की तामीर तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ अडानी ग्रुप करेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी की तारीख में आज एक नया बाब रकम किया जा रहा है। उन्होंने इसे एक तारीखी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से ये जिला सनअती तरक्की, दिफाई साजो सामान की तैयारी और एक खुद कफील भारत के तस्वुर से वाबस्ता हो जाएगा। जनाब सिंधिया ने यह भी कहा कि शिवपुरी के मेहनती नौजवानों के जरिए बनाए गए हथियार और मिसाइल भारतीय फौज को मुस्तहकम करेंगे। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना दौरा शुरू कर दिया है। वो इस दौरे में कतर, बहरेन, कुवैत और ओमान जाएंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में डॉ जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जस्सीम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तआवुन के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया, जिसमें बिलखसूस तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी और अवाम का अवाम से राबता शामिल है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजीर खारजा ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने कलीदी शराकत दारी को मजीद बढ़ाने की गरज से नए मौकों की जस्तजू की। डॉ जयशंकर ने भारतीय बिरादरी के तहफ़ और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और मगरबी एशिया तनाज़े और उसके असरात के ताल्लुक से अपने जायजों से वाकिफ कराने के लिए उनकी तारीफ की। डॉ जयशंकर इस माह की 13 तारीख को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे, जहां वो अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की 2028-29 की मुद्दत के लिए भारत की सरकारी मुहिम का आगाज करेंगे। डॉक्टर जयशंकर इसके बाद तीसरी भारत यूरोपीय यूनियन तिजारत और टेक्नोलॉजी काउंसिल की मीटिंग में हिस्सा लेंगे और इस

0: कि 14 और 15 तारीख को ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के अपने हमसबों से बातचीत करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। पेट्रोलियम बरामद करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक प्लस ने तेल की पैदावार में इस साल अगस्त से 188,000 बैरल रोजाना का इजाफा करने से इत्तेफाक किया है। ये फैसला तेल मार्केट की आलमी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वर्चुअल वसीले से मुनाकदा एक मीटिंग के बाद किया गया। आज इस मीटिंग के बाद जारी किए गए बयान में 7 ओपेक प्लस रुकन मुल्कों ने, जिसमें सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं, कहा है कि इस फैसले का मकसद मार्केट के इस्तेहकाम में मदद करना है। उन्होंने एक मोहतात और लचकदार तरीक़ेकार के तहीं अपने अज़्म को दोहराया, जिसमें मार्केट के हालात पर इनेसार करते हुए तेल की पैदावार में इजाफे, इसे रोक देने या इसे कम कर देने के मुतबादिल भी शामिल हैं। तेल की पैदावार वाले इस ग्रुप ने कहा कि वो आलमी तेल मार्केट पर करीबी नज़र रखता रहेगा। ग्रुप ने पैदावार के उन निशानों को भी पूरा करने की यकीन दहानी कराई जिन पर रजामंदी की गई है। ज़िराअत और देही तरक्यात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी ग्रामीण के तहत रियासतों को 25,000 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। जनाब चौहान ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ इस स्कीम पर अमलावरी का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि रियासतों के पास खातिरखाह फंड्स मौजूद हों ताकि उजरतें 15 दिन के अंदर अंदर अदा की जा सके। जनाब चौहान ने यह भी कहा कि इस एक्ट के तहत 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए के अगले 5 बरस में सरमायाकारी की जाएगी ताकि विकसित भारत के तस्वुर को तेजी के साथ बढ़ाया जा सके। वजीर मौसूफ ने कहा कि VBG रामजी एक्ट ने कामयाबी के साथ महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम की कायापलट कर दी है।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: हुकूमत ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर अदायगी के बाद पेश किए जाने वाले इश्तहारों में बच्चों के जिंसी एतबार से इस्तेहसाल और नाजेबा सलूक से मुतालिक मटीरियल CSEAM पेश किए जाने के मामले में मेटा को सख्त नोटिस जारी किया है। हुकूमत ने इंस्टाग्राम को हुक्म दिया है कि वो इस तरह के मटीरियल तक रसाई की सहूलत बहम पहुंचाने वाले और इस मवाद को फरोग देने वाले तमाम इश्तहारात को रोक दे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत ने इस सिलसिले में मेटा से 7 दिन के अंदर तफसीली वजाहत तलब की है। हुकूमत इस बात का जायजा ले रही है कि प्लेटफॉर्म ने भारत की सालिसी के तहफुजाती रहनुमा खतूत पर अमल किया है या नहीं। उरिया फिल्में और बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल से मुतालिक वीडियोस की तशहीर डिजिटल कवानीन के तहत भारत में एक मुजरमाना खिलाफ वर्जी है। इससे पहले वजारत ने इन रिपोर्टों की बिना पर कि इंस्टाग्राम कुछ ऐसे काबिले एतराज वीडियो दिखाता है जिससे बच्चों के साथ जिंसी इस्तेहसाल की तशहीर होती है, अपने तौर पर कार्रवाई करते हुए अफसरान को हिदायत जारी की थी कि वो इस सिलसिले में मेटा से जवाब तलब करें। हुकूमत ने आबनाए हुरमुज के रास्ते LNG लाने ले जाने के अमल की बहाली के बाद कुदरती गैस सप्लाई पर आयद हंगामी बंदिशें खत्म कर दी हैं। ये बहाली मगरबी एशिया तनाजे में जंगबंदी के बाद हुई है। इस सिलसिले में हंगामी अहकामात लाजमी अशिया के कानून के तहत इस साल मार्च में जारी किए गए थे, जब आबनाए हुरमुज के रास्ते LNG लाने ले जाने वाले जहाजों की आमदोरफ्त में रुकावट आ गई थी। भारतीय बहरिया का तरबियती जहाज INS सुदर्शनी न्यूयॉर्क की बंदरगाह पर लंगरअंदाज हो गया। वो अमरीका के बैन अलाक्वामी नेवल रिव्यू 2250 और सेल 14th 250 तकरीबात में भारत की नुमाइंदगी करेगा। हटसन दरिया में कल कश्तियों की परेड के दौरान मशहूर जमाना 3 मस्तूल वाली कश्ती ने बड़े फखरी अंदाज में भारतीय तिरंगा लहराया, जो भारत की फरामा समंदरी सरहद की सकाफत और सदियों पुराने समंदरों के सफर की रिवायत का जश्न था। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जत्था यात्रा के अगले मरहले के लिए चंपावत जिले के टनकपुर इलाके से रवाना होगा। पहला जत्था 49 यात्रियों पर मुश्तमिल है, जिनमें एक डॉक्टर, 34 मर्द और 15 खवातीन शामिल हैं। दुनिया भर में मारूफ पांडों की दास्तान बयान करने वाली पद्म विभूषण एजाज याफ्ता डॉक्टर तीजन बाई की आज शाम दुर्ग जिले के उनके आबाई गांव गनियारी में सरकारी तौर पर आखिरी रसूम अदा कर दी गई। उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक सकाफत को आलमगीर मकबूलियत अदा की। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों, इंतजामिया के अहलकारों, फनकारों, अदीबों और हजारों सोगवारों ने आर्ट की इस शोरा आफाक शख्सियत को नम आंखों से खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में कशीदगी के उस वक्त बढ़ गई जब पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से मुबैना तौर पर मुजाहिरीन पर गोली चलाए जाने के वाकये में एक शख्स हलाक और दीगर मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ये वाकया बुनियादी हुकूक, माशी राहत और सियासी आज़ादी पर जारी एहतजाज मुजाहरों के दौरान पेश आया। मीडिया की खबरों के मुताबिक इस्लामाबाद के खिलाफ मुजाहरों के बाद खत्ते में 600 से ज्यादा सिविल हुकूक के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इंग्लैंड में मुकीम कश्मीरी बाशिंदों ने मुजाहरीन के साथ यकजहती का इजहार करते हुए एहतजाज किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कराची शहर में अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टरों के एहतजाज ने भी शिद्दत इख्तियार कर ली है, जिसमें जूनियर डॉक्टर्स बकाया वजीफों की अदायगी, बेहतर सिक्योरिटी और अस्पताल में अच्छी सहूलतों का मुतालबा कर रहे हैं। डॉक्टरों ने मुतनब्बे किया है कि अगर उनके मुतालबात न माने गए तो वो खिदमात मुअत्तल कर देंगे। ईरान के सियासी, मिलिट्री और मजहबी कायदीन ने आज तेहरान में साबिक अजीम रहनुमा मरहूम आयतुल्लाह खामेनेई की नमाज जनाजा में शिरकत की। सरकारी टेलीविजन की खबरों के मुताबिक अजीम रहनुमा के तीनों बेटों मसूद, मेसम और मुस्तफा ने तेहरान के मुसल्ले आजम में जनाजे की क्यादत की। इस मौके पर सदर मसूद पेजिशकियां, पार्लियामानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ और आला कमांडर भी मौजूद थे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के उनके मुल्क के तारीखी दौरे के 100 साल पूरे होने के मौके पर 2026 और 27 के दौरान 15 महीने तक जारी रहने वाले प्रोग्राम के जरिए इसकी याद बनाएगा। आकाशवाणी के खबरों के शोबे में खसूसी बातचीत करते हुए इंडोनेशिया के लिए भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि यादगारी तकरीबात का इफ्तिताह कल से शुरू होने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया के दौरे में होगा। फीफा आलमी कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात न्यू जर्सी में ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा, जो भारतीय वक्त के मुताबिक 1:30 पर खेला जाएगा। दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल में मेक्सिको सिटी में कल सुबह 5:30 पर इंग्लैंड का मुकाबला मेक्सिको से होगा। आज सुबह फिलाडेल्फिया में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल के एक मुकाबले में फ्रांस ने पैराग्वे पर 0-1 से जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। फ्रांस के कप्तान ने वार की तरफ से मिलने वाली स्पॉट किक पेनल्टी पर मैच के 70वें मिनट में वाहिद गोल किया। आईसीसी खवातीन के T20 आलमी कप फाइनल में अब से कुछ देर पहले तक इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 ओवर्स में 4 विकेट पर 122 रन बना लिए थे। ये मैच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। पूरे भारत में जुनूब मगरबी मानसून में तेजी आ गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश से खबरदार किया गया है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की तैयारी करने वाले प्लांट का संग बुनियाद रखा है, जिसकी लागत 2500 करोड़ रुपए है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना 6 रोजा दौरा शुरू कर दिया है। उन्होंने दोहा में कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने मार्केट इस्तेकाम में मदद देने के लिए अगले महीने से तेल की पैदावार में यौमिया 188,000 बैरल इजाफे से इत्तेफाक किया है। खबरें खत्म हुई।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली की ओर। वहां से आप देखेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य लंदन में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट का फाइनल मैच का आंखों देखा हाल। ये कार्यक्रम मैच के समापन तक जारी रहेगा। अब अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
3: धीमी गेंद और उसमें पूरी ताकत के साथ कलाइयों को घुमाकर मोड़ दिया उसको ऑन साइड में और 1 रन ले लिया। ट्रेवर ब्रंट 52 रन बनाकर खेल रही है, नौवां शतक पूरा हुआ, 132 4 विकेट पर, ये 19वां ओवर चल रहा है, इसके बाद

0: ओवर रह जाएगा और ज्यादा से ज्यादा रन इंग्लैंड जोड़ना चाहेगा और ऑस्ट्रेलिया किस तरह से रोकेगा, क्योंकि सेवा ब्रंट काफी देर से खेल रही है क्योंकि बैटिंग काफी ज्यादा शेष रह गई है। अब हर गेंद पर भरपूर प्रहार करने का प्रयास इंग्लैंड का रहेगा, 7.27 का रन बनाने का औसत है। सदरलैंड लगातार धीमी गेंदें कर रही हैं, 114 के आसपास की इस गेंद पर केवल एक सिंगल, सो सिंगल से ऑस्ट्रेलिया को अब कोई परेशानी नहीं होगी इस समय खेल के, तो बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है। सर हिला रहे हैं, बैटर जिस तरह से कैंप हिला रही हैं उसको देख के लगता है कि निराश हैं, करें तो करें क्या इस पिच पर। फील्ड देखने को मिली तो आप थर्ड मैन दायरे के अंदर है, पॉइंट भी दायरे के अंदर है, कवर्स है शॉट वो भी दायरे के अंदर नज़र आ रहा है, हवा में झूलती हुई तैरती हुई गेंद को घुमाया लगभग फुल टॉस पे और दूसरे रन के लिए इस बार जा रही हैं। दिशाहीन थ्रो हाफ पिच पर आया, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाती। ये होता है दबाव बनाने का नतीजा, आसानी के साथ दूसरा रन पूरा हुआ, 3 गेंदें 4 रन अब तक बन चुके हैं 135 चार विकेट पर। ये 19वें ओवर की 3 गेंदें अब तक हुई हैं। शिवा ब्रांड 54 49 गेंदों पर 23 गेंदों पर 33 रन बनाकर कैंप खेल रही है, लेकिन स्ट्राइक इस समय सेवर के पास है। फुल टॉस में घुमाया एक बार फिर, उस बार तो गेंद थोड़ी गैप में जाती हुई भी दिख रही थी, इस बार सीधे फील्डर के पास, एक रन और। हर गेंद पर रन तो बन रहा है लेकिन बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है इंग्लैंड को। 5 चौके लगाए हैं ब्रंट ने अपने 55 रनों में 50 गेंदों पर, विकेट के चारों ओर खेली अवश्य हैं लेकिन इससे ज़्यादा तेज खेलने की क्षमता रखती हैं, इम्प्रोवाइज भी किया है, उल्टे शॉट्स भी खेले हैं, रैंप और स्कूप भी खेले हैं। लगातार दूसरे मैच में उनका अर्धशतक, फिर धीमी गेंद हवा में झूलती हुई मोड़ा, बहुत ही बुद्धिमानी और चतुराई के साथ बॉलिंग कर रही हैं, कोई अवसर नहीं दे रही हैं कि बड़ा स्ट्रोक लगे, क्योंकि रफ्तार कम हो और वो भी इस पिच पर तो स्ट्रोक खेलना बहुत मुश्किल हो रहा है। व्हाइट हॉज सबसे अधिक रन इस टूर्नामेंट में 302, साउथ अफ्रीका की ओपनर टैस्मिन ब्रिट्स 225, सेवा ब्रंट तीसरे नंबर पर आ गई हैं 224। सदरलैंड की अंतिम गेंद और लगातार ब्रॉक होल में टिप्पा खिलाती हुई स्विंग होती हुई धीमी यॉर्कर 110 के की, उसको रक्षात्मक रूप से खेला, 19वां ओवर समाप्त हो गया 137 चार विकेट पर।
1: राइट देन वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द England innings, and after this innings, before Australia start, Free Hit 20 is the program you'll be able to listen, where our experts Chetan Sharma and Vaishali Mathur, both former cricketers, and Mona Parth Sarthi, sport journalist, will be in conversation with Munish Jolly and Gitanjali Soni. So do tune in for that at the end of the England batting innings before Australia start their reply. At the moment, the game is poised at 137 for 4 with the last 6 balls to come, and England look well below par, but the wicket has been a little bit strange, it's been a little bit funny, and England spinners will certainly, Charlie Dean, Sophie Eccleston, will be looking to try and make the most of it. Molyneux will finish things off with the final over, first one driven to long on, Perry Fields, one more to the total, and Siva Brunt now on strike. 55 she's got off 51 balls, and 138 for 4. 7.2 the run rate. Fielders now moving around as we come to the closing stages of this game. Now it doesn't matter that the final over has begun. Charlotte Edwards close up on our TV monitor suggesting that she's got a few worries about where this game might go. Have to wait and see. Now taking her time, Sophie Molyneux, now that the final over has started. Wide of the crease, balls to Siva Brunt, who goes inside out onto the wide-ish mid-off region. And they will come across for the second run. So the England captain trying to get as many as she can. One gets the feeling there might be a close game here if England can't pick up a few wickets. But this Australian batting lineup is formidable. 140 for 4 now. 4 balls to come in this England innings. Remember, they were put into bat, both openers were dismissed for single digit scores, and then after that, of course, Nat Siva Brunt and Alice Capsey gave some momentum. Capsey fell soon thereafter looking for a reverse sweep. Heather Knight didn't last long at all, looked out of sorts, and since then Freya Kemp, who's I think been the best batter on view today, has held the innings together along with her captain. Coming down the wicket, flicked away to mid-wicket, just a single. And you can see that when in the final over of the game, the England batters are only able to get singles or twos. That tells you how the ball has dominated the bat. 35 not out Freya Kemp of 25. On strike now. Can she hit a couple of lusty blows? 141 for 4. And she's gone straight upfield over the top and manages to get it all the way. Just as I was saying, a few lusty blows. She's hit one straight over the top for 6. England now coming into striking distance of the 150. 147 for 4. And Kemp moves to 41. She can get a couple more boundaries away in the last two balls. That will be very, very welcome for England. 147 for 4. Two balls left in this innings. Siva Brunt 58, Freya Kemp 41. And Molyneux in again. Pulled away from the crease by Kemp, looking for the second run.

0: और सातवीं बार ऑस्ट्रेलिया टी20 विश्व कप जीत लेगा। ये स्थिति यहाँ पर है। इंग्लैंड प्रयास करेगा, उनका अपना मैदान है यहाँ पर, वो कैसे भी करके ऑस्ट्रेलिया को रोकना चाहेंगे। सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया कितनी तगड़ी टीम है और मशहूर है कि नॉकआउट में उनके मुकाबले वो बिल्कुल एक तरफा कर देती हैं, इतनी हावी हो जाती हैं विपक्ष पर। तो क्या ऐसा होगा? इस समय सब भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बातें हैं। एक रोमांच इस समय तो कम से कम है कि 151 रन है। क्या इंग्लैंड शुरू में कुछ अच्छे विकेट्स निकाल लेता है, जल्दी जल्दी कुछ उसकी विकेट उसकी झोली में आ जाते हैं तो उनके अवसर बन सकते हैं इस मैच पे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आप यूँ समझ लीजिए नंबर 11 तक बैटिंग करती है, तो इसलिए बैटिंग की कोई कमी है नहीं। पिच में भले ही थोड़ी बहुत दुश्वारी हो कि वो धीमी है, नीची रहती है, लेकिन जिस तरह से स्टंप्स को अटैक किया ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने, कंटिन्यूसली स्टंप्स को प्ले में रखा और बैटर को बाध्य किया कि वो सावधानी से खेलें और गति का बहुत ही चतुराई के साथ लगातार परिवर्तन करना, इस तरह से करना कि पकड़ में ना आ सके, और उससे मात खाई। इंग्लैंड को शिकस्त दी उन्होंने उस पारी में, उसको बांध के रखा। 7.55 के औसत से 151 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को इस मैच को जीतने के लिए। जॉर्जिया वॉल और बेथ मूनी दोनों फॉर्म में है और बेथ मूनी तो ज़बरदस्त फॉर्म में है, पिछले मैच में भी अच्छी पारी उन्होंने खेली थी। तो उम्मीद ये की जाएगी कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए प्रकाश।
1: Well, that's what you'd expect. Stranger things have happened. But yes, one does feel this game is Australia's to lose. England, one feels, will almost have to bowl Australia out. I don't think they can defend 20 overs and limit the scoring below 151.
0: पिछले मैच में 61 रन बनाकर नाबाद रही थी बेथ मूनी, विकेट कीपर है, अच्छी कीपिंग की और कम से कम दो, एक में तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनका योगदान रहा। चार्ली डीन ऑफ स्पिनर वो बॉलिंग करने जा रही हैं और जब नेट सेवर ब्रांड नहीं थी तब उन्होंने कप्तानी भी की इस टूर्नामेंट में, तीन मैचों में, और ये अच्छा मैचअप है। दाएं हाथ की ऑफ स्पिनर, लेकिन इस समय राइट हैंडर सामने, पहले ही गेंद को ओवर द टॉप खेल दिया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: दैट्स अ स्टेटमेंट विनीत, दैट्स द वे ऑस्ट्रेलिया प्ले, राइट? ब्रिलियंट शॉट टू स्टार्ट ऑफ,
0: हाफ वॉली ऑन द ऑफ स्टंप और उसका पूरा फायदा उठाते हुए बैट का, अच्छी बैकलिफ्ट, पूरा फॉलो थ्रू, अच्छी फ्लरिश, 4 रन। अगली गेंद वो बहुत खतरनाक ढंग से आई, गेंद ये और उंगली उठी और खतरनाक ढंग से गेंद मूव हो रही थी, हालांकि रेफरल लिया गया है, ऑन ग्राउंड निर्णय है आउट का, वो मद्देनजर जरूर रखा जाएगा, वो मायने रखा जाएगा, और रेफरल लिया है जबकि 3 सेकंड शेष थे टाइमर पे। और वेस्ट इंडीज की जो अंपायर है जैकलीन, अब इशारा कर रही है हाथों से टीवी बनाकर कि टीवी अंपायर ये सुनिश्चित करे कि भाई ये निर्णय बदलने की आवश्यकता है या नहीं है, क्या वो आउट था या नहीं था। गेंद वास्तव में कुछ ऐसी अप्रत्याशित कर रही थी, चकवा खा गए थे बैटर, बैट के दूर नजर आ रही है प्रकाश गेंद।
1: Yeah, very similar to the way that she got out against India, Vinay, if you remember. Struck on the back leg and this will be close.
0: Kim Cotton, jabki leg stump ke bahar gend tippa khaye to out nahi diya ja sakta. Aur aisa hi hua hai. Achha referral aur umpire, itna varishth umpire hai ye. Jacqueline itni varishth hai. Kam se kam senior most umpire mein se ek hai. Anyway, the ball pitching outside the leg. और बच गए वहाँ पहले विकेट देने से ऑस्ट्रेलिया। बॉल सामना करेंगे अभी इस गेंद की, डीन की गेंद घूम रही, खेला है बहुत विश्वास के साथ नहीं, लेकिन पहले ही पूरा मन बना लिया था उस स्ट्रोक को खेलेंगी, कमिट हो गई थी उस स्ट्रोक के लिए और उसको बखूबी खेल भी दिया, आसानी के साथ 1 रन ले लिया, 5 रन जीतने के लिए बनाने हैं, कुल मिलाकर 151 रन। मूनी और वॉल की जोड़ी मैदान पर है, ऑस्ट्रेलिया चाहे तो इत्मीनान से भी खेल सकती है क्योंकि आस्किंग रेट 7.5 के आसपास का है, 5 रन बगैर नुकसान के। अब मूनी के ही लिए डीन ने अपने को मोर्चे पर लगाया है क्योंकि बर्ड मूनी विकेट कीपर लेफ्ट हैंडर है और ये अच्छा मैचअप है ऑफ स्पिनर डीन, जिन्होंने की काफ़ी विकेट लिए हैं, कुल मिला के चार्ली डीन अगर आप देखें तो इस टूर्नामेंट में छाई रही हैं, 9 विकेट उनके खाते में इस मैच से पूर्व पहले ही है, टॉप 3 बॉलर्स में उनकी गिनती है। चार्ली डीन

0: Mahakat Shoka. Askora Bhatti very keen to tell me that this was the 1,000th boundary in the T20 World Cup. Thank you. And 1,000 fours, if that means anything. I think it does to those who are statistically minded. But 16 without loss now. Australia setting the tone for this run change. Here's Bell again. Comes in and bowls. Down the leg side, will be called wide, I am certain. We'll wait for the umpire's signal to confirm. It is 17 now without loss. Australia creating panic among the England bowlers who haven't been able to settle down. Lauren Bell bowling a no ball, not for the front foot but for direction. As Wall waits now for the fifth ball. This is an extended over, this one. And she's pulled it on. George Wall has dragged this one from outside the off-stump. Inside edge. Smiles on Charlie Dean as well as Lauren Bell's faces. And that is the first wicket. England will need plenty more of that. 17 for one. Vineet.
1: Zarurat nahi thi. Lekin jaisa ki aapne kaha ki aamada thi har gain pe bada stroke ya run lene ki. और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, आड़े बैट से खेलने की कोशिश, अंदरूनी सिरा लगा, स्टंप से जाके टकरा गई। बेल युवा हैं, अभी 25 बरस की हैं, बहुत ज़्यादा अनुभव है नहीं, हड़बड़ा गई थी जिस तरह से उनके ऊपर आक्रामक तेवर दिखा रहे थे ऑस्ट्रेलियाई बैटर, और उसकी वजह से उनकी लाइन बार बार वो बदल रही थी, लेंथ भी बिगड़ी। शॉर्ट गेंद ये देखते हुए कि दो फील्डर बाहर हैं और मिड विकेट बाउंड्री पे कोई है नहीं, शॉर्ट गेंद की और पुल कर दी गई, और एक गेंद तो उनकी पिच से बाहर, जैसा कि प्रकाश ने बताया, टिप्पा खाया, और इसलिए क्योंकि पिच के बाहर टिप्पा खाया वो नो बॉल दी गई थी। लेकिन अच्छी वापसी की है, एक विकेट मिल गया है, ये महत्वपूर्ण है, अब शिकंजा कसा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ऐसा लगा था कि दोनों छोर से ताबड़तोड़ बैटिंग करने का मन बनाकर मैदान पर उतरा था, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, और कुछ असर नज़र भी आया इंग्लैंड की बॉलिंग के ऊपर। वो हड़बड़ाकर इधर उधर गेंद करते रहे, लेंथ भी चूके। मेलिनी काफ़ी अच्छी कप्तानी करती रही हैं पिछली पारी में, इस बीच ये गेंद और इसको सीधा ड्राइव कर दिया, उस ओर कोई फील्डर है ही नहीं, चार रन स्ट्रेट ड्राइव, फोर रन्स।
0: ये लगा आभा का चौका।
1: बहुत ही इत्मीनान के साथ 21 रन एक विकेट पर दूसरा ओवर भी समाप्त हो गया।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: दिलचस्प क्रिकेट। इंग्लैंड चाहेगा झोली में एक विकेट और आ जाए, और ऑस्ट्रेलिया अब दोबारा सोच में लगा होगा कि क्या जिस तरह से शुरुआत की थी उसको बदल कर कुछ धैर्य से काम लिया जाए। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर उनके सामने है नहीं, जीतने के लिए 151 रन बनाने हैं, बहुत बैटिंग उनके पास है। बेल का निश्चित रूप से हौसला बढ़ेगा। इस बीच गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई, गेंद को अपना संतुलन नीचे करते हुए फिर खेला, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रही हैं और वो पूरा भी हो जाएगा। 23 रन एक विकेट पर। स्मिथ बॉलिंग में परिवर्तन, चार्ली डीन की जगह लिंसी स्मिथ आई हैं, बाएं हाथ के स्पिन बॉलर हैं। ये मैचअप्स का ज़माना है जनाब, तो जिस तरीके का बैटर है, अगर आपको गेंद बैटर से अलग जा रही है तो खेलने में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दिक्कत होती है, तो ऐसे ही बॉलर को लगाया जाता है जो बैटर से दूर गेंद को निकाले। कुछ गेंदें बिल्कुल ग्रिप हो जाती हैं, नीची भी रहती हैं, और ये बात सही है कि गेंद वाइड थी, लेकिन उन दो कारणों की वजह से वो बोल्ड आउट हुई। बहुत बढ़िया फील्डिंग करने का प्रयास तो था, कलाबाजी खाई, लेकिन रोक नहीं सकेंगी ये चार रन।
0: ये लगा आभा का चौका।
1: स्मिथ ने कुछ तेज गेंद की थी, ऑफ स्टंप की सीध पे आती हुई गेंद को स्लॉग स्वीप के अंदाज में खेला, गेंद स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच के क्षेत्र की तरफ गई, पूरी लंबाई में डाइव लगाई, लगभग गेंद तक पहुंच गई थी, एक हाथ आगे बढ़ाया लेकिन गेंद रुकी नहीं और बाउंड्री पार हो गई। अगली गेंद में स्टंप पर अटैक कर रही है स्मिथ। स्मिथ अच्छी

0: लगातार कई बार उन्होंने नई गेंद का भी इस्तेमाल किया है और यही सही नई रणनीति है इंग्लैंड की, वो भी लगातार बॉलिंग में परिवर्तन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया था, एक एक ओवर के बाद भी बॉलर को हटाया गया, थोड़ी सी शॉट नीची थी, पुल करने में थोड़ी दिक्कत तो आई लेकिन फील्डर है वहां पर, वो उसको उठा लेंगे आसानी के साथ और केवल एक रन मिलेगा। तो ये खेल बड़ा दिलचस्प हो गया है। डैनी थी वहां पर जो फील्ड कर रही थी, बैथ मूनी, 65 रन की आवश्यकता है 1000 वर्ल्ड कप में रन पूरे करने के लिए। एलिस पेरी का क्या कहें, महान क्रिकेटर, इनको पिछले 50 साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया गया है। या तो आप एज ए बैटर ही उनको शामिल कर लें या एज ए बॉलर, दोनों कामों को भरपूर अंजाम देती हैं। अगली गेंद को ओवर द टॉप खेला, फील्डर मौजूद है, केवल एक रन मिलेगा। स्ट्रोक के साथ दौड़ते हुए उसे एक रन को पूरा किया और कुछ लोग उनको गैरी सोबर्स ऑफ विमेन्स क्रिकेट बुलाते हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर 29 रन 1 विकेट पर।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: Very evidently, Australia looking to maximize the power play. They're going just under 10 runs an over in these 3 overs so far, 29 for 1. Georgia of all the batter out, dragging one on. Molyneux waits. It's Phoebe Litchfield who's come in. I don't know why we've been saying Molyneux since the new batter came in. One more to the total. Tucked away around the corner. And total moves up to 30 now. We're in the 4th over. And England dearly would want to pick up not one but at least 2 more wickets quickly in the power play if they want to put some roadblocks. And one gets the feeling Sophie Eccleston will have a big role to play in this game as we wait and watch. Mooney waits now for the next one. Again, just making some room, driving straight past the bowler and the fielder at mid-off. 4 runs.
5: Ye laga abha ka choka.
4: Slower ball that one, and picking it very quickly was the experienced Beth Mooney. What a batter she is, on the move and hitting it with the full face of the bat, elbow up, so absolutely no problem for Mooney. And that means there is 4 more to be had. 34 for 1 now Australia, and Mooney's moved up to 13, just a little over runner ball. Litchfield is on 6. That first ball boundary certainly helping her, and Lauren Bell with a little bit of a worried look on her face. Young Lauren Bell, as Vineet said, fairly early in her career, but the moment you see Lauren Bell, her face is often a reflection of her emotions. Very, very reflective, very happy when she gets a wicket, and concerned writ large. Amy Jones, the keeper, now getting a helmet and standing up to the stumps to try and prevent Beth Mooney from leaving the crease. Bell goes in, bowls to Mooney. Mooney looking to work it on the onside. Struck on the pad, taken by the keeper from behind the stumps. No run possible. 34 for 1. In the middle of the 4th over now. Litchfield on 6. Phoebe Litchfield, another one of the young budding stars of Australian cricket. Very accomplished, has certainly performed well in all formats that she plays for Australia. And Lauren Bell with a skip and a jump into her run-up comes in bowls, and Mooney lofts this one high over the top and will get runs and will get 4 of them. 2-3 bounces, the ball rolls into the boundary cushion. So Mooney not letting up, she's up now with that boundary to 17, and the total is 38 for 1. Remember that England got only 39 runs in their power play. Australia already almost there now, 38 for 1 in the 4th over. Nicely lofted shot, the ball plugging a little bit in the outfield and then rolling into the cushions. Mooney waits for Bell, who's gone for 9 in this over. Once again making some room, exposing her stumps and carving the ball out on the offside. And they will come back for just the one run. Mooney goes to 18 and the total now moving up to 39 for one. Only two fielders, remember, during the power play allowed outside the 25-yard circle. And Lauren Bell, having gone for 10 in this over, has now given away 21 runs in her 11 deliveries. Comes in, bowls again. Down the leg side, will be called wide off the keeper's pad. The ball ricochets, but good work towards the short fine region. Umpire now signalling wide. And that's extra runs for Australia. Two more, in fact. So 41 now, the total moves up to. 110 runs separate Australia from a seventh Women's T20 World Cup title. What domination. Even though Australia have been missing silverware for a couple of years now, they look like they've got one hand on the trophy already. Bell bowls and nicely worked away in the gap. This will run away and will get to four runs. Yes, it is. Four more.
5: Ye laga, abha ka choka.
4: Beth Mooney on fire. She's on to 22 and another expensive over has been completed.
0: Four overs samapt ho gaye. एक बात तो फर्क पड़ता है, जब आपके पास कोई बहुत ज़्यादा विशाल स्कोर का दबाव ना हो तो फिर आप ज़्यादा हौसले के साथ बैटिंग कर सकते हैं। पिच में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है इस पारी में, पहली पारी की तुलना में, और गेंद अभी भी फंस रही है, रुक कर आ रही है इस पिच पर, और इसी वजह से वो पहला विकेट भी मिला था जब वो आउट हुए थे। तो वो इसी तरह से हुई थी कि गेंद टिप्पा खाने के बाद फंस गई पिच में, रुक गई और बाहर थी ऑफ स्टंप के, और उसमें जो मूवमेंट था फिर नीचे भी रह गई थी थोड़ी, और फिर इस तरह से उसको खींच लिया, प्ले डाउन हो गई और स्टंप्स पे जट के टकराई थी गेंद। लेकिन इरादे मजबूत हैं ऑस्ट्रेलिया के और इसीलिए तेज़ी के साथ वो करती हैं। डीन वापस बॉलिंग करने के लिए आ गई हैं, उनकी पहली गेंद को ड्राइव किया। इंग्लैंड भी स्टंप्स को अटैक कर रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरह, यथासंभव लगातार स्टंप्स की सीध में गेंद करने की कोशिश है। लेकिन युवा लॉरेन बेल कुछ ज़्यादा वाइड इधर उधर की गेंदें करती रही हैं, अगली गेंद को स्वीप कर दिया, उस ओर फील्डर अब पहुंच रहा है, पहुंच से दूर, चार रन।
5: ये लगा आभा का चौका।
0: ये बात तो माननी पड़ेगी कि ऑस्ट्रेलिया सोच समझ के उन क्षेत्रों में ही स्ट्रोक खेल रहे हैं जिस ओर फील्डर दूर हैं या हैं ही नहीं, और वैसे भी दो ही हैं बाउंड्री लाइन के पास। एक मिड विकेट की तरफ हटकर स्क्वायर फील्डर है लेग साइड में, और एक कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन पर, और ये पावर प्ले का फायदा वो उठा रहे हैं। अभी इसमें गेंदें शेष हैं, एज ऑफ द क्रीज से ये गेंद की कट करने का अंदाज, लेकिन फील्डर दायरे के अंदर है, फाइन लेग की बाई तरफ लेकिन दायरे के अंदर, 25 गज के, कोई रन नहीं मिलेगा। दो डॉट बॉल, एक चौका, पाँचवा ओवर चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया को बनाने हैं 151 रन, 49 रन एक विकेट पर। अब लेग साइड का फील्डर अब ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट पे कर दिया गया है, अगली गेंद को एक कदम बाहर निकला, हाफ वॉली पर उठा कर खेला, और इस बार क्या 6 रन मिल जाएंगे, 6 रन।
5: ये लगा आभा का छक्का,
0: और इस छक्के के साथ ही अर्धशतक पूरा हुआ। पहले 50 रन ऑस्ट्रेलिया की पारी के, बहुत तेजी के साथ आए हैं। फीबी लिचफील्ड एक अर्धशतक पहले ही बना चुकी हैं इस टूर्नामेंट में, हालांकि बहुत सारे मैचेस में वो नहीं खेली गई हैं, खिलाई गई हैं, लेकिन हौसले, क्योंकि लक्ष्य ज़्यादा नहीं है, इस तरीके के कुछ स्ट्रोक लगे तो फिर चेहरे लटकते और बुझते हुए नज़र आएंगे इंग्लैंड को, हौसला रखना पड़ेगा। 11 रन के ऊपर से ज़्यादा का इस समय रन रेट है, 11.79। अगली गेंद, और बहुत लेट खेली, अंतिम समय तक क्रीज की गहराई में लगभग पीछे चली गई थी और लगभग स्टंप्स के करीब पहुंच गई थी, और गेंद चली ही तो गई थी स्टंप्स के पास। इस तरह से वो जो स्ट्रोक खेला था 6 रनों के लिए, कदमों का इस्तेमाल करके बाहर निकल आना इस पिच पर, मानना पड़ेगा आत्मबल, आत्मविश्वास, संकल्प, तीनों चारों खेलने का।

0: और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: ऑस्ट्रेलिया लुक टू बी इन अ रियल हरी हियर विनीत। मेबी दे हैव गॉट एन अर्ली फ्लाइट, आई डोंट नो। 55 फॉर 1 डोमिनेटिंग इंग्लैंड्स बॉलर्स। द लॉस ऑफ जॉर्जिया वॉल नॉट putting any change whatsoever to their approach, which has been dominating. Lindsay Smith continues, pulled away towards wide-ish long on. They'll take one and the total will move up to 56. Mooney goes to 23, Litchfield on 16, and long faces in the England crowd. There are three players in this England team who have already gone through the pain of losing to Australia in a World Cup final. One of them is Heather Knight, Nat Siver Brunt, and Heather and Danny Wyatt. This one struck her on the pad. There's a big appeal, but umpire Rati is unmoved. I think the ball probably pitching outside the line of leg stump. Looking for the reverse sweep there was Phoebe Litchfield, making no contact. Lindsay Smith bowling and varying her pace. That's what I think England haven't done. Lauren Bell in particular has bowled pretty much at a standard pace. Smith bowls again. This one's wristily pushed away on the offside. This is turning out to be a decent start to the over. Just the one run, ensuring that they try and keep the Australian batters at bay. Three balls of the power play to come. Here's Smith bowls again. Nicely holding her length back a little bit and defeating the batter in the air, but able to adjust was Litchfield, pushing it away towards wide-ish mid-on for a single. 57 for 1. Litchfield 17, Mooney on 23. Two balls of the power play to come, after which England will have some relief in terms of placing a couple of fielders, and I suspect we'll see Eccleston into the attack immediately after that. Short ball pulled away on the onside. There could be runs. Four runs.
2: Ye laga abha ka choka.
1: Just a little bit of length back and short of a length, and pulled away authoritatively by Beth Mooney. What a cricketer. In complete control and really timing it beautifully. 61 now for one. And the last ball of the power play is now coming up. Australia showing how to play the power play. And they've knocked off 61 of the target already. Nicely worked away on the onside for a single. Will keep the strike. Six overs bowled. Power play complete. 61 for one. ऑस्ट्रेलिया इन द ड्राइवर सीट।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
5: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
4: तुम हो ही भुलक्कड़।
5: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
0: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
6: आभा
0: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
7: तो 6 ओवर पूरे हुए, ड्रिंक्स मैदान पर हैं, खेल रुका हुआ है, खिलाड़ी अपने आप को तरोताजा कर रहे हैं। 4 खिलाड़ी मात्र खोए थे इंग्लैंड ने, लेकिन रन केवल 150 बना पाए थे। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने में इस पिच पे दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन एडजस्ट कर रहे हैं। हौसला बुलंद है उनका और वो आक्रामक शैली से खेल रहे हैं। कई बार अपने स्ट्रोक्स को चेंज करना पड़ा है, चेक करना पड़ा है, क्रीज छोड़ के बाहर भी निकली हैं खिलाड़ी। बैटर्स जो इस तरह से खेलना चाहते हैं वैसे खेल नहीं पा रहे हैं, उसके बावजूद ताबड़तोड़ रन बना दिए। इंग्लैंड ने बनाए थे 39 रन 2 विकेट पर पावर प्ले में, और ऑस्ट्रेलिया ने 62 रन बनाए हैं 1 विकेट पर। इतना फ़र्क है। और कहा जाता था कि बैटिंग पहले करें या फील्डिंग पहले करें, क्या सही रहेगा फाइनल्स में। और पहले बैटिंग करने का जब अवसर मिला तो पिच की दुश्वारियों को देखते हुए और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग चेंजेस, गति में परिवर्तन और स्टंप्स को अटैक करने का वो जो उनकी रणनीति थी, उसका मुकाबला ठीक से इंग्लैंड कर नहीं सकी। अपनी इनिंग्स को पेस नहीं कर पाई, क्योंकि प्रकाश केवल 4 विकेट ही गिरे और उसके बाद भी वो पेस को फोर्स नहीं कर पाए। अब यहां से ऐसा लगता है कि सेलिब्रेशन के लिए अतिरिक्त रात का समय

0: जोगाड़ना चाहेंगी और इसीलिए कुछ तेजी से खेल रही हैं। स्मरण रहे कि इंग्लैंड में 9:30 बजे से पहले दिन सूर्यास्त नहीं होता और इसीलिए पहले वनडे क्रिकेट जब शुरू हुआ तो 60 ओवर का खेल हुआ करता था, तो सूर्यास्त का समय लगभग 9:30 के आसपास का है। लंदन में जहाँ के दो प्रसिद्ध मैदान हैं, ओवल में दोनों सेमीफाइनल हुए और लॉर्ड्स में इस समय फाइनल चल रहा है। 151 रन बनाने हैं ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए और 62 रन वो पहले ही बना चुका है 6 ओवर में। बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है, क्या कर सकता है इंग्लैंड यहाँ से। और सो एकलस्टन की बात कर रहे थे प्रकाश वाकनकर, एकलस्टन ने वो एक शानदार कैच वोल्फर्ट का पकड़ा था जब 43 रन बन चुके थे, को विकेट नहीं गिरा था अपने कद का फ़ायदा उठाकर। उनकी बॉलिंग भी बहुत कारगर साबित हो सकती है निश्चित रूप से, लेकिन जिस तरह से रन बनाने पे आमदा हैं ऑस्ट्रेलिया, आज अग्नि परीक्षा होगी। बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं लेकिन कैंप डीन की जगह लगाई गई, चार्ली डीन की जगह कैंप आई हैं और वो बॉलिंग करेंगे। बैटिंग अच्छी की उन्होंने आज और देखें क्या करती हैं। लेफ्ट हैंडर मूनी सामने हैं उनके और खेला है गेंद, स्ट्रोक को चेक किया, गेंद हवा में है लेकिन उस ओर फील्डर है कहाँ, दूर से आना पड़ेगा उठाने के लिए, तब तक दूसरे रन के लिए पलट कर आ रही हैं। और रन उन दो रनों के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 64 रन एक विकेट पर 7वें ओवर की पहली गेंद पर। नेट शिवन ब्रंट नॉट आउट रही 53 गेंदों पर 58 रन बनाकर, और फ्रेया कैंप ने 28 गेंदों पर 44 रन बनाए, एकमात्र बैटर जिन्होंने कुछ हौसला दिखाया। कैंप चली, उनकी ये गेंद स्टंप्स के पास से की थी, कलाइयों को ऊपर उठाकर, कोहनी को ऊपर उठाकर मोड़ा भर जगह निकाली और तेजी से दौड़कर दोनों बैटर ने अपने सिरे बदल लिए। ये जो लॉन्च फेज होता है 1-6 पावर प्ले में, कितने रन किस टीम ने ज्यादा बनाई हैं। ऑस्ट्रेलिया का पावर प्ले में औसतन 9.53 का औसत रहा है, इंग्लैंड का भी 8 और 9 के आसपास रहा है। दोनों शीर्ष पर रही हैं पावर प्ले की बैटिंग में और गेंद की अंतिम समय तक प्रतीक्षा की, पंजों पर ऊपर उछली, कलाइयों को मोड़ दिया, एक रन मिल जाएगा, दो फील्डर हैं लेकिन उसको रोके उससे पहले। कैंप की ये गेंद लगभग 92 थी, स्लोअर डिलीवरी करने की कोशिश, स्टंप्स पे कर तो रहे हैं इंग्लैंड, लेकिन देखिए नज़रिए का कितना फ़र्क पड़ता है, आप किस सोच के साथ मैदान पर उतरते हैं वो फ़र्क पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया का अपना अंदाज है खेल के मैदान पर, चाहे वो क्रिकेट हो, रग्बी हो, फुटबॉल हो। लगातार स्टंप्स के पास आकर गेंद कर रही हैं, बॉटम एज लगी है, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी, विकेट कीपर के पीछे गेंद गई है, बहुत ही फाइन, 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका,
0: वॉवल सीम से की थी, गेंद की रफ्तार कम की थी लेकिन इतनी वाइड थी और इतनी नीचे रह रही थी और उसमें कोई नुकसान होने की गुंजाइश नहीं थी, अपने बैट को दबाया उस वाइड गेंद पर, सिरा लगा, बॉटम एज निचला हिस्सा जिसको कहा जाता है, और उसको लगने के बाद लुढ़कती हुई गेंद चली गई लॉर्ड्स के उस ओर जहां की वो मीडिया सेंटर है। कैंप चली, 2 गेंदें शेष हैं इस ओवर में, लगातार धीमी गेंदें कर रही हैं, मिडल और लेग स्टंप की इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, डिफ्लेक्शन में कितने रन आज इस पिच पर दोनों ही टीमों ने बनाए हैं। मूनी और लिचफील्ड की ये जोड़ी है, अब तक केवल एक विकेट गिरा है, लिचफील्ड ने रन बनाए हैं और इस पहले ही मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 50 किया था इस टूर्नामेंट में, ऑस्ट्रेलिया के पहले मैच में। गेंद की लंबाई कुछ ज़्यादा रख रहे हैं, कोई स्विंग तो है नहीं, नॉट स्विंग के लिए कोई ऐसी रफ्तार भी है, इस बार गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी, अपने आप को व्यवस्थित किया, कलाइयों को मोड़ दिया, फुर्ती में नजर आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, ताबड़तोड़ आनंद फानन में इस मैच को खत्म कर देना चाहती है, ओवर समाप्त हो गया।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ली। जानिए आभा के बारे में, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।

0: Australia going along at little over 10 runs and over, 72 for 1. And here's Eccleston, first ball worked away on the onside. They've taken one, think of the second and change their mind. Litchfield goes to 20, Australia 73 for 1 now. Required run rate just about a run a ball. And if Australia continue like this, unless there is a mini collapse and England can strike now and not just one wicket, I think England need a couple to try and come back into this game. Can Eccleston provide that? Left arm over, experienced bowler, tossed up, turned out towards the wide-ish mid-on region for a single by Beth Mooney. More fielders in the deep now permitted, of course. Four fielders in the ring, five will be in the deep. Capsey is out at long on. Eccleston bowls and driven on the offside, but straight to Nat Siva-Brunt at short mid-wicket. There is no run. 74 for 1 in the 7th over, chasing 151 to notch up their 7th title. Australia this time making some room. Pulled away, fine, swept beautifully. Initially I thought it hadn't been timed, but it was placed and timed well by Litchfield. And that give her 4 more runs. Ye laga, aabha ka choka. Swept very well indeed. Proactive movement. In fact, that's been a feature of the Australian batting so far, has been the proactive footwork of the Australian batters, achieving angles that otherwise wouldn't be available. And England facing annihilation here. This one's inside out, driven out towards the deep cover boundary. She was looking to go a little bit straighter over extra cover, the ball taking the outside part of the bat, and as a result just a single. 79 for 1, Litchfield 25, Mooney 37, and Australia now require less than a run a ball, and we're not even completed halfway stage yet. Pushed away on the offside nicely by Mooney, in control. Very sensible cricket. 8 overs complete, 80 for 1.
1: ओवर समाप्त हुआ है आठवां, और किसी भी तरीके का इस अनुभवी बॉलर ने गति का परिवर्तन नहीं लिया अपने इस पहले ओवर में. एकलस्टन ने 51-52-53 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ही बॉलिंग की.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है.
1: अब बचे हुए रन केवल 5.92 के औसत से ही बनाने, यानी कि 6 से भी कम रन बचे हुए ओवर्स में उस गति से ही बनाने शेष हैं, क्योंकि पहले ही 10 के औसत से वो खेल रही हैं. पहली गेंद और उसको लगभग पुल के अंदाज में बैकफुट पर संतुलित होकर खेल दिया, एक रन मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया को. 81 रन एक विकेट पर, टारगेट 151 का है. क्रिकेट से संबंधित हर व्यक्ति आपको इस समय लॉर्ड्स में दिख जाएगा, बड़े से बड़ा अधिकारी और छोटे से छोटा फैन, सब लॉर्ड्स की ओर ही तो आ गए हैं. कितना बड़ा अवसर है ये, जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने हैं वर्ल्ड कप के फाइनल में, वो भी लॉर्ड्स के मैदान पर. कंधे का इस्तेमाल किया पटका गेंद को गिब्सन ने. गिब्सन से लगातार बॉलिंग कराई है, नई गेंद का इस्तेमाल भी किया है गिब्सन ने. आज थोड़ा देर से तलब किया है. अब 70 गेंदों पर 70 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया. लिचफील्ड 25-19 गेंदों पर, और मूनी ने 39 रन बनाए 26 गेंदों पर. यह 9वां ओवर है जिसकी 3री गेंद आ रही है. काफी स्टंप छोड़कर लेग स्टंप की गार्ड लेकर खेल रही हैं, सीधा ड्राइव किया, ऐसा एक बार को लगा कि टाइम नहीं कर पाई हैं, फील्डर ने बाउंड्री लाइन के करीब डाइव लगाई, उनसे रुके कि नहीं, 4 runs।
5: ये लगा आभा का चौका।
1: जैसे अब तो ये एक तरफा मुकाबला हो गया है, जैसा चाह रही हैं वैसा खेल ले रही हैं ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स, और इसको पहले ही समझकर अपने आप को पोजीशन किया और स्ट्रेट ड्राइव कर दिया बॉलर के पास से 4 रनों के लिए। और इस बार केवल एक प्लेसमेंट बहुत इत्मीनान से चलते हुए 1 रन पूरा किया इससे पहले कि गेंद को उठाया जाए। ये 9वां ओवर चल रहा है, 86 रन अब 1 विकेट के नुकसान पर। सूफी डिवाइन, टूहू और वरिष्ठ खिलाड़ी कुल मिलाकर 3 रिटायर हुए न्यूजीलैंड के, सूजी बेट्स भी रिटायर हुई, अलविदा कहा इस टूर्नामेंट में, कितने बड़े बड़े कैरियर समाप्त हुए। इस बार बिल्कुल स्टंप्स के करीब आ रही थी गेंद, शॉट तो थी लेकिन स्टंप से इतनी ज़्यादा दूर नहीं थी, अपने पैर फैलाकर जगह निकाली उस स्ट्रोक के लिए और फिर खेला उसको ऑफ साइड में। 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की यह गेंद थी, 56, आप समझ सकते हैं एक बाएं हाथ का स्पिनर 53 की मील प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग कर रहा था, और ये मीडियम पेसर अगर आप देखें तो ये बॉलिंग कर रही है 56 की स्पीड से। घूम कर खेला और रन लेने के लिए बाहर निकल आई, क्या इसमें रन आउट का अवसर होगा, अंपायर से पूछा जा रहा है अंपायर। आमतौर पर इस टूर्नामेंट में हमने देखा है प्रकाश, निर्णय ले लेते हैं तुरंत और बता देती हैं वहीं पर कि आउट है या नहीं है, तीसरे अंपायर के पास नहीं भेजती हैं, और लगता है कि विकेट मिल गया है वहां पर। हालांकि निश्चित रूप से ये तय कर लिया जाएगा कि सही है कि या नहीं है, अंपायर का रिव्यू इस समय चल रहा है कि ये रन आउट है या नहीं है। फिसलाया, बैट को आगे बढ़ाया, अच्छी तकनीक, ठीक उस समय जब बैट आगे सरक रहा था, क्या ऊपर हवा में उठा है, क्या ग्लव से वो जो हटाया था वहां पर, बेल्स को जब हटाया था तब तक बैट अंदर पहुंच गया था। मुझे लगता है बैटर के पास एक अवसर बन गया है क्योंकि बैट ऊपर भी नहीं उठा है और जब वो हटाया था, तो भाई तकनीक जब आप अच्छी इस्तेमाल करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। पहले तो उन्होंने अपनी पूरी पहुंच में बैट आगे बढ़ा दिया और बिल्कुल नीचे घास पर चिपकाते हुए पिच के ऊपर रखते हुए उसको फिसला दिया, उनकी पहुँच बढ़ गई और इसलिए विकेट कीपर के पास जो एक अवसर था वो ज़ाया होता रहा। हालांकि अभी प्रतीक्षा की जा रही है औपचारिक निर्णय की।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: 87 for 1, a close call for a run out, looking for the second run there, but going Australia's way. Lauren Bell back into the attack, replacing Eccleston, pulled away on the onside. That itself, with that single, the total moves to 88 now. And just watching that replay, it's very close thing, short again from 88 for 1. Is where the total has moved now, requiring runs at 5.8 and over. And Australia really in complete control. Slower ball driven between the legs and past the fielder at mid-off. 4 runs.
5: Ye laga abha ka choka.
0: Phoebe Litchfield really peppering that long off straight boundary. Probably her third or fourth boundary there, using her feet, keep her standing up. But that doesn't deter young Phoebe Litchfield. And Lauren Bell's been taken to the cleaners, even though she tried to bowl a slower ball there. 92 now for 1, needing just 59 more runs. Slower ball, full toss, hammered away. And that will be a 1-bounce 4 at Kaizong.
5: Ye laga abha ka choka.
0: Back-to-back boundaries, Litchfield on fire as well. Australia not just dominating, they are destroying England's bowling at the moment. It is unbelievable that in a World Cup final, having done the bowling bit, The Australian batters now just pull.

0: pulverizing the opposition with their super aggressive stroke play, and they have made the England bowling look very, very ordinary indeed. Here's Bell again, bowls, and this time and the stumps, not able to beat the fielder at mid-on, and the total stays 96 for 1. 55 runs required for Australia to lay their hands on a seventh title and complete the, or rather stop the drought of silverware, ICC silverware, that is, that they have had for the last couple of years. Here's Bell again in bowls to Litchfield, who's wristily driving it to wide-ish mid-on and will steal a single in front of the fielder coming in from there. 97 now for 1. Litchfield 39 and Beth Mooney on 41. So these two really taking the attack to England. Great footwork, intent very obvious, not afraid, brave cricket. And as they always say, never judge a pitch till two teams have batted. Australia making this pitch look like a very good batting wicket, while England certainly struggled, and that's credit to Australia's bowlers. Here's Bell. Slower ball, cracked away into the deep cover region for a single by Mooney. She'll go to 42, and that is 10 overs bowled, 98 for 1.
1: वोट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ली। जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: जीत की ओर कूच कर रही है ऑस्ट्रेलिया। अब सवाल ये नहीं लग रहा सबके जहनों में कि वो जीतेंगी या नहीं, सवाल ये है कि कितनी जल्दी जीतेंगी। तो अब सवाल ये भी है कि अब चैंपियन टीम वही होती है जो कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर ले, और ऐसा नहीं है कि पिच कोई बहुत ज़्यादा बदली है। कई बार अपने को ढालना पड़ा है, इम्प्रोवाइज करना पड़ा है, अंतिम समय में स्ट्रोक को बदलना पड़ा है ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को। डाइव लगाते हुए बॉलर से छिटकी गेंद, अपने फॉलो थ्रू में अपनी बाईं तरफ जाती हुई स्मिथ ने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुई। एक रन मिल गया ऑस्ट्रेलिया को 99 पर। ये 11वें ओवर की पहली गेंद है। 100 रन पूरे होने जा रहे हैं, जीतने के लिए चाहिए 151, यानी कि अब 59 गेंदों पर मात्र 52 रनों की आवश्यकता है सातवीं बार T20 विश्व कप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं को। स्मिथ की गेंद ओवर द विकेट, बिल्कुल स्टंप्स के पास से की थी। अब तो इधर उधर दाएं बाएं चारों तरफ रन बन रहे हैं और 100 रन पूरे हो गए ऑस्ट्रेलिया के। दूसरे गेंद पर ये दूसरा सिंगल, 10.2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 100 रन। लिचफील्ड 26 गेंदों पर और मूनी 43 रन पर खेल रही हैं और लगातार अपने दूसरे अर्धशतक की ओर बढ़ रही हैं। पिछले मैच में 61 बनाए थे उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया सभी सोच रहे थे कि जीतेगी, लेकिन इस तरह से इस अंदाज में जीत जाएंगे इसकी कल्पना नहीं की थी, ये देखते हुए कि इंग्लैंड नहीं छोड़ेगा अपने मैदान पर, और हालिया दिनों में उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप रोक तो नहीं सकते। एक और सिंगल मिला है, इत्मीनान से अब ये हो रहा है, और फाइनल मुकाबला है, लॉर्ड्स का मुकाबला है। आप विश्व कप जीतना चाह रहे हैं, जो खेमे में नॉट आउट बैट्समैन बैठे हुए हैं, बैटर्स बैठे हुए हैं, वो सोच रहे होंगे क्या हमें अवसर मिल जाएगा, हम कुछ बैटिंग करके दिखाएं। यहां पर स्वीप किया, गेंद कुछ देर के लिए हवा में, लेकिन 4 रन अवश्य मिलेंगे। सीमा रेखा के बाहर गेंद जा रही है, अंपायर भी पहले सुनिश्चित करना चाह रहे हैं 4 है अथवा 6 है, प्रतीक्षा करेगा, हर व्यक्ति प्रतीक्षा करेगा, और ये 6 रन।
5: ये लगा आभा का छक्का।
4: रिवर्स यानी कि उल्टा घूमकर खेला उसको, और स्क्वायर ऑफ द विकेट पॉपिंग क्रीज की सीध में उन्होंने लगा दिया ये 6 रन। और स्मिथ अच्छे अच्छे बैटर्स को छकाया है इस टूर्नामेंट में। आज भारी पड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स उनके ऊपर, 6-7-8-9 रन अब तक इस ओवर में बन

0: कूच कर रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम, अब स्पष्ट विजेता नजर आ रही है क्योंकि केवल 4.75 के औसत से शेष रन उनको बनाने हैं। 113 एक विकेट पर, कुल 151 चाहिए जीतने के लिए। पहली बार एकलस्टन की फास्टर के साथ ही मूर्दी का अर्धशतक पूरा हुआ, केवल 38 गेंदों पर 50 रन, नौवां अर्धशतक है उनका विमेन्स T20 वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड के खिलाफ पहला है और 31st विमेन T20 इंटरनेशनल जो आप कह सकते हैं उनका अपना ये है जिसमें उन्होंने ये करके दिखाया है। और इस टूर्नामेंट में मोनी का तीसरा शतक है। मोनी ने 74 रन बनाए नीदरलैंड्स के खिलाफ, पिछले सेमीफाइनल में 61 रन बनाए ओम जी। तो कुल मिलाकर मोनी ही मुझे लग रही हैं मैन ऑफ द मैच होंगी, क्योंकि इन्होंने ही शुरू में बढ़िया बैटिंग करके इस मैच को एक तरफा किया। क्यों, बॉलिंग में कोई एक खिलाड़ी आप चुन नहीं सकते। बैत मुनी 38 गेंदों पे 50 रन बनाकर अपने तमाम अनुभव का लाभ अपनी टीम को देते हुए 7, 10, 74, 0, 22 और 61 ये स्कोर्स रहे हैं। वाइड का इशारा वेस्ट इंडीज के अंपायर द्वारा। अब 46 गेंदों पर मात्र 36 रन की दरकार है। लिचफील्ड पलटकर लेग साइड की फील्ड का मुआयना कर रही है, देख रही है कहाँ फील्डर है। धीमी गेंद को खेलने की कोशिश, जाके टकराई उनसे गेंद। क्या ये कोई ऐसी बात है, क्योंकि गेंद तो काफी सीधी थी, लेकिन किसी तरीके का कोई रिएक्शन नजर नहीं आ रहा है दोनों ही तरफ की टीमों से। शायद कुछ हाइट कम हो या, लेकिन गई सीधी थी, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग थी। अगली गेंद को कलाइयों के सारे सामने की ओर ड्राइव किया सीधे फील्डर के पास। अब आतुर हैं इस मैच को खत्म करने के लिए, हालांकि शैली शुरू से ही रही है। मुड़कर जब उसको ऑन साइड में खेलना चाहती थी, निश्चित रूप से लेफ्ट हैंडर के ऑफ स्टंप को छोड़कर जा रही थी ये गेंद। सर्कल के अंदर गेंद रुकी नहीं, बाउंड्री पे चली गई, बाएं हाथ से गेंद को उठाया जाए, तब तक दूसरे रन के लिए पलट कर आ रही है। ये 13वां ओवर चल रहा है। लिचफील्ड अब अपने अर्धशतक पे 48 रन बनाकर वो खेल रही थी, अब उनके लिए ये अवसर है कि वो अपने अर्धशतक को पहुंच सकें। पार्टनरशिप 100 रन की पूरी हुई है 69 गेंदों पे, कमाल की साझेदारी। बोल्ड कर दिया, चार्ली डीन ने विकेट ले ही तो लिया, और थोड़ा सा विलंब होगा ऑस्ट्रेलिया की जीत में, लेकिन वो जो विकेट गिरा है वो बोल्ड साफ कर दिया। लिचफील्ड अपनी अर्धशतक से 2 रन से चूकी, वहां पर 35 गेंदों पर खेल रही थी और ये गेंद को अच्छा फ्लाइट किया था अबव द आई लाइन, और उसको डिफ्लेक्ट भर करना चाहती थी और उनके मिडल स्टंप को ले उड़ी और वो गेंद, और इस तरह से ये दूसरा खिलाड़ी आउट हुआ ऑस्ट्रेलिया का, और 13वां ओवर समाप्त हो गया।
1: Forty-eight is what Phoebe Litchfield got. That partnership just going past 100 runs, 117 now for 2, and I suspect we'll see Ellis Perry coming into bat, unless of course the Australians decide that they want to change in the batting order. 117, Eccleston 2 overs done for 14, and Charlie Dean striking after that early wicket for Lauren Bell, where Georgia Vall dragged a ball back onto her stumps from outside the off stump. Last couple of overs, the Australian, the England spinners just beginning to find a little bit of bite and make a little bit of an impact, but it's too little too late, one feels. Australia now need just under 5 runs an over, and they've got 8 wickets in hand. So the question is, how soon Ellis Perry, the champion Australian, is at the non-striker's end. First ball of a fresh over, worked away on the onside. They wanted a single. Perry wasn't interested. Mooney's on 50. And it's a question really of how does Beth Mooney play from here. Young Phoebe Litchfield, maybe that ball just keeping a little bit low as well, but aiming at the stumps and getting the reward was Charlie Dean.

0: शुरू से ही 10 का औसत रखा बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया ने, और उसका नतीजा यह है 3.67 की अब आस्किंग रेट रह गई है। आप ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें तो कितनी 16 वर्षीय बालिकाएं हैं जिनको कि डेब्यू दिया गया है और वो आज बड़े क्रिकेटर बन के तैयार है। न मालूम 15 वर्ष की उम्र का इतना वो क्यों उठाया जा रहा है, इस बात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। सूर्यवंशी हालांकि डेब्यू कर चुके हैं, उनको एक अच्छे गाइड की आवश्यकता है। हर गेंद को सिक्सर नहीं लगाया जा सकता। बड़े खिलाड़ी हैं निश्चित रूप से, सारे गुण उनमें मौजूद हैं, थोड़ी सी गाइडेंस की आवश्यकता है। 129 दो विकेट पर, ओवर कितने हुए हैं भाटी? 14वां ओवर है, हो चुका है, इसका मतलब ड्रिंक्स मैदान पर हैं, हालांकि हमको नहीं नजर आ रही। तो खेल तमाम संभावनाओं के साथ शुरू हुआ लॉर्ड्स के इस मैदान पर, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे और बड़ी हसरत के साथ, ऑस्ट्रेलिया पिछली दो बार जीत नहीं सका था, ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ इंग्लैंड अपने यहाँ कभी हारा नहीं और ऑस्ट्रेलिया को कभी फाइनल में हराया नहीं, लेकिन दोनों ही टीमें विजय रथ पे सवार और परचम लहराती हुई पहुंची, कोई मैच हारी नहीं टूर्नामेंट में, और इसीलिए लगा कि टक्कर का मुकाबला होगा, कांटे का मुकाबला होगा, रोमांचक खेल देखने को मिलेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर हो और वो भी नॉकआउट स्टेज में, तो मुकाबले एक तरफे हो जाते हैं। पिच कुछ धीमी कुछ नीची है और अभी भी है, ऐसा नहीं है सेकेंड हाफ में या दूसरी पारी में कुछ बदलाव आया है, लेकिन जब आपके इरादे मजबूत होते हैं तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने को एडजस्ट कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। पिच अभी भी कहीं कहीं बीच बीच में नीची हो जाती है, गेंद ग्रिप करती है, रुक कर आती है। पहले 6 ओवर में 62 रन बना डाले, ऑस्ट्रेलिया ने केवल एक खिलाड़ी को खोया और एक खिलाड़ी और खोया 7-14 के बीच में, और 67 रन और जोड़े उन्होंने। शुरू से मुनी हावी रहे गेंद बॉलर्स के ऊपर, उन्होंने जमदार प्रहार किए और बहुत ही शानदार बैटिंग करके दिखाई एक मुश्किल पिच पर। अगर ऑस्ट्रेलिया ये 151 रन बना लेती है आज, तो ये बेस्ट एवर रन चेज होगी T20 के फाइनल में, T20 के फाइनल में होगी। भारत जब ऑस्ट्रेलिया से खेला तो 171 जो बनाने थे ऑस्ट्रेलिया को, वो भी रिकॉर्ड था, वो भी रिकॉर्ड चेज थी। लेकिन डीम, चार्ली डीम ऑफ स्पिनर, नए ओवर की शुरुआत करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया, फ्रंट फुट पर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, 54 मील प्रति घंटे की रफ्तार की यह गेंद थी और क्रॉस सीम से अच्छी फिरकी दी थी, कोई ड्रिफ्ट नजर नहीं आया। उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर से हवा है लॉर्ड्स के मैदान पर और इस गेम को खेला बाहरी मोटे सीरीज से लगकर गेंद कवर्स में गई, एक रन बहुत आसानी के साथ ले लिया ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने। 130 दो विकेट पर, यह 15वां ओवर हुआ है जिसकी दो गेंदें अब तक हुई हैं। बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी हसरत के साथ दर्शक मैदान पर आए और इनमें जो ऑस्ट्रेलियाई समर्थक हैं उनको निश्चित रूप से हर्ष हो रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया दो अवसर गंवा देने के बाद पिछले सालों में अब फिर T20 का वर्ल्ड कप चैंपियन होने जा रहा है। 34 गेंदे 21 रन।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग एक घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई नगर महानगर पालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जन भागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and gusty winds. The India Meteorological Department has said conditions are favorable for its further advance into some parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan during the next 4 days. Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day. While scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Chandigarh during the next 2 to 3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state today, triggering rescue operations and rain-related incidents. The weather office has forecast heavy to very heavy rainfall at many places, with extremely heavy rainfall likely at isolated locations over the next 24 hours. Authorities have advised people to remain alert and avoid venturing into vulnerable areas as the heavy rain is expected to continue. In Gujarat, IMD has forecast heavy rainfall over the next 7 days. A red alert for extremely heavy rainfall tomorrow has been issued for Dang, Navsari, Valsad, Bhavnagar, Amreli, Gir Somnath and Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli tomorrow. Fishermen have been advised not to venture into the sea for the next 5 days. Meanwhile, Delhi NCR witnessed a sudden change in weather this afternoon with moderate rainfall lashing several parts of the region, bringing much-needed relief from the humid weather. Union Minister Jyotiraditya Sindhya and Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav today laid the foundation stone of a defence manufacturing plant in Shivpuri. The plant will be built by the Adani Group with an investment of around 2,500 crore rupees. Speaking on the occasion, Union Minister Sindhya said, a new chapter is being written in Shivpuri's history today. Not only missile propellant, but also explosives, missile assembly, and some of the world's most advanced weapons will be manufactured in Shivpuri. This is the largest investment by a private sector company in South Asia. Mr. Sindhya said, the project will connect the district to industrial development, defense production, and the vision of a self-reliant India. Prime Minister Narendra Modi will embark on a state visit to Indonesia from tomorrow till the 8th of this month. This will be Prime Minister Modi's fourth visit to Indonesia. The Prime Minister will hold bilateral discussions with President Prabowo Subianto, reviewing progress across key areas of cooperation under the strategic partnership. In Jakarta, the Prime Minister is also scheduled to address a large gathering of the Indian diaspora. Coinciding with Prime Minister Modi's visit, Indonesia will launch 15-month-long commemorative programs marking the centenary of Gurudev Rabindranath Tagore's historic visit to the country. Talking to Akashvani News, India's ambassador to Indonesia, Sandeep Chakraborty said, celebrations will include exhibitions and year-long cultural programs highlighting the deep cultural ties between India and Indonesia. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar began his official visit to West Asia today, covering Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman. On the first leg of his visit, Dr. Jaishankar reached Doha, where he met Qatari Prime Minister and Foreign Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani. Both the leaders reviewed various facets of bilateral cooperation, especially energy, trade, investments, connectivity, security and people-to-people ties. In a social media post, Dr. Jaishankar said, they explored new opportunities for deepening the strategic partnership. Dr. Jaishankar thanked Mohammed bin Abdul Rahman for ensuring the safety and well-being of the Indian community and appreciated his sharing of assessments on the West Asia conflict and its impact. In the ICC Women's T20 World Cup final, chasing a target of 151 runs set by England, Australia were 137 for the loss of 2 wickets in 15 overs at Lord's Cricket Ground in London when reports last came in. Earlier, Australia won the toss and opted to bowl first. Put to bat, England scored 150 for 4 in stipulated 20 overs. Skipper Natasha Brunt was top scored with an unbeaten 58 runs, while Freya Kemp made 44 runs. In the FIFA World Cup, Brazil will take on Norway in the round of 16 match in New Jersey at 1:30 a.m. Indian Standard Time tonight. England will face Mexico in Mexico City in the other pre-quarterfinal at 5:30 a.m. tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब हम दिल्ली से रिले कर रहे हैं आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य लंदन में खेले जा रहे टी20 क्रिकेट का फाइनल मैच का आंखों देखा हाल। समापन तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा।
5: और इनिंग्स के तुरंत बाद आप प्लेयर ऑफ द मैच कार्यक्रम स्टूडियो से सुन सकेंगे, उसमें बची हुई जानकारी आपको मिलेगी। अगली गेंद को फिर उठाकर खेला, फील्डर के पास जाते ही जाते बुझते हुए जीए की लो जैसे बढ़ रही है, विकेट मिल गया इंग्लैंड को और आउट हुआ चौथा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का। पेरी ड्राइव कर रहे थे, अपिश ड्राइव मिड ऑफ पर, दायरे के अंदर वो कैच हुई।
6: गुड कैच बाय एकलस्टन देयर, was traveling, it was low, it was sharp, but Sophie Eccleston holding on to it. And a late flourish for England in terms of picking up both the set batters, but I think, as they say, little bit too late. Oh, she's still waiting. Maybe the umpires asked her to wait to check whether the ball was taken cleanly. I suspect they have to fill the time, Vineet. So they have to have reviews.
5: आजकल इतना कुछ लगा रहता है प्रसारण पर, सैटेलाइट्स इत्यादि.

0: बुक रहती हैं और विज्ञापनों का और कमर्शियल ज़माना है, लेकिन दृश्य उभर रहे हैं सामने मॉनिटर पे कि क्यों उंगलियां नीचे थी या गेंद नीचे थी। नो कैच एकलस्टन द्वारा। सेमीफाइनल में हम देख चुके हैं कि वो 5 फुट 11 इंच की अपने कद का पूरा इस्तेमाल करके ऊंचा कैच तो पकड़ ही लेती हैं, क्या लो कैच भी उन्होंने सफलतापूर्वक पकड़ा है ये अंपायर इस समय देखना चाहते हैं। उंगलियां नीचे हैं या बीच में से बॉल कहीं स्पर्श कर गई है टर्फ पर, वो इस समय यक्ष प्रश्न है और उसके लिए प्रतीक्षा की जा रही है। पिछले 5-10 मिनट में खेल कम हुआ है, रेफरल्स में ज़्यादा ज़ाया हुआ है और ऐसा कोई कांटे का मुकाबला भी नहीं है, लेकिन हाँ एक प्रक्रिया है जिसको कि आपको निभाना है। नई परिपाटी शुरू हुई है जो आगे भी जारी रहेगी, अब वो ये है कि नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर रन आउट बॉलर के हाथ से लग के अगर स्टंप्स पे गेंद जाए तो हाथ से लगी या नहीं लगी वो भी मॉनिटर पे स्निको पे अल्ट्रा एच पे देखा गया, जो हमारे अनुभव में हम लोगों ने तो पहले कभी देखा नहीं है, लेकिन प्रावधान तो है, प्रावधान नहीं है ऐसा नहीं है, यूँ कहना चाहिए। लेकिन अभी भी दिखाया जा रहा है एकलस्टन का वो कैच मिड ऑफ में दायरे के अंदर, जिसमें वो नीचे एक लो कैच पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। डिसीजन पेंडिंग है और नॉट आउट।
1: अनबिलीवेबल, दिस इज रियली रियली अमेजिंग विनीत, आई कांट एक्सप्लेन।
0: सर ही तो पकड़ लिया एकलस्टन ने अपने, उनको विश्वास नहीं हो रहा है, अभी भी आपत्ति जता रही है, क्या करिएगा, अब आप टीवी मॉनिटर से तो नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन इसीलिए तीसरा अंपायर बहुत तजुर्बेकार होना चाहिए और वो है, किम कॉटन कोई मामूली अंपायर नहीं है।
1: पॉइंट इज, एंड दिस इज समथिंग दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट वी सी ऑन द मॉनिटर इज अ 2-dimensional इमेज, यू नेवर कैन गेट अ 3-dimensional इमेज, एंड द मोर यू शो इट द मोर द डाउट गोज ऑन, एंड दैट इज वेयर टेक्नोलॉजी हैज टू बी सबॉर्डिनेट टू द गेम। It cannot lead the game, in my opinion, but who cares?
0: ऐसा हो जाता है कि कई बार तीसरा अंपायर का जो व्यक्तिगत नज़रिया होता है उसका उस लम्हे में जो फैसला होता है वही काम में आता है, और ये अलग अलग हो सकता है, सब्जेक्टिव है, हर व्यक्ति अलग तरीके से निर्णय ले सकता है। दो फील्डर्स के बीच में जो जगह है वहाँ से ड्राइव करके इस बार रन मिला है, नाम मात्र को पिछले 15 मिनट में खेल हुआ है।
1: Sorry, Vineet, you know, in the earlier days, before that rule was abolished, there used to be a soft signal from the umpire. I think that was a better way because then you needed conclusive evidence to overturn the umpire's soft signal. But that is no longer the rule.
0: And when the soft signal was given, it was in the eyes of the cover. What is the need for the soft signal? You are sending up. So this is running. It is running. Kashmakash is running. ICC rules are changing. बहुत सी चीज़ें हैं जिसका अब ये आप अनुमान लगा लीजिए कि इतनी दफ़ा और इतने समय तक देखने के बाद भी वो निर्णय से सब संतुष्ट नहीं है, और ये है प्रक्रिया इसीलिए कि आप सही फेयर निर्णय न्यायपूर्वक उसका फैसला कर सकें। और कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि ये तो तीसरे अंपायर का अपना नज़रिया था कि उसने आउट दिया, और ऐसा होता रहा है। 17 ओवर पूरे हुए, 146 3 विकेट पर।
1: So it looks like we might be into the last over of the game, Vineet. 146 for 3, 5 runs required. Elise Perry is on 13. Ash Gardner is on 1. And of course, that innings from Beth Mooney of 64 and that partnership with Phoebe Litchfield of 100 runs really setting the tone. 48 to Litchfield. Mooney on 64. Both got out just after Australia had stamped their authority. And now it looks like a pure formality. But the fact that the game has gone to 17 overs itself is a bit of a surprise, the way Australia were batting. And who's going to bowl the next over? Looks like it might be Sophie Eccleston, who is going to bowl out. 3 overs, 1 for 17. The best of the England bowlers, really, because if you look at Charlie Dean, 4 overs for 28. Lauren Bell, 3 overs for 28. Lindsay Smith, 4 overs for 30. ...146 for 3... ...17 overs... ...lofted over... ...pulled back in... ...dragged back in... ...probably is a better way of putting it... ...limits the scoring to 2... ...Gardner goes to 3... ...and the total now 148 for 3... ...2 to tie... ...3 to win... ...7th... ...T20 T20 Women's World Cup trophy.

0: से बैटिंग करके दिखाया, दिक्कत उनको भी हुई, कुछ भाग्य ने भी साथ दिया। शुरू में इंग्लैंड ने जिस तरह से बैटिंग शुरू की, स्टंप्स पे अटैक किया, धीमी गेंदे की गति में परिवर्तन किए, वो सब चीज़ें मायने रखती हैं। कुल मिला के यही होता है कि नॉकआउट्स में अगर ऑस्ट्रेलिया है और फाइनल और सेमीफाइनल में अगर ऑस्ट्रेलिया है तो मुकाबला एक तरफा हो जाता है। तो आपको ये बताते हुए कि ऑस्ट्रेलिया ने 2026 का विमेंस का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। लेकिन चर्चा क्रिकेट की जारी रहेगी, आकाशवाणी आपके लिए लाता है क्रिकेट और ढेर सारा क्रिकेट। तो इस प्रसारण के तुरंत बाद आप स्टूडियो से सुनेंगे प्लेयर ऑफ द मैच।
1: प्लेयर ऑफ द मैच

0: All right, so finally history is made, and as we always saying that this was England's ground, but now Australia has a stamp of it. Seventh time champion, Australia has won the World Cup 2026 ICC Women's, and this is actually a lovely moment for all the cricket lovers. This was actually anticipation everybody was having, and finally the news is that Australia has won ICC Women's World Cup 2026. I'm Gitanjali Soni, with me is Munish Jolly, and we have our experts.
1: जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का. हम अपने पैनलिस्ट से आपको इंट्रोड्यूस एक बार फिर से कराते हैं. चेतन शर्मा जी, बहुत अच्छा मैच रहा ये, फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर हैं. बड़ी जल्दी से आपके, अगर मैं कहूँ कि आप इसको किस तरीके से समराइज करेंगे इस फाइनल को.
2: देखिए, जैसे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के बारे हम बात कर रहे थे, अटैकिंग क्रिकेट, मतलब कोई भी परिस्थिति आपके सामने हो, उन्होंने अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है, अपनी जो नेचुरल क्रिकेट है, दे वांट टू प्ले दैट, और वही हुआ. देखिए, आपने मैच ख़त्म किया, 7 विकेट से आपने मैच जीता, आपने 17.1 ओवर में उस मैच को ख़त्म कर दिया. तभी तो बार बार हम मनीष कह रहे थे 180, आप सोचिए 180 रन होते तो यहाँ पर आपको द मैच देखने को मिलता जो सभी फाइनल्स में देखना चाहते हैं.
1: राइट, देन मैं बाकी एक्सपर्ट से भी उनके व्यू लूँगा. मोना पार्थसारथी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और वैशाली माथुर, मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई.
3: जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ऑस्ट्रेलिया मेरी फेवरेट टीम थी.
1: ओके, इंडिया. ओके, आई थॉट कि इंग्लैंड को आप ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी.
3: उनके स्पिनर्स अच्छे थे, मैं उनको सपोर्ट कर रही थी, बट बाय हार्ट मैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रही
1: थी. नॉट बैड.
0: एंड चेतन, एक्चुअली आई वाज आल्सो टॉकिंग टू यू व्हेन वी वर सिटिंग इन द ग्रीन रूम, व्हेन ऑस्ट्रेलिया वॉन द टॉस, इफ hypothetically if they would have chosen to bat first, I think things would have been little more interesting. What do you say?
2: Definitely they would have, jaise unki ballebazi 190 run to zarur bante hai, jo 186 ki abar bar baat kar rahe the na Gitanjali, wo aaj record todte, because they got a power.
0: Yes,
2: and sabse important hai, main ye believe kar raha tha ki England ke spinners kafi had tak कुछ कर पाएंगे इस विकेट के ऊपर. मुझे नहीं लगता आज, ठीक है उन्होंने कोशिश ज़रूर की, लेकिन रन्स भी ठीक ठाक थे. मतलब अगर 180 रन बनते तो अलग बात थी, लेकिन 150 पे लड़ना जो चाहिए था इंग्लैंड को, वैसा उन्होंने लड़ाई की नहीं. उनके गेंदबाजों ने उस धार के साथ गेंदबाजी नहीं की जो हम सोच रहे थे.
1: मोना, आपसे मैं हिंदी फिल्म की, बॉलीवुड के एक पिक्चर के गाने के बोल के साथ सवाल पूछना चाहूँगा कि 7 अजूबे इस दुनिया में, आखिरी अपनी जोड़ी थोड़े से भाई टूटे ना,
4: जैसे कि अब बेथ मुनी सेमीफाइनल में भी जिस तरीके से उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई और जो प्रदर्शन उन्होंने किया उसको बरकरार रखा, और ये अनुभव है जो निर्णायक मुकाबलों में, जैसे बार बार हम बात करते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में है तो कंटेस्ट रह ही नहीं जाती, उसके लिए आपको बहुत ही अपना ए गेम जो होता है वो दिखाना होता है ऑस्ट्रेलिया के सामने, और किसी भी मोमेंट से वो मैच का पासा पलट सकते हैं. और आज तो खैर इंग्लैंड ने वैसा कोई मोमेंट दिया ही नहीं, बिल्कुल ही जिस तरीके से कहा गया लोप साइडेड फाइनल रहा है, और चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, ऑस्ट्रेलिया ने पूरा दबदबा अपना बनाए रखा. और फीबी लिचफील्ड की, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा मोमेंट था, और आज अपेक्षाओं पर पूरी खरी उतरी है. बेथ मुनी का उन्होंने पूरा पूरा साथ दिया है, तो ओवरऑल जो ऑस्ट्रेलिया एज अ टीम इसने ये टूर्नामेंट जीता.
0: श्योर, हमारे स्टूडियो में हमारी डोमिनेंस हमारे कॉलर्स की हमेशा बनी रहेगी. मुझे पूरी उम्मीद है वो हमसे जुड़ना चाहेंगे. नंबर वही है 2342-1084, 2342-1085. अगर आप दिल्ली के बाहर से या फिर मोबाइल से कॉल करेंगे, 011 लगाना बहुत ही ज़रूरी है. क्या बात होती है हमें

0: जब हमारे कॉलर्स कॉल करते हैं, दो तीन चीज़ें वैशाली बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफर्म क्वेश्चंस हैं। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं इंग्लैंड टीम को, कुछ ऑस्ट्रेलियन टीम को। अभी बहुत सारे सवाल आने वाले हैं कि इंग्लैंड टीम उनकी सॉइल पे हम कह रहे थे कि बहुत अच्छा खेलेगी और पांचों मैच जीती आई है। एज अ क्रिकेटर आपका असेसमेंट क्या है, क्या हो जाता है जब इतनी ज़्यादा नोन कंडीशन पे आप खेल रहे हैं उसके बावजूद काफ़ी सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस?
1: सबसे मेन होता है आपका प्रेशर हैंडलिंग, कि आप कैसे प्रेशर हैंडल करते हो। आप अपने ही गेम, अपने ही ग्राउंड पे गेम खेल रहे हैं, अपने होम ग्राउंड पे गेम खेल रहे हैं, एंड उसके बाद जो प्रेशर होता है वो आप कैसे हैंडल करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है एज अ प्लेयर खेलना। एंड जो आपकी बैटिंग या बॉलिंग जो भी आपका पार्ट है, आपको वो प्रोफेशनली अच्छे वे में करना चाहिए, उसको पूरा 100% देना चाहिए। जो आज इंग्लैंड टीम का जो मिसिंग था, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग थी, बॉलिंग लाइन एंड लेंथ बहुत अच्छा था, बट बैटिंग में वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। सो ये एक बैटिंग जो जहाँ पे वो लैक कर रहे हैं उसी की वजह से आज वो रनर्स अप बने हैं।
0: और इसी के साथ हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं और आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज बहुत ही बड़े विन के बाद पहला कॉलर हमारे इस कार्यक्रम का। नमस्कार।
2: हाँ नमस्कार मैडम
0: जी, नाम बताइए अपना।
2: मैं महाराष्ट्र कोलर से सचिनपुरी बात कर रहा हूँ।
0: जी सचिन,
2: ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सचिन, क्या पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से आप?
2: मुझे इतना सवाल है कि जो ऑस्ट्रेलिया के पास जो अटैक है वो इंग्लैंड के पास वैसा अटैक नहीं था क्या? इंग्लैंड की कहाँ से गलती हो गई, क्योंकि पहले छह ओवर में 62 रन और एक ही विकेट था उनका।
0: जी,
2: इंग्लैंड के बल्ले गेंदबाजों से कहाँ गलती हुई, और इंग्लैंड के पास 180-185 रन का टारगेट होना चाहिए था।
0: जी बिल्कुल, ये टारगेट तो हम काफ़ी टाइम से बात डिस्कस कर रहे हैं। अगर इतना टारगेट होता तो अभी कहानी थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग हो सकती थी। चेतन, जैसा हमने कहा हमारे जितने भी कॉलर्स हैं वो कॉल करेंगे, बहुत सारी एनालिसिस हमसे एक्सपेक्ट करेंगे। आई थिंक राइट ऑफ द बैट आपसे डायरेक्टली मैं पूछ लेती हूँ, इससे पहले बहुत सारे और कॉलर्स पूछें, दोनों टीम्स में से क्या क्या पर्टिकुलर असेसमेंट आपके हिसाब से बेहतर की जा सकती थी, खासकर अगर हम इंग्लैंड टीम की बात करें?
3: देखिए गीतांजलि, सबसे बड़ी बात इंग्लैंड की क्या थी कि आपने पार्टनरशिप पनपने दी। पहली विकेट आपने जल्दी आउट करने के बाद दूसरी विकेट की साझेदारी 100 रन की थी। देखिए जब 150 रन टोटल आपका बोर्ड पे हो और आप 100 रन की साझेदारी पनप देते हैं तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी में वो धार नहीं थी। रेगुलर इंटरवल्स पे जो हम विकेट्स की बात करते हैं वो विकेट्स निकालने में आप कामयाब नहीं रहे। और मुझे लगता है कि जैसे हम मिड शो में बात कर रहे थे कि स्पिनर्स के ऊपर बहुत दारोमदार रहेगा इंग्लैंड का, वो स्पिनर्स ने कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मुझे लगता है कि जब ऐसे टोटल के ऊपर आप 100 रन की साझेदारी बनने देते आप मैच वहीं हार गए। उसके बाद ठीक है आपने लड़ने की कोशिश की बट वो लड़ाई बनी नहीं। और जो पहले उन्होंने हमारे कॉलर ने बात की 180 बनने चाहिए थे, वो डेफिनेटली, वो तो हम पहले से कह रहे हैं 180 होते माइट बी स्टोरी बहुत डिफरेंट होती इंग्लैंड के लिए।
0: चेतन, बार बार ये बात आ रही थी कि आफ्टर सेवर फ्यू ओवर्स थोड़े से क्रैक जरूर आते हैं ग्राउंड में तो स्पिनर्स को मदद मिलेगी, ऐसा कुछ होता नहीं दिखा कहीं पिच में? आपको लगता है देयर वाज यू नो
3: ऐसा दिखा नहीं मुझे, कुछ स्पिनर्स के लिए मदद मुझे नजर नहीं आई। कुछ गेंदे जरूर नीचे रही थी जब ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी कर रहे थे, उस समय मुझे लगा कि हो सकता है स्पिनर्स को मदद मिले लेकिन ऐसा नहीं था। एंड देन सबसे बड़ी बात क्या, ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने सेटल ही नहीं होने दिए गेंदबाजों को। देखिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम बात कर रहे थे ना पावर गेम की, ऑस्ट्रेलिया की पावर गेम की, उन्होंने कंटिन्यू रखी, उन्होंने सेटल नहीं होने दिया और मन बना के रखा था कि हम 20वें ओवर तक नहीं जाएंगे, इसको खत्म करना है तो कम से कम 15-16 ओवर में खत्म करेंगे। एंड दे फिनिश्ड इन 17.1, दैट्स अ ग्रेट थिंग।
4: तो मोना, आपसे जानना चाहूँगा, आपने इतने सारे इंटरनेशनल इवेंट्स कवर किए हैं, आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में ऐसी क्या खास बात है कि अपनी धरती पर तो ठीक है जीतते हैं लेकिन बाहर किसी विदेशी धरती पे जाते हैं तो वहाँ वर्ल्ड चैंपियंस बन जाते हैं?
5: और सिर्फ ये क्रिकेट तक सीमित नहीं है
4: जी,
5: अक्रॉस द गेम्स, आप क्रिकेट हो, हॉकी हो, किसी भी खेल में। आपको याद होगा कॉमनवेल्थ 2010 जब 8 गोल से ऑस्ट्रेलियन हॉकी टीम जीत कर गई थी, तो एक माइंडसेट है। मुझे लगता है कि एक ऑस्ट्रेलिया में जो स्पोर्टिंग कल्चर है और वो काफ़ी प्राउड फील करते हैं अपने देश के लिए खेलना, और वो तो हर टीम करती है लेकिन इनके अंदर जो जज्बा भरा जाता है ना कि हमें उतरना है तो हमें जीत के लिए ही उतरना है, और मुझे लगता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इस मैच की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को तो क्रेडिट जाता ही है जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम खेली है, लेकिन इंग्लैंड ने जो अपने देश के अपने ग्राउंड पर खेलते हुए निराश किया उसमें बहुत बड़ा जो एक हाथ है वो मुझे लगता है अगर आप फाइनल जैसे मैच में 16 एक्स्ट्रा दे रहे हो, उसमें 11 वाइट बॉल दे रहे हो, मतलब 2 ओवर आपने एक्स्ट्रा दे दिए सामने वाली टीम को, तो काफ़ी सारे एस्पेक्ट है। और फाइनल जैसे मैच में प्रेशर हैंडलिंग, जैसे वैशाली कह रही थी प्रेशर हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो लॉर्ड्स पर खेलते हुए 2009 के बाद पहला वर्ल्ड कप जीतने का एक जो प्रेशर रहा होगा इंग्लैंड के ऊपर, वो कहीं ना कहीं हावी हो गया, क्योंकि आखिर में जिस तरीके से विकेट थोड़े एक दो गिरे हैं ऑस्ट्रेलिया के, अगर वो पहले उस तरीके से हुआ होता तो शायद कुछ तस्वीर दूसरी होती।
4: हाँ, जैसा कि परंपरा चलती है आईसीसी के जो इवेंट्स होते हैं जीत के बाद, वर्ल्ड चैंपियंस बनने के बाद यहाँ पे प्लेयर्स के साथ इंटरव्यूज़ होते हैं ग्राउंड पर, अभी वही हम जो खबरें आ रही हैं कि प्लेयर्स के साथ इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। वैशाली, ऑस्ट्रेलिया की टीम की क्या ख़ास बात है आपकी ज़ुबान?
1: जैसे मोना ने बोला कि माइंडसेट तो ऑफ कोर्स है ही, उसके साथ वो जो भी 100% है वो देते हैं, और वो ग्राउंड पे कॉन्फिडेंस से देते हैं, क्योंकि वो एक मैटर करता है कि आपने जो सीखा है, जो आपने प्रैक्टिस करी है, वो आप कितना यहाँ पर कितना अपनी टीम को दे सकते हैं, और वो 100% देते हैं हर एक प्लेयर। एक कहते हैं कि कुछ एक दो दिन किसी किसी प्लेयर्स के लिए अच्छा नहीं होता है, बट बाकी जो प्लेयर्स हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। एक टीम वर्क है यहाँ पे, तो ये ऐसा टीम वर्क, एक साथ रहना और एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये बहुत रेयर किसी टीम में देखा जाता है।
5: और किसी टीम में एक मैच विनर होता है, किसी में दो होते हैं, ये तो पूरी की पूरी टीम ही मैच विनर्स से भरी हुई है। तो एक दिन कोई खिलाड़ी चल जाता है, दूसरे दिन कोई खिलाड़ी चल जाता है, तो ऐसी टीम को आप बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम।
0: जी बिल्कुल।
3: और जो डिस्कशन होगा ना अभी मैच के बाद, कहते हैं ना रिव्यू होता है, आप वर्ल्ड कप हारे क्यों, जैसे अभी मोना बात कर रहे थे कि आपने 11 वाइट बॉल्स और एक नो बॉल, और वो जो 4 रन 22 के आए हैं वो नो बॉल के ऊपर आए थे, तो इसका मतलब आपने 16 रन एक्स्ट्रा दिए हैं, और आपने 11 वाइट्स और एक नो बॉल, तो आपने 12 गेंदें एक्स्ट्रा डाली हैं, तो 12 गेंदें एक्स्ट्रा डालने का मतलब ये हो गया 2 ओवर, तो अगर आप कैलकुलेशन करें इस समय मनीष, 17.1 ओवर, 2 ओवर 7 मिला लीजिए, 19.1 ओवर, और रन्स आप माइनस कर दीजिए, तो इसका मतलब इंग्लैंड ये 150 पे भी मैच जीतता था अगर आपने एक्स्ट्रा रन्स और एक्स्ट्रा गेंदें ना की होती।
4: और आपकी बात को थोड़ा सा और पुख्ता करता हूँ, क्योंकि ये रील्स का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो एक रील आई मेरे पास इंस्टा में, तो भारत की टीम के एक बॉलर ऑस्ट्रेलिया टूर कर रहे थे कुछ साल पहले, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को ही वहां जाके इतना तीखा बाउंसर मारा और 2 विकेट वो ले गए। आप लोग जानना चाहेंगे वो फास्ट बॉलर कौन थे?
1: बिल्कुल बताएं।
4: आपकी बाईं तरफ बैठे।
0: ऐसे एक्चुअली बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जब हमारे पास क्रिकेटर्स लाइक चेतन शर्मा होते हैं ना, तो ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं जितनी हम शेयर कर सकें या उनसे जान पाएँ। चेतन, बात क्योंकि आज प्रेडोमिनेंटली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की होगी, बट यहाँ पर थोड़ी देर में हिंदुस्तान की जो हमारी आवाम है वो हमारी भारतीय टीम के बारे में बहुत सारी चर्चा करना चाहेगी। उनके लिए फेयर होगा ये बात करना कि हमारी भारतीय टीम की स्ट्रेंथ, स्पेशली हम विमेन टीम्स की बात करें, इस वक्त आपको क्या नज़र आती है?
3: देखिए, बहुत अच्छी टीम है। अगर आप नॉर्मल बात करें वर्ल्ड कप में, मुझे जो थोड़ी सी समस्या नज़र आई कि एक तो 16 प्लेयर्स थे, 15 प्लेयर्स होते हैं, इंजरी की वजह से 16 प्लेयर हो, आपने 4 मैचेस के अंदर ही 16 प्लेयर्स का इस्तेमाल कर लिया। इसका मतलब आपके पास प्लान नहीं था, या प्लान नहीं था या आपको विश्वास नहीं था प्लेयर्स के ऊपर। आप 15 के 15 प्लेयर्स 4 मैचेस में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत कम आप देखते हैं, तो इसका मतलब सेटअप जो था वो कहीं ना कहीं गड़बड़ था, या प्लेयर्स पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं था। इतने जब बदलाव होते हैं ना टीम के अंदर, तो हर समय क्रिकेट में ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अदरवाइज आप देखिए, यही भारतीय टीम है जो अभी हाल ही में वर्ल्ड कप जीत कर आई है, यही टीम थी जो हमें लग रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 170 रन, इट्स नॉट ए इजी थिंग, यू नो, उनकी बॉलिंग के खिलाफ, उनकी फील्डिंग के खिलाफ आपने 170 रन बनाए, तो थोड़ा सेटअप पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, हार जीत एक पहलू है क्रिकेट का। मैं कभी नहीं कहता कि आप गए हो और आप हर समय वर्ल्ड कप जीत के ही आइए। देखिए, दूसरी टीम्स भी आई हैं, वो भी लड़ने आई हैं, वो भी लड़ाई करेंगी, लेकिन जो मैंने अभी बात की गीतांजलि, कि आप इतने बदलाव टीम में, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि समस्या आई तो कहाँ आई, वो आगे गलतियाँ ना हों, उस पर हम कैसे सुधार करें, उस सुधार की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना देखिए क्रिकेट की फैसिलिटीज़ बीसीसीआई ने आज के समय में हमारे प्लेयर्स को दे रखी है, मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में कहीं ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। आप एक सीईओ जाकर आइए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बैंगलोर में, आपको लगेगा नहीं आप इस कंट्री में हैं, आपको लगेगा मैं

0: captaincy and been a great leader. I think she's been a great leader in Australian cricket for a long time. People probably just haven't been able to see that, and we're fortunate we get to see it firsthand. And you know, the girls have really got around her, and it's just amazing icing on the cake for what's been a pretty amazing tournament for us as a group.
1: Well, Beth, you've got a lot of silverware to look after. Put it in the home and cherish it well. Well done again.
0: Thank you.
2: Well, it's Beth Mooney all the way, a player of the series and player of the match as well. And she made 238 runs in the series. Actually, she did, Mona, very, very well.
3: बिल्कुल बिल्कुल मतलब जिनकी हम पहले से बात करते आ रहे हैं लगातार कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस जो है और उसके साथ मैच अवेयरनेस और विकेट के पीछे विकेट के आगे दोनों तरफ का जो उनका परफॉर्मेंस रहा है जिस तरीके से उन्होंने कैच लिया था डैनी वेयर्ड का वो बहुत ज़बरदस्त कैच था और आप देखिए 3000 से ज़्यादा वनडे में रन बनाए हैं 3200 से ज़्यादा T20 में रन बनाए हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में जब मेडल गोल्ड मेडल जीता था उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाए तो काफ़ी सारे अपोनेंट्स के खिलाफ दुनिया भर के मैदानों पे रन बना चुकी है कई फाइनल खेल चुकी हैं तो उनके लिए क्या कहा जाए सोने पे सुहागा है कि एक जीत और
2: जी बिल्कुल और हमारे पास तो सोने पे सुहागा हमारे कॉलर स्टूडियो में आते ही रहते हैं एक और कॉलर जुड़ गए हैं नमस्ते
4: हेलो नमस्ते
2: जी नाम बताइए अपना
4: जी मैम मैं संत दिल्ली से
2: जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं
4: जी आपको अपने गोली भाई पर और मेरे मेरे दो सवाल और एक सवाल तो ये जो होती है या और भी है ना
2: जी अनफॉर्चुनेटली आपकी ना आवाज़ नहीं आ रही है ठीक से हम उम्मीद करते हैं आप दोबारा हमें कॉल करेंगे और आपकी आवाज़ हमारे हम सब सुन पाएंगे अच्छे से बट आई एम श्योर कि जितने भी लोग इस वक्त सवाल पूछ रहे हैं वो आज के खेल के बारे में जीत के बारे में और ऑब्वियसली अपनी क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन को नॉलेज को ज़्यादा बढ़ाने के बारे में बात करना चाहते हैं वैशाली चूँकि सब बात करना चाह रहे हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंसेस क्रिकेटर्स की होनी चाहिए आपने काफ़ी बार प्रेशर की भी बात की और बार बार हम यही बात मानते हैं जैसे अगर आप जॉर्जिया वॉल को ले लें बहुत ही अच्छा उनके लिए तो टूर्नामेंट रहा है बट आज देखिए उनका जो रन है 9 रन बनाए हैं 6 बॉल पर उन्होंने तो ये इतने बड़े जब प्लेयर्स हो जाते हैं इतना अच्छा टूर्नामेंट जाता है और पता है कि हमारी टीम बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है उसके बावजूद कैसे समटाइम्स यू नो आई कांट रियली फैदम व्हाट काइंड ऑफ अ प्रेशर इट इज
5: आप कितने भी बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हो लेकिन आपको एक अपनी कंट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके लिए खेल रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है और काफ़ी हजारों के करोड़ों की संख्या में लोग आपको देख रहे हैं वो एक प्रेशर अलग होता है तो आप कितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर हो कहीं ना कहीं वो प्रेशर माइनर होता ही होता है लेकिन उसके साथ हमारा सबसे मेन होता है कि आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं एज अ प्लेयर आप विकेट कीपर हैं बैटर हैं या फिर आप लीड कर रहे हो अपनी टीम को एज अ कैप्टन वो सबसे मेन होता है लीड क्योंकि एक लीडर जो होता है वो आप सिर्फ अपने आप को ही नहीं देख रहा वो आप सभी अपने अलावा 10 जो आपके प्लेयर्स हैं उनको भी देखना है उनकी बैटिंग लाइनअप भी करना है एंड उसके साथ आपको अपनी परफॉर्मेंस भी देनी है एंड कौन से बॉलर को कहाँ पर यूज़ करना है कौन सा बैटर के सामने लेके आना है वो भी माइंडसेट आप देखिए कि एक कैप्टन को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द ग्राउंड करनी पड़ती है
6: राइट देन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं शायद आइए देखते हैं कि कहां से बोल रहे हैं नमस्कार स्वागत है
4: जी नमस्ते हेलो
6: हाँ जी बोलिए क्या कहेंगे और अपना पूरा परिचय दें पहले
4: जी सर मैं कर रहा हूं दिल्ली
6: जी आपकी आपकी तरफ से ना थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है और आवाज़ आपकी जो है हम तक पहुंच नहीं रही है तो अपने श्रोताओं को बता दें कि हमारे जो टेलीफोन नंबर्स हैं जिसके सहारे आप हमारा इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं वो हैं 011 दिल्ली का कोड और उसके बाद 2342-1084 और 2342-1085 चेतन भाई आपसे मैं जानना चाहूँगा कि भारत ने भले ही सेमीफाइनल के लिए हम लोग क्वालिफाई ना कर गए हों लेकिन श्री चरनी टॉप विकेट टेकर हैं 14 विकेट्स लेकर मोस्ट सिक्सेस की बात करें तो एनरी डर्कसन साउथ अफ्रीका की हैं टॉप पर लेकिन शेफाली वर्मा दूसरे नंबर पे हैं 5 सिक्सेस के साथ ये स्टैट्स आजकल मॉडर्न डे में बहुत काम कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा चौके अगर देखे जाएं तो स्मृति मानधना तीसरे स्थान पर हैं अ ग्रेट हिटर अ वेरी एलिगेंट प्लेयर 30 चौके उन्होंने लगाए हैं तो जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ रहा मैं चाहूँगा कि इन तीनों उपलब्धियों के बारे में आप कुछ कहें
7: देखिए सबसे बड़ी बात चरनी की जो आपने बात की कि जिस समय पर उन्होंने गेंदबाजी की है कमाल की गेंदबाजी की आप शुरू में भी गेंदबाजी कर रहे हैं और डेथ ओवर्स में आकर एज ए स्पिनर आप गेंदबाजी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है किसी भी गेंदबाज के लिए। और चर्नी ने बहुत अच्छे तरीके से टीम को संभाल कर मतलब ऐसी पोजीशन पर लाकर खड़ा किया कि कुछ मैचेस आप जीत पाएँ। और शेफाली और आपने स्मृति की बात की, देखिए वो अपने आप में ही, अगर आप दोनों ओपनर्स की बात कर रहे हैं और दोनों की आप तारीफ़ कर रहे हैं तो वहाँ से साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय टीम अगर कहीं ना कहीं लड़खड़ाई है तो मिडिल ऑर्डर वो सक्षम नहीं रह पाया, मतलब वो कंसिस्टेंसी नहीं रही। आप ऑन एंड ऑफ अगर रन्स बनाते हैं, ऊपर से भी ऑन एंड ऑफ रन्स बनाते हैं। स्मृति की मैं बात करूं, स्मृति के मैचेस कुछ बहुत अच्छे गए, कुछ एकदम गिर गए, लेकिन वर्ल्ड कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मनीष, आप तो इतने समय से फॉलो कर रहे हैं वर्ल्ड कप्स को, कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। इतने देखिए वर्ल्ड कप आजकल तो बहुत जल्दी जल्दी वर्ल्ड कप आ जाते हैं, 2 साल के बाद आपको वर्ल्ड कप मिलता है, हमारे समय में 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आता था, 4 साल आपको इंतज़ार करना पड़ता था। कितने ऐसे सुपर स्टार्स हैं इस कंट्री के अंदर जिन्होंने 10-10 साल 12-12 साल क्रिकेट खेली है लेकिन वर्ल्ड कप एक नहीं खेला। देखिए हो जाता है कभी कभी, वर्ल्ड कप के समय आप फॉर्म में नहीं थे, टीम में नहीं आए, तो जब वर्ल्ड कप में आपको मौका मिलता है तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं सभी की, और वहाँ पर फेलियर्स आप एक्सपेक्ट नहीं करते। देखिए आपको मिलने 5 या 6 मैचेस हैं, अगर उसमें से 2 मैच या 3 मैच एज ए प्लेयर आपके ख़राब हो गए तो टीम को बहुत नुकसान होता है, वही हुआ भारतीय टीम के साथ। अगर आप आंकड़े देखेंगे इंडिविजुअल बहुत अच्छे नज़र आएंगे, जब आप कंबाइन चीज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम का डाउनफॉल कहाँ हुआ, ये रीज़न था कि आपने एक मैच में बहुत अच्छा किया, 2 मैच खराब हो गए, वो 2 मैच भारतीय टीम हार गई, तो वो समस्या आई आपके साथ।
2: जी, और इस वक्त उम्मीद करते हैं हमारे कॉलर जब कॉल करते हैं उनको कोई समस्या ना आए, बिल्कुल क्लियर उनकी आवाज़ हम तक पहुँचे। हेलो,
8: सबको नमस्कार।
2: नमस्कार,
8: मैं वाई वेंकट रेड्डी बोल रहा हूँ।
2: वेंकट सर, कैसे हैं आप?
8: जिला सूर्यापेट तेलंगाना से।
2: जी वेंकट, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं।
8: चेतन जी, आपसे मेरा सवाल है।
7: जी बताइए।
8: नमस्कार, पहले
7: नमस्कार जी।
8: ऑस्ट्रेलियन टीम ने चैंपियन की तरह खेलते हुए वर्ल्ड कप जीत लिया, पहले इनको कांग्रेट। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम मेन्स हो क्या वुमेन्स हो, गैप्स में शॉट्स ज्यादा खेलते हैं, हवाई शॉट्स बहुत कम खेलते हैं। हमारी टीम मेन्स हो या वुमेन्स हो, हवाई शॉट्स अधिक से अधिक हवाई शॉट्स खेलते हुए आजकल विकेट्स खो रहे हैं, उसका कारण क्या है? ये तो मेरा क्वेश्चन है आपसे। आप
7: नहीं जी, आपका प्रश्न देखिए, अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स अगर आप खेलेंगे रन्स बनाएंगे, लेकिन मैं आपके थोड़े से नॉलेज के लिए डाल दूं कि T20 दो वर्ल्ड कप्स में भारतीय टीम जीती है, ऑस्ट्रेलिया नहीं जीती है, तो भारतीय टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ठीक है ऑस्ट्रेलिया अच्छी क्रिकेट खेलती है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन भारतीय टीम अगर अच्छी क्रिकेट खेल रही है, लेट्स सपोर्ट आवर इंडियन टीम, बिकॉज अगर हम अपने इंडियन टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे जिन्होंने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है। मेंस क्रिकेट की बात करें, पिछले 2 साल के चैंपियंस कौन है? भारतीय टीम है, और हमारी वुमेन्स क्रिकेट भी हाल ही में 50 ओवर्स मैचेस जीत के आई है। ठीक है, वन ऑफ दिस वर्ल्ड कप, इट हैपन्स, नथिंग टू वरी अबाउट। हम जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा हम तारीफ करेंगे, अगर भारतीय टीम भी अच्छा खेलेगी वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट।
2: जी बिल्कुल, और जब भी हमारे श्रोता हमें कॉल करते हैं ना, जैसे अभी इन्होंने कहा कि हवा में खेलते हैं, एक ये ज़रूर मोना बहस छिड़ जाती है कि T20 फॉर्मेट और वन डे फॉर्मेट दोनों बहुत ही डिफरेंट मुख्तलिफ फॉर्मेट हैं, और आजकल कोशिश ये की जा रही है कि जैसे कि हम लोग T20 में ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा हार्ड हिटिंग करनी पड़ेगी, वन डे में टिक कर खेलना पड़ेगा, क्या सेम प्लेयर्स दोनों फॉर्मेट में खेलें या फिर थोड़ी सी एडजस्टमेंट होनी चाहिए T20 में, यंग अलॉट इंट्रोड्यूस किया जाए तो बेटर है?
3: देखिए T20 निश्चित तौर पर कि आपको एक ही स्पेल में मैच का रुख बदल सकता है, आपको आते से ही पहली गेंद से मारना शुरू करना पड़ता है, और 50 ओवरों का जो क्रिकेट है उसमें आपको टिक कर खेलना है। लेकिन अभी आप ज़्यादातर टीमों को देखिए तो जो फलक्रम होता है, जो कोर ग्रुप होता है, वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अगर हम अपनी महिला टीम की भी बात करें तो ऑलमोस्ट वही टीम है, ज्यादातर खिलाड़ी वही हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है 50 ओवरों का। तो अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं तो आप ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर हो सकते हैं। अब आप ये देखिए कि विराट कोहली का उदाहरण ले लीजिए आप, कि आप वो T20 में भी आपने देखा IPL में किस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा, चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे अब तो वो रिटायर

0: कैरी हो चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट हो, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास अच्छी प्रतिभा है तो आप ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर हो सकते हैं। ये ज़रूरी कतई नहीं है कि T20 के लिए अलग टीम हो, और लेकिन जब बात होती वर्कलोड मैनेजमेंट की, वहाँ ये बात आती है कि जो अलग अलग किस रेस्ट की ज़रूरत है, आप एक सीरीज खेल रहे हैं दूसरी सीरीज नहीं खेल रहे, तो वर्कलोड मैनेजमेंट के अंदर आता है। लेकिन आप जो अगर ये कहें कि एक खिलाड़ी में प्रतिभा है कि वो सिर्फ T20 खेल सकता है और वो वनडे नहीं खेल सकता, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है।
1: क्योंकि अभी रिसेंटली हरमनप्रीत को लेकर काफ़ी चर्चा हुई कि वेदर शी इज़ फिट फॉर T20 एंड शी शुड बी स्टिकिंग विद ODI।
0: देखिए, जब हमारे यहाँ फैंस जो होते हैं ना, वो सिर पे भी बिठाते हैं और क्रूअल भी बहुत होते हैं, और मेमोरी स्पैन जो होता है वो बहुत छोटा होता है, ये भूल जाते हैं कि टीम वर्ल्ड कप विनर टीम है, और अभी बात होने लगी कि रीथिंक नहीं करना, रीसेट करना है इस टीम को, और हरमनप्रीत टीम में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि जो आखिरी मैच था उसमें उनकी ही इनिंग थी कि इंडिया 170 तक पहुंच सकी है, तो ये सब तो चलता रहेगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, तुरंत तुरंत प्रतिक्रियाएं आती हैं, और जो अक्सर मैं सुनती हूँ खिलाड़ियों को, चेतन सर बिल्कुल इसको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, कि जो मैदान के बाहर का नॉइस होता है वो हमें अफेक्ट नहीं करता, तो ये जो नॉइस है वो सोशल मीडिया का नॉइस है, वो मीडिया का नॉइस है, तो वो प्लेयर्स को मुझे नहीं लगता उससे बहुत ज़्यादा, उनका फोकस जो रहता है वो अपने प्रदर्शन पर रहता है, और कोई भी खिलाड़ी किसी भी खेल का हो वो हारने के लिए कभी नहीं मैदान पर उतरता।
1: वेरी ट्रू।
2: वैशाली, आप कुछ कहना चाहेंगी, सोशल मीडिया कितना प्रभावशाली हो रहा है प्लेयर्स के लिए, उसके बाद चेतन भाई बोलेंगे।
3: एक्चुअली सोशल मीडिया पे ये देखा जाता है कि जैसा आप दिखाते हैं वैसा आपको समझना पड़ेगा, क्या वो सही है या गलत है, क्योंकि उसका प्रभाव आप पे कैसा पड़ रहा है या लोगों पे कैसा पड़ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। आप अगर मैच देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको समझ आता है कि किस प्लेयर ने कहाँ पे कैच ड्रॉप किया, कितना डिफ़िकल्ट था, कितना ईजी था, या बैटिंग जब आप करते हैं तो वहाँ पर बैटिंग जब हम देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि किस वे में हम बॉल स्विंग हुआ, कितना हुआ। एंड उसके बाद अगर हम विकेट कीपिंग की भी बात करें तो वहाँ पर भी हम जज कर सकते हैं अपने प्लेयर्स को कि किस वे में कौन सा प्लेयर बेटर है और कौन प्लेइंग 11 के अंदर खेलने के लिए लायक है और कौन नहीं है। तो वो हमारी जजमेंट देखने से, मैच को देखने से होती, नॉट ऑन द शॉर्ट रील्स देख के हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं।
1: जी, बिकॉज चेतन आप तो बहुत ही इंटेंसली मीडिया के साथ काम कर रहे हैं, प्रो एंड कॉन सोशल मीडिया के काफ़ी हो सकते हैं, और जैसे मुना ने बोला कि ज़्यादातर जो है वो ज़ीरो नॉइस कर देते हैं क्रिकेटर्स, वाकई ऐसा हो पाता है? बिकॉज दे एवरीबडी हैज़ अ मोबाइल, ऑल्दो हमने सुना था कि अलाउड नहीं होता, बाकी आप ही ज़्यादा बता सकते हैं कि कितना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं।
4: देखिए, मुझे नहीं लगता कोई अफेक्ट करता है, सोशल मीडिया या मीडिया को कोई चीज़ अफेक्ट करती है प्लेयर्स को, और ना ही ध्यान देने की ज़रूरत है, वो किसी को अफेक्ट नहीं करती। बिकॉज अगर आप देखेंगे 90% चीज़ें जो चल रही होती हैं मार्केट में, बिकॉज आई वॉज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रशियन सेलेक्टर्स, तो 90% चीज़ें होती हैं वो मतलब आसपास नहीं होती, जो अंदर चीज़ें हैं, तो वो इसलिए प्लेयर्स को मालूम होता है कि जो चीज़ चल रही है, इवन सेलेक्टर्स को मालूम होता है जो चीज़ चल रही है वो आसपास नहीं है, बिकॉज मेन चीज़ तो मालूम ही नहीं है, और ना ही कभी वो ज़िंदगी में बाहर आएगी, और क्या है क्या नहीं, और उसके ऊपर कोई परफॉर्मेंस, बिकॉज अभी जैसे मैं मोना जी अभी बात कर रही थी हरमनप्रीत का, हरमनप्रीत इज मतलब शी इज़ ए लीडर, शी इज़ नॉट अ कैप्टन, शी नोज हाउ टू लीड ए साइड, एंड कैप्टन और लीडर में, कैप्टन तो कोई भी बन जाता है, लीडर बनना बहुत मुश्किल होता है। वर्ल्ड कप्स जताने अपने आप में बहुत बड़ी बात आती है। हिंदुस्तान इंडिया की अगर आप बात करें, कितने साल से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, कितने कैप्टन्स हैं जिन्होंने हमें ICC वर्ल्ड कप जितवाया। कपिल देव इज़ नंबर वन, नंबर टू इज़ महेंद्र सिंह धोनी, नंबर तीन इज़ रोहित शर्मा, नंबर चार इज़ सूर्य कुमार यादव, और हाल ही में अभी कैप्टन बने थे, और वो बने ओनली 4 कैप्टन्स इन सो मैनी ईयर्स। तो कैप्टन्स तो बहुत बने हैं, लीडर्स बनना बहुत मुश्किल होता। तो कभी कभी जब पब्लिक उठकर बात करती है ना हमारे लीडर्स के बारे में, दुख लगता है। देखिए, बहुत शॉर्ट मेमोरी रहती है कि अभी आप जिता कर आए तो आप राजा हैं, नहीं जिता के आए तो आप रंक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड सपोर्ट द गेम को सपोर्ट करें, और हार को कैसे आप स्वीकार करें बहुत इम्पोर्टेंट है। हार जीत पहलू है स्पोर्ट्स में, हर समय आप जीत नहीं सकते। आज ऑस्ट्रेलिया अच्छी क्रिकेट खेल रही है, हम लोग यहाँ बैठकर बोल रहे हैं ना अच्छी खेल रही है, अगर नहीं तो हम कहें नहीं वो अच्छे नहीं खेले, इंडिया अच्छी खेली थी।

0: लेकिन वो किस्मत खराब थी इंडिया हार की. नो, ऑस्ट्रेलिया प्लेड बेटर क्रिकेट, दे डिजर्व टू विन, दे वॉन इट. दिस इज स्पोर्ट्समैनशिप एंड दैट शुड कम इन आवर फैंस कि नहीं अच्छा है ठीक है. हाँ, जो गलतियां वो तो हम बोल ही रहे हैं, गलतियों पे यू हैव टू गो बैक ऑन द ब्लैक बोर्ड. वो मैंने अभी आपको बताया था कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं इंडियन टीम के साथ, वुमेन्स इंडियन टीम के साथ, और वी यू हैव टू गो ऑन द बोर्ड एंड रेक्टिफाई थिंग्स. दैट्स इट.
1: राइट देन, याद दिला दें कि ये जो डिस्कशन आप सुन रहे हैं, इस डिस्कशन में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं और ये डिस्कशन जो है ये वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल के ऊपर हो रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया है. 150 रन बनाए थे इंग्लैंड ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर, और ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से मैच जीत लिया. 17.1 ओवर में ये मैच ख़त्म कर दिया. आंकड़े बता रहे हैं कि वेमेंस T20 वर्ल्ड कप में वो टीम जिसने अनबीटन रन रखा अभी तक, इंग्लैंड ने रखा था साल 2009 में जब पहली बार T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया था, और ऑस्ट्रेलिया ने ये तीसरी बार ऐसा किया है कि पूरे वर्ल्ड कप में वो एक भी मैच नहीं हारे. 2010 में, 2023 में और 2026 में T20 वर्ल्ड कप अनबीटन वो जीते हैं. चेतन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, मोना पार्थ सारथी हमारे साथ मौजूद हैं, वैशाली माथुर हमारे साथ हमारे इस पैनल में जुड़ी हैं, और मुझे लगता है गीतांजलि पैनल में एक और शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वो है हमारे नए कॉलर, और देखते हैं कि वो कहां से बोल रहे हैं.
2: हेलो हेलो.
1: राइट देन, आई थिंक थोड़ी देर में उनके पास आते हैं, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कुछ टेकअवेज हो वैशाली, अगर हम अच्छी परफॉर्मेंसेज की बात करें तो हम दीप्ति की वो परफॉर्मेंस कैसे भूल सकते हैं जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वो एक धुआंधार गेंदबाजी की, 5 विकेट ली. बेस्ट बोलिंग एनालिसिस उनके बन गए मेरे ख्याल से, उससे बेहतर कर तो सकती हैं, लेकिन यादगार वो रहा. श्री चरणी भी 4 for 19, सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस वर्ल्ड कप अगर हम बोलर्स की बात करें तो, ये एक अचीवमेंट है भारतीय बोलर्स के लिए.
3: बिल्कुल, और राधा यादव भी है, आप शायद ऐड करना भूल गए, उसे भी, वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी है उन्होंने लास्ट ऑस्ट्रेलिया टीम के अगेंस्ट. एंड वहाँ पर दीप्ति शर्मा ने, जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने 5 विकेट्स लिए थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने आउटस्टैंडिंग फील्डिंग भी की थी. तो यहाँ पर दिखाता है कि आप, जब आपका कॉन्फिडेंस अप होता है तो आप कैसे अच्छी और परफॉर्मेंस दे सकते हैं. जैसे कि दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान के अगेंस्ट फील्डिंग में दी, एंड उसके बाद उनकी बैटिंग में भी हुआ. एंड अगर मैं बात करूँ श्री चरणी की, एक यंग प्लेयर है, एंड वुमेन टीम के अंदर ऐसा यंग प्लेयर राधा यादव के बाद, जो राधा यादव एज अ बेस्ट फील्डर इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के अंदर बोली जाती है, लेकिन अब एक और नाम जुड़ गया श्री चरणी जो बेस्ट बॉलर बोली जाती है. दोनों यंग प्लेयर्स हैं, तो अब आने वाले टाइम पे यंग प्लेयर्स काफ़ी अच्छा खेलेंगे और उनका कहीं ना कहीं दबाव बनता रहेगा. और एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है उनको, क्योंकि उनसे जो एक्सपीरियंस उनको है वहाँ से वो उनको गेन करना भी बहुत ज़रूरी है.
2: मोना, जितने भी ऐसे अच्छे टूर्नामेंट होते हैं, रेप्यूटेड टूर्नामेंट होते हैं, इनकी सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात होती है कि दे कम आउट विद अ ब्यूटिफुल स्टोरीज. और यू बीइंग सच अ सीजन्ड जर्नलिस्ट, आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग लवली स्टोरीज टू टेल. कोई ऐसी आपकी फेवरेट क्रिकेटिंग स्टोरी जो कि शॉर्ट एंड स्वीट है, आप शेयर करना चाहें ऑन दिस प्लेटफॉर्म?
4: देखिए, ऐसी तो बहुत सारी है. जब हमने वनडे वर्ल्ड कप जीता था तो काफ़ी प्लेयर्स के बारे में स्टोरीज आई थी. मुझे ऋचा घोष का याद आ रहा है कि जब वो खेलना शुरू किया था सिलीगुड़ी में, तो कोई लड़कियां वहाँ खेलती नहीं थी, लड़कों के साथ वो खेलती थी, और उसी से उन्होंने अपने खेल में वो ताकत पैदा की. उस तरीके के वो शॉट लगाती थी, और रॉयल बंगाल टाइगर का टैटू बनाया था उन्होंने अपने हाथ पर कि इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है. तो काफ़ी सारी, जब आप जीतते हैं तो बहुत सारी कहानियां आपकी सामने आने लगती हैं और बहुत मोटिवेशन. अभी एक क्रांति गौड़ की मैं स्टोरी सुन रही थी कि उनकी मदर को उनकी ज्वेलरी बेचनी पड़ी थी एक क्रिकेट किट खरीदने के लिए. तो कहाँ, हमने सफलता हम सब देखते हैं, लेकिन उसके पीछे कई लोगों का जो योगदान होता है, कई सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं.
2: जी, आई एम श्योर हम लोग पूरी रात अच्छी अच्छी स्टोरी सुन सकते हैं, लेकिन हमारे कॉलेज में अपनी भी स्टोरीज बताना चाहेंगे. एक और कॉलेज जुड़ गए हमारे साथ. हेलो,
5: नमस्कार सर. मैम
2: जी नमस्कार, नाम बताइए अपना.
5: हम आकाश कुमार बोल रहे हैं, बिहार पूर्वी चंपारण से.
2: जी आकाश, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं.
5: सर मेरा पहला सवाल है सर कि ऑस्ट्रेलिया जब इंग्लैंड का फाइनल जब होता है सर, उसका भी दबाव से इंग्लैंड के ऊपर या ऑस्ट्रेलिया का दबाव रहता है, इसी वजह से एक तरफा मैच चला जाता है क्या?
2: छः

0: एक्चुअली हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं प्रेशर के बारे में, दबाव के बारे में, लेकिन एक चीज़ मैं चेतन ज़रूर आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे हमने पहले कहा, आप सिलेक्टर रहे हैं, चीफ सिलेक्टर रहे हैं, और बहुत सारे अभी भी मेंटरिंग आप बच्चों की करते हैं। इतने सारे जो आजकल कैंप्स लगाए जाते हैं जिसमें लोअर स्ट्राटा, जिसे अभी जैसे बता रही थी मोना कि कैसे जो लोग नहीं भी अफोर्ड कर पाते, हा दे गो टू एनी लेंथ टू बी अ क्रिकेटर, तो इसमें आप कैसे, हाउ यू हैव दैट आई, द कीन आई टू फाइंड आउट द टैलेंट? व्हाट्स द प्रोसेस? पीपल हु आर लिसनिंग राइट नाउ, द यंगस्टर्स हु वांट टू रियली कम इन, दे कांट रियली अफोर्ड मच, What exactly would you like to tell them?
1: देखिए आजकल अगर टैलेंटेड क्रिकेटर है कोई, वो आपकी आंखों से नहीं दूर नहीं होगा। अगर आप बेशक जितने मर्जी बच्चों के बीच में हैं तो बहुत जल्दी पिकअप हो जाता है। कोचेस की आंख इतनी अच्छी होती है कि इट टेक्स ओनली फॉर ए बेटर, मतलब 6-7 गेंदों में समझ आ जाती है। देखिए क्या है कि एक जो हुनर है ना, वो ऊपर वाला आपको देता है और देन उसको तराशता एक कोच है। तो अभी तो कहते हैं ना, हीरे को तराशता कौन है, तो वो कोच है। तो वो आपका टैलेंट नहीं छुप सकता, और टैलेंटेड जो बच्चा है वो कभी भी पीछे नहीं रहेगा। इमटेरियल आजकल देखिए बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर जाकर बच्चा खेल सकता है, देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। और मुझे नहीं लगता कि कोई पैसे को लेकर कोई ज़्यादा समस्या है कहीं भी। अगर अच्छा क्रिकेटर है, उसको कोई भी अपनी अकेडमी में, या मतलब मैंने जितना आज तक सुना है, बिकॉज जितना मैं सुनता हूँ बहुत क्रिकेटर्स की है, दे लव टू हैव गुड क्रिकेटर, बिकॉज सबको तराश के देश के लिए तैयार करना है, उनका नाम होता है। कोचेस का मेहनत करते हैं, देखिए आसान नहीं होता एक प्लेयर को छोटी उम्र से बड़ा तक करना और वहाँ जाकर देश के लिए खेलना, बिकॉज एंड ऑफ द डे ओनली 15 प्लेयर्स सेलेक्टेड टू प्ले फॉर द कंट्री। लाखों करोड़ों बच्चों में से 15 ऊपर जाते हैं, बहुत मुश्किल काम है। तो वो जो टैलेंटेड है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आजकल बहुत स्कूल क्रिकेट भी है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक ज़माने में अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं, तभी मैं हर युवा बच्चों के लिए और यंगस्टर्स के लिए मैं यही कहता हूँ कि देर इज़ सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ग्रैब इट जहाँ आपको मिलती है। इतनी क्रिकेट अवेलेबल है आज के समय में यंगस्टर्स के लिए कि यू कांट इवन थिंक अबाउट इट। और जब से ये 3-3 टीम्स बनती है, आप देखिए आईपीएल के साथ 3 टीम्स, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ अपना टैलेंट दिखाने के लिए। देन अगर उसके बाद भी आप नहीं ब्रेक इन कर सकते, तो मतलब या तो आपके कहते हैं ना किस्मत में नहीं लिखा हुआ, और या फिर आप कहीं गलतियाँ कर रहे हैं। तो अदरवाइज टैलेंट को तराशना, इट्स वेरी इजी फॉर द कोच कि पता करना कौन से लड़के में वो हुनर है, और उन प्लेयर्स को जाने नहीं देते कोचेस, तो पकड़ के रखते हैं उनको।
0: चेतन थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, बिकॉज बहुत सारे क्रिकेट लवर्स जो क्रिकेटर्स बनना चाहते हैं, आई थिंक उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो हर समय ढूंढता रहता हूँ ऐसे प्लेयर्स, कहीं भी मिले तो वी विल ट्राई एंड पास ऑन द मैसेज टू द स्टेट्स एज वेल एज टू द क्रिकेट अकेडमीज। इवन हमारे क्रिकेटर्स हैं जो बहुत अकेडमीज चलाते हैं कि ये लड़का अच्छा है, इसको रख लीजिए, बिकॉज मैं तभी कहा ना, अच्छा क्रिकेटर कोई नहीं छोड़ेगा, और वो मैटर ही नहीं करता कि उस बच्चे के पास पैसे हैं कि नहीं है।
0: That's great to hear.
2: राइट देन, प्लेयर ऑफ द मैच, ये डिस्कशन आप सुन रहे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि कब वो विजय ट्रॉफी पकड़ाई जाएगी ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम को, जो बन गई है वर्ल्ड चैंपियंस, और 7वीं बार उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। 2010, 2012, 14, 18, 20, 23 और अब 2026 में वो वर्ल्ड चैंपियंस बने हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात की जब चर्चा चली चुकी है, तो वैशाली मोना आपसे जानना चाहेंगे, इंग्लिश विलो, चेतन भाई तो बता ही देंगे इस बारे में, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, विलो जो लकड़ी है वो आती है इंग्लैंड से, पूरे वर्ल्ड ओवर में चेतन भाई वो विलो जो है फैलती रहती है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब इंडिया की जो कंपनीज हैं, जो बैट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके बल्ले अब इंग्लैंड के प्लेयर्स, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के भी प्लेयर्स जो हैं, वो उन बल्लों को यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें खेल रहे हैं। वैशाली सबसे पहले आप।
3: जी बिल्कुल, क्योंकि एक बैट के अंदर हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर कैसे स्ट्रोक्स हैं, एंड उसको अगर हम जब टैप करते हैं बॉल, तो वो कितना आपको बैट पे बाउंस देता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बैट को चेक करना और आपका, आपके हिसाब से उसका बैलेंस कैसा है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक प्लेयर का बैलेंस अपने माइंड के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है, एंड उसके साथ उनका जो बैट का वेट होता है, हर प्लेयर का बैट का वेट अलग अलग होता है, तो वो एक, और वहाँ पर वो कौन से बैट के साथ कम्फर्टेबल है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लेयर्स के लिए। तो ये

0: मैटर करता है एंड इट्स गुड कि अभी आजकल काफी अच्छे इंग्लिश विलो बैट आ गए हैं तो आप भी यूज करो.
1: इंडिया आते हैं और वहां से फिर इंग्लैंड जाते हैं और साउथ अफ्रीका जाते हैं. मोना, आर यू सरप्राइज्ड?
2: नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं इसको इस तरीके से देख रही हूँ कि जो हमारी राष्ट्रीय खेल नीति आई है उसमें मेजर जो फोकस पॉइंट है वो ये है कि भारत में खेल साजो सामान निर्माण को बढ़ावा दिया जाए. जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं इतना सारा वो अब हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहिए, तो उस पर काफ़ी फोकस है. और मुझे लगता है कि अभी पीछे एक सम्मेलन भी हुआ था स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरर्स का, तो शायद मेरठ के बल्ले तो पहले से बहुत फेमस है कश्मीर विलो, तो काफ़ी ज़्यादा इस पर जोर दिया जा रहा है. और जैसे आपने कहा कि अब विदेशी खिलाड़ी हमारे खेल रहे हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है सिर्फ क्रिकेट ही नहीं और भी खेलों में जो स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट देखने को मिले.
3: जो आपने बात की मोना जी, मैं जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है इंडिया का वर्ल्ड में आई थिंक सो नंबर वन है. मतलब जिस तरह के आप, इट्स नॉट क्रिकेट, इट्स क्रिकेट तो है ही. उसके साथ आप फुटबॉल की बात करें, मतलब जलंधर एंड मेरठ आर द टू प्लेसेस जहाँ पर बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है और भी होती होंगी जिसका हमें आइडिया नहीं, बिकॉज हमारा क्रिकेट में मनीष बेसिकली वी टॉक अबाउट जलंधर एज वेल एज मेरठ. तो बट जब हम इन फैक्ट्रीज में विजिट करते हैं हम देखते हैं कि जिस अमाउंट पे फुटबॉल्स बन रही हैं, जिस अमाउंट में हॉकीज बन रही हैं, स्पोर्ट्स आप किसी कंट्री में, मतलब क्रिकेट प्लेइंग नेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, आई कीप गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, आपको हर जगह पर इंडियन इक्विपमेंट नज़र आता है. पैड्स, ग्लव्स, जो वो जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है ना, बैट को आप थोड़ा साइड पे रख दें, वो तो मतलब मैसिव है इंडिया का जो मार्केट है एंड वी आर एक्चुअली प्राउड ऑफ इट कि जो चीज़ें हैं वो जब हम जाकर देखते हैं कि भारतीय कंपनीज़ की इस्तेमाल होती है वर्ल्ड वाइड, इट्स अमेजिंग. वो आपका ना दिल को बड़ी सुकून मिलता है, मज़ा आता है देख कर कि आज हमारी वो इक्विपमेंट जो हमारे समय में, आई एम टॉकिंग अबाउट 1980s, जब मैं पहली बार इंग्लैंड गया था ना मनीष, वहाँ से मैं कुछ चीज़ें लेकर आया था स्पोर्ट्स, मतलब था, अगर मैं थाई पैड की बात करूँ, चेस गार्ड की बात करूँ, उस समय हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं था. और आज देखिए हमारे देश से हर चीज़, हर वर्ल्ड के हर कोने में वो इक्विपमेंट सप्लाई हो रही है. तो इट्स अमेजिंग एंड इट्स रियली प्लेजेंट फॉर आईज, यू नो, जब हम जाते हैं वर्ल्ड वाइड हर जगह, मतलब वर्ल्ड में क्रिकेट इक्विपमेंट की बात करूँ, इंडियन इक्विपमेंट हैज बीन यूज्ड.
4: एंड यू नो, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि क्रिकेट एक रिलीजन है, खासकर हमारे भारत में, और बहुत पैशनेटली लोग फॉलो करते हैं क्रिकेट को. और जैसा हम पहले कहते थे, चेतन आप भी बोल रहे थे बार बार कि लोगों को एक थोड़ा बैलेंस रखना चाहिए, कभी कोई परफॉर्मेंस नहीं अच्छी भी होती तब भी बी विद योर टीम टू गिव देम कॉन्फिडेंस एंड नॉट पुल देम डाउन. बिकॉज जब हम इनसिक्योरिटीज़ की बात करते हैं ना, तो ये बात भी आती है जब क्रिकेटर्स को पता चलता है कि लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो एक ये भी चेतन डर रहता है ना कि हो सकता है टीम से ड्रॉप ना कर दें.
3: नहीं, मैं
4: उतनी सिक्योरिटी दी जाती है उनको.
3: बिल्कुल गीतांजलि, क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो वेरी गुड टू ए लिमिट. मतलब ये नहीं कि आप पीछे हाथ दौड़ के पड़ गए कि किसी के, ठीक है. देखिए अगर आप खराब खेलेंगे आपका क्रिटिसिज्म बनता है. इवन हम जब कमेंट्री करते हैं या हम स्टूडियो में होते हैं, हम भी तो बात करते हैं ना, किसी ने खराब शॉट खेला और उसकी वजह से आप मैच हार गए, तो यू क्रिटिसाइज, यू जस्ट स्टे टू द क्रिकेट ओनली. जब देखिए फैंस हैं तो हर चीज़ है, हम फैंस की बहुत इज्जत करते हैं, बट जब वो क्रिकेट एंड क्रिकेट के बाहर चीज़ें चले जाती हैं ना, वो दुख लगती है. आप क्रिकेट की बात क्रिकेट तक सीमित रखें, उसने खराब शॉट खेला, उसने खराब गेंदबाजी की, खराब फील्डिंग की, एक्सेप्टेड, बट व्हेन इट गोज बियॉन्ड इट दैट हर्ट्स, दैट्स इट.
1: तो मैं समझ सकता हूँ कि मध्य रात्रि हमारे भारतीय समय के अनुसार हो चुकी है, लेकिन हम अभी इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे कब ट्रॉफीज जो हैं वो दी जाएं. ऑस्ट्रेलिया को विनिंग ट्रॉफी, इंग्लैंड रनर्स अप रही अपने ही घर में. लॉर्ड्स जो गढ़ है क्रिकेट का, कहा जाता है कि अब इससे बड़ा कोई वेन्यू नहीं है, वहाँ पर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के हाथों 7 विकेट से परास्त कर दिया गया. बेथ मुनी विकेट कीपर बैटर 64-49 और उनको प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया. एंड ऑफकोर्स फोबे लिचफील्ड ने 48 रन्स की जो नॉक खेली और 100 रनों की साझेदारी इन दोनों के बीच में, वो एक आसान सी जीत तय कर गई ऑस्ट्रेलिया के लिए इंग्लैंड के विरुद्ध.
4: और अब हमारी साझेदारी होने वाली हमारे एक और कॉलर के साथ. हेलो
5: हेलो शिशि, गुरु गौरंग गदाधर नित्यानंद अद्वैत, हरे कृष्ण राधे राधे, नमस्कार. जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव का शुभाष है. और मेरा प्रश्न है कि मैं प्रेम प्रदीप दास बोल रहा हूँ, श्री कृष्ण चैतन्य जगन्नाथ परशुराम क्षेत्र बैंगलोर से.
4: प्रश्न पूछिए.
5: ये कि अभी जो आप हमारे जो टीम का जो मेंटल मेकअप

0: देखा है ना, जो ऑस्ट्रेलिया जो जिताया, जैसे टीम वर्क जो इतना अच्छा है, तो क्या हमारे टीम में क्या बदलाव ले आ सकते हैं? माने जैसे बोलते हैं ना, द टीम दैट प्लेस टुगेदर स्टेज टुगेदर, माने उनका जो टीम वर्क में और हमारा जो इसमें जो क्या बदलाव ला सकते हैं इंडिया के टीम में, इसको देख के, ये हमारा प्रश्न है
1: जी। बहुत सारी डिस्कशंस, अगर आप सुन रहे हो हमारे कार्यक्रम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, हमने क्या एडिशन हो सकता है, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, उस बारे में चर्चा ज़रूर की है। जैसे जैसे अभी आगे चर्चा बढ़ेगी आप और इस बारे में जान पाएंगे। लेकिन एक चीज़ मोना, बिकॉज़ ये परफेक्ट मौका है, आप जर्नलिस्ट हैं एंड दैट टू सच अ सीजन वन, एक्सपेंशन जो क्रिकेट की हुई है, ख़ासकर ये जो वर्ल्ड कप है, मैसिव 12 टीम्स थी, कहीं आपको लगता है ऑब्वियसली दिस इज़ गुड फॉर क्रिकेटर्स, बट जैसे आयरलैंड को बीच में लाया गया, सो व्हाट डू यू थिंक, दिस एड्स एन एडेड टाइम एंड अ प्रेशर एंड टेक्स अवे द क्वालिटी लाइक यू नो सम ऑफ द पीपल वर सेइंग, और दिस इज रिक्वायर्ड टू फाइंड मे बी मोर स्टेबिलिटी इन क्रिकेटिंग ग्राउंड?
2: देखिए, फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है साथ में, हाँ ठीक है, 48 टीमें, और बड़ी आलोचना हुई थी कि इससे क्वालिटी चली जाएगी और वो मज़ा नहीं आएगा जो बड़ी टीमों के बीच होना चाहिए। लेकिन आपने केप वर्दे का नाम सुना
1: जी,
2: कुरासाओ का नाम सुना, तो ऐसे अगर आप एक तरफ बात करते हैं, आईसीसी बात करती है क्रिकेट को उन टेरिटरीज में ले जाने की जहां पर क्रिकेट नहीं खेला जाता, इतनी सारी लीग्स दुनिया भर में खेली जा रही हैं, तो ये जो छोटे देश हैं, जिन देशों की आपने बात की, जो पारंपरिक रूप से महाशक्तियां हैं क्रिकेट की, अगर उन्हीं के बीच में वर्ल्ड कप करा लिया जाएगा तो फिर इन देशों को इस तरह के एक्सपीरियंस का मौका कहाँ मिलेगा? और आप देखिए कि कितनी बार हमने वर्ल्ड क्रिकेट में उलटफेर देखे हैं जब छोटी टीमों ने बड़ी टीमों को हराया है। तो अभी T20 फॉर्मेट है, इसमें कोई किसी टीम के बारे में कुछ नहीं कह सकते, एक फेस की बात है, मैच का पूरा नक्शा बदल जाता है।
3: राइट देन, समय आ गया कि अब हम लॉर्ड्स एक बार फिर से चलें, क्योंकि प्रेजेंटेशन सेरेमनी, उस बड़ी विश्व कप की प्रेजेंटेशन सेरेमनी अब ऑन है।
4: ऑन फील्ड अंपायर्स जैकलिन विलियम्स एंड व्रिंदा राठी। TV umpire Kim Cotton. And fourth umpire Nimali Pereira. We now invite the runners-up, England, to the stage to collect their runners-up medals from Mr. Richard Thompson and Miss Claire Connor. First up, Lauren Bell. Alice Capsey. Tilly Courtney Coleman. Charlie Dean. Sophia Dunkley, Sophie Eccleston, Lauren Filer, Danny Gibson, Danny Wyatt Hodge, Amy Jones, Freya Kemp, Heather Knight, Lindsay Smith, Izzy Wong, and England's captain, Nat Siverbrant.
5: It's okay. About 10 seconds.
6: Nat, you've run into another tough Australian side that love playing in finals. How difficult is this one to take?
7: I'm still hugely disappointed. We've had such a great competition up to this point, and I suppose to end like that feels a bit sour in the mouth at the moment. But we were out

Yeah, the mic might help.

0: team. Have a great night, enjoy it, celebrate hard, and all the best for what comes next.
1: Thanks, Ash.
2: Congratulations to the winners of the ICC Women's T20 World Cup 2026.
3: And there it is.
4: Well, emotions all over, and rightly so. Obviously, I think their intensity was pretty different. But the fact is that trophy has a home, that's Australia. But the memories belong to all of us, and that's the World Cup final. And tonight, I must say that it belongs to Lords. And tomorrow, because this is the Women's World Cup, and we do believe that a lot of lovely, small, young girls would like to be a cricketer. This is going to be the inspiration. So tomorrow belongs to every little girl watching and dreaming. And here in the studio, we just hope and pray that you all enjoyed our presentation from Akashwani. And before we leave, I think we'll have a quick word and ask all our experts. So we'll start from Chetan. How was the experience this World Cup, Chetan?
5: Bahut behtareen. Dekhiye, two best teams reached the finals unbeaten. एंड कहते हैं ना, जब आप बिना हार के वहाँ फाइनल तक पहुँचे हैं, एक को हारना था और वो इंग्लैंड की बारी थी. लेकिन कभी कभी इतनी मेहनत के बाद जब आपको हार का सामना करना पड़ता है, दुख लगता है. लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोनों कैप्टन्स की इंटरव्यू सुन के कि जैसे जैसे उन्होंने इनकरेजिंग वर्ड्स बोले हैं.
4: एंड क्विक थैंक यू टू मोना एज वेल, एंड यू वुड आल्सो लाइक टू से समथिंग क्विकली.
6: जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट रहा. और जैसे कि जो सर्वश्रेष्ठ टीमें थी वो फाइनल में पहुँची और ऑस्ट्रेलिया ने अपना दबदबा एक बार फिर साबित.
4: वैशाली,
7: एज यू सेड कि यंग जो भी यंगस्टर्स आएंगे उनके लिए ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, एंड इससे देख के काफ़ी लड़कियां और क्रिकेट खेलें एंड उस तरीके का कंपटीशन और बेटर हो. मैं चाहती हूँ कि गर्ल्स और खेलें, क्रिकेट खेलें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट सीजन. एंड थैंक यू सो मच फॉर टू यू एंड अनीश जी, आपको भी.
4: No, actually, we have to thank our experts for being so gracious and always here to help us, guide us, and help the cricket overall. And I would like to thank Chetan Sharma for joining us in the studio.
5: Thank you.
4: Your presence is always magnanimous, and thank you so much, Mona Parthasarathy. Your wisdom, your knowledge brings monumental gain to us. And Vaishali Mathur, you have been an addition to the cricket and, of course, to the studio. Thank you so very much for joining.
7: Thank you.
4: My friend Munish Jolly, it is always a pleasure having you. Why are you so quiet? Suddenly you're sleeping?
8: थैंक यू सो मच. जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन वैशाली जो बात आपने की उसको आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम का समापन हम कर रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट द वुमेन हु आर लिसनिंग टू अस. इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ प्लेयर. आई थिंक आकाशवाणी लुक्स फॉरवर्ड टू लॉट ऑफ यंग टैलेंटेड वुमेन, द लेडीज, द गर्ल्स टू कम एंड बिकम स्पोर्ट्स कॉमेंटेटर्स. एंड थैंक यू सो मच. और इससे पहले कि हम लोग जाएं, हमारी जो टेक्निकल टीम है, मनोज कुमार, सुशील कुमार, संजय कोटनाला जो पर्दे के पीछे बहुत मेहनत करते रहते हैं, प्रोडक्शन असिस्टेंट्स हैं स्वाति कपूर, अमीशा पटेल, तन्मय पंत, और हमारे प्रोड्यूसर शाहनवाज खान. आप सब तक ये प्रसारण बहुत मेहनत मशक्कत के साथ लेकर आए हैं. आशा करते हैं ये प्रसारण, सजीव प्रसारण, लाइव बॉल बाय बॉल कमेंट्री आप सभी को पसंद आई होगी.
4: जी, एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू से दैट यू मेड द वर्ल्ड कप फाइनल अलाइव फॉर ऑल आवर लिसनर्स एज वेल एज अस. सो थैंक यू सो वेरी मच. दिस इज गीतांजलि, Munish and all the team from Akashvani saying keep on enjoying cricket. Thank you for joining us.
9: Player of the match.
10: श्रोताओं, भी आकाशवाणी दिल्ली से आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य लंदन में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट का फाइनल मैच का सीधा प्रसारण किया जा रहा था. ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है. रात्रि के 11:27 हुए हैं. अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है. कल सुबह 5:55 पर तीनों सभाओं के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे. तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए. शुभ रात्रि. जय हिंद.